0: मानसून के बादल और तेज बारिश के बीच जलजमाव और उफनती नदियाँ। बारिश के दिनों में ये नज़ारे बेहद आम हैं, लेकिन मानसून में बारिश के बाद लोगों को उमस और गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन बाढ़ वाले इलाकों में बारिश मुसीबतें भी लेकर आती है। फिलहाल ऐसे हालात से निपटने के लिए देवदूत के रूप में बचाव दल हमेशा तैयार रहते हैं। मुंबई, ठाणे, पुणे और पालघर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे एक घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: पालघर जिले में सुबेरे 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भर आया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
2: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ।
3: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर में निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जल भराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। पालघर के इस संकट के बीच इन युवाओं ने उम्मीद और इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के पुणे में इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहां फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया, इसके बाद इमारत में दूसरे फ्लोर पर फंसे लोगों को बाहर नाव तक लाया गया। इस दौरान कई बुजुर्गों को उठाकर नाव में बैठाना पड़ा।
4: देखो सर बचाना ऊपर।
0: मुंबई के पास लोनावला में मूसलाधार बारिश हो रही है, कई घरों में पानी भरा तो एनडीआरएफ के जवान मदद के लिए पहुंच गए। नाव के जरिए टीमों ने पूरे इलाके का मुआयना किया और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। गुजरात के अमरेली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारी बारिश के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया। ऐसे में अमरेली के राजुला में बारिश के बीच डॉक्टर्स की टीम ने एक महिला मरीज की जान बचाई। हुआ ये कि गांव में बीमार महिला तक पहुंचने के लिए डॉक्टर पानी के बहाव के बीच ट्रैक्टर से पहुंचे, फिर जेसीबी की मदद से उसे बाहर लेकर आए। बारिश के मौसम में हमेशा नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कर्नाटक के कोडगु में कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं देश के 23 से अधिक राज्यों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और दिल्ली NCR में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और मध्य भारत में भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जबकि डोडा और किश्तवाड़ में भारी तबाही हुई है।
4: पिछले दो दिनों से जम्मू संभाग के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। इसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में इस भारी वर्षा के कारण काफी तबाही हुई है। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई और साथ ही में सड़क पर जो है मलबा आ गया और इस बाढ़ और बारिश के कारण ठाठरी में कई मकान ढह गए, कई दुकानों को भी क्षति हुई और कई जो गाड़ियां हैं वो बाढ़ के पानी के कारण बह गए। प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तबाही देखी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि डोडा के ठाठरी इलाके में कई जो मकान हैं वो ढह गए हैं इस बारिश और बाढ़ के कारण और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। डोडा किश्तवाड़ जो राजमार्ग है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, कई स्थानों पर पत्थर गिराए हैं और मलबा भी जमा कई स्थानों पर हुआ है।
0: मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के बीच मौसम विज्ञान विभाग ने समुद्र में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया है।
5: मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है, काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल्स जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए। ऐसा ही कुछ हाल नासिक में भी देखने को मिला जहां पर की वार्निंग दी गई थी कि तेज बरसात होगी, लेकिन बीच बीच में मध्यम मध्यम बरसात हो रही है, ज्यादा बरसात नहीं हो रही है। ज्यादातर अगर IMD के जो इमेजेस अगर आप देखें तो ज्यादातर जो चक्र जो बादलों का जो क्लाउड है वो ज्यादा से ज्यादा गुजरात और मध्य प्रदेश की तरफ चला गया है, ऐसा दिख रहा है। और इस वक्त हालांकि IMD की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी।
0: हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
6: आखिरकार उत्तर भारत में जुलाई के पहले हफ्ते मॉनसून दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए गए हैं। इस समय हम सुखना लेक पर हैं जहां पर बारिश इस समय तो नहीं है लेकिन बादल छाए हुए हैं और एक तपस, एक ह्यूमिडिटी जरूर मौसम में है। अगर यहां पर बाहर कोई भी निकलता है तो ह्यूमिडिटी जरूर परेशान करती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से चाहे वो हिमाचल है जिसमें 4 जिले मंडी, कांगड़ा, शिमला और सोलन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर बिलासपुर और सिरमौर में येलो अलर्ट है, बाकी जगह मौसम साफ रहने का अनुमान है। और पंजाब का मानसा हो जहां पर एक कच्चा बांध नदी के किनारे टूटा, 300 एकड़ फसल खराब हुई पिछले दिनों में पहली बारिश से, और साथ साथ पठानकोट हो या वो शहरी इलाका हो जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या इस इक्का दुक्का बरसात से ही सामने आई है। हरियाणा में भी पंजाब के साथ जैसे ऑरेंज अलर्ट पंजाब में है तो वैसे ही येलो अलर्ट हरियाणा में जारी किया गया है। 9 जुलाई का अनुमान है और अगले 2 से 3 दिन हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है।
0: वहीं दिल्ली NCR में लंबे इंतजार के बाद ठंडी हवाओं और झमाझम बरसाती बूंदों के कारण तापमान में कमी आई है और मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को इस बारिश ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भरद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश का क्या है हाल, देखिए हमारे संवाददाता अनमोल बाली की रिपोर्ट।
7: दिल्ली में मानसून की पहली झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। समय मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं और पानी झमाझम बरस रहा है, क्योंकि 2 जुलाई से देखा गया था मौसम विभाग का जो अनुमान था कि दिल्ली में मानसून दस्तक देगा, मानसून ने दस्तक दी और पर देखा गया कि बारिश नहीं हो रही थी, उमस भरे दिन थे। इसी बीच एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है। सुबह देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं, जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। और वहीं मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रैफिक मूवमेंट भी अगर आप देखें बारिश के कारण, उस पर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार है धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट इशू किया और साथ ही लोगों को चेतावनी दी है कि अगर आप किसी जर्जर इमारत के पास रहते हैं, जर्जर इमारत में रहते हैं, किसी जर्जर पेड़ के पास खड़े हैं, तो किसी सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो जाएं या सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले एक दो दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मॉनसून की, तो देखा जा रहा है कि मॉनसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि एक दो दिन तक जो मॉनसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ अनमोल नाथवाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
0: दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
8: उत्तर प्रदेश के रहने वाले कन्हैया कुमार रोलर स्केट्स के जरिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। 20 साल के कन्हैया कुमार पिछले साल 29 अक्टूबर को अपने घर से रवाना हुए थे और बीते 10 महीनों में 14 राज्यों से होते हुए कश्मीर के काजीगुंड पहुंचे हैं। कन्हैया कुमार ने बताया कि उनकी अनोखी यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगी। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को 300 ई बसों की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने 11 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। दिल्ली के 2 लाख लोगों को एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ा जाएगा। वहीं दिल्ली के 250 वार्ड और 70 विधानसभा क्षेत्र में जन भागीदारी के साथ पौधारोपण कराया जा रहा है। फेंसिंग के साथ ही पौधों की जियो टैगिंग कराई गई है ताकि निगरानी सुनिश्चित हो। अगर पौधों को किसी प्रकार नुकसान हो तो वहां नए सिरे से पौधे लगाए जा सकें। ओडिशा के पुरी में होने वाली सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने मेगा मॉक ड्रिल की। पुलिस ने पुरी रेलवे स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि रथ यात्रा के दौरान जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुरी में 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होगी।
0: अब बात अमरावती की मां अंबे देवी मंदिर की। महाराष्ट्र के चिखलदरा में पहाड़ियों के बीच मौजूद एक ऐसी गुफा है जहां पर आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं। करीब 400 साल पुराने मां अंबे देवी की इस गुफा मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहां साल के 365 दिन प्राकृतिक जलधारा लगातार बहती रहती है और शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक होता रहता है।

0: महाराष्ट्र के अमरावती जिले का चिखलदरा विदर्भ का एकमात्र हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि महाभारत कालीन इतिहास प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम भी है। बादलों से ढकी ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली से ढकी घाटियाँ और इन्हीं चट्टानों के बीच सदियों पुरानी एक रहस्यमयी गुफा जहाँ प्रकृति खुद माँ शक्ति की आराधना करती दिखाई देती है। इस गुफा में प्रवेश करते ही भक्ति की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये गुफा जितनी ऐतिहासिक है उसे लेकर पौराणिक मान्यताएं भी उतनी ही गहरी और पुरानी है। इस गुफा को पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम पड़ाव भी माना जाता है और यहाँ विराजमान माँ अम्बे की संगमरमर की ये आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं को पहली ही नजर में अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोनों हाथों में तलवार धारण किए माँ का दिव्य स्वरूप शक्ति साहस और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। खास बात ये है कि इस मंदिर में आदिवासी समाज गवली समुदाय सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में माथा टेकने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूरी होती है।
1: अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में एक जो है यहां पर गुफा है, वो गुफा बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी कि महाभारत काल से भी अधिक पुरानी ये गुफा। मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर ये गुफा है और इस गुफा के अंदर अब यहाँ जो है अम्बा देवी संस्थान के चलते जो है देवी माँ की मूर्ति लगभग 400 साल से भी अधिक समय से यहाँ पर उसको स्थापित किया गया है। और सबसे अहम बात यही है कि ये देवी माँ का जो स्वरूप है और जो मूर्ति है वो संगमरमर की मूर्ति है और माँ के इस रूप को आप देख सकते हो कितना सुंदर है माँ का रूप। लेकिन माँ के इसी गुफा में बैठी इस माँ के सामने जो है निरंतर 12 ही महीने जो है निरंतर इस गुफा में जो पानी है वो पानी निरंतर यहाँ पर गिरता है। माता रानी का ये दर्शन लेकर और इस गुफा में किस तरह का पानी निरंतर गिरता है, क्या देखा है तुमने?
2: हमने अभी देखे चंद्रपुर के, हम आए चंद्रपुर जिला वरोरा, हमने देखे चिखलदरा, देखे हमने पानी आप आप गिर रहा है, पूरा पानी बंद है अभी, पानी बरसात भी बंद है तो अभी पानी गिर रहा है, बोला 12 महीना पानी गिर रहा है इधर।
1: क्या मांगा माता से?
2: माता के माने माना हमें पूरी इच्छा पूरी करो।
0: इस गुफा की सबसे अनोखी पहचान है यहाँ बनने वाली प्राकृतिक जलधारा। विशाल चट्टानों के बीच से निकलने वाला निर्मल जल बिना रुके पूरे साल इसी तरह 2400 घंटे झरने की तरह बहता रहता है। यही जलधारा सीधे मंदिर परिसर में गिरती है और फिर स्वयं भगवान शिव के शिवलिंग का निरंतर जलाभिषेक करती है। श्रद्धालु इसे प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत मिलन का जीवंत प्रमाण मानते हैं। सवाल है कि आखिर ये पानी कहां से आता है, तो इसका कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार इसे चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित घटनाओं और अमरावती के सरकारी गजेटियर के अनुसार चिखलदरा वह क्षेत्र है जहां विराट राजा के साले और सेनापति कीचक का वध महाबली भीम ने किया था। युद्ध के बाद भीम ने अपने रक्त रंजित हाथ जिस कुंड में धोए वो आज भी भीम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम पहले कीचक धारा पड़ा जो समय के साथ अब भ्रंश होकर चिखलदरा बन गया है। महाभारत की अमर गाथा 400 वर्षों से जलती आस्था की लौ और 12 महीने निरंतर बहने वाली प्राकृतिक जलधारा चिखलदरा की ये पांडवकालीन गुफा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास संस्कृति और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम है जो हर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक को रोमांच श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूति से भर देता है। यही कारण है कि विदर्भ के इस अनोखे तीर्थ की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है।
1: इसी बीच जो है यहाँ पर दूसरा भी मंदिर है जो भोलेनाथ का मंदिर है, वो भोलेनाथ के मंदिर पर इसी गुफा के अंदर आप देख सकते हो कि निरंतर जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर इस जो पहाड़ी के अंदर से जो पानी आता है वो निरंतर इसे जलाभिषेक में यहाँ पर रूपांतर होता है। ऐसी ही ये जो गुफा है वो अपने आप में अलग है, और सबसे अहम बात यही है कि इस गुफा के ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है एक नदी का उगम है और उगम स्थान है। और सबसे दूसरी महत्व की बात है कि निरंतर यहाँ पर जो है वो देवी माँ के मंदिर के अंदर इस गुफा के अंदर निरंतर जो है पानी गिरता है, और यही जो यहाँ पर भक्तों की भक्ति है, आराधना है, साधना है, वो यहाँ पर बड़े भाव से यहाँ पर भक्त जो है अपनी आराधना साधना पूजा करने के लिए और अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
0: न्यूज पेपर पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 78,180 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 24,398 पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की वजह से आज गोल्ड और सिल्वर दोनों की कीमतों में गिरावट मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1400 रुपए गिरकर 149,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 200 रुपए लुढ़ककर 239,800 रुपए पर पहुंच गई। 7 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में मजबूती देखने को मिली। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 94.95 के स्तर पर बंद हुआ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
4: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's give your evening routine the attention it deserves. Whether it's self-care or connection, they have everything you need to keep things hot. Lotions and massage oils, flirty couples games, and right now, 20% off Cal Exotic Toys. Known for their quality and variety, they have something for absolutely everyone. So start exploring at your local Cirilla's or Cirilla's.com.
5: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
6: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
5: Learn more at emory.edu.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: से अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने
2: चाहिए। कौन सा खाद्य पदार्थ चंद्रमा को बेहतर कर देता है, मन को शांत कर देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक रूप से मजबूती देता है? और कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज कर देता है? अनाज का और मसालों का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। बच्चा भी सड़क पर चल रहे दोपहिया वाहन पर बहन के साथ बैठा है। बहन नींद में और बच्चा बहन के हाथ में रखी आइसक्रीम का लुत्फ लेने पर उतारू है। मुँह में बस आइसक्रीम का स्वाद लेने को ही था, लेकिन तभी पीछे की गाड़ी ने इतनी तेज हॉर्न बजा दिया कि बच्चे ने कमाल का रिएक्शन दिया। बच्चे ने हॉर्न बजाने वाली गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर आइसक्रीम ही दे मारी। अब बच्चे का ये आखिरी वाला रिएक्शन यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। अब इस मदर डक और उसके ट्रिक्स को ही जरा देख लीजिए। देखने पर ये मदर डक आपको एक सख्त माँ लगेगी, लेकिन अपने बच्चों को मजबूत, काबिल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदर डक बता रही है कि ऐसे बनते हैं बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट। और तभी कर पाते हैं मुश्किलों का सामना, वरना तो कमजोर पड़ जाएंगे। यूजर्स को अपने बच्चों को सिखाने का मदर डक का ये स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है। कई यूजर्स कह रहे हैं कि इंसानों में इसी चीज की कमी होती है, वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं जिससे वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और मुश्किलों का सामना करने में कमजोर पड़ जाते हैं। ये माँ हमें सिखा रही है कि कैसे मजबूत और काबिल बच्चे तैयार किए जाएं जो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाएगी।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
6: इंडोनेशिया में आज विश्व धरोहर ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम को का भी आयोजन। दिल्ली NCR में रात भर बरसे बादल, अगले दो दिन तेज बारिश का अलर्ट, लोगों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में बारिश का दौर जारी, तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके में रेस्क्यू का काम जारी, लापता लोगों की तलाश में जुटी टीमें। फुटबॉल विश्व कप में मेसी ने कराई अर्जेंटीना की यादगार वापसी, इजिप्ट को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
7: एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। कुछ लोग कहते हैं ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते हैं त्यागी जी। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने, तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वालों घर वाले रखते ही उसी को जो काम का हो, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं है तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मूड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मूड़ सिर को मूड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए 3 गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोले ये फायदा है तो मूड़ मुड़ाए 3 गुण। घर वालों ने कहा कि कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांखा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला जाए कहां, इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां। सामने एक मंदिर था, मठ आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा, महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं, टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते हैं, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खा खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर, मंदिर के बाहर बैठे थे। ये जा रहा था रस्ते में, इन्होंने देखा, इसने देखा, बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है। बोले ये भी मोटे ताजे हैं लगता है, ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे, लगता है ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया बोले गुरु जी हाँ आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हो महाराज। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरु जी बोलो कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह, मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम? बोले हाँ दो बार। बोले वो चार नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं, आठ बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, आठ बार खूब खाना। इसने कहा यदि नौ बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भगे, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, नौ बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा, गुरु जी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जयकारा लगा के भंडारी के पास आ जाए, लो हम तो जय बोले ले आओ। तो पुजारी जी कहे भाई कम से कम पांच मिनट तो गम खा, पांच मिनट तो ठहर जा बीच ही में, और ये इतना खावे, अब इसे फ्री में मिले साव आनंद, काम कुछ करना नहीं, इतना खावे को होश नहीं खड़े होने का, सांस तेज चल रही, पेट भरो है दाल से और रोटी से और भात से, आ सांस तेज चल रही हो, दीवाल में टिक के कीर्तन करे हरे राम उत ही सो जाए, और जैसे ही नींद को ले सो फिर जाए ले आ। मंदिर वाले बोले भला भगवान इसका भला करे, खाता ही खाता है, लेकिन इसे क्या पता मंदिर में भी मुसीबत आने वाली है। एक दिन सुबह से कुछ बना ही नहीं, भंडारी जी धूप में तेल लगाते हुए बैठे थे, सिर के बाल खुजला रहे थे, इसको लगा आज मंदिर में हड़ताल है। तो ये गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज रोटी नहीं बन रही, भंडारी जी बैठे हैं, कितनी देर में बनेगा, हमें गरम ही दे दो। गुरुजी बोले चेला तुम्हें बताना भूल गए, दरअसल आज एकादशी है। बोले एकादशी है तो? बोले एकादशी है तो ना बनेगा ना मिलेगा। तो रामदास बोला हमें भी? बोले तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। अरे बोले गुरुजी आपके इतने चेला हैं, उन्हें एकादशी करवा दो, एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है, एक उपाय है। क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर आ जाएगी भूख लग। तो गुरु जी बोले इधर आओ। जी जी गुरु जी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरुजी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया, चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने लगा।

लगता रहा। अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े। सो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे? गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला। एक कमी होगी। क्या कमी होगी? हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है। हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हो। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

सीधा साधा सो हाथ जोड़ करके बोला, सुनो प्रभु हमारे पास तुम यहाँ आकर के तुम आ जाओ, पर बाद में कहो मिठाई दो, रबड़ी दो, मालपुआ दो। ना ना सुन लो व्यवस्था,

नहीं आए। अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाए। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में मालपुआ रबड़ी मालपुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा। वहां कुछ नहीं है, जो है यही है, यहाँ हम भी खा रहे तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए। लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है, कलयुग की सत्य घटना है। राम जी अकेले नहीं आए, सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवा ही लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कड़ खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, वो दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ। बढ़िया प्रसाद पवाया, इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किया। भगवान जाने लगे, इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ। तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाएंगे, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये धाम मंदिर आ गया, इसने गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पूछा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी, इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अभी एकादशी आई। तो गुरु जी के पास गया, बोले, गुरु जी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरु जी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ, आटा। गुरु जी को लगा, ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा। तो गुरु जी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे, ले ले जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कड़ फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई, रख ली, साग बनाई, रख ली। इसने सोचा, भगवान को बुला ले, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा। तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता।

की मैया को लेकर राम जी प्रकट हो गए। और जहां इसने तीन भगवान देखे सो दूर ही से हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला अब ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले हुआ क्या? बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है इनका अलग, दोनों अलग लग रहे। अरे बोले नहीं नहीं हमारे भाई हैं, इनकी माताजी दरअसल दूसरी है इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बता। हाँ। बोले हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है अब पूरे खानदान का, तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए सो अब ठीक है, लो बैठो कोई बात, लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे। बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा वाह लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। मन ही मन सोचे क्या गजब का आदमी, हम जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं, ये कह रहा ये क्यों आ गए, क्या गजब का भगत है भाई, क्या गजब का भगत। तीनों लोग बैठ गए, राम जी जानकी जी लक्ष्मण भैया तीनों बैठे। इसने प्रसाद रखा, भोजन कराया, आहा तीनों को गौर से देखने लगा। भगवान तो भगवान ही है, बहुत सुंदर परम सुंदर है ही है। नीलाम बुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम है। सो भगवान श्री नील सरोरों नीलमण नील नीलधर श्याम, भगवान का नील स्वरूप है। आहा अलकावलियां झलक रही हैं, घुंघराली लटें लटक रही हैं, बड़ी वज्राग देह माई भुजाए है, बढ़िया गला भरा हुआ शंख की तरह है, कपोल बढ़िया मुस्कुराते हुए लाल लाल होंठ हैं, काली काली कजरारी अखियां हैं, श्वेत दंतावली है। आहा मधुर मुस्कुराता हुआ श्री हमारे राघोजू सरकार का मुखारविंद है। स्वरूप को देख करके ये अद्भुत हो गया। बोले वाह कुछ भी कहो, पहले दो लोग अच्छे लग रहे थे अब तीनों अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने भी भोजन किया, चरण पकड़ के राम जी से बोला प्रभु जा रहे? राम जी बोले जा रहे, भगवान बोले जा रहे। बोले अगली बार कितने आओगे? आओ, आओ, आओ। एक को बुलाया दो आए, दो को बुलाया तीन, बोला तीन आ गए, अब अगली बार गिनती बताओ। भगवान बोले हम आ जाएंगे, गिनती नहीं पूछते, हम आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और भगवान ऐसे ही गोलमोल करके गायब हो गए। अभी आया इसको तो फिर एकादशी की पड़ी के इस बार एकादशी आएगी फिर आफत होगी। सच में एकादशी आ गई, फिर एकादशी आई। गुरु जी बोले आज फिर एकादशी है? बोले है तो। गुरु जी बोले सिर क्यों लटका है? अरे बोले वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरु जी बोले कहना क्या चाह रहे? बोले इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरु जी बोले डबल? बोले कितना? बोले 8 का 16, 8 शेर दिया था 16। गुरुजी मन में सोचने लगे 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूरी बेचता है। गुरुजी बोले 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन दे दो सामान, आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा राशन पर्याप्त है, एक काम करो पहले भगवान को बुला लो, जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे। तो ये पहले ही बैठ गया, नाम तो जान ही गया था। जिसने फिर हाथ जोड़े आंख बंद की और गाने लगा,

का सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन आते हैं, तीन की व्यवस्था करो सो पूरो खानदान मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोग नहीं बनाया है। भगवान बोले मतलब? बोले ना हमने बनाया है ना तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे? बोले जब हमें हर बार एकादशी हो ही जाती है, वो धरा सामान बनाओ खाओ, जब हमें मिलता ही नहीं है अपना बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो वहां बैठे रहेंगे, बच जाए सो हमें बता देना, नहीं तो हमारी भी एकादशी है। गुरुजी वैसे ही कह रहे थे एकादशी रहना चाहिए, सो हम भी एकादशी रह लेंगे। भगवान बोले लो आज तो गजब फंस गए। अब ये दरबार की तरफ देखे, राम जी से बोला परिचय कराओ कौन कौन आया है। राम जी बोले ये तो मिले थे, हाँ ये तो लक्ष्मण जी हैं, ये तो तुम्हारी पत्नी सीता माता है, हाँ हाँ और कौन है, ये दो लोग कौन है। राम जी बोले ये भी भैया है। बोले ये भी अलग अलग कलर के हैं। अब बोले अब आप ऐसा ना कहो, अच्छा हाँ अच्छा दोनों भाई। अब हनुमान जी की तरफ देख के बोला राम जी से बोला आदमी तो आदमी बंदर भी ले आए। वाह वाह वाह, आदमी तो आदमी बंदर भी ले आए, लेकिन कोई बात नहीं अब आगे तो बनाओ और खाओ। और ये कोने में बैठ गया पेड़ के नीचे। राम जी जानकी माता से बोले, सत्य घटना है, जानकी माता से बोले किशोरी जी आज भगत की इच्छा है, एक काम करो तुम अन्नपूर्णा स्वरूप में आकर के आज अपने हाथों से प्रसाद बनाओ और हम लोग पाएंगे। पूरा राम दरबार प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुआ। जरा दर्शन की झांकी करना मन में, क्या अद्भुत झांकी।

0: कौन सा खाद्य पदार्थ चंद्रमा को बेहतर कर देता है, मन को शांत कर देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक रूप से मजबूती देता है? और कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज कर देता है? अनाज का और मसालों का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC.

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
2: कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। फुटबॉल विश्व कप में मेसी ने कराई अर्जेंटीना की यादगार वापसी, इजिप्ट को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए फिल्मी सितारे, शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए बोनी कपूर और परिवार के अन्य सदस्य।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में आज होगा भव्य समारोह, प्रधानमंत्री मोदी प्रम्बानन मंदिर में संरक्षण प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। 1000 साल पुराना है योग्याकर्ता में मौजूद प्रम्बानन मंदिर, भारत के सहयोग से किया जाएगा संरक्षण। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर में है कुल 224 मंदिर, शिव विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिरों में 47 मीटर ऊंचा है शिव मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत इंडोनेशिया के बीच करीब 20 बड़े समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला। पुणे के देहू से पंढरपुर के लिए रवाना हुई संत तुकाराम महाराज की पालकी, हरिनाम के जय घोष से गूंजा पूरा शहर। शान से निकली जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की 341वीं पालखी प्रस्थान यात्रा, हजारों की संख्या में शामिल हुए वारकरी। मुख्य मंदिर परिसर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, टाल और मृदंग की थाप पर वारकरी भक्ति में डूबे दिखाई दिए। आज इनामदारवाड़ा से आगे की ओर निकलेगी पालखी यात्रा, लगातार बारिश के कारण यात्रा हो रही है प्रभावित। महाराष्ट्र की सबसे पवित्र और भव्य आषाढ़ी वारी परंपरा का एक अहम हिस्सा है जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी, मान्यता है कि 1685 में हुई थी समारोह की शुरुआत। पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए एक अनोखी यात्रा पर निकला उत्तर प्रदेश का 20 साल का युवक, रोलर स्केट्स पर पूरे भारत का सफर करते हुए दक्षिण कश्मीर के कांजीगुंड पहुंचा। पिछले साल अक्टूबर में कन्हैया कुमार ने शुरू की थी यात्रा, 10 महीने में 14 राज्यों में स्केटिंग करते हुए अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की जोरदार तैयारी, पवित्र यात्रा से पहले पुलिस के जवानों ने की मेगा मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल में स्पेशल टेक्टिकल यूनिट, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर और इमरजेंसी सर्विस जैसी एजेंसी हुई शामिल, सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेना था मकसद। 16 जुलाई से शुरू होगी भव्य रथ यात्रा, देश विदेश से शामिल होंगे लाखों श्रद्धालु। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में आज बारिश का अनुमान, मॉनसून में लैंडस्लाइड से बंद 32 सड़कों को खोलने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने के अनुमान, पहाड़ों पर अचानक बाढ़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की सलाह। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में बारिश का दौर जारी, तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात और मध्य भारत में लगातार बारिश का दौर जारी, कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई की पवई झील के पास रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ा। महाराष्ट्र के सतारा में हुई मूसलाधार बारिश, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के पन्ना में भारी बारिश से अस्पताल में भरा पानी, राहत बचाव के लिए टीम अलर्ट। गुजरात के वापी में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश का दौर जारी, स्कूल परिसर में भरा पानी। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके में रेस्क्यू का काम जारी, लापता लोगों की तलाश में जुटी टीम। पुलिस के साथ फायर रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीमों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया बचाव अभियान, कई लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पतालों में कराया गया भर्ती। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी में फंसी बस, रेस्क्यू टीम ने 50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, शिवनाथ नदी का जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव। खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन की घोषणा की, पलसाना और बावरी ठिकरिया स्टेशन के बीच बनेगा नया हाईटेक स्टेशन। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात, गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च। गोरखपुर से 31 जुलाई को शुरू होगी तीर्थ यात्रा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने तीर्थयात्रियों को दी ईएमआई भुगतान की सुविधा। बिहार के कटिहार में स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी का सादगी भरा अंदाज, बच्चों के साथ बातचीत करते हुए जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील। जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, हथियार किए गए बरामद। इसरो ने अपने नाम की एक और उपलब्धि हासिल, अपने अगले LVM3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया ये टेस्ट, पहली बार नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल से 22 टन के थ्रस्ट लेवल पर की गई CE20 इंजन की जांच। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM3, ये अपने ऊपरी हिस्से को पावर देने के लिए करता है CE20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा परियोजना विवाद पर 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता, MP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच सुलझा दशकों पुराना मुद्दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का किया अनावरण, इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। वाराणसी दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, श्री काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। वाराणसी में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर हुई समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री योगी ने की अध्यक्षता में संपन्न हुई मीटिंग। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और रिज इलाकों को ग्रीन बेल्ट करने की शुरुआत, मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान के तहत राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर में वृक्षारोपण। रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी में। खाते में हर महीने भेजे जाएंगे 2,500 रुपए। भारतीय रेलवे ने लखनऊ से मैजेस्टिक, साउदर्न, मैसूर टू कोयम्बटूर हवाई टूर पैकेज के अलाउंस 7 रात और 8 दिन के इस पैकेज का 73,000 प्रति व्यक्ति है किराया। हरिद्वार के कनकल में श्री गुरु गोरखनाथ अलग अखाड़ा परिषद ने 11 संतों का पटाभिषेक किया। संतों ने उन्हें धर्म सेवा का संदेश दिया। फूलों की बारिश के बीच हुआ समारोह, महामंडलेश्वर को चादर विधि से सम्मानित किया गया। नए महामंडलेश्वरों से सनातन धर्म, गायों की रक्षा और लोगों की मदद करने के लिए कहा गया। संतों ने आशीर्वाद देकर उनकी नई जिम्मेदारी सौंपी। गुरु गोरखनाथ अलख अखाड़ा परिषद ने 51 महामंडलेश्वर बनाने का संकल्प लिया। अब तक 41 बनाए जा चुके हैं। अखाड़ा परिषद बाकी 10 महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी कर रहा है। ये काम कुंभ से पहले पूरा करने की योजना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम की नई किट लॉन्च। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हैं खेल। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। लिखा, भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और देश का मान बढ़ाएंगे। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी ने मनाया अपना 45वां जन्मदिन। रांची में धोनी के फैंस ने उनके फार्म हाउस के बाहर केक काटकर जश्न मनाया। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बनाया गया। धोनी के लाखों फैंस ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को शुभकामनाएं दी। धोनी के जन्मदिन पर तेलुगु फैंस ने एनटीआर जिले में लगाया 77 फीट ऊंचा कटआउट। अपने चहेते दिग्गज खिलाड़ी को शुभकामनाएं दी। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में पुणे ने रचा इतिहास। पूरे देश में हासिल किया पहला स्थान। देश के सभी 112 जिलों को पछाड़ते हुए पूर्णिया ने हासिल किया पहला पायदान। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में मारी बाजी। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ने हासिल किया दूसरा स्थान। जम्मू कश्मीर के रामबन में सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया। चंद्रकोट में दी जा रही है 24 घंटे मुफ्त स्वास्थ्य मदद। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सेहत का सीआरपीएफ रख रही है खास ख्याल। मोबाइल हेल्थ कैंप से यात्रियों को तुरंत मिल रहा है इलाज। डेनमार्क के दिग्गज साइक्लिस्ट मेडल पेडरसन ने जीती टूर डी फ्रांस साइकिल रेस, तीसरी बार जीता खिताब। फ्रांस में कारकासोन से फाइक्स के बीच 182 किलोमीटर की होती है टूर डी फ्रांस साइकिल रेस। चुनौती भरा होता है पहाड़ी रास्ता। पेडरसन ने डिफेंडिंग चैंपियन तादेस पोगाकर को हराकर ग्रीन जर्सी हासिल की। नॉर्वे के टास्टीन ट्रेन ने येलो जर्सी जीती। चीन के शॉपिंग बा में 300 मीटर लंबा शानदार स्काईवॉक खोला गया। पर्यटकों को देता है 8D का अनुभव। स्काईवॉक से पर्यटक देख सकते हैं ऐतिहासिक शहर का नजारा। जमीन से 69 मीटर ऊंचा है ये स्काईवॉक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की समस्याओं से बचने के लिए कौन से दान आपको करने चाहिए, मंगल की किस समस्या के लिए आप कौन सा दान करेंगे, आज इस विषय पर बात होगी। अब जान लेते हैं दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि मंगल अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है, मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है, तो मंगल के खराब होने के क्या परिणाम होते हैं। देखिए, मंगल हमारे जीवन में साहस को और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। मंगल के कमजोर होने पर व्यक्तित्व व्यक्ति का कमजोर हो जाता है और मंगल के गड़बड़ होने पर व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंगल के गड़बड़ होने पर व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम परेशान करती हैं और मंगल अगर ज्यादा गड़बड़ हो तो कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है, कभी कभी जेल के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। अगर विवाह के स्थान से मंगल का नकारात्मक संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यानी अगर मंगल नकारात्मक है तो आपके अंदर साहस नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा नहीं होगी, दुर्घटनाएं होंगी, मुकदमेबाजी होगी और वैवाहिक जीवन में झगड़े झंझट और विवाद आपको परेशान करेंगे। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर कुंडली में मंगल अशुभ है, कुंडली में अगर मंगल खराब है, तो कौन कौन से उपाय करने से लाभ होगा। मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए, मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। अपने आचरण को बेहतर करके, मंत्र का जप करके, रत्न का प्रयोग करके और मंगल की वस्तुओं का दान करके आप मंगल की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सब को करने से आपका मंगल शुभकारी हो जाता है, मंगल के परिणाम बेहतर होते हैं। लेकिन इन तमाम उपायों में अगर आप दान करें तो दान करने के आपको शीघ्र लाभ होंगे। मंगल अगर खराब है या मंगल अगर निगेटिव है और अगर आप दान करते हैं तो दान के प्रभाव ज्यादा बेहतर होंगे। और मंगल के लिए अगर आप दान करते हैं तो किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें या हनुमान जी के मंदिर में अगर दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मंगल की किस समस्या के लिए क्या दान करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि मंगल की किस समस्या के लिए कौन सा दान आपको करना चाहिए। अगर मंगल के कारण स्वास्थ्य की समस्या है, बार बार ऑपरेशन होता है, ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो या मसल्स की कोई प्रॉब्लम है, तो लाल फल का दान करना अच्छा रहेगा। अगर मंगल की वजह से आत्मविश्वास की समस्या है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, तो हर मंगलवार को बूंदी का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई संपत्ति की समस्या है या जमीन की समस्या है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो मंगलवार को लाल मसूर की दाल या जौ का दान करना बेहतर होगा। अगर मंगल की वजह से आप कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो तांबे की वस्तुओं का या लाल कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर मुकदमे की कोई समस्या है या अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, उसकी कोई समस्या है, तो मंगलवार को मीठी चीज का जैसे गुड़ का या बूंदी का दान करिए, आपको लाभ होगा। मंगल आपकी कुंडली में कभी भी अगर समस्या दे, किसी भी मामले में अगर समस्या दे, तो मंगलवार को गुड़ का दान करिए। और सबसे बेहतर होगा कि मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो मंगल की किसी भी तरह की समस्या हल हो जाएगी। तो आज हमने बात की मंगल ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए दान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर मुकदमे से और विवादों से मुक्ति चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को लाल फूल गुड़हल का या गुलाब का अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल गणेश जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। कौन सा खाद्य पदार्थ चंद्रमा को बेहतर कर देता है, मन को शांत कर देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक रूप से मजबूती देता है? और कौन सा खाद्य पदार्थ आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को तेज कर देता है? अनाज का और मसालों का आपके भाग्य से, आपके जीवन से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
4: आज इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले दो दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। पुणे, मुंबई, रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। फुटबॉल विश्व कप में मेसी ने कराई अर्जेंटीना की यादगार वापसी, इजिप्ट को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए फिल्मी सितारे, शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए बोनी कपूर और परिवार के अन्य सदस्य।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अनाज और मसालों के बारे में, किस तरह से अनाज और मसाले जो हैं वो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपका भाग्य बदल सकते हैं, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप अच्छा मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आप ध्यान में मन लगाना चाहते हैं, तो तीखा भोजन और मसालेदार भोजन, तीखा और गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए।
0: और आइए अब जान लेते हैं 8 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:21 तक, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र शाम के 4 बजे तक, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4 बजे तक, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए जानते हैं कि किस तरह भोजन ग्रहों से और हमारी किस्मत से जुड़ा हुआ है।
1: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका भोजन, आपका खाद्य पदार्थ और खाए जाने वाले मसाले आपके जीवन पर कैसा असर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भोजन का ग्रहों से और किस्मत से क्या संबंध है। देखिए, हर खाद्य पदार्थ, चावल, दाल, गेहूं, आटा अपने रंग और गुणों के कारण अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। जिस तरह का खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उससे संबंधित ग्रह को जीवन में शक्ति मिलती है। इसलिए जीवन में जिस ग्रह को मजबूत करना है, उससे संबंधित भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग ग्रह के अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, अलग अलग ग्रह के फूड आइटम्स अलग अलग हैं। तो जब आप वो भोजन करते हैं, तो जिस ग्रह से आपका भोजन संबंधित है, उस ग्रह से संबंधित होने की वजह से उस ग्रह को ताकत मिलती है। और ये भी देखा गया है कि जो ग्रह कुंडली में प्रबल होता है, उसकी तरह का भोजन और उसकी तरह का आहार आप ग्रहण करते हैं।
0: और आइए अब जान लेते हैं चावल के बारे में कि चावल किन ग्रहों से संबंध रखता है और उसके खाने के हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं।
1: देखिए, अगर हम चावल की बात करें तो चावल चंद्रमा से संबंध रखने वाला खाद्य पदार्थ है। चावल का संबंध होता है चंद्रमा के साथ। चावल शरीर और मन को शीतल बनाए रखता है। अगर कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना हो, चंद्रमा को बेहतर करना हो, तो चावल खाना लाभकारी होता है। जिन लोगों को ज्यादा क्रोध आता हो या तनाव पालने की आदत हो, उन्हें चावल का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित है, तो तनाव की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। ऐसी स्थिति में चावल कम खाना चाहिए।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जान लेते हैं कि दाल किस ग्रह से संबंध रखती है और उसे खाने से हमें किस तरह से लाभ हो सकता है, क्या क्या लाभ हैं जो हमें मिल सकते हैं।
1: चावल के बाद बात करते हैं अब दाल की। देखिए, अलग अलग रंग की दालें अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। जैसे पीली दाल अरहर की या चने की दाल बृहस्पति से संबंध रखती है। लाल दाल मंगल से, काली दाल शनि से, हरी दाल बुध से संबंध रखती है। हालांकि टोटली अगर आप देखें, कुल मिलाकर अगर आप देखें, तो दाल बृहस्पति से संबंध रखती है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अरहर की दाल खाइए, चने की दाल खाइए, मंगल के लिए मसूर की दाल खाइए, शनि के लिए काली उड़द की दाल खाइए और बुध के लिए हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। जिनकी कुंडलियों में शनि खराब है उनको दाल के सेवन से बचना चाहिए। कारण ये है कि दाल ज्यादा खाने से गैस्ट्रिक ट्रबल या गैस की तकलीफें होती हैं और जिनका शनि गड़बड़ है अगर वो ज्यादा दाल खाएं तो गैस की समस्या उनको परेशान कर सकती है।
0: और आइए जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी, संतान की चिंता दूर होगी, लेकिन चोट चपेट से सावधान रहिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न रीशु त्यागी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं, 8 अगस्त 2004 का जन्म है, 9:30 रात को, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं MBA की पढ़ाई कर रही हूँ, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR में, किस क्षेत्र में MBA करूँ और क्या आगे मैं गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर सकती हूँ। रिशु, आपकी कुंडली के हिसाब से फाइनेंस में MBA करना सबसे बेहतर है, उसके बाद आप HR में विचार कर सकती हैं। और आप MBA करके फाइनेंस में या बैंकिंग में करियर बनाइए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ मत जाइए, वहां पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है और करियर में आप सफलता भी पाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह एक बार, शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से ही कि आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
1: जी,

0: विक्की मिश्रा जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 जुलाई 2009, 9:10 प्रातः, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, क्या 2027 में मेरा बेटा नीट क्वालिफाई कर पाएगा और मेडिकल के क्षेत्र में उसका करियर कैसा रहेगा। पिंकी जी, आपके पुत्र की कुंडली में मेडिकल में जाने की संभावनाएं अच्छी हैं और आपका बेटा मेडिकल में अच्छी सफलता पाएगा, लेकिन 2027 में सफलता कम लगती है, ज्यादा संभावना है कि 2028 में आपका बेटा सेलेक्ट होगा। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह के समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने बेटे के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि गेहूं किस ग्रह से संबंध रखता है और उसे खाने से हमें किस तरह से लाभ हो सकता है उसके बारे में।
0: अब जानते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं का संबंध सूर्य नामक ग्रह के साथ होता है, चाहे वो गेहूं का आटा हो या दलिया हो या गेहूं की बनी कोई भी चीज हो, उसका संबंध होता है सूर्य के साथ। गेहूं की बनी चीजें खाने से सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उनको गेहूं की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। गेहूं की बनी हुई रोटियां नियमित रूप से खाने पर पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और गेहूं की रोटियों का अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इनको दोपहर में खाना ज्यादा बेहतर होगा। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है और आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं तो आपको गेहूं की रोटियां, गेहूं का दलिया खाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य को शक्ति मिलेगी।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग तरह के मसाले किन ग्रहों से संबंध रखते हैं और इसे खाने से हमें किस तरह से लाभ हो सकता है।
0: अब बात करते हैं मसालों की, साथ देगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग तरह के मसाले किन ग्रहों से संबंध रखते हैं और इसे खाने से हमें किस तरह से लाभ

0: करने से बुद्ध मजबूत होता है। हींग, अजवाइन और जीरे का प्रयोग करने से राहु की समस्याएं दूर होती हैं। कुंडली में अगर राहु से संबंधित कोई दोष है तो मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि अगर आप एकाग्रता चाहते हैं, ध्यान में मन लगाना चाहते हैं, तो स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से बचना चाहिए।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न दीप माला जी ने हमें लिखा है, बूंदी राजस्थान से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। 9 नवंबर 2016 का जन्म है, 10:23 रात को अजमेर राजस्थान। ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे की आंखों में स्क्विंट की समस्या है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, तो क्या बेटे के स्क्विंट की समस्या के लिए सर्जरी कराना उचित रहेगा। देखिए दीपमाला जी, आपके पुत्र के स्क्विंट की समस्या को दूर करने के लिए आप सर्जरी करा सकती हैं इस साल के आखिरी में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2026 में। अगर आप अपने बेटे की सर्जरी कराएं तो आपके

0: लिए बेहतर होगा। आप अपने बेटे को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में पहनाना बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न सीमा शर्मा जी ने मुरादाबाद से हमें लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। उनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1993, 1:40 दोपहर में, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे बेटे की नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव आता है, नौकरी और जीवन में मेरा बेटा कब तक स्थिर हो पाएगा और मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सीमा जी, अभी तो आपका पुत्र नौकरी कर रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा दिखाई देता है कि 2028 के बाद ये अपना कोई काम करेंगे, अपना कोई व्यापार करेंगे। अगले साल इनके विवाह की संभावना बनती है और उसके बाद से इनका जीवन ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने बेटे को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको धारण करवाइए और इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, इनको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, करियर के निर्णयों में सावधानी रखिए, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी और अविवाहितों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि मंत्र का जप करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूजा करने के दौरान अगर प्यास लग जाए तो पानी पी सकते हैं। देखिए, पूजा के दौरान अपने बगल में किसी साफ बर्तन में, लोटे में या गिलास में पानी भरकर रखिए। अगर पूजा के दौरान प्यास लगे तो कुछ घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन जब मंत्र जप समाप्त कर लें उसके अगले 10 मिनट तक जल पीने से आपको बचना चाहिए।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 8 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 जुलाई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुडलक राशि है तुला। इस समय अपने करियर और स्थान में आप परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में, बोलने और वाणी के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर कोई व्यक्ति जीवन में आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो क्या करेंगे? शाम को स्नान करके दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। अपने सामने एक मोमबत्ती जला लीजिए और जिस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना हो उसका चेहरा सोचिए, उसका ध्यान करिए और इसके बाद मोमबत्ती को एक फूंक में बुझा दीजिए। ये प्रयोग लगातार 11 दिन तक करिए। जो अनवांटेड व्यक्ति है आपके जीवन में, वो आपके जीवन से हट जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
1: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की क्लीन यमुना की। जी हाँ, प्लास्टिक के कचरे का निस्तारण एक बड़ी समस्या है, लेकिन उसी कचरे का सही प्रबंध हो तो वो उपयोगी संसाधन भी बन सकता है। दिल्ली में यमुना किनारे बिखरे कचरे की सफाई कर एक युवा स्वच्छ यमुना मुहिम में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी सामान भी बनाए जा रहे हैं।
10: संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति के बल पर एक अकेला व्यक्ति भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसे ही एक युवा है चीनू क्वात्रा, जो अब दिल्ली में यमुना घाटों के आसपास बिखरे कचरे की सफाई में जुटे हुए हैं। चीनू अपनी टीम के साथ इसी तरह हर हफ्ते यमुना के घाटों की सफाई करते नजर आ जाते हैं। ये सभी यमुना घाटों और आसपास के इलाकों से प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करते हैं, ताकि ये कचरा नदी में जाकर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। चीनू अपनी टीम के साथ मुंबई समेत दूसरे राज्यों में समंदर से लेकर नदियों झीलों के आसपास से प्लास्टिक का कचरा समेटने का काम करते आ रहे हैं, और अब दिल्ली में यमुना को साफ रखने की मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि चीनू इस कचरे को कहीं और ले जाकर यूं ही नहीं छोड़ देते, बल्कि इसी प्लास्टिक के कचरे से उपयोगी सामान भी बनाते हैं।
11: तो पिछले 9 सालों से हम मुंबई में 4 बीचेस क्लीन कर रहे हैं, एंड वो बीचेस से जो कचरा निकलता है वो हमेशा रिजेक्ट हुआ है। वो बोला गया है कि डंपिंग आउट में जाना चाहिए या उसे जला देना चाहिए। पिछले 3 साल से एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया एंड इट इज़ सुपर सक्सेसफुल नाउ। अभी तक हमने 600 बेंचेस स्कूल बेंचेस इस प्लास्टिक से, जो प्लास्टिक हमें जिसे बोल जला दिया जाता है या डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाता है कलेक्शन के बाद, उस प्लास्टिक से हम वहाँ पे स्कूल बेंच बना रहे हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पे लेके आए, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट मुंबई दिल्ली या कोई और शहर। ये प्लास्टिक हमारे रिवर्स को, हमारे ओशंस को, हमारे माउंटेन्स को बर्बाद कर रहा है। सो इसको हम सिर्फ डेस्टिनेशन चेंज नहीं करना है, यहाँ से प्लास्टिक उठा लिया आज क्लीन अप हो गया, इसको उठा के वहाँ रख दिया। हमें इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ये शीट है, ये शीट 4x4 की शीट बनती है, इससे स्कूल बेंच बनते हैं, इससे दरवाजे बनते हैं, इससे टेबल बनता है, इससे जो फर्नीचर, इन शॉर्ट ये प्लाईवुड को रिप्लेस कर रहा है। प्लाईवुड को रिप्लेस करना मतलब पेड़ों को बचा।
10: मुंबई के चीनू क्वात्रा गैर सरकारी संस्था चलाते हैं और अपनी टीम के साथ प्लास्टिक का कचरा जमा करते हैं, जिन्हें पहले अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से छांटा जाता है, फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस से वही प्लास्टिक का कचरा जिसे बेकार और नुकसानदायक माना जाता है वो उपयोगी सामानों में बदल जाता है। मसलन मजबूत और टिकाऊ बेंच, प्लांटर्स, गार्डन फर्नीचर, डस्टबिन और दूसरे कई काम की चीजें उन कचरों से बनाई जाती हैं।
12: कचरा जो है उसको इस तरीके से बनाया जाता है पहले, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं दिखने वाली है। ये आपको प्लांटर दिख जाएगा, चाहे फिर वो स्कूल बेंचेस की बात की जाए, स्कूल टेबल्स की बात की जाए, तो कुछ इस तरीके का जो नया रूप है वो ये प्लास्टिक का कचरा लेता है। लेकिन दिल्ली की जो सफाई है, यमुना की जो सफाई की हम बात कर रहे हैं, उस पर लगातार जो है सरकार काम कर रही है, और आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी को साफ करने की जो मशीन है वो लगातार यहाँ पर रहती है, यहाँ पर चलती हुई जो है वो नजर आती है।
10: यमुना सफाई को लेकर दिल्ली सरकार का अभियान भी जारी है। इसको लेकर जन भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सब के बीच चीनू पोत्रा भी अपनी टीम के साथ योगदान दे रहे हैं, जिसकी तारीफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी की है, और इसे पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी का बेहतरीन उदाहरण करार दिया है।
11: मैंने सिर्फ एक रील डाली थी जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था सीएम जी रेखा गुप्ता जी, वी वांट योर सपोर्ट, एंड उस रील पे 7 आवर्स के अंदर अंदर रेखा मैम कमेंटेड, एंड मुझे उसके 48 घंटे बाद मिलने बुला लिया था एट द क्लीन अप। तो संडे को मैं उनसे जब मिला तो उनको मैंने ये प्रेजेंट किए, कुछ लेटर्स प्रेजेंट किए, प्रपोजल प्रेजेंट किया। हमें दिल्ली सरकार से कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड मनी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे वो जगह हमें दे सके और ताकि हम उसको ईजिली काम कर सके गवर्नमेंट के साथ मिलके। एंड इनफैक्ट रेखा मैम ने तो उसको अप्रिशिएट भी किया, आई होप इन दिस कमिंग वीक और कमिंग डेज हमें यहीं कहीं पे भी घाट के पास एक पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए मिल जाए, एंड देन सारे घाटों के पास हम ऐसे ही जगह बना के उसको प्रोसेस कर सकते हैं, और जो भी यहाँ से प्लास्टिक निकल रहा है कम से कम उसका हम डेस्टिनेशन वापस कोई बर्निंग या डंपिंग ग्राउंड में नहीं डालते।
10: जाहिर है चीनू क्वात्रा की यमुना किनारे की जा रही ये पहल सिर्फ कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को ये संदेश भी देती है कि अगर प्लास्टिक का सही प्रबंधन हो तो वही कचरा समाज के लिए एक उपयोगी संसाधन बन सकता है।
12: अगर हम चीनू क्वात्रा की बात करें, जो प्लास्टिक जितना भी यमुना तट से वो उठा रहे, यमुना किनारे से वो उठा रहे, उसको रिसाइकल कर रहा है, जब एक शख्स इस तरीके की चीज़ें कर सकता है तो अगर इसमें हर किसी का योगदान रहे तो ये बदलाव वाक्य में एक बड़ा हो सकता है, जो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समाधान का रूप ले सकती है।
10: चीनू क्वात्रा पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ इनकी मंशा बेहतर शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी है। इसी उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में प्लास्टिक के कचरे से बनाई गई बेंच भी मुहैया कराई गई है।
11: हम स्कूल बेंचेस बना रहे हैं, वो पहला फोकस रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को मिले ताकि उनको बैठक उनकी बेटर हो। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए तरफ जा रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द सर्कल। इससे क्या हो रहा है, इससे 10 जन को नौकरी मिली अभी तक। अगर सोचो ये स्केल अप होगा तो कितने जनों को नौकरी मिलेगी, एंड देन उतने ही बच्चों को स्कूल बेंच मिल रहे हैं, तो एजुकेशन उनको कंफर्टेबल एजुकेशन हो रहा है। सो दिस इज नॉट ओनली क्लीन अप कि कचरा उठाया और खत्म कर दिया, हम एक सर्कल जिसे बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, और बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट सिटीज कैसे बन सकती जब हम कुछ ज्यादा स्मार्ट बने और उसके ऊपर काम करें।
10: पर्यावरण विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल का मॉडल ही प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है, और चीनू क्वात्रा यमुना किनारे से प्लास्टिक कचरे को समेटकर ऐसा ही करने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: क्यूबा इन दिनों आर्थिक संकट, ईंधन की कमी और बिजली कटौती जैसी मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच राजधानी हवाना के नेशनल जू से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने जू कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। 4 बंगाल टाइगर्स के बच्चों का जन्म हुआ है, जिनमें एक बेहद दुर्लभ सफेद बंगाल टाइगर भी शामिल है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
13: छोटे छोटे कदम, मासूम शरारतें और हर तरफ बिखरी जिंदगी की नई उम्मीद। हवाना के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में 4 बंगाल टाइगर के बच्चों का जन्म सिर्फ एक खुशखबरी नहीं, बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। जन्म के बाद सभी शावकों का वजन किया जा रहा है, उनकी सेहत की बारीकी से निगरानी रखी जा रही है ताकि उनकी बेहतर परवरिश सुनिश्चित की जा सके।
14: Tratamos de garantizar los estándares de bienestar animal para la especie, el tigre bengala, con lo más alto posible en dependencia de las condiciones que tengamos.
13: कभी एक दूसरे के पीछे भागते, कभी उछलते कूदते, तो कभी अपनी माँ के इर्द गिर्द मस्ती करते। इन नन्हे शावकों की हर अदा जू कर्मचारियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ चार नए मेहमान नहीं बल्कि मुश्किल दौर में उम्मीद की नई मुस्कान है। करीब 44 साल से जू में काम कर रहे एंजल पैची कॉरिडोर के लिए ये पल किसी सपने के सच होने जैसा है। अपने लंबे करियर में दूसरी बार उन्होंने सफेद बंगाल टाइगर का जन्म देखा है।
15: Muy difícil, muy intenso. En cuanto al bloqueo férreo que se nos ha impuesto y que ahora se ha recrudecido.
13: ज़ेब्रा, दरियाई घोड़े, अफ्रीकन सवाना और अब इन नन्हे टाइगर शावकों की किलकारियां। मुश्किल हालात के बावजूद क्यूबा का ये जू एक संदेश दे रहा है कि अगर जज्बा और समर्पण मजबूत हो तो उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। चार नए मेहमानों की आमद ने न सिर्फ एक दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद बढ़ाई है बल्कि ये भी साबित किया है कि चुनौतियों के बीच भी जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
16: घर के बड़े सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि संस्कारों की सबसे मजबूत नींव होते हैं। दादी की मुस्कान, उनका सलीके से तैयार होना और माथे पर पल्लू रखना आज भी अपनापन और सम्मान का एहसास कराता है। ये कोई पुराना फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरत पहचान है। बदलते दौर में भी ऐसे नज़ारे रिश्तों की गर्माहट और परंपराओं की मिठास को जीवंत रखते हैं। यही संस्कार हर घर को परिवार बनाते हैं। कला और हुनर किसी पहचान या मंच के मोहताज नहीं होते। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला सिर पर पानी से भरा मटका रखकर जिस संतुलन और आत्मविश्वास के साथ घूम रही है वो हर किसी को हैरान कर रहा है। बिना एक बूंद पानी गिराए किया गया ये प्रदर्शन उसकी सालों की मेहनत और अभ्यास की कहानी कहता है। लोग महिला के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और एकजुटता से भी लड़े जाते हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान जब बमबारी में पुल तबाह हो गए तब सैनिकों को नदी पार कराने के लिए महिलाओं ने खुद पानी में उतरकर मानव पुल बना दिया। ये नज़ारा साहस, टीम वर्क और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जिस देश के लोगों में ऐसा जज्बा हो उसे हराना किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं होता। माँ की ममता अनमोल होती है लेकिन पिता का त्याग भी किसी मिसाल से कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक डिलीवरी बॉय अपनी छोटी बच्ची को सीने से बांध कर काम करता नजर आ रहा है। बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन पिता ने उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई है। रोजी रोटी और बेटी दोनों का फर्ज निभाता ये पिता लोगों का दिल जीत रहा है। बचपन में लंबे लंबे पैरों पर चलते कलाकारों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। तब समझ नहीं आता था कि आखिर वे इतनी ऊंचाई पर संतुलन कैसे बना लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कलाकार बड़ी सहजता से स्टिल्ट यानी लंबे खम्भों पर चढ़कर चलता नजर आ रहा है। सालों की मेहनत, अभ्यास और बेहतरीन संतुलन का ये प्रदर्शन लोगों को बचपन की यादों में भी ले जा रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
9: आज इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बावनन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए फिल्मी सितारे, शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए बोनी कपूर और परिवार के अन्य सदस्य।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत, सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
18: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
9: शुभ समाचार की शुरुआत मॉनसून में मिशन जिंदगी की करेंगे। मॉनसून के बादल देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुके हैं। इन बादलों ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं कुछ इलाकों में बादलों से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। ऐसे में महाराष्ट्र से गुजरात तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसी मददगार साबित हो रही है, तो कहां और कैसे देवदूत बन गए हैं जाबाज, आगे आपको बताएंगे।
18: साथ ही आपको ओडिशा भी लिए चलेंगे, जहां पर पुरी की तरह बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारियां अंतिम चरण में है, रथ निर्माण का काम 70% पूरा हो चुका है, तो फिलहाल रथ की सजावट के लिए पारंपरिक शिल्पकारी और पेंटिंग का काम चल रहा है। बारीपदा का रथ उत्सव पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। पूरी खबर आगे आपको देखें।
9: तो आज बंगाल टाइगर्स सौरभ गांगुली का बर्थडे है, ऐसे में उनके फैंस और साथी क्रिकेटर दादा को हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। दादा के बारे में भी आगे होगी बात।
18: वही आगे अंशुला कपूर की रिसेप्शन में जुटे सितारों से सजी महफिल की भी बात होगी। इस वेडिंग रिसेप्शन में रेखा समेत कई फिल्मी सितारे छा गए। वहीं अंशुला के पिता बोनी कपूर और परिवार के दूसरे सदस्य शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए, ये तस्वीरें भी आगे दिखाएंगे।
9: तो बात फीफा विश्व कप की भी होगी, जहां प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने ऐसा कमाल किया जिसे फुटबॉल फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। एक समय टीम 0 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ रही थी और टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी, लेकिन आखिर में 14 मिनट में मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने जबरदस्त वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस जश्न में डूब गए। ये जश्न भी आगे होगा आपके सामने, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
18: दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है। कई इलाकों में सड़कें भीग गई और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है।
9: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। पवित्र यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर रखने के लिए पुलिस ने मेगा मॉक ड्रिल की। इसमें स्पेशल टेक्टिकल यूनिट, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर और इमरजेंसी टीमों ने हिस्सा लिया। 16 जुलाई से शुरू होने वाली रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
18: इसरो ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। LVM3 रॉकेट के अगले मिशन के लिए CE20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सपेंडेंस टेस्ट सफल रहा। दरअसल तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में हुए इस टेस्ट में पहली बार नए नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और यही इंजन इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM3 को ताकत देता है।
9: उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए रेलवे बड़ी सौगात लेकर आया। गोरखपुर से 31 जुलाई को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना होगी, जिससे श्रद्धालु 4 ज्योतिर्लिंगों समेत कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।
18: वहीं खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाटू श्याम धाम के लिए नई हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाने का ऐलान किया है। ये स्टेशन पलसाना और बावरी ठिकरिया स्टेशनों के बीच बनेगा, इससे श्रद्धालुओं का सफर और आसान और तेज, साथ ही सुविधाजनक होने की उम्मीद है।
9: इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर में आज भव्य समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भारत के सहयोग से शुरू हो रहे संरक्षण प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। करीब 1000 साल पुराने इस यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर परिसर में कुल 224 मंदिर हैं, जिनमें 47 मीटर ऊंचा शिव मंदिर सबसे खास है।
18: वहीं दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने और शहर को ज्यादा हरा भरा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान के तहत आज राष्ट्रपति अंगरक्षक दल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान का लक्ष्य दिल्ली के रिज इलाकों को ग्रीन बेल्ट बनाना और पर्यावरण को बेहतर करना है।
9: कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय टीम की नई किट लॉन्च हो गई है। खिलाड़ी अब इसी नई जर्सी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। इस मौके पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें भरोसा है कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और देश का मान बढ़ाएगी।
18: OMG2 के डायरेक्टर अमित राय अपनी नई फिल्म ओ माय डॉग लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में इंसान और डॉग के बीच खास रिश्ते की भावुक झलक देखने को मिलती है। ये फिल्म 31 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

0: और शुभ समाचार की शुरुआत मॉनसून के साथ। देश भर में मॉनसून अब अपनी पूरी रफ्तार में है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की फुहारें लोगों को गर्मी से राहत दे रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांसें ली। वहीं उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें लोग फंसे हैं। लेकिन इन लोगों की मदद का सहारा बनने के लिए राहत बचाव टीम समय पर पहुंच रही है। गुजरात के सूरत में तेज बारिश के बाद कई रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत एवं बचाव दलों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। वहीं नवसारी जिले में बारिश के बीच एक बस पानी से घिरे क्षेत्र में फंस गई। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचे और बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
1: और अब आपको नवसारी जिले में रेस्क्यू की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, जो भारी बारिश के बीच राहत और बचाव अभियान की चुनौती को बयां करती है। जलभराव के बीच फंसी एक बस तक बचाव दल पहुंचा। कड़ी मशक्कत की गई, उसके बाद बचाव दल ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई। सबसे पहले एक मजबूत रस्सी को बस से बांधा गया, ताकि तेज बहाव के बीच सुरक्षित रास्ता तैयार किया जा सके। इसके बाद यात्रियों को एक एक कर बस के इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। रस्सी के सहारे बचाव कर्मी उन्हें सुरक्षित स्थान तक लेकर पहुंचे। तो ये तस्वीर आप देखिए, गुजरात में जिस तरीके से बारिश की वजह से मौसम सुहावना हुआ है, तो सड़कें लबालब पानी में नजर आ रही हैं। और इसी बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम यात्री यहां पर फंस गए थे, जिन्हें बचाव कर्मी ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। रस्सी का सहारा लिया गया, बस से रस्सी को बांधा गया है और उसी के सहारे जो यात्री वहां फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बचाया गया है। लोगों से लगातार इस मानसूनी सीजन में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कई शहरों में सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है।
0: और मानसून के बादल देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुके हैं। इन बादलों ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं कुछ इलाकों में बादलों से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। हाल ये है कि महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम शहरों में इतना पानी बरस चुका है कि सड़कें दरिया बन गई हैं। ये बारिश ज्यादा मुश्किल पैदा ना करे, इसके लिए एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ ने कमर कस ली है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी बाढ़ और पानी में फंसे लोगों की मदद में जुटा है।

0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। मानसून कई इलाकों में जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद तो बाढ़ और बारिश में लोगों के लिए जिंदगी बचाना चुनौती बन गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। यहाँ हाईवे पर बहते तेज बहाव में घंटों तक लोगों की जान अटकी रही। अंडरपास के एक तरफ एक कार पानी में फंस गई, तो दूसरी ओर पर्यटकों की बस भी दरिया बनी सड़क पर अटक गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के बीच नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार पर फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है और यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर है उसको बाहर निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है।
0: नवसारी के अंडर पास के पास घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फिर एक एक करके बस से भी करीब 50 पैसेंजर को इसी तरह रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा तेज बारिश के बाद सूरत की शक्ल भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में यहां 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सबसे बुरा हाल यहां के आजाद नगर का नजर आया। यहां बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुंचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
2: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
3: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
4: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं, बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मानसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगु की है, जहां कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ये मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। सड़कों पर जब हर कोई बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में एक शख्स लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता नजर आया। बारिश के बीच उसकी मौजूदगी ने राहगीरों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। बारिश के बीच ये अनोखा दृश्य सोशल मीडिया पर भी लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है।
6: राजधानी दिल्ली में बारिश का मौसम आते ही शहर की तस्वीर बदल गई है। गर्मी और धूल से राहत मिलने के बाद दिल्ली की सड़कें, पार्क्स और ऐतिहासिक इमारतों के आसपास हरियाली और ताजगी का नया रंग दिखाई देने लगा है। बारिश की बूंदों से धुले पेड़ पौधे और ठंडी हवाएं राजधानी के माहौल को बेहद खुशनुमा बना रही है। बारिश के बाद दिल्ली के हर कोने में प्रकृति की सुंदरता देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन दिल्ली में मौसम का ऐसा ही मूड रहने वाला है, तो वहीं राजस्थान में भी बारिश के बाद मौसम खुशनुमा बना हुआ है।

0: 2 जुलाई को दस्तक देने के बाद दिल्ली में मानसून की धमक अब दिखनी शुरू हुई है। मंगलवार को दिन भर बादल टूटकर बरसे और ऐसा बरसे कि अपने साथ सारी तपश, सारी उमस और सारी शिकायतों को बहा ले गए। झमाझम बारिश के बाद न केवल राजधानी का पारा डाउन हुआ बल्कि लोगों के पसीने छुड़ाने वाली उमस भी छुअंतर हो गई है।
1: एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है, सुबह देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। आने वाले एक दो दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मानसून की तो देखा जा रहा है कि मानसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि एक दो दिन तक जो मानसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं।
0: दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि मौसम अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मेहरबान रहने वाला है। 8 से लेकर 13 जुलाई तक दिल्ली के आसमान पर बादलों का डेरा रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह या दोपहर से पहले हल्की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की भी संभावना है।
2: देखिए आने वाले 7 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 2 दिनों में पूरी पूरी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं और उसके बाद हल्के स्तर की वर्षा भी जारी रह सकती है। तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ ये जरूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलते रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में दिखाई देती है।
0: मानसून वाली राहत केवल दिल्ली वाले ही महसूस नहीं कर रहे बल्कि राहत के इन फुहारों ने राजस्थान के पर्यटन की रौनक भी लौटा दी है। अब तक गर्मी की वजह से राजस्थान में टूरिस्ट का आना कम था, लेकिन बारिश के पहुंचते ही अब सैलानी भी बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जयपुर है जो अब पर्यटकों से गुलजार नजर आने लगा है।
3: राजस्थान वैसे तो अपनी प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है, पर जैसे ही मॉनसून की एंट्री हुई है तो उसी के साथ में गुड न्यूज की भी एंट्री हुई है, क्योंकि चारों तरफ माहौल जो है वो बहुत ज्यादा खुशनुमा हो गया है और गर्मी से सभी को राहत मिली है। जयपुर के इस वक्त जलमहल पे मैं मौजूद हूँ और चारों तरफ मैं देख पा रही हूँ कि पर्यटक जो गर्मी में नहीं आ रहे थे, जो काफी कम हो गए थे, वो एक बार फिर राजस्थान आने लग गए हैं। यहाँ को यहाँ की जगह जगह जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने लग गए हैं। और जलमहल में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो जल भराव है वो भी बारिश से बढ़ चुका है, पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया अपने लेवल से। तो ऐसे में ये जो देखने का जो भी टूरिस्ट यहाँ इसको देखने आ रहे हैं तो उसका मजा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि चारों तरफ जब बादल छाए हुए रहते हैं तो पीछे की जो पहाड़ियां हैं, जो अरावली हिल्स हैं, उनका भी जो व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है।
0: फिलहाल तो देश का मॉनसून मैप यही बता रहा है कि बरसने वाले बादलों की देश के बड़े हिस्से में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है जिसका असर अब उत्तर भारत में नजर आने लगा है। लिहाजा मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली के अलावा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में तेज बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे।
4: ओडिशा के पुरी की तरह बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रथ निर्माण का काम 70% पूरा हो चुका है। फिलहाल रथ की सजावट के लिए पारंपरिक शिल्पकारी और पेंटिंग का काम चल रहा है। बारीपदा का रथ उत्सव पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है।

0: रथ लगभग तैयार है, पहिए अपनी जगह लग चुके हैं, लकड़ी का भव्य ढांचा आकार ले चुका है, रंग बिरंगे वस्त्र और सजावट अंतिम रूप ले रही है। अब केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तस्वीरें ओडिशा के बारीपदा की हैं, जहां पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है।
1: हाँ, तो खुशी तो हो रही है कि बहुत जल्दी रथ यात्रा शुरू होने वाला है। बारिश की वजह से थोड़ा हमारा काम थोड़ा लेट हो गया है, तो भी हमारा जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं तब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी काम हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 16 तारीख का हाँ सब कंप्लीट हो जाएगा, 16 तारीख का सब कंप्लीट हो जाएगा।
2: और आगे चल के क्या होने वाला है, क्या क्या काम बाकी है
1: आगे? और फिर प्रभा होने वाला है, सारथी होने वाला है, जो रथ का जो अश्व है वो पेंटिंग है, रथ का जो पहिया वो थोड़ा सा बाकी है।
0: दिव्य रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू हुआ था, जो अब लगभग 70% बनकर तैयार है।

0: पेंटिंग वगैरह ट्रेडिशनल वे में ही इन सबको होता है। ये सब पीछे तो हो गया है बहुत सारा, अब मुंह फिनिशिंग हो रहा है, सब काम चल रहा है। आगे बारिश की वजह से रथ का काम थोड़ा पेंडिंग पड़ रहा है, जब से ही थोड़ा क्लियर होगा बाहर रथ का काम भी शुरू हो जाएगा। वो सब लड़के लगे हुए हैं, जितने लोग हैं हमारे लगभग 12 आदमी लगे हुए हैं, दिन रात करके काम हो रहा है। इमरजेंसी हो गया है थोड़ा काम को लेके, अभी जोर शोर से काम हो रहा है।
1: बारीपदा की रथ यात्रा का अपना महत्व है, यहाँ ये आयोजन पूरी रथ यात्रा से एक दिन बाद शुरू होता है और यहाँ रथ खींचने की परंपरा 3 दिनों तक चलती है। इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता ये है कि देवी सुभद्रा के रथ देवदलन को केवल महिलाओं द्वारा ही खींचा जाता है। बिना मुखौटे वाला मयूर भंज छऊ नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होती हैं। ओडिशा का बारीपदा इन दिनों अलग ही उत्साह में है, एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है। रंग भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध आस्था का, सदियों पुरानी परंपरा का, उत्साह उस दिव्य रथ यात्रा का जब भगवान गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों के बीच पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां पर दुर्गा पूजा का रंग अभी से चढ़ने लगा है। हालांकि दुर्गा पूजा के शुभारंभ में अभी वक्त बचा है, लेकिन शहर की मशहूर चोर बागान दुर्गा उत्सव समिति ने दुर्गा पूजा का एक भव्य म्यूरल पेश किया है। दरअसल इस म्यूरल के जरिए एक तरह से कोलकाता में मां दुर्गा के आगमन का शंखनाद हो चुका है। कोलकाता से हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए।

0: दुर्गा पूजा भले अभी दूर है, लेकिन कोलकाता पर इस त्योहार का रंग अभी से चढ़ने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी शहर माँ के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है और इसकी पहली खूबसूरत झलक चोर बागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के भव्य म्यूरल में देखने को मिली है। दुर्गा पूजा भले इस साल अक्टूबर में है, लेकिन कोलकाता इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर देता है। कहीं पंडालों के डिजाइन तैयार होने लगते हैं तो कहीं मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ थीम को अंतिम रूप देने लग जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चोर बागान दुर्गोत्सव समिति ने इस साल के उत्सव का म्यूरल सबके सामने रख दिया है।
1: ये बनाने में, ये चित्र बनाने में टोटल हम लोगों को 4 दिन समय लगा है। आज से हम लोगों के दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है, आज जी खूटी पूजा के माध्यम से। और साल का जो हमारा थीम भी है वो है अकाल बोधन। हम जानते हैं कि जिस वक्त हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, असल में वो भगवान श्री राम जी ने ही वो अकाल बोधन किया था। अब उस समय के अकाल बोधन को इस समय से मिलाने का एक चैलेंज है।
0: दरअसल म्यूरल किसी बड़ी दीवार पर बनाई गई ऐसी विशाल चित्रकला जो केवल देखने के लिए नहीं होती बल्कि एक संदेश भी देती है। इस म्यूरल में माँ दुर्गा के स्वागत की भावना, बंगाल की लोक संस्कृति और उत्सव की ऊर्जा को खूबसूरती से उकेरा गया है। चोर बागान दुर्गोत्सव समिति हर साल अपने अलग थीम और भव्य पंडाल के लिए जानी जाती है। इस बार भी म्यूरल के जरिए उसने जता दिया है कि उत्सव की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे महालया और फिर षष्ठी करीब आएगी, वैसे वैसे कोलकाता की गलियां दुर्गा पूजा के उत्सव में रंगती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब तक 1,13,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या इस बार की अमरनाथ यात्रा को बेहद खास बना रही है। भक्तों में अमरनाथ के दर्शन का उत्साह और लगातार बाबा बर्फानी के जयकारे जो है वो लगाते जा रहे हैं।
3: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंशुला रोहन के रिसेप्शन में सितारों का झुमकर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: Thumbtack presents Tile Trouble. Every single time I use my sink, I make eye contact with the uneven grout on my kitchen backsplash. The crooked corners eye me, and I'm haunted by more tiling questions than I thought possible. What kind of pro can fix a backsplash? Can I replace one cracked tile, or

0: I replace them all. What if I just use Thumbtack? I can hire top-rated pros, read reviews, and compare prices with a tap, all on the app. Thumbtack knows homes. Download the app today.
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
9: आज इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रंबानन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले दो दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए फिल्मी सितारे, शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए बोनी कपूर और परिवार के अन्य सदस्य।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ समाचार में। और अब आपको लेकर चलते हैं माया नगरी मुंबई, जहां इन दिनों कपूर परिवार की शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं। शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कपूर परिवार के करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे भी शामिल हुए। इस खास मौके पर अंशुला का लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। नई दुल्हन के रूप में अंशुला बेहद खूबसूरत नजर आई। वहीं रिसेप्शन की शाम में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दिग्गज अभिनेत्री रेखा से लेकर अभिनेता बॉबी देओल तक कई सितारे जश्न का हिस्सा बने। सितारों की मौजूदगी ने समारोह की चमक को और ज्यादा बढ़ा दिया। कपूर परिवार की इस खुशी में फिल्मी दुनिया के दोस्तों और करीबियों ने शिरकत की और नवविवाहित जोड़े को नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। अंशुला कपूर का अलग अंदाज और रिसेप्शन की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं।

तो अंशुला ने अपने रिसेप्शन लुक को पारंपरिक दुल्हन की आम पहचान से थोड़ा अलग रखा। उनके माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र नजर नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद उनका सादगी भरा अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है। उन्होंने अपने पहनावे और स्टाइल से ये दिखाया है कि दुल्हन की खूबसूरती सिर्फ परंपरागत गहनों से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से भी झलकती है।

फीफा विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने ऐसा कमाल किया जिसे फुटबॉल फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। एक समय टीम शून्य के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ रही थी और टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी, लेकिन आखिरी 14 मिनट में मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने जबरदस्त वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस जश्न में डूब गए।

0: महज 13 मिनट में मिस्र के खिलाफ 3 गोल दाग कर जैसे ही अर्जेंटीना ने मैच जीता मानो फैंस की जान में जान आ गई। वरना तो एक बार लगा था कि अर्जेंटीना के लिए सब खत्म होने वाला है। टीम 2 गोल से पिछड़ चुकी थी, कप्तान मैसी पेनल्टी चूक गए थे और लगने लगा था कि अर्जेंटीना का खिताब बचाने का सपना खत्म होने वाला है, लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना ने यादगार वापसी की और मैच अपने नाम कर लिया, जिसके बाद तो अर्जेंटीना के फैंस जश्न में डूब गए।
1: सच कहूँ तो मैं लगभग मर ही गया था। मुझे लगा कि मेरी जान निकलने वाली है, मैं तो रोने ही वाला था। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे राख से दोबारा जिंदा होकर लौट आया हूँ। इसके बाद जो खुशी मिली वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।
0: मैदान में जितनी मुश्किल से अर्जेंटीना को मिस्र के खिलाफ ये जीत हासिल हुई, इस जीत का जश्न मैदान से बाहर उतना ही जानदार तरीके से मना। मैच जीतते ही अर्जेंटीना के फैंस ने एक दूसरे को गले लगा लिया, लोग झूमने लगे। यही नहीं, तमाम फैंस तो इस जीत के बाद भावुक भी नजर आए।
1: मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नीचे गिर गया था। मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के खिलाफ पिछले विश्व कप फाइनल के बाद मैंने इतनी तकलीफ झेली होगी। मुकाबला बेहद मुश्किल था, लेकिन विश्व कप की ट्रॉफी अर्जेंटीना की है और हम इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसे भी यह ट्रॉफी जीतनी है उसे पूरे 95 मिनट तक हमसे लड़ना होगा। टीम का शुक्रिया, सभी खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया।
0: अर्जेंटीना के फैंस इस नामुमकिन से लग रही जीत पर भले झूम रहे हों, लेकिन एक सवाल टीम के सामने अभी भी चुनौती बनकर खड़ा है। सवाल ये कि क्या पूरी टीम इस टूर्नामेंट में एक या दो खिलाड़ियों पर ही निर्भर है। फिलहाल तो टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और अभी मौका इस जीत पर जमकर झूमने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: फुटबॉल वर्ल्ड कप का पेनिनी स्टिकर एल्बम करोड़ों फैंस की बचपन की यादों का हिस्सा रहा है, लेकिन चिली के एक फुटबॉल दीवाने ने इस शौक को ऐसा रंग दिया कि उसकी नई कार ही चलती फिरती वर्ल्ड कप एल्बम बन गई है। आइए आपको दिखाते हैं जुनून, यादों और फुटबॉल प्रेम की अनोखी कहानी।
3: आम कार नहीं बल्कि फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ की चलती फिरती याद है। चिली के कंटेंट क्रिएटर एरियल ऑसेस ने अपनी नई माजदा 3 को पेनिनी वर्ल्ड कप स्टिकर से पूरी तरह ढक दिया। मैसी से लेकर दुनिया भर के सितारे अब उनकी कार की बॉडी पर नजर आते हैं। इस अनोखी पहल के लिए एरियल शहर शहर घूमे, लोगों से मिले और उन्हें अपनी कार पर स्टिकर चिपकाने का मौका दिया।
4: Que nunca tuvo la oportunidad de primero tener un álbum y menos de llenarlo, porque económicamente mi familia no estaba bien, no tenía las lucas para poder comprarme.
3: बचपन का अधूरा सपना बड़ा होकर इस अंदाज में पूरा होगा शायद खुद एरियल ने भी नहीं सोचा था। नई कार खरीदने के सिर्फ एक हफ्ते बाद उन्होंने उस पर स्टिकर चिपकाने शुरू कर दिए। पहले अपने 373 डुप्लीकेट स्टिकर्स लगाए, फिर लोगों को इस मिशन का हिस्सा बनाया। तालका से लेकर कॉन्सेप्शन और पैंको तक जहाँ जहाँ गए लोग कार के साथ तस्वीरें लेने और अपना स्टिकर चिपकाने उमड़ पड़े।
4: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, no, no. Porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas, o sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas.
3: अब एरियल की कार पूरी तरह स्टिकर से ढक चुकी है और सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा में है। एरियल का दावा है कि लैटिन अमेरिका में शायद ये अपनी तरह की पहली कार है। मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आखिरी वर्ल्ड कप की यादों को समेटे ये कार अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि फुटबॉल के जुनून और बचपन के सपनों को सलाम करती चलती फिरती कहानी बन चुकी है। रिपोर्ट टुडे।
2: कि आने वाले समय में फैक्ट्री, गोदाम और दफ्तरों में इंसानों की जगह ह्यूमनॉइड रोबोट काम करते दिखाई देंगे। चीन की एक कंपनी ने भविष्य की इसी तस्वीर की झलक दिखाई है। ये रोबोट सिर्फ डांस ही नहीं करते बल्कि कलाबाजी दिखाते हैं, सामान उठाते हैं और लॉजिस्टिक का काम भी संभालते हैं।
5: ये है चीन की रोबोटिक्स कंपनी एजी बोट के ह्यूमनॉइड रोबोट।
3: जो अब सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं बल्कि असली काम भी कर रहे हैं। शंघाई में कंपनी के रोबोट्स ने डांस और समरसॉल्ट जैसी कलाबाजियों से सबको हैरान किया। वहीं फैक्ट्री में सामान छांटने, लैंडिंग और अनलोडिंग जैसे काम भी बड़ी आसानी से करते दिखाई दिए। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट शानदार मोशन कंट्रोल और स्मार्ट इंटरैक्शन के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में इंसानों का काम आसान बना सकते हैं।
5: 我们其实从去年就开始布局了，然后今年的整体目标也是希望能够海外的收入占到公司全年整体的30%到40%左右的一个水平。在海外的话，我们现在有三大主要的区域，一个是欧美，然后另一个是亚太和中东地区，还有一部分就是这个东亚的日韩这几个。
3: एजीबोर्ड का मानना है कि जिन देशों में श्रमिकों की कमी है वहाँ ये ह्यूमनॉइड रोबोट उद्योगों के लिए बड़ा सहारा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए, जन्मदिन तो आपने इंसानों के बहुत देखे होंगे, लेकिन जरा मिलिए इस वीआईपी बर्थडे बॉय से। इसके लिए कद्दू की शाही बग्गी बनी और फलों और सब्जियों का स्पेशल केक तैयार हुआ। गर्मी से बचने के लिए मिस्ट स्प्रे का भी इंतजाम किया गया। चीन के चोंकिंग जू में जायंट पांडा मांग कानकान का तीसरा जन्मदिन कुछ इस तरीके से मनाया गया।
0: यह है चीन के चोंकिंग जू का सबसे खास मेहमान जायंट पांडा मांग कानकान। तीसरे जन्मदिन पर इसके लिए किसी शाही दावत से कम इंतजाम नहीं किए गए। देखभाल करने वालों ने फलों और सब्जियों से खूबसूरत केक तैयार किया, जिसमें कद्दू की बग्घी और खरबूजे से बनी फूलों की टोकरी सबका ध्यान खींच रही थी। जैसे ही बर्थडे ट्रीट सामने आई, मांग कानकान भी पूरे मजे से अपने पसंदीदा फल और सब्जियों का स्वाद लेने लगा। गर्मी से राहत देने के लिए बर्फ और मिस्ट स्प्रे का इंतजाम भी किया गया, ताकि बर्थडे बॉय पूरे आराम से अपना दिन एंजॉय कर सके। मांग कानकान का जन्मदिन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जू पहुंचे। किसी ने तस्वीरें खींची तो किसी ने वीडियो बनाकर इस खास पल को कैमरे में कैद किया। कद्दू की गाड़ी, फलों का केक और ढेर सारा प्यार, इन सब ने इस नन्हे पांडा का तीसरा जन्मदिन यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

कभी रसोई में बर्तन साफ करने के काम आने वाला मामूली सा लूफा अब दुनिया भर में बिकने वाला ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुका है। चीन के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में उगने वाला यही प्राकृतिक स्पंज हजारों लोगों की कमाई का जरिया बन गया। देखिए कैसे एक साधारण लूफा ने बदल दी ग्रामीण चीन की तस्वीर।

0: ये है चीन के हेनान प्रांत का शोंगचेक काउंटी, जहां हेबिशान पहाड़ों की तलहटी में उगने वाला लूफा अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। कभी घरों में इस्तेमाल होने वाला इस साधारण स्पंज आज विदेशी बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। सैन फ्रांसिस्को के एक स्ट्रीट स्टॉल पर बिकते सूखे लूफा स्पंज ने लोगों का ध्यान खींचा। $3 से $6 कीमत वाले ये प्रोडक्ट अब अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय कंपनियों ने भी लूफा को नए रूप दिए हैं। अब इससे सिर्फ किचन स्क्रबर ही नहीं बल्कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट, घरेलू सामान, जूते के इंसोल और पालतू जानवरों के खिलौने तक बनाए जा रहे हैं।
1: 目前啊，我们这个斯瓦洛出口业务占整体业务的65%，产品已经走进了欧美、日韩、东南亚等50多个国家、170多个城市。
0: इस कारोबार ने शोंगचेक काउंटी के लोगों को घर के करीब रोजगार भी दिया है। जहां पहले अतिरिक्त लूफा को बेकार समझकर जला दिया जाता था, वहीं अब यही लूफा परिवारों की आय का जरिया बन गया है।
2: 我是真的有想到，我们做出的这个产品呀，普普通的小产品，能让全世界各地的人都能用到，真的感觉非常的骄傲和自豪。
0: शोंगचेक का लूफा उद्योग अब सालाना करोड़ों युआन का कारोबार कर रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। पहाड़ों में उगने वाला ये साधारण पौधा अब चीन के गांवों को दुनिया के बाजारों से जोड़ने वाली बड़ी कहानी लिख रहा है। रिपोर्ट कुमी सुरेश।
3: अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर या फिर कुछ और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए सैलानी आए, तो आप अपने आसपास की उन खूबसूरत जगहों की तस्वीर जीएनटी को भेजिए, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को दिखा पाएं। हमारे दर्शक भी बड़े उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियो भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक अनछुए पर्यटन स्थल चूड़धार पीक पर, जहां पर अध्यात्म का एहसास है तो ट्रैकिंग का एडवेंचर भी है।

0: ये है चीन के हेनान प्रांत का शोंगचेक काउंटी, जहां हेबिशान पहाड़ों की तलहटी में उगने वाला लूफा अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। कभी घरों में इस्तेमाल होने वाला यह साधारण स्पंज आज विदेशी बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। सैन फ्रांसिस्को के एक स्ट्रीट स्टॉल पर बिकते सूखे लूफा स्पंज ने लोगों का ध्यान खींचा। $3 से $6 कीमत वाले ये प्रोडक्ट अब अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय कंपनियों ने भी लूफा को नए रूप दिए हैं। अब इससे सिर्फ किचन स्क्रबर ही नहीं बल्कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट, घरेलू सामान, जूते के इंसोल और पालतू जानवरों के खिलौने तक बनाए जा रहे हैं।
1: 目前啊，我们这个斯瓦洛出口业务占整体业务的65%，产品已经走进了欧美、日韩、东南亚等50多个国家，170多个城市。
0: इस कारोबार ने शोंगचेक काउंटी के लोगों को घर के करीब रोजगार भी दिया है। जहां पहले अतिरिक्त लूफा को बेकार समझकर जला दिया जाता था, वहीं अब यही लूफा परिवारों की आय का जरिया बन गया है।
2: 我是真的有想到，我们做出的这个产品呀，普普通的小产品，能让全世界各地的人都能用到，真的感觉非常的骄傲和自豪。
0: शोंगचेक का लूफा उद्योग अब सालाना करोड़ों युआन का कारोबार कर रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। पहाड़ों में उगने वाला ये साधारण पौधा अब चीन के गांवों को दुनिया के बाजारों से जोड़ने वाली बड़ी कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुनी सुरेश।
3: देखिए, जीएनटी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश में जगह हो वो आप प्रमोट करेंगे तो हमारे देश का टूरिज्म भी बढ़ेगा। ऐसे में आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे जीएनटी पर जरूर दिखाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इंस्टा स्टोरी की। आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए अली असगर की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: हेलो, कैसे हो आप?
5: मैं ठीक हूँ।
3: साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना है।
6: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: मंगल जीवन में किस तरह से समस्याएं पैदा कर सकता है, क्या है मंगल की समस्याओं का समाधान और मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए करें कौन सा दान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
10: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
9: to live sports action.
11: To the near side corner, to wraparound, he scores!
9: And your favorite music.
12: You and I stargazing.
9: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
13: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: गुड प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
6: आज इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1000 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। दिल्ली NCR में रात भर बरसे बादल, अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट, गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए फिल्मी सितारे, शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए बोनी कपूर और परिवार के अन्य सदस्य।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की समस्याओं से बचने के लिए कौन से दान आपको करने चाहिए, मंगल की किस समस्या के लिए आप कौन सा दान करेंगे, आज इस विषय पर बात होगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 12:21 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र शाम के 4 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 4 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं कि मंगल अगर आपकी कुंडली में निगेटिव है, मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है, तो मंगल के खराब होने के क्या परिणाम होते हैं। देखिए, मंगल हमारे जीवन में साहस को और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। मंगल के कमजोर होने पर व्यक्तित्व व्यक्ति का कमजोर हो जाता है और मंगल के गड़बड़ होने पर व्यक्ति को संपत्ति और जमीन के मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंगल के गड़बड़ होने पर व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम परेशान करती हैं और मंगल अगर ज्यादा गड़बड़ हो तो कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है, कभी कभी जेल के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। अगर विवाह के स्थान से मंगल का नकारात्मक संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है।
यानी अगर मंगल नकारात्मक है तो आपके अंदर साहस नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा नहीं होगी, दुर्घटनाएं होंगी, मुकदमेबाजी होगी और वैवाहिक जीवन में झगड़े, झंझट और विवाद आपको परेशान करेंगे। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मेहनत से भरा दिन रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है, परिवार में अशांति से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर कुंडली में मंगल अशुभ है, कुंडली में अगर मंगल खराब है तो कौन कौन से उपाय करने से लाभ होगा? मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए, मंगल की समस्याओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। अपने आचरण को बेहतर करके, मंत्र का जप करके, रत्न का प्रयोग करके और मंगल की वस्तुओं का दान करके आप मंगल की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सब को करने से आपका मंगल शुभकारी हो जाता है, मंगल के परिणाम बेहतर होते हैं। लेकिन इन तमाम उपायों में अगर आप दान करें तो दान करने के मंगल के परिणाम बेहतर होते हैं। लेकिन इन तमाम उपायों में अगर आप दान करें तो दान करने के आपको शीघ्र लाभ होंगे। मंगल अगर खराब है या मंगल अगर निगेटिव है और अगर आप दान करते हैं तो दान के प्रभाव ज्यादा बेहतर होंगे। और मंगल के लिए अगर आप दान करते हैं तो किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें या हनुमान जी के मंदिर में अगर दान करें तो आपके लिए बहुत
बेहतर होगा। मंगल की किस समस्या के लिए क्या दान करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी, संतान की चिंता दूर होगी, चोट चपेट से सावधान रहें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि मंगल की किस समस्या के लिए कौन सा दान आपको करना चाहिए। अगर मंगल के कारण स्वास्थ्य की समस्या है, बार बार ऑपरेशन होता है, ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो या मसल्स की कोई प्रॉब्लम है, तो लाल फल का दान करना अच्छा रहेगा। अगर मंगल की वजह से आत्मविश्वास की समस्या है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, तो हर मंगलवार को बूंदी का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई संपत्ति की समस्या है या जमीन की समस्या है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत है, तो मंगलवार को लाल मसूर की दाल या जौ का दान करना बेहतर होगा। अगर मंगल की वजह से आप कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो तांबे की वस्तुओं का या लाल कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर मुकदमे की कोई समस्या है या अगर कोई विवाद है, कोई झगड़ा झंझट है, उसकी कोई समस्या है, तो मंगलवार को मीठी चीज का जैसे गुड़ का या बूंदी का दान करिए, आपको लाभ होगा। मंगल आपकी कुंडली में कभी भी अगर समस्या दे, किसी भी मामले में अगर समस्या दे, तो मंगलवार को गुड़ का दान करिए। और सबसे बेहतर होगा कि मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें
तो मंगल की किसी भी तरह की समस्या हल हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, नया काम शुरू हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है। गणेश जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की मंगल ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए दान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। क्या है लकी टिप? अगर मुकदमे से और विवादों से मुक्ति चाहते हैं, क्या है लकी टिप? अगर मुकदमे से और विवादों से मुक्ति चाहते हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को लाल फूल, गुड़हल का या गुलाब का अर्पित करें तो बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल गणेश जी को गुड़ का भोग लगाइएगा, घर से निकलते समय इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

एक गांव में एक आदमी रहता था, सीधा साधा था, बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक ही कमी थी, खूब खाता था, खूब खाता था। अच्छा, आदमी उतना ही खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है। कुछ लोग कहते ना ये बहुत खाते हैं, भाई आदमी उतना ही खाए खाता है जिसका जितना बड़ा खाता है, जैसे आपका बड़ा खाता है। तो वो तो खाते के हिसाब से ही खाते त्यागी जी। तो आदमी कितना खाता, जिसका जितना बड़ा खाता आदमी उतने। तो ये खूब खाते थे, कोई काम नहीं, एक ही काम था, खावे और सोवे और जगे और फिर खावे। घर वाले बहुत हैरान, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। अच्छा, घर वालों, घर वाले रखते ही उसी को जो काम का हो, और जो काम का नहीं वो कोई सी काम का नहीं। तो घर वालों ने कहा कि तुम खाते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं हो, कुछ करो। बोले हमसे कुछ होता ही नहीं है। बोले होता नहीं है तो काहे को पड़े हो, बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग तो इसी चक्कर में बाबा बन जाते। बोले क्यों? बोले मुड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर मुड़ाए, इसको बुंदेलखंडी में मुड़ कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में मुड़, सिर को मुड़ कहते। तो बोले सिर मुड़ाए तीन गुण। बोले क्या? बोले सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। आओ, आओ, आओ, आओ। बोले ये फायदा है तो मुड़ मुड़ाए तीन गुण। तो घर वालों ने कहा कि कोई काम के तो है नहीं, घर में पड़े रहते हो, जाओ बाबा बन जाओ। अच्छा, कई लोग बाबा इसी चक्कर में बनते, घर में भाई खटपट, सो चल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, ले मांखा बेटा रोटी। अब ये घर से निकला, जाए कहां? इसने सोचा जाए कहां, घर वालों ने ही छोड़ दिया, जिन पे भरोसा था उन्होंने ही छोड़ दिया, जाए कहां? सामने एक मंदिर था, मठ आश्रम, जैसे त्रिपाठी जी ने हमारा भिवंडी में बना रखा बागेश्वर सनातन मठ, ऐसे ही एक मठ था। मठ के बाहर पुजारी जी बैठे थे। अच्छा, महात्मा तो होते ही मोटे ताजे, और होए क्यों ना, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं, अटेंशन में रहते हैं, टेंशन क्या, महात्मा तो अटेंशन में रहते, टेंशन में थोड़ी रहते, अटेंशन में रहते। खा खूब बड़े मोटे ताजे महात्मा मठ के बाहर, मंदिर के बाहर बैठे थे। ये जा रहा था रस्ते में, इन्होंने देखा, इसने देखा बहुत खाते हैं लगता है, आदमी को तो अपने हिसाब से ही दिखाई देता है। बोले ये भी मोटे ताजे हैं लगता है, ये भी खूब खाते। नजदीक आ गया गुरु जी के, जैसे ही नजदीक आया तो दो चार चेला महात्मा जी के निकल आए, वो भी मोटे ताजे। अरे बोले वाह, इधर तो सब मोटे ताजे, ये भी मोटे ताजे लगता है, ये सब खूब खाते हैं हमारे जैसा, ये भी मोटा ताजा था। ये गया, बोले गुरु जी हाँ आप हमें अपना चेला बना लो। बोले बन जा। बोले बहुत बढ़िया, जय हमारा। बोले लेकिन चेला तो बनेंगे, पहले ये बताओ हमें काम क्या करना होगा। गुरु जी बोले कोई काम नहीं है, मंदिर है, सुबह शाम आरती में खड़े होके कीर्तन गाओ और पड़े रहो, कोई काम नहीं है मंदिर में, कोई इमरजेंसी आएगी तो बताएंगे। बोले महाराज चलो ये तो हो गई काम की बात, ये बताओ इसकी क्या व्यवस्था है। अरे बोले वाह, मंदिर है, कोई कमी नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, दोनों टाइम भंडारा चलता है, सुबह भी शाम को भी। बोला ओनली टू टाइम? बोले हाँ दो बार। बोले वो चार नहीं हो सकता? अरे बोले मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं, चार नहीं, आठ बार खाओ। इसने कहा ये बहुत बढ़िया है, कुछ काम करना नहीं, आठ बार खूब खाना। इसने कहा यदि नौ बार खा ले तो? पंडित जी बोले खाता ही रहेगा कि कुछ और करेगा? बोले सच यही है कि हम खाते ही भाग हैं, इसीलिए तो घर से भगाए गए। बोले कोई बात नहीं, खाते रहना, नौ बार खा लेना, तुम्हारी व्यवस्था बना देंगे। लेकिन इसे क्या पता, अब रहने लगा, गुरु जी ने चेला बना दिया, नाम रख दिया रामदास। क्या नाम रखा? रामदास। माला पहना दी, तिलक लगा दी। अब ये बढ़िया सुबह शाम आरती में खड़ा हो गए, और आरती के बीच ही में जयकारा लगा के बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती चल रही हो, बीच में जय

एक तो छोड़ दो। बोले नहीं नहीं वो तो सबको नियम बराबर है, ना बनेगा ना मिलेगा। ये हाथ जोड़ के बोला गुरुजी यदि हमारी एकादशी करवा दी तो द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोले मतलब? बोले मतलब सीधा है गुरुजी, एक चेला आपका कम हो जाएगा, आश्रम में कलियम टपक जाएंगे। बोले ये तो बड़ी खाज है। बोले क्या किया जाए? बोले आप ही कोई उपाय बताओ गुरुजी। बोले और तो कोई उपाय नहीं, मंदिर में तो बन नहीं सकता, नियम है हमारे गुरुजी, 300-400 साल से नियम चल रहा है। एक उपाय है क्या? बोले हम सामान दे सकते हैं, तुम बना लोगे? अरे बोले मरते क्या नहीं करते, सामान ही दो। तो भंडारी जी को कह दिया, हाँ भाई जरा सामान दो। भंडारी जी ने आटा दे दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दिए, नमक दे दिया, मिर्चा दे दिया। गुरुजी से प्रणाम करके बोला गुरुजी हम जा रहे, आशीर्वाद दो कि हम फतेह करके आए। तो गुरुजी बोले क्या फतेह करके आए? बोले पूरा राशन ठिकाने लगा के आए, क्योंकि अभी तो बनाना पड़ेगा, तब तक दोपहर हो जाएगी, भूख लग। तो गुरु जी बोले इधर आओ। जी जी गुरु जी सुनो, वैसे तो एकादशी को खाना नहीं चाहिए, पर तुम नहीं मान रहे हो तो खा रहे हो। सुनो भगवान को बुलाकर भोग लगाकर खाना, अब ये तो सीधा साधा आदमी, बड़ा सरल आदमी, कुछ जानता था ही नहीं, इसे पढ़ाई लिखाई थी नहीं, कोई जानता था नहीं, सीधा साधा आदमी, भोला भाला। इसने कहा जो आज्ञा गुरुजी। तो इसने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, आज एकादशी है तो मंदिर में भगवान को कुछ मिलेगा ही नहीं, कम से कम हमारे यहां मिल तो जाएगा। ये नदी के किनारे आया, नदी के किनारे लकड़ी ली, आग जलाई, आग जला करके इसने रसोई तैयार की, टिक्कड़ बनाए, चोखा प्रसाद बनाया। चोखा प्रसाद बनाने के बाद गुड़ का शरबत बना करके बैठ गया। इसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान को बुला लेना, मंदिर था राम जी का, सो हाथ जोड़ करके गाने लगा।

अच्छा सीधा साधा आदमी पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, यानी इसे लगता था कि भगवान सच में आते और खाते हैं। सीधा आदमी ये सोचता था कि भगवान आते हैं और खाते हैं। अब ये चारों तरफ देखने लगा, कोई नहीं आता दिखाई पड़ा, केवल जंगली जानवर दिखाई पड़े, तो ये और टेंशन में मन ही मन कहने लगा, प्रभु एक तो एकादशी है, दूसरा पहली बार जिंदगी में हमने बनाया है, तीसरा दोपहर पहले ही हो गई, भूख बहुत लगी, और चौथा तुम आ नहीं रहे। अच्छा क्यों नहीं आ रहे, गुरुजी ने तो कहा था भगवान को बुला, एक कमी होगी। क्या कमी होगी, हमारे पास वो घंटिया आचमनी नहीं है, हो सकता भगवान माहौल देख के न आ रहे हो। सो हाथ जोड़ करके बुला, आचमनी।

रबड़ी माल बुआ, आज वहां एकादशी है, ठन ठन गोपाला मिलेगा। वहां कुछ नहीं है, जो है यही है। यहाँ हम भी खा रहे, तुम भी पाओ, एकादशी मना लो। भगवान इसी सरलता पर रीझ गए, लेकिन राम जी भी कम कौत की नहीं है। कलयुग की सत्य घटना है, राम जी अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भागम, माता जानकी जी को लेकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। जैसे ही इसने देखा दो जने आ गए, तो राम जी की तरफ देखकर बोला, जय हो भगवान, इतनी देर क्यों कर दी। भगवान बोले, बिजी थे, व्यस्त थे। बोले, अच्छा। बगल में जानकी माता को देख के बोला, ये कौन है। राम जी बोले, वाह, हमारी घरवाली है, घरवाली, घरवाली। बोले, हमने बुलाया तो एक भगवान, तो जी तो दो भगवान हो गए। तो राम जी बोले, दिक्कत क्या है। बोले, पूरी दिक्कत है, व्यवस्था दो लोगन की है, अब तीन हो गए, मतलब आधी एकादशी हमारी करवाई लोगे। एक तो आधी पहले ही हो गई, ऊपर से बंटवारा करके तुम्हारी घरवाली को भी तो कुछ रोटी लगेंगी, ये खाएंगी कि नहीं खाएंगी। भगवान बोले, वाह, हम खाएंगे तो ये भी खाएंगे। बोले, इसका मतलब है शुद्ध है कि दो टिक्कड़ खाएंगी कि तीन। राम जी बोले, ये कोई बात है, पेट भर के खाएंगे। बोले, वाह, एक तो लेट आए, ऊपर से पेट भर के खाओगे, वो दो भगवान आए, व्यवस्था एक भगवान। पर कोई बात नहीं, अब आगे सो आगे बैठो बैठो। एक बात बोले प्रभु, हाँ, आप लोगों की जोड़ी बड़ी सुंदर है, कहाँ रहते हो। भगवान बोले, मंदिर में रहते, बहुत अच्छा, लो खाओ। बढ़िया प्रसाद पवाया, इसने भी प्रसाद पाया, प्रभु भगवान के चरण स्पर्श किया। भगवान जाने लगे, इसने पूछा, सीधा आदमी, इसने कहा, एक बात बताओ भगवान। बोले, हाँ, ये एकादशी साल में कितनी बार आ जाती है। भगवान बोले, तो हर महीना आती है, महीने में एक नहीं दो। बोले, मतलब हर 15 दिन में अपनी मीटिंग फिक्स है। भगवान बोले, हाँ। तो बोले, सुनो, और तो सब ठीक है, अगली बार टाइम पे आ जाए क्यों, इतनी देरी ना करिए, थोड़ा जल्दी। भगवान बोले, हम आ जाएंगे, आशीर्वाद। सीधा साधा आदमी तो ये मंदिर आ गया, इसने गुरु जी को नहीं बताया, क्योंकि होता ही ऐसा होगा, उसको ऐसा लगा कि ऐसा ही होता है, भगवान ऐसे ही आते हैं। अब 15 दिन कब बीत गए पता नहीं लगा, फिर एकादशी आई, तो फिर भंडारी जी चूल्हे में नहीं आग लगा में। तो ये पहुंचा, बोले, आज क्या है। बोले, फिर एकादशी। बोले, फिर एकादशी, इतनी जल्दी, अभी तो गई थी। अरे बोले, वो तो आ गई, कोई बात नहीं, अभी एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया। बोले, गुरु जी सुनो, इस बार हमारा राशन बढ़ाया जाए। तो गुरु जी बोले, क्यों। बोले, वाह, वहां दो दो भगवान आते, और पिछली बार हमारी आधी एकादशी हो गई थी, इसलिए राशन बढ़ाओ, थोड़ा आटा बढ़ाओ, आटा। गुरु जी को लगा, ज्यादा खाता है तो कम रह गया होगा। तो गुरु जी ने 5 शेर की जगह 8 शेर आटा कर दिया, गुड़ दे दिया, चावल दे दी, दाल दे दी, और थोड़ा नमक दे दिया, मिर्चा दे, लो लो जाओ, अब ठीक है। अब ये गया, इसने बढ़िया रोटी टिक्कड़ फिर से बनाया, चोखा बनाया, गुड़ बनाया, मिर्चा की बढ़िया साग दाल बनाई रख ली, साग बनाई रख ली। इसने सोचा भगवान को बुला लें, नाम पहले ही जान गया था, पूछा प्रभु राम जी से पहली बार में, ये बगल में कौन है, घर वाली, क्या नाम है इनका, सीता जी, अच्छा। तो आज नाम लेके बुलाने लगा, अरे सीता।

आए, अब इसका दिमाग खराब, इतनी देर हो गई आए नहीं और इसको रोटी बसाए। एक बार रोटी की तरफ देखे, फिर इधर उधर देखे, भगवान नहीं आए। तो सीधा साधा आदमी हाथ जोड़ करके बोला, सुनो भगवान, सीधी सीधी बात सुन लो, जहां भी हो जल्दी आ जाओ, और तुम मंदिर के चक्कर में ना रहना कि मंदिर में माल

की मैया को लेकर राम जी प्रकट हो गए। और जहां इसने तीन भगवान देखे सो दूरई से हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन आ गए। भगवान की तरफ देख के बोला अब ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई है। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखे, ऊपर से नीचे की तरफ देखे। राम जी बोले हुआ क्या? बोले लग तो नहीं रहे तुम्हारे भैया है, तुम्हारा कलर अलग है इनका अलग, दोनों अलग अलग रहे। अरे बोले नहीं नहीं हमारे भाई है, इनकी माता जी दरअसल दूसरी है, इसलिए गौर वर्ण के हैं, हम श्याम वर्ण। अच्छा तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ। हाँ बोले हमने तुम्हारा ठेका लिया है भोजन का, खानदान का थोड़ी लिया है। तुम पूरा खानदान लेके आओ, तुम्हारा ठेका है अब पूरे खानदान का, तुम तीन जने आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए अब ठीक है, लो बैठो कोई बात, लगता है थोड़ी एकादशी फिर करवा दोगे। बैठो बैठो बैठो। अब राम जी बैठ गए। क्या नाम है इनका? लक्ष्मण जी। अच्छा अच्छा बाबा लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे क्या गजब का आदमी, हम जहां जाते हैं आदमी खुश होते हैं, ये कह रहा है ये क्यों आ गए, क्या गजब का भगत है भाई, क्या गजब का भगत। तीनों लोग बैठ गए, राम जी जानकी जी लक्ष्मण भैया तीनों बैठे, इसने प्रसाद रखा भोजन कराया। आ हा तीनों को गौर से देखने लगा, भगवान तो भगवान ही है, वो तो सुंदर परम सुंदर है ही है। नीलाम भुजक श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम है। सो भगवान श्री नील सरोवर नीलमण नील नीलधर श्याम, भगवान का नील स्वरूप है। आहा अलकावलियां झलक रही हैं, घुंघराली लटे लटक रही हैं, बड़ी वज्राग देह माई भुजाए है, बढ़िया गला भरा हुआ शंख की तरह है, कपोल बढ़िया मुस्कुराते हुए लाल लाल होंठ हैं, काली काली कजरारी अखियां हैं, श्वेत दंतावली है। आहा मधुर मुस्कुराता हुआ श्री हमारे राघवजू सरकार का मुखारविंद है। स्वरूप को देख करके ये अद्भुत हो गया, बोले वाह कुछ भी कहो, पहले दो लोग अच्छे लग रहे थे अब तीनों अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसने भी भोजन किया, चरण पकड़ के राम जी से बोला प्रभु जा रहे, राम जी बोले जा रहे, भगवान बोले जा रहे, बोले अगली बार कितने आओगे? आओ, आओ, आओ, एक को बुलाया दो आए, दो को बुलाया तीन, बोला तीन आ गए, अब अगली बार गिनती बताओ। भगवान बोले नहीं हम आ जाएंगे, गिनती नहीं पूछते हम, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। और भगवान ऐसे ही गोलमोल करके गायब हो गए। अभी आया इसको तो फिर एकादशी की पड़ी के इस बार एकादशी आएगी फिर आफत होगी। वो सच में एकादशी आ गई, फिर एकादशी आई, गुरुजी बोले आज फिर एकादशी है, बोले है तो। गुरुजी बोले सिर क्यों लटका है? अरे बोले वहां पे भगवान ही भगवान आ जाते। गुरुजी बोले कहना क्या चाह रहे? बोले इस बार हमारा राशन डबल किया जाए। गुरुजी बोले डबल? बोले कितना? बोले 8 का 16, 8 शेर दिया था 16। गुरुजी मन में सोचने लगे 16 शेर खाता तो नहीं होगा, जरूरी बेचता है। गुरुजी बोले 16 नहीं 20 दे दो, हम भी देखते हैं कौन भगवान आते। मनी मन दे दो सामान, आटा लिया, दाल ली, गुड़ लिया, नमक लिया, मिर्चा लिया, नदी के किनारे आ गया। लेकिन आज चेला ने चतुराई कर दी, भगत ने चतुराई कर दी, इसने सोचा राशन पर्याप्त है, एक काम करो पहले भगवान को बुला लो, जिस हिसाब की गिनती होगी उसी हिसाब का बना लेंगे। तो ये पहले ही बैठ गया, नाम तो जान ही गया था, जिसने फिर हाथ जोड़े आंख बंद की और गाने लगा उसी

देखा, सोई हाथ जोड़ के बोला जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन आते हैं, तीन की व्यवस्था करो सो पूरा खानदान मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। लेकिन सुन लो, आज हमने भी भोग नहीं बनाया है। भगवान बोले मतलब? बोले ना हमने बनाया है ना तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे? बोले जब हमें हर बार एकादशी हो ही जाती है, वो धरा सामान बनाओ खाओ, जब हमें मिलता ही नहीं है अपना बनाओ और खाओ। भगवान बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो वहां बैठे रहेंगे, बच जाए सो हमें बता देना, नहीं तो हमारी भी एकादशी है। गुरुजी वैसे ही कह रहे थे एकादशी रहना चाहिए, सो हम भी एकादशी रह लेंगे। भगवान बोले बात तो गजब फंस गए। अब ये दरबार की तरफ देखे, राम जी से बोला परिचय कराओ कौन कौन आया है। राम जी बोले ये तो मिले थे, हाँ ये तो लक्ष्मण जी हैं, ये तो तुम्हारी पत्नी सीता माता है, हाँ हाँ और कौन है, ये दो लोग कौन है। राम जी बोले ये भी भैया हैं, बोले ये भी अलग अलग कलर के हैं। अब बोले अब आप ऐसा ना कहो, अच्छा हाँ अच्छा दोनों भाई। अब हनुमान जी की तरफ देख के बोला, राम जी से बोला आदमी तो आदमी बंदर भी ले आए। वाह वाह वाह, आदमी तो आदमी बंदर भी ले आए, लेकिन कोई बात नहीं अब आगे तो बनाओ और खाओ। और ये कोने में बैठ गया पेड़ के नीचे। राम जी जानकी माता से बोले, सत्य घटना है, जानकी माता से बोले किशोरी जी आज भगत की इच्छा है, एक काम करो तुम अन्नपूर्णा स्वरूप में आकर के आज अपने हाथों से प्रसाद बनाओ और हम लोग पाएंगे। पूरा राम दरबार प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुआ। जरा दर्शन की झांकी करना मन में, क्या अद्भुत झांकी।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Catch up on what's hot with TikTok Radio, curated by Stingray Music, your destination for trending hits and must-see videos. Stay in the loop one viral moment at a time. TikTok Radio, now available for free on Pluto TV. TV. Stream now, pay never.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
3: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
4: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
3: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
10: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
3: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
11: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
11: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
7: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
3: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
7: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
14: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
9: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
3: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
3: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
3: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
10: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
18: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
19: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
20: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोन दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial-free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
4: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
5: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
6: खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे,
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
9: इंडोनेशिया के
13: 1000 साल पुराने मंदिर परमबानन में पीएम मोदी ने किए दर्शन, विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। दिल्ली एनसीआर में रातभर बरसे बादल, अगले दो दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़ते हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस से की बात, हर बार संभव मदद का दिया भरोसा। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए फिल्मी सितारे, शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए बोनी कपूर और परिवार के अन्य सदस्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सीधी तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धरोहर स्थलों में शामिल परमबानन मंदिर का दौरा उन्होंने किया। करीब 1000 साल पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। परमबानन पहुंचे के दौरान सड़क के दोनों ओर मौजूद बच्चों ने हाथों में भारत के तिरंगे लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बच्चों के उत्साह और भारत इंडोनेशिया दोस्ती की झलक ने पूरे माहौल को खास बना दिया है। ये तीन अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमबानन मंदिर पहुंचे और ये पल बेहद ही खास रहा। मंदिर परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने परमबानन मंदिर का मुआयना भी किया और मंदिर की वास्तुकला और इतिहास के बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। परमबानन मंदिर इंडोनेशिया की प्राचीन हिंदू सांस्कृतिक और साथ ही विरासत का शानदार प्रतीक है। यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल इस मंदिर परिसर में कुल 224 मंदिर हैं। इनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित प्रमुख मंदिर शामिल है। परिसर का सबसे ऊंचा और प्रमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई करीब 47 मीटर है। वहीं मंदिर की भव्य नक्काशी और स्थापत्य कला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1000 साल पुराना ये मंदिर जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। हमारी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी के लिए। शिवानी, अब देखिए जिसका इंतजार सब लोग कर रहे थे, 1000 साल पुराने मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करती तस्वीरें सामने आ चुकी है। शिवानी, और जानकारी दीजिए।
14: देखिए, ये जो मंदिर है, ये परमबानन मंदिर है, ये 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और ये भारत और हिंदू सभ्यता का प्राचीन प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी 3 दिन की यात्रा पर हैं, आज तीसरा दिन है इंडोनेशिया में, तो इस मंदिर में गए हैं और इस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इस दौरान जो बातचीत हुई है, बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, समझौते हुए हैं, उसमें एक समझौता ये भी है कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए भारत मदद करेगा। और इसके अलावा इससे पहले कई दूसरे देशों में जो मंदिर हैं, जो भारतीय सभ्यता के प्रतीक चिन्ह हैं, वहां पर भी भारत ने काम करवाया है, उन मंदिरों का विकास करवाया है, चाहे वो श्रीलंका हो, तमाम दूसरे देश हो। और यहाँ इंडोनेशिया के इस मंदिर की अगर हम बात करें तो 1000 साल पुराने इस मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु की प्रतिमाएं हैं और इंडोनेशिया का जो संस्करण है रामायण का, उससे जुड़े हुए चित्र भी इन मंदिर की प्राचीन दीवारों पर दिखाई देते हैं। तो जो संबंध है भारत के, न सिर्फ सामरिक संबंध, भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है, परंपराओं और सभ्यताओं का जो मेल है, वो भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है।
13: शिवानी, जब प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई तो वो मुलाकात में कौन सा पल सबसे ज्यादा खास रहा? साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर किन मुद्दों पर अभी तक बातचीत हुई है?
14: देखिए, इंडोनेशिया प्रधानमंत्री गए हैं और ये 8 साल बाद उनका दौरा हुआ है, तो लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में हैं। हालांकि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए थे और अभी जो बातचीत हुई है पिछले 2 दिनों में, उसमें तमाम MOUs साइन हुए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा MOUs और अंडरस्टैंडिंग्स पर बातचीत हुई है। और जो सबसे अहम मुद्दे हैं कि किस तरह से भारत और इंडोनेशिया के बीच में, चाहे वो डिफेंस साइज हो, और डिफेंस की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स को आयातित करेगा इंडोनेशिया, इससे पहले फिलीपींस और वियतनाम भी ब्रह्मोस ले चुके हैं, भारत से ले रहे हैं, और अब इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा अस्त्रा मार्क वन मिसाइल, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं एयर टू एयर अटैक्स के लिए, जिनको Su-30 एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है, उनको लेकर भी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। पीपल टू पीपल टाइज, एजुकेशन, IIMs की जो ब्रांचेस हैं उनको कैसे खोला जाए, और इंडोनेशिया में किस तरह से भारत के जो लोग हैं उनको और भारत में रहने वाले इंडोनेशियाई लोगों को कैसे जोड़ा जाए, और आपस में एक दूसरे के लिए किस तरह से तमाम मौके पैदा करें, ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। कृषि का क्षेत्र हो या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो, इंडो पैसिफिक में एक साथ मिलकर काम करने की बात हो, तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सहमति जताई है। और ये आज का जो दिन है उसमें ये मंदिर में दर्शन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं, पूजा अर्चना की है, और इससे पहले भी जहां जहां प्रधानमंत्री गए हैं, अगर वहां पर कोई मंदिर है, भारत से जुड़ी हुई सभ्यता के कुछ प्रतीक हैं, उन जगहों को भी विशेष पहचान और विकास दिलाने में भारत ने काम किया है, और ऐसा ही अब इंडोनेशिया में भी देखा जा रहा है।
15: शिवानी, दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई उसको तो हमने समझा, लेकिन जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, उस संबोधन में भी जिस मंदिर से अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रभानंद मंदिर, और उसका जिक्र पीएम मोदी ने किया, साथ ही संबोधन में कई बड़ी बातें कही गई, वो कौन सी बातें थी जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही है?
14: देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया उसके पहले एक अहम बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब ये बातचीत हो रही थी, दोनों जो प्रतिनिधि हैं देश के उनसे बातचीत हो रही थी, तो जो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपको कॉपी करता हूँ, यानी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आप जिस तरह से विकास कर रहे हैं भारत का, मैं उसको वैसा बनना चाहता हूँ और वैसा विकास करना चाहता हूँ। तो वाकई में जो विश्व स्तर पर भारत की प्रगति को एक पहचान मिल रही है, ये उसका सूचक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रम्बानंद मंदिर की बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की प्राचीन सभ्यता दुनिया के अलग अलग कोनों में फैली हुई है, और भारत का जो कनेक्ट है उस कनेक्ट के संरक्षण को लेकर भारत लगातार काम कर रहा है। न सिर्फ लोग, आप देखिए वहां पर लगभग 4,000 भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, अपनी अपनी कहानियां भी बताई किस तरह से वो आज इंडोनेशिया में रह रहे हैं और कहां से भारत में वो हैं, वो सारी बातें हुई। लेकिन खास तौर पर जब मंदिरों की बात होती है, आप भारत में देख लीजिए तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है अयोध्या से लेकर वाराणसी तक, और अब जो विदेशों में मंदिर हैं, भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं इन पुराने मंदिरों को खास तौर पर, और यूनेस्को ने इन्हें पहचान दी है, यूनेस्को ने इन्हें मान्यता भी दी है 1,000 साल पुराने इस मंदिर में, तो वाकई में भारत किस तरह से संजो रहा है अपनी धरोहर को, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी, इस पर भी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है।
15: तो अब क्या लग रहा है शिवानी, आने वाले दिनों में भारत और इंडोनेशिया किन क्षेत्रों में अपने सहयोग को और आगे बढ़ा सकता है?
14: सहयोग के जो क्षेत्र है उनका स्पेक्ट्रम जो है वो बेहद विस्तृत है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रक्षा की बात हो, चाहे वो कृषि की बात हो, इंटेलिजेंस की बात हो, तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें भारत और इंडोनेशिया मिलकर काम कर रहे हैं। नए पोर्ट की आप बात कर लीजिए, जो एक नया सबांग पोर्ट है जिसको लेकर, जिसको विकास की बात को लेकर MOU साइन किया गया है, मलाका स्ट्रेट से महज जो 100 मील की दूरी पर है और भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोर्ट हो सकता है। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर भारत और इंडोनेशिया मिलकर आगे आने वाले वक्त में काम करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो 3 दिवसीय यात्रा है आज ये संपूर्ण हो रही है, लेकिन 3 दिनों में जिन अहम मुद्दों पर बात हुई है वो बेहद अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, डिफेंस हो, तमाम दूसरे बिंदु हो, लेकिन सहयोग परस्पर बढ़ रहा है और भारत के अंदर जो इन देशों का विश्वास है वो भी बढ़ रहा है।
15: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवान तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
16: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
17: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
16: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
19: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो, और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में

0: ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज़्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं जुड़ते तो कहीं बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर प्रांगण में पीएम मोदी ने किए दर्शन, विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले दो दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई, पुणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़ते हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस से की बातचीत, हर संभव मदद का दिया भरोसा। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में छाए फिल्मी सितारे, शानदार अंदाज में एंट्री लेते नजर आए बोनी कपूर और परिवार के अन्य सदस्य।

0: जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। आज स्पेशल शो में बात करेंगे हम मॉनसून की, क्योंकि राजधानी दिल्ली से लेकर गुलाबी नगरी जयपुर तक में इन दिनों बारिश की फुहारों ने मौसम को सुहावना बना दिया है। कहीं पर बादलों की चादर में लिपटा आसमान नजर आ रहा है, तो कहीं बूंदों ने पेड़ पौधों और सड़कों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश ने बड़ी राहत दी है। दरअसल दिल्ली की हरियाली से लेकर जयपुर की ऐतिहासिक गलियों तक हर जगह मौसम का एक नया और मनमोहक रंग देखने को मिल रहा है। मौसम के इस बदलाव का असर शहरों की रौनक पर भी दिखाई दे रहा है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ बारिश के खुशनुमा मौसम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कहीं पर चाय की चुस्कियां हैं, तो कहीं सुहाने मौसम में घूमने का उत्साह। पहाड़ की हरियाली में चमक है और साथ ही इस खूबसूरत नजारे को कैद करने के लिए सैलानी पहाड़ों का भी रुख कर रहे हैं।
1: 2 जुलाई।
0: और चलिए अब सीधा दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी मनीषा लड्डा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। मनीषा, अभी दिल्ली में आप कहां पर मौजूद हैं? और मनीषा, तस्वीरें दिखाइएगा और ये भी बताइएगा कि अब मॉनसून आगे कब तक रहने वाला है। मान लिया जाए आज से कि मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में।
2: बिल्कुल पूजा, मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ, क्योंकि जब भी मौसम अच्छा होता है तो लोग जो है इंडिया गेट पर ही आना चाहते हैं, यहाँ पे वॉक करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखाऊंगी कि तस्वीरें कितनी ज्यादा खूबसूरत इस वक्त मौसम की आपको नजर आने वाली है। हालांकि इससे पहले मौसम जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ था, बादलों का डेरा जो था वो लगातार था, लेकिन बारिश एकदम से शुरू हुई। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश का जो है अलर्ट है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम बेहद ही खास हो चुका है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अभी नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई लोग यहां से गायब हो गए। लेकिन फिर भी फैमिली एक आगे जा रही है, मैं उनसे बात करने की एक बार कोशिश करूंगी कि वो किस तरीके से मॉनसून को जो है एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेनकोट पहने जो है पूरी फैमिली जो है वो आपको नजर आ जाएगी और सबके सब मुस्कुरा भी रहे, आई थिंक शर्मा रहे। लेकिन लोगों से मैं बात करूंगी कि किस तरीके से आनंद आप लोग ले रहे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को, पहले ये बताइए कहां से आए आप लोग?
3: अहमदाबाद से आए,
2: गुजरात से आए। अहमदाबाद में तो और भी ज्यादा बारिश हो रही, वहां तो लगातार अलर्ट है।
4: अभी कम है, मुंबई उधर ज्यादा है, अहमदाबाद में कम है।
2: हाँ जी। दिल्ली कैसी लग रही है आप?
4: दिल्ली बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन बहुत गर्मी बहुत थी, बारिश भी यहाँ बहुत कम थी। आज अभी थोड़ा कुछ बारिश गिरा है अभी,
2: और बारिश की वजह से जो है वो उमस लगातार बनी हुई थी, लेकिन अचानक से बारिश जो शुरू हुई कितना आनंद आया ये बताओ।
3: बहुत आनंद, बहुत आनंद।
2: पूरे दिन आज बाहर रहना है या घर में जाना है?
3: नहीं जाना है, अभी अहमदाबाद जाने का है।
2: अच्छा, आज अहमदाबाद जा रहे हैं आप। बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है, क्योंकि बच्चों को बारिश बहुत पसंद होती है।
5: हाँ, बहुत मजा आ रहा है।
2: अच्छा, तभी इसके अंदर वो लिखा हुआ है इसके अंदर कनाडा का, इन्होंने रेनकोट जो है वो भी पहन रखा है।
5: बहुत बहुत मजा आ रहा है,
2: बहुत मजा आ रहा है। बारिश में भीगना अच्छा लगता है? नहीं लगता
5: है, लगता है पर थोड़ा सा भीना है।
2: उतार दो रेनकोट, भीग जाओ, ये जो है सुकून वाली बारिश है और बहुत ही कम बरसती है, तो अब मॉनसून की शुरुआत होगी। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से बारिश जो है वो बंद हुई है, एक बार फिर से लोगों का जो है बिना छाता के बाहर निकलने की जो है इनकी शुरुआत हो गई है। आप लोग कहाँ से आए ये बताइए?
6: मैं द्वारका सेक्टर 26।
2: अच्छा, दिल्ली से ही हो मतलब एक तरीके से, तो कैसा लग रहा है मौसम?
7: बहुत अच्छा,
2: क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी और हर किसी को था कि मॉनसून दिल्ली में कब दस्तक देगा।
7: बिल्कुल
2: अच्छा हो गया अब।
7: हाँ, मौसम अच्छा है,
2: अब मौसम अच्छा हो चुका है। तो वाकई में पूजा, मौसम वाकई में बहुत सुहाना हो चुका है। लोग जो है धीरे धीरे करके वापस से बाहर आएंगे, क्योंकि बारिश जैसे शुरू हुई, क्योंकि उम्मीद नहीं थी लोगों को एकदम से बारिश हो जाएगी, तो बिना छाते के थे, लेकिन अब लोग वापस से आपको इंडिया गेट पे जो है वो नजर आ जाएंगे। अगर मैं मॉनसून के आगे आने वाले दिनों की बात करूं, तो पूजा ये जो है अभी पीक टाइम होता है, बिकॉज जब भी मॉनसून की शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल मनीषा, देखिए दिल्लीवासी यहाँ पर इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी मौसम ऐसा ही बना रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है, यानी गर्मी से दिल्ली में राहत जरूर मिली है।

0: 2 जुलाई को दस्तक देने के बाद दिल्ली में मानसून की धमक अब दिखनी शुरू हुई है। मंगलवार को दिन भर बादल टूटकर बरसे और ऐसा बरसे कि अपने साथ सारी तपश, सारी उमस और सारी शिकायतों को बहा ले गए। झमाझम बारिश के बाद न केवल राजधानी का पारा डाउन हुआ बल्कि लोगों के पसीने छुड़ाने वाली उमस भी छुअंतर हो गई है।
1: एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है, सबको देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। आने वाले एक दो दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। और साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मानसून की तो देखा जा रहा है कि मानसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि एक दो दिन तक जो मानसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं।
0: दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि मौसम अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मेहरबान रहने वाला है। 8 से लेकर 13 जुलाई तक दिल्ली के आसमान पर बादलों का डेरा रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह या दोपहर से पहले हल्की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की भी संभावना है।
2: देखिए आने वाले 7 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 2 दिनों में पूरी पूरी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं और उसके बाद हल्के स्तर की वर्षा भी जारी रह सकती है। तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ ये जरूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलती रहने की संभावना आने वाले तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ ये जरूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलती रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में दिखाई देती है।
0: मानसून वाली राहत केवल दिल्ली वाले ही महसूस नहीं कर रहे बल्कि राहत के इन फुहारों ने राजस्थान के पर्यटन की रौनक भी लौटा दी है। अब तक गर्मी की वजह से राजस्थान में टूरिस्ट का आना कम था, लेकिन बारिश के पहुंचते ही अब सैलानी भी बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जयपुर है जो अब पर्यटकों से गुलजार नजर आने लगा है।
3: राजस्थान वैसे तो अपनी प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है, पर जैसे ही मॉनसून की एंट्री हुई है तो उसी के साथ में गुड न्यूज की भी एंट्री हुई है, क्योंकि चारों तरफ माहौल जो है वो बहुत ज्यादा खुशनुमा हो गया है और गर्मी से सभी को राहत मिली है। जयपुर के इस वक्त जलमहल पे मैं मौजूद हूँ, चारों तरफ मैं देख पा रही हूँ कि पर्यटक जो गर्मी में नहीं आ रहे थे, जो काफी कम हो गए थे, वो एक बार फिर राजस्थान आने लग गए हैं। यहाँ की जगह जगह जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने लग गए हैं और जलमहल में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो जल भराव है वो भी बारिश से बढ़ चुका है, पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया अपने लेवल से। तो ऐसे में ये जो देखने का जो भी टूरिस्ट है इसको देखने आ रहे हैं तो उसका मजा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि चारों तरफ जब बादल छाए हुए रहते हैं तो पीछे की जो पहाड़ियां हैं, जो अरावली हिल्स हैं, उनका भी जो व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है।
0: फिलहाल तो देश का मॉनसून मैप यही बता रहा है कि बरसने वाले बादलों की देश के बड़े हिस्से में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है जिसका असर अब उत्तर भारत में नजर आने लगा है। लिहाजा मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली के अलावा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में तेज बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे।
4: तो मनीषा हमारे साथ सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें हमें लगातार दिखा ही रही थी। मनीषा देखिए मॉनसून सुहावना है, मौसम अच्छा लेकर आया है, लेकिन हम दिल्ली में सड़कों की अगर बात करें तो उनकी तस्वीरें कैसी है? क्या सरकार बदलने के बाद वहां के हालात बदले हैं? क्या जो गड्ढे थे वो भर चुके हैं? क्या लोग इससे सेटिस्फाई है मनीषा?
5: पूजा, अगर मैं सड़कों की तस्वीरें की बात करूं तो अगर हम जितना भी हमारा एनडीएमसी का इलाका देखें तो वहां पर वाकई में काफी ज्यादा काम जो है वो देखा गया है। हर साल मिंटो ब्रिज के नीचे जो है पानी भरता हुआ नजर आता है, लेकिन वहां पर जो है मशीनें लगाई गई है जिसके बाद वाकई में सुधार जो है वो देखा गया है। अगर हम परसों की आई या कल की आई बारिश की अगर हम बात करें तो वहां पर इस तरीके का पानी जो इकट्ठा होता है वो नहीं देखा गया, लेकिन अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो जगह जगह ऐसी भी बहुत सी जगह है जहां पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गड्ढे है लेकिन वो पूरी तरीके से भरे नहीं, तो उसके अंदर जो है पानी भरने की वजह से लोगों को जो है हादसे का भी शिकार हो रहे। तो दिल्ली की अगर हम सड़कों की बात करें तो कहीं जो है सुधार हुआ है, लेकिन कहीं अभी भी सुधार जो है पूरी तरीके से बाकी है। हालांकि इस वक्त तो हम कर्तव्य पथ पर मौजूद है, यहाँ की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे कि किस तरीके से अच्छी और सुहानी बनी हुई है। लोग जो है इंजॉय करने के लिए घर से बाहर निकल रहे क्योंकि ये पीक टाइम होता है, पीक महीने माने जाते हैं जुलाई और अगस्त के। और अगर हम आने वाले हफ्ते की भी हम बात करें तो पूरी तरीके से मौसम जो है इसी तरीके से खास रहने वाला है। एक बार मैं भीड़ की तरफ आपको लेकर चलती हूँ कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने दिल्ली के लिए सवाल करा, दिल्ली में वाकई में गड्ढों की सबसे ज्यादा समस्या है, पानी जो है सबसे ज्यादा भर जाता है, इसलिए लोग वो जगह छोड़कर जो है इंडिया गेट या फिर कुछ इस तरीके के इलाकों में जो है आना पसंद करते हैं और यहीं पर इंजॉय करते हैं। सर से फैमिली से बात करते हैं, सर कहाँ से आए हैं आप?
6: कलकत्ता
5: से आए, कैसा लग रहा है मौसम?
6: कल तक तो सही नहीं था, बारिश के बाद अभी ठीक ठाक है।
5: बारिश के बाद अच्छा, बारिश जब आई तो आप यहीं थे या फिर कहीं और थे ये बताइए?
7: ना ना यहीं पर नहीं है, हम लोग टॉयलेट में गया था।
5: अच्छा, टॉयलेट में गए हुए थे तो बारिश में भीगने से आप लोग बच गए। लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही ह्यूमिडिटी हो गई थी, बारिश नहीं हो रही थी तो उमस ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बट अच्छा लग रहा है।
8: अच्छा लग रहा है,
5: अच्छा लग रहा है। पूरे दिन आज इसी तरीके से मौसम का लुत्फ उठाना है, नहीं उठाना
8: है?
5: उठाना है। तो थोड़ा बहुत कैमरा शाय लोगे, लोगों से बात हम कर ही रहे, किस तरीके से तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं। मौसम हर किसी को रहता है, गर्मी के बाद जब जिस तरीके से दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ गई थी उसके बाद हर किसी को रहता है कि मौसम जो है थोड़ा बदल जाए। और जब मानसून की शुरुआत होती है, केरल से जब इसकी शुरुआत होती है तो हर किसी को इंतजार रहता है कि कब धीरे धीरे वो उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा और आखिरकार पूरे दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली के साथ सॉरी पूरा जो देश है, इस वक्त मानसूनी बारिश जो है जगह जगह देखी जा रही है। अलग अलग तरीके से अलर्ट जो है वो लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले तो हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो वहां पर लगातार अलर्ट जारी है क्योंकि वहां पर जो बारिश है वो अधिक मात्रा में जो है वहां देखी जा रही है और उसके साथ ही वहां पर जो है बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन अगर हम पहाड़ी राज्य और मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी अलर्ट है। हालांकि आज के लिए दिल्ली में किसी तरीके का अलर्ट नहीं है, हल्की से मध्यम बारिश के जो है आसार है, लेकिन पहाड़ी राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार जो है ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वहां पर जोरदार बारिश देखी जाएगी, लेकिन मौसम फिर भी सुहाना रहेगा क्योंकि उसी की वजह से थोड़ी बहुत राहत जो है मैदानी इलाकों में जो लोग हैं उनको भी मिलने वाली है। और जिस तरीके से पंजाब हरियाणा की तरफ जो बारिश हो रही है उसका कहीं ना कहीं असर जो है पूजा वो दिल्ली में भी देखा जा रहा है। तो दिल्ली में मौसम पूरी तरीके से बदल गया है, लोगों को गर्मी से, चिलचिलाती धूप से और उमस जो लगातार बन रही थी उससे लोगों को राहत मिली, लेकिन हर किसी के मन में बस यही टेंशन है कि मौसम ऐसे ही रहेगा या फिर जो है उमस, क्योंकि जब थोड़ी सी बारिश होती है ना उसके बाद उमस सबसे ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर लगातार बारिश हो तो मौसम में वो ठंडकपन जो है वो भी बना रहता है। तो लोगों के मन में बस यही
4: मनीषा, उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली है। जैसा कि आपने वहां दिल्ली में दिल्ली के लोगों से बात भी करी, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, चिलचिलाती गर्मी का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो लंबा लंबा जाम बारिश के मौसम में दिल्ली में देखने को मिलता है, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है, क्या कोई रूट में बदलाव हुआ है कि ट्रैफिक ना हो, लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े?
5: पूजा, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो वो जायज़ है, मतलब जब भी बारिश होगी पानी भरेगा तो ट्रैफिक तो होगा। इसके लिए सबसे पहली जो काम करने की जगह है, जो काम करने की चीज़ है वो है जिस तरीके से गड्ढे हैं, जिस तरीके से जो इलाके हैं जहां पानी बढ़ता है उसकी समस्या को, वहां के लिए कोई समाधान जो है वो ढूंढा जाए उन समस्या पर। तो वो अगर पूरा होगा तो उसके बाद किसी तरीके का ट्रैफिक नहीं लगेगा, लेकिन दिल्ली NCR में ये जो नज़ारा है वो देखा जा रहा है। हालांकि अभी इस तरीके से नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि बारिश उस तरीके से नहीं देखी गई है, लेकिन अगर हम गुड़गांव की बात करें तो वहां पर इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। वहां पे घंटों का ट्रैफिक भी लग रहा है, वहां पर पानी भी जो भरता हुआ है वो नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली NCR में हालांकि इस तरीके की अभी बारिश नहीं देखी गई है तो लोगों को परेशानी भी जो है अभी उतनी नहीं महसूस हुई है। हालांकि लोग जो है उन्हीं से पूछते क्योंकि ये लोग सब ट्रैवल कर रहे हैं तो इनसे भी जानते हैं, कहां से आए आप लोग ये बताइए पहले?
6: गुड़गांव
5: से आए। अच्छा, गुड़गांव में किस तरीके का पानी?
6: बहुत पानी है
5: वहां तो, जब क्योंकि जब भी बारिश होती है वहां पर सबसे ज्यादा पानी भरता है
6: जी।
5: दिल्ली में कैसी सड़कें लगी आपको?
8: सही है दिल्ली में।
5: दिल्ली में ठीक है, कोई ट्रैफिक की समस्या किसी तरीके की?
8: कोई दिक्कत नहीं।
5: आप बताइए, मौसम अच्छा लग रहा है?
8: जी बिल्कुल।
5: फोटो शूट हो रहा है क्योंकि इंडिया गेट पे जब भी आएंगे तो आपको इस तरीके के कैमरामैन जो है, फोटोग्राफर्स जो है वो नजर आ जाएंगे और हर कोई जो है अपनी अपनी जो मेमोरीज है वो इन फोटोज में जो है वो इकट्ठा करता है। तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से लोग भी यहाँ पर जो है वो बता रहे हैं कि मौसम अच्छा है लेकिन गुड़गांव की स्थिति इस वक्त खराब है क्योंकि वहां पर जल जमाव की जो स्थिति है वो लगातार बन जाती है जब तेज बारिश होती है। लेकिन बात अगर दिल्ली की जाए तो थोड़ा सा लोगों को राहत है क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की बारिश जो है वो अभी नहीं देखी गई है। लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयारी है। उनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली में इस तरीके के जो मेन पॉइंट्स होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा जल जमाव की स्थिति देखी जाती है उन पर काम करना पहले से ही शुरू कर दिया था। मानसून के लिए प्लान जो है, उनकी प्लानिंग जो थी वो पहले से शुरू हो गई थी ताकि जब तेज बारिश दिल्ली में देखी जाए।
4: बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं मनीषा जो आप दिखा रही थी, इस मौसम का लुत्फ आप भी उठाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मायानगरी मुंबई लिए चलते हैं जहां पर मॉनसून पूरी रफ्तार से मेहरबान है। इस बीच लगातार हो रही बारिश के बीच जुहू बीच पर समंदर का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। ऊंची ऊंची लहरें, ठंडी हवाएं और फुहारों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग समुद्र किनारे पहुंच रहे हैं। देखिए
9: साहब, मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप भीग रहे हैं, कहाँ से?
10: जम्मू से आए हमारे।
9: जम्मू से आए, हाँ। बारिश और जुहू बीच क्या कहेंगे
10: सर? अच्छा है लेकिन पानी ज्यादा है थोड़ा, हाँ। लेकिन फिर भी मुंबई का मौसम अच्छा है।
9: अच्छा, मतलब अंदर जाने नहीं दे रहे ना आज? हाई टाइड भी है ना?
10: नहीं, ज्यादा पानी ज्यादा है।
9: सुरक्षा को लेकर के?
10: हाँ, हाँ। हम आर्मी से हैं।
9: हाँ, आर्मी से?
10: जी।
9: अरे वाह, फिर क्या, फिर आपको अच्छा क्या क्या खा लिया यहाँ पे अभी तक?
10: बहुत कुछ खाया, पाव भाजी खाया, मंचूरियन खाए। मेरा बेटा है।
9: अच्छा, क्या नाम है बच्चे आप?
11: मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह बहू है।
9: पहली बार आए हो मुंबई?
11: हाँ पहली बार आए, दूसरी बार ये, लेकिन ऐसा मौसम कभी नहीं देखा मैंने मुंबई का।
9: मजा आ रहा है?
11: हाँ जी बिल्कुल, वो फुल मजा आ रहा है।
9: कैसी लग रही है मुंबई की बारिश?
11: अच्छी लग रही है।
9: आपको कैसे लग रही है? रियली बताएं, आप जवान है देश का, आप जो है इतना काम करते हैं, देश को संभालते हैं, देश के लोगों को संभालते हैं, कैसा दिख रहा है यहाँ का माहौल?
10: अच्छा लग रहा है।
9: बढ़िया लग रहा है?
10: बढ़िया, बहुत ज्यादा।
9: कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल?
12: वी आर रियली एंजॉयड।
9: फूड एंजॉय किया यहाँ?
12: रियली एंजॉय।
9: क्या सबसे अच्छा लगा?
12: सर भेलपुरी इज मस्ट।
9: भेलपुरी बढ़िया है। क्या भैया कहाँ से हैं आप?
13: अंकलेश्वर।
9: अच्छा, तो कैसा लग रहा है? एक तरफ जुहू बीच, दूसरी तरफ
13: जुहू बीच एंजॉय करने के लिए आए, वड़ा पाव खाया, सब मजा आ गया, बहुत मजा आया। और कल का दिन हमारा मरीन ड्राइव और वहाँ स्पेंड हुआ था, वहाँ भी ऐसी बारिश थी, ऊंचे ऊंचे मोजे आ रहे थे, बहुत मजा आया, एंजॉयबल,
9: मस्त एंजॉय कर,
13: एकदम फुल एंजॉय।
9: क्या नाम है आपका?
14: हिमाद्री है मेरा नाम।
9: बताइए कि एक तरफ जुहू बीच, दूसरी तरफ मुंबई का नजारा, खाओ गली, कैसा लग रहा है और क्या कहें?
14: यही परफेक्ट कॉम्बो है एक्चुअली बोले तो। स्पेशल हम लोग गुजरात से इसीलिए आए, अभी इतनी हेवी रेन है पर फिर भी पता था तो स्पेशल अभी ऐसे ही इधर आ गए एंजॉय करने के लिए। बस ये
9: क्या क्या खाया वो बताइए, एकदम सच सच बताइए।
14: सच बोलूंगी तो मैंने वड़ा पाव, भेलपुरी, चाटपुरी, गोलगप्पे, महावीर नगर।
9: टेस्ट नहीं किया?
14: अभी बाकी, अभी करेंगे। इधर इधर स्पेशल इधर ही खाने खाते हैं।
9: जो मजा है, जो मस्ती है वो कहीं ना कहीं मुंबई में है और इसीलिए लोग यहाँ पर न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से पहुँच रहे हैं। कैमरामैन आशीष डी के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
4: तो मुंबई से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, अब वो सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, कैसा नजारा अभी फिलहाल मुंबई में देखने को मिल रहा है? कितनी राहत ये मॉनसून मुंबई वासियों के लिए लेकर आया है?
15: देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि भले ही 13 दिन की देरी से मानसून जो है वो मुंबई में आया है लेकिन जिस तरीके से आया है, इतना ज्यादा लोगों को खुश कर दिया है, खुशनुमा माहौल पूरा का पूरा कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से मुंबई इस समय रेड अलर्ट पर है, बावजूद इसके लोग अपने मंजिल की तरफ, अपने काम की तरफ निकल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, मैं इस समय जहां मौजूद हूं, ये मुंबई का घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर का परिसर है और अभी थोड़ी देर पहले यानी कि 5 मिनट पहले ही बारिश रुक गई है। किस तरीके से लोग अपने अपने मंजिलों की तरफ निकल पड़े हैं और सड़कों का जो पानी है वो भी नालों द्वारा बाहर की तरफ चला गया है। ये मुंबई है, भले ही समस्या और परेशानियों का सामना कई बार बारिश के दौरान करना पड़ता है मुंबई करों को, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने घरों में निकलते हैं, अपने घरों से अपने मंजिलों की तरफ निकलते हैं, अपने काम पर जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि वाकई में थोड़े बहुत खतरनाक दृश्य भी मुंबई की कई तस्वीरों में देखे गए हैं। साफतौर से महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ का जो स्कूल है, कॉलेज है, फिर वो चाहे प्राइवेट भी क्यों ना हो, उसे बंद किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शिकायत दी गई है, ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही वो घरों से बाहर निकले और अगर निकलते भी हैं तो खुद का जो ख्याल है वो उन्हें खुद रखना पड़ेगा, जिसमें रेनकोट, छतरी जैसी चीजें शामिल होगी, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें मुंबई में ये भी
4: यानी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है धर्मेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं। धर्मेंद्र, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो वहां पर वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा गया है, कुछ ऑफिस में लागू किया गया है बारिश को देखते हुए, तो क्या मुंबई में भी ऐसे कुछ इंतजाम किया गया है?
15: बिल्कुल, लगभग मुझे ऐसा लगता है जो जानकारी हमारे पास है, जो अपडेट है, उसके हिसाब से 70% जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयियों को कहा है कि वो घर से ही काम करें। लेकिन जिस तरीके से मूसलाधार बारिश लगातार आज आठवां दिन है चल रही है, कई जगहों पर समस्याएं भी आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं उपनगर मुंबई की, तो कई ऐसे इलाके जहां पर बिजली चली जा रही है और घंटों इंतजार करने के बाद बिजली आती है, ऐसे में उनके काम पर भी असर देखने को मिल रहा है।
4: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम तस्वीर दिखाने के लिए। तो वहीं एक दिन के विराम के बाद नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आवा, वगई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है। इसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ चैनल।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: तो जीएनटी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि विदेश दौरों की जगह अगर अपने ही देश की जगहों को प्रमोट आप करेंगे तो हमारे देश का टूरिज्म ही बढ़ेगा। ऐसे में आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं, बस आपको करना इतना है अपना कैमरा आप उठाइए, खूबसूरत जगह पर जाइए, या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह बन चुकी है तो व्लॉग बनाइए और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे जीएनटी पर जरूर दिखाएंगे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं जुड़ते तो कहीं बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
5: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर प्रबानन में प्रधानमंत्री मोदी ने किए दर्शन, विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर प्रबानन मंदिर पहुंचे, 1,000 साल पुराने इस हिंदू धरोहर स्थल पर उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रबानन मंदिर पहुंचने पर बच्चों ने तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। भारत इंडोनेशिया दोस्ती की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। पीएम मोदी ने प्रबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने वास्तुकला और इतिहास की जानकारी भी ली। यूनेस्को विश्व धरोहर प्रबानन मंदिर परिसर में 224 मंदिर मौजूद हैं। ये प्राचीन हिंदू संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने इस मंदिर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। इससे भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है एक कदम। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से झमाझम बारिश हुई, मौसम हुआ सुहाना। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में जलभराव की बनी स्थिति। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की स्टेशन की घोषणा। पलसाना और बावरी ठिकरिया स्टेशनों के बीच में बनेगा नया हाईटेक स्टेशन। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात, गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च। गोरखपुर से 31 जुलाई को शुरू होगी तीर्थयात्रा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने तीर्थयात्रियों को दी ईएमआई भुगतान की सुविधा। बिहार के कटिहार में स्कूल का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी का सादगी भरा अंदाज, बच्चों के साथ बातचीत करते हुए जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील। जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश की, नाकाम, हथियार किए बरामद। इसरो ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, अपने अगले एलवीएम 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल फ्लाइट एक्सपेंस टेस्ट। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया टेस्ट, पहली बार नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल से 22 टन के थ्रस्ट लेवल पर की गई CE20 इंजन की जांच। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM3, ये अपने ऊपरी हिस्से के पावर देने के लिए करता है CE20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा परियोजना विवाद पर 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता, MP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच सुलझा, दशकों पुराना मुद्दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियां का किया अनावरण, इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी।
6: लौटा इमरान हाशमी का जादू, फिल्म आवारापन 2 का पहला गाना वे जुनून रिलीज हुआ।

0: OMG2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म है ओ माई डॉग का टीजर रिलीज हो गया है। 31 जुलाई को सिनेमा घरों में आएगी फिल्म। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण के ट्रेलर रिलीज की तारीख सामने आ गई है। 18 जुलाई को ट्रेलर लॉन्च की योजना है। दिवाली पर रिलीज होगा पहला बार। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंचला कपूर ने रचाई शादी। बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ लिए साथ फेरे। मीरा राजपूत कपूर ने शादी की सालगिरह पर पति शाहिद कपूर के लिए लिखी प्यारी सी विश। मैडम तुसाद म्यूजियम में शाहिद और उनके वैक्स स्टैचू के साथ पुरानी तस्वीर शेयर की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर के दर्शन कर अभिभूत हुए पीएम मोदी, कहा जीर्णोद्धार कराऊंगा और दोबारा आऊंगा।
0: मैदान से पहाड़ तक जमकर बरस रहे मानसूनी बादल, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई।
2: सलमान की एक पोस्ट ने उठाया फिल्म मातृभूमि के सस्पेंस से पर्दा। सलमान ने कैप्शन में लिखा मात्र एक शब्द मातृभूमि।
0: आज सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उनकी बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी की पहली झलक सामने आई।
2: बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर की रिसेप्शन पार्टी में जुटा सितारों का मेला, नए जोड़ों को दुआएं देने पहुंचे मेहमान।
0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं फिल्मी सफर के साथ। और इस सफर में सबसे पहले बात सलमान खान की, जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म SVC 63 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। लेकिन इस बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई उनकी दो तस्वीरें और तस्वीरों के साथ लिखा गया कैप्शन उन्हें कुछ दूसरी वजहों से सुर्खियों में लेकर आया है।
2: दरअसल सलमान ने कैप्शन में लिखा है मातृभूमि, जिससे कि सोशल मीडिया पर कयास का दौर अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। अलग अलग तरीके से लोग कयास लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।

0: 7 जुलाई की शाम सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये दो तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में सलमान खूबसूरत वादियों के बीच चेयर पर बैठे हैं, आसपास धुंध है। उन्होंने रेगेट जीन्स, ब्लैक वेस्ट और काउबॉय हैट पहनी हुई है। इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सलमान खान ने बस एक शब्द लिखा है, मातृभूमि। सलमान का इतना लिखना था कि सोशल मीडिया पर कयासों की बाढ़ आ गई है। लोग अपने अपने तरीके से इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है उसके मुताबिक सलमान ने इस पोस्ट में मातृभूमि के ट्रेलर का हिंट दिया है। माना जा रहा है कि मातृभूमि की रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के साथ ट्रेलर जल्द लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें फिल्म की कहानी और डायलॉग्स की बड़ी झलक देखने को मिल सकेगी। अब मातृभूमि के ट्रेलर रिलीज के कयास और सलमान की इन तस्वीरों में आपसी संबंध है या नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसकी बड़ी वजह है मातृभूमि के रिलीज को लेकर बना हुआ सस्पेंस। मातृभूमि फिल्म का टाइटल बदला गया। पहले ये फिल्म बैटल ऑफ गलवान के नाम से रिलीज होने वाली थी, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद फिल्म का नाम बदलकर मातृभूमि किया गया। इसके बाद फिल्म के कंटेंट में बदलाव किए गए, 40 दिन का रीशूट तक करना पड़ा। मातृभूमि टाइटल के नाम से नए गाने की शूटिंग तक की गई, लेकिन संकट के बादल फिर भी नहीं छटे। 3 जुलाई को खबर आई कि मातृभूमि अब भी सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई है, लेकिन इसके अगले ही दिन सलमान खान फिल्म्स ने इस खबर को निराधार बताया। और साफ किया कि मातृभूमि तो अभी सेंसर बोर्ड को सबमिट ही नहीं की गई है, ऐसे में अटकाए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पोस्ट में लिखा गया था कि इस तरह के सभी दावे गलत हैं, जिनमें कहा गया कि मातृभूमि को CBFC से जुड़ी कोई दिक्कत आई है या इसके सर्टिफिकेशन को रोक दिया गया है। सर्टिफिकेशन के लिए फिल्म अभी CBFC के पास भेजी ही नहीं गई है, इसलिए ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। सलमान खान की ओर से किए गए इस दावे के बाद उम्मीद जगी कि मातृभूमि अगस्त या सितंबर में रिलीज की जा सकती है, जैसे कि पहले खबरें आ रही थी। और अब अपनी तस्वीरों के साथ सलमान खान के इस पोस्ट ने उम्मीदों को और हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन्नी सिडे।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं राजकुमार राव की, जो इन दिनों सौरव गांगुली की बायोपिक पर काम कर रहे हैं, और आज सौरव गांगुली का जन्मदिन भी है।
2: देखिए, उनके जन्मदिन पर उनकी बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी की फर्स्ट झलक भी सामने आ गई है। दादा से राजकुमार राव के इस पहले लुक ने लॉट्स की ऐतिहासिक यादों को ताजा कर दिया है। फर्स्ट लुक के साथ ही मेकर्स ने 14 मई 2027 के रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है।
0: क्रिकेट जगत के दिग्गज सितारे सौरव गांगुली पर बन रही बायोपिक दादा द सौरव गांगुली का ये फर्स्ट लुक है, जिसने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक यादें ताजा कर दी हैं। खास बात यह है कि सौरव गांगुली का जन्मदिन है, और आज ही मेकर्स ने उनकी बायोपिक की पहली झलक रिलीज कर एक तरह से उन्हें बधाई के साथ साथ सम्मान दिया है। दादा द सौरव गांगुली के इस पहले पोस्टर में राजकुमार राव को उसी अंदाज में दिखाया गया है जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नई पहचान बना दी थी। 2002 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर नेटवर्थ सीरीज जीतने के बाद सौरव गांगुली ने बालकनी में अपनी जर्सी लहराकर जीत का जश्न मनाया था। ये तस्वीर आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिनी जाती है। उसी ऐतिहासिक पल को उनकी जिंदगी पर बन रही फिल्म के पहले लुक में दोबारा जीवंत किया गया है। फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार निभा रहे राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दादा सौरव गांगुली। बायोपिक में सौरव गांगुली के क्रिकेट करियर के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व की भी झलक देखने को मिलेगी, जिसके लिए राजकुमार राव ने महीनों की तैयारी की, बाएं हाथ से क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस की। पेशेवर और फुर्तीले क्रिकेटर की तरह दिखने के लिए राजकुमार राव ने अपना काफी वजन घटाया और अपने शरीर को सुडौल बनाया। किरदार को पूरी तरह से बंगाली पृष्ठभूमि में ढालने के लिए राजकुमार ने बंगाली भाषा और उसके खास उच्चारण में लहजे को बारीकी से सीखा है, ताकि उनके कप्तानी वाले संवाद बिल्कुल असली लगे। फिल्म की शूटिंग कोलकाता के ऐतिहासिक इडन गार्डन्स, बेहाला और दुखीराम कोचिंग सेंटर पर की जा रही है, जहां गांगुली ने बचपन में क्रिकेट सीखा था। फिल्म में सौरव और डोना गांगुली की खूबसूरत प्रेम कहानी भी अहम हिस्सा होगी। एक्ट्रेस प्रानिया मणिकंतला डोना गांगुली के किरदार में नजर आएंगी। वहीं युवा अभिनेत्री सृजा भट्टाचार्य डोना के यंग वर्जन का रोल निभाएंगी। फैंस को बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जब सौरव गांगुली की जिंदगी की ये प्रेरणादायक कहानी सिनेमा घरों में दर्शकों के सामने आएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, ये उस कप्तान की कहानी है जिसने भारतीय क्रिकेट का मिजाज बदल दिया। दादा की फर्स्ट लुक के साथ रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, 14 मई 2027 जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
2: तो भारतीय सिनेमा इन दिनों 7 बड़ी फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 3 से लेकर हॉरर कॉमेडी स्त्री 3 तक बड़े पर्दे पर 7 थ्रीक्वल फिल्में मचाने के लिए, धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
1: इस लिस्ट में मौजूद फिल्मों पर फिलहाल काम चल रहा है, तो वहीं कुछ मूवीज की रिलीज डेट का भी ऐलान हो चुका है। लिस्ट में एक ऐसी मूवी भी है जिसके तीसरे पार्ट का फैंस पिछले 4 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए

0: अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी अब ट्रिलॉजी बनाने जा रही है और तीसरे पार्ट का नाम पुष्पा 3 द रैम्पेज रखा गया है। फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब साबित हुई थी, जिसके बाद डायरेक्टर सुकुमार ने कंफर्म किया है कि पुष्पा 3 पर काम शुरू हो चुका है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना एक बार फिर पुष्पा और श्रीवल्ली के रोल में वापसी करेंगे। चर्चा में तो ये भी है कि तीसरे पार्ट में रश्मिका मंदाना के पति विजय देवरकोंडा विलेन के रोल में नजर आ सकते हैं। इसकी रिलीज 2028 में होने की संभावना बताई जा रही है। सनी देओल को तारा सिंह बनकर बड़े पर्दे पर धमाल बचाते हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन कदर का सफर अभी थमा रही है। इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस बीच डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही में पक्का कर दिया है कि गदर 3 पर काम शुरू हो चुका है। सनी देओल एक बार फिर अपने आइकॉनिक रोल में नजर आएंगे। वहीं अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की वापसी की भी पूरी उम्मीद है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव सुपरहिट हॉरर कॉमेडी सीरीज की तीसरी फिल्म स्त्री 3 में वापसी के लिए तैयार है। इस फ्रेंचाइजी की पहली दो इंस्टॉलमेंट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही है। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए भी फैंस एक्साइटेड है। मैडॉक फिल्म्स के हिट हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की तीसरी फिल्म स्त्री 3 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म में श्रद्धा कपूर और राजकुमार का लीड रोल होगा। अक्षय कुमार विलेन का रोल निभाते नजर आएंगे। इसी साल रिपब्लिक डे पर मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 ने दर्शकों का दिल जीत लिया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले पे तहलका मचा दिया था। फिल्म के गाने भी बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। मेकर्स पहले ही इसके अगले पार्ट का खुलासा कर चुके हैं। प्रोड्यूसर भूषण कुमार और जेपी दत्ता फिल्म्स की निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 को हरी झंडी दे दी है। फिल्म में लीड रोल में सनी देओल का जलवा बरकरार रहेगा और उनके साथ वरुण धवन भी मोर्चा संभालते नजर आएंगे।
1: दुनिया में हर किसी का सच अलग है।
0: अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने कंफर्म कर दिया है कि फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे है और ये इसी साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। अजय देवगन, तब्बू और श्रिया सरन अपने पुराने किरदारों में लौटेंगे, जबकि इस बार जयदीप अहलावत और प्रकाश राज जैसे सितारे नए किरदार में दिखाई देंगे। सिल्वर स्क्रीन पर रॉकी भाई यानी यश की वापसी पक्की है। बस बड़ा सवाल यह है कि कब। होमले फिल्म्स ने यश स्टारर KGF चैप्टर 3 पर मुहर लगाते हुए हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जल्द ही नया चैप्टर लाने का वादा है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने बताया कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। वहीं यश का ये भी कहना है कि सही समय आने पर काम शुरू होगा। बस तो अक्षय कुमार की हिट फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर भी काफी ज्यादा बना हुआ है, लेकिन इस पर ग्रहण का साया हटने का नाम नहीं ले रहा है। कानूनी विवादों और कई दिक्कतों के बाद साफ हुआ कि ये फिल्म साल 2027 में रिलीज हो सकती है। राजू श्याम और बाबू राव के रोल में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की आइकॉनिक तिकड़ी ही इस बार भी फैंस को गुदगुदाने के लिए तैयार है, लेकिन फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी इसके बारे में अभी साफ जानकारी नहीं है और अब प्रियदर्शन ने भी इसे डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: ओ माय गॉड 2 जैसे सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म का डायरेक्शन करने के बाद अमित राय एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनकी अगली फिल्म ओ माय डॉग का ऑफिशियल टीजर एक दिन पहले ही रिलीज किया गया है।
3: और देखिए, फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी सारा बज आप देख पाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी की बात की जा रही है, इसका विषय और इसकी स्टार कास्ट ही इसकी यूएसपी बताई जा रही है, जिसमें पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज कलाकार के साथ एक दो नहीं बल्कि 250 से ज्यादा कुत्ते नजर आने वाले हैं। फिल्म इसी महीने की 31 तारीख को रिलीज होने के लिए तैयार है।
4: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।

0: फिर क्या हुआ?
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
2: चले, सोशल मीडिया पर छाई हुई है एक ग्रैंड वेडिंग, वो है बॉलीवुड की वेडिंग। कपूर खानदान की बेटी अंशुला के मैरिज रिसेप्शन की एक झलक आपको दिखाते हैं।

0: चले अब आपको लेकर चलते हैं माया नगरी मुंबई की तरफ, जहां इन दिनों कपूर परिवार की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंचला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं।
1: शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कपूर परिवार के करीबी रिश्तेदारों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हुए। इस खास मौके पर अंचला का लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। नई दुल्हन के रूप में अंचला बेहद खूबसूरत नजर आई।
0: वहीं रिसेप्शन की शाम में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। दिग्गज अभिनेत्री रेखा से लेकर एक्टर बॉबी देओल तक कई सितारे इस जश्न का हिस्सा बने। सितारों की मौजूदगी ने समारोह की चमक और बढ़ा दी। कपूर परिवार की इस खुशी में फिल्मी दुनिया के 200 करीबियों ने शिरकत की और नवविवाहित जोड़े को नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। अंचला कपूर का अलग अंदाज और रिसेप्शन की तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हैं।
1: तो अंचला ने अपने रिसेप्शन लुक को पारंपरिक दुल्हन की आम पहचान से थोड़ा सा अलग रखा है। उनके माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र नजर नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सादगी भरा अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने अपने

0: तो अब देख लिया आपने, आसा की तरफ आपको लिए चलते हैं। आसा के सफर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाबा बर्फानी के दरबार में आसा का सैलाब उमड़ा है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब तक 1,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।
1: प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या इस बार अमरनाथ यात्रा को बेहद खास बना रही है। भक्तों में अमरनाथ के दर्शन का उत्साह और लगातार बाबा बर्फानी के जयकारे लग रहे हैं। तो वहीं ओडिशा के पुरी की तरह बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारी अंतिम चरण में है। रथ निर्माण का काम 70% अब पूरा हो चुका है।
0: और देखिए, फिलहाल रथ की इस सजावट के लिए पारंपरिक शिल्पकारी और पेंटिंग का काम चल रहा है। बारीपदा का रथ उत्सव पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है।

0: रथ लगभग तैयार है, पहिए अपनी जगह लग चुके हैं, लकड़ी का भव्य ढांचा आकार ले चुका है, रंग बिरंगे वस्त्र और सजावट अंतिम रूप ले रही है। अब केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तस्वीरें ओडिशा के बारीपदा की हैं, जहां पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है।
1: हाँ, तो खुशी तो हो रही है कि बहुत जल्दी रथ यात्रा शुरू होने वाला है। तो बारिश की वजह से थोड़ा हमारा काम थोड़ा लेट हो गया है, तो भी हमारा जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं सब, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी काम हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 16 तारीख का हाँ सब कंप्लीट हो जाएगा, 16 तारीख का सब कंप्लीट हो जाएगा।
2: और आगे चल के क्या होने वाला है, क्या क्या काम बाकी है
1: आगे? और फिर प्रभा होने वाला है, सारथी होने वाला है, जो रथ का जो अश्व है वो पेंटिंग होगा, रथ का जो पहिया वो थोड़ा सा बाकी है।
0: दिव्य रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू हुआ था, जो अब लगभग 70% बनकर तैयार है। फिलहाल 12 कारीगरों की एक टीम रथों पर पारंपरिक चित्रों केरने में जुटी है, उसे रंगों से संवारने में जुटी है, जबकि 50 से ज्यादा कारीगर रथों के निर्माण में लगे हैं। इनका मानना है कि भारी बारिश और अन्य चुनौतियों के कारण काम में देरी हुई है, लेकिन 16 जुलाई से पहले सारे काम खत्म कर लिए जाएंगे।
3: ये हम कलर का काम करते हैं और ये सब पेंटिंग वगैरह ट्रेडिशनल वे में ही इन सबको होता है। ये सब पीछे तो हो गया है बहुत सारा, अब मुंह फिनिशिंग हो रहा है, सब काम चल रहा है। आगे बारिश की वजह से रथ का काम थोड़ा पेंडिंग पड़ रहा है, जब से ही थोड़ा क्लियर होगा बाहर रथ का काम भी शुरू हो जाएगा। वो सब लड़के लगे हुए हैं, जितने लोग हैं हमारे लगभग 12 आदमी लगे हुए हैं, दिन रात करके काम हो रहा है, इमरजेंसी हो गया है थोड़ा काम को लेके, अभी जोर शोर से काम हो रहा है।
0: बारीपदा की रथ यात्रा का अपना महत्व है, यहाँ ये आयोजन पूरी रथ यात्रा से एक दिन बाद शुरू होता है और यहाँ रथ की
3: थोड़ा काम को लेके अभी जोर शोर से काम हो रहा है।
0: बारीपदा की रथ यात्रा का अपना महत्व है, यहाँ ये आयोजन पूरी रथ यात्रा से एक दिन बाद शुरू होता है और यहाँ रथ खींचने की परंपरा 3 दिनों तक चलती है। इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता ये है कि देवी सुभद्रा के रथ देवदलन को केवल महिलाओं द्वारा ही खींचा जाता है। बिना मुखौटे वाला मयूर भंज छऊ नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होती हैं। ओडिशा का बारीपदा इन दिनों अलग ही उत्साह में है, एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है। रंग भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध आस्था का, सदियों पुरानी परंपरा का, उत्साह उस दिव्य रथ यात्रा का जब भगवान गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों के बीच पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां दुर्गा पूजा का रंग अभी से चढ़ने लगा है। हालांकि दुर्गा पूजा के शुभारंभ में अभी वक्त बचा है, लेकिन शहर की मशहूर चोर बागान दुर्गोत्सव समिति ने दुर्गा पूजा का एक भव्य म्यूरल पेश किया।

0: दुर्गा पूजा भले अभी दूर है, लेकिन कोलकाता पर इस त्योहार का रंग अभी से चढ़ने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी शहर माँ के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है और इसकी पहली खूबसूरत झलक चोर बागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के भव्य म्यूरल में देखने को मिली है। दुर्गा पूजा भले इस साल अक्टूबर में है, लेकिन कोलकाता इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर देता है। कहीं पंडालों के डिजाइन तैयार होने लगते हैं तो कहीं मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ थीम को अंतिम रूप देने लग जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चोर बागान दुर्गोत्सव समिति ने इस साल के उत्सव का म्यूरल सबके सामने रख दिया है।
1: ये बनाने में, ये चित्र बनाने में टोटल हम लोगों को 4 दिन समय लगा है। आज से हम लोगों के दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है, आज जी खूंटी पूजा के माध्यम से। और साल का जो हमारा थीम भी है वो है अकाल बोधन। हम जानते हैं कि जिस वक्त हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, असल में वो भगवान श्री राम जी ने ही वो अकाल बोधन किया था। अब उस समय के अकाल बोधन को इस समय से मिलाने का एक चैलेंज है।
0: दरअसल म्यूरल किसी बड़ी दीवार पर बनाई गई ऐसी विशाल चित्रकला जो केवल देखने के लिए नहीं होती बल्कि एक संदेश भी देती है। इस म्यूरल में माँ दुर्गा के स्वागत की भावना, बंगाल की लोक संस्कृति और उत्सव की ऊर्जा को खूबसूरती से उकेरा गया है। चोर बागान दुर्गोत्सव समिति हर साल अपने अलग थीम और भव्य पंडाल के लिए जानी जाती है। इस बार भी म्यूरल के जरिए उसने जता दिया है कि उत्सव की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे महालया और फिर षष्ठी करीब आएगी, वैसे वैसे कोलकाता की गलियां दुर्गा पूजा के उत्सव में रंगती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: यार रुकिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका इमेज जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए इंडोनेशिया में सनातन की गूंज।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं जुड़ते तो कहीं बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर प्रबानन में प्रधानमंत्री मोदी ने किए दर्शन, विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत।

0: बारिश और खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर, अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।
1: दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह।
0: मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी।
1: महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़ते हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस के साथ की बातचीत, हर संभव मदद का दिया भरोसा।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: और चलिए प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपसे थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धरोहर स्थलों में शामिल प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। करीब 1000 साल पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर में पीएम मोदी का भी भव्य स्वागत हुआ।
0: प्रम्बानन पहुंचने के दौरान सड़क की दोनों ओर मौजूद बच्चों ने हाथों में भारत के तिरंगे लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बच्चों के उत्साह और भारत इंडोनेशिया दोस्ती की झलक ने पूरे माहौल को खास बना दिया है। मंदिर परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रम्बानन मंदिर का मुआयना किया, मंदिर की वास्तुकला और इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की।
1: प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया की प्राचीन हिंदू संस्कृति और विरासत का शानदार प्रतीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस मंदिर परिसर में कुल 224 मंदिर हैं। इनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित प्रमुख मंदिर शामिल हैं। परिसर का सबसे ऊंचा और प्रमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई करीब 47 मीटर है। मंदिर की भव्य नक्काशी और स्थापत्य कला आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इस मंदिर का निर्माण ज्वालामुखी पत्थरों से किया गया है। इसकी दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं और देवी देवताओं की कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक स्थल पर इस मंदिर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया। भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इसे एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मंदिर का जीर्णोद्वार आज कर दिया गया है। मंदिर, आपको बता दें, पुरानी नक्काशी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक स्थल पर मंदिर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो संबंध है उनको भी मजबूती आज प्रदान की गई है। तो इस मंदिर का निर्माण, आपको बता दें, ज्वालामुखी पत्थरों के द्वारा किया गया है। दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं और देवी देवताओं की कलाकृतियां इन पर आपको नजर आएंगी।
0: ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रम्बानन मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने पूजा अर्चना की और काफी बड़ा इतिहास इस मंदिर के पीछे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक स्थल पर प्रम्बानन मंदिर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ भी किया। भारत इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है। तो इंडोनेशिया के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज इस दौरे का तीसरा दिन है जब वो प्रम्बानन मंदिर पहुंचे और उनके संबोधन में भी प्रम्बानन मंदिर का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया।

0: और चलिए अब बात कर लेते हैं रक्षा क्षेत्र में मेड इन इंडिया धाकड़ मिसाइल को लेकर की गई उस अहम डील की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर हुई है। और इस डील ने ग्लोबल रक्षा क्षेत्र में भारत की धमक और भी ज्यादा मजबूत कर ली है।
1: और जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल खरीदने जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं क्यों खास है भारत की मिसाइल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के वर्तमान हालात को देखते हुए ये डील।

0: रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान हर पल एक नई ऊंचाई को छू रहा है। देश में ही ऐसे ऐसे हथियार गढ़े जा रहे हैं जो ताकत और तकनीक के मामले में बेहतरीन है। आज हिंदुस्तान के हथियार ग्लोबल हो रहे हैं। इंडियन वेपन की ताकत को दुनिया महसूस कर रही है और इसी का नतीजा है कि भारत डिफेंस सेक्टर में वेपन एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है। इसकी सबसे ताजा तस्वीर आई है इंडोनेशिया से।
1: एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन अग्रीमेंट बिटवीन भारत डायनामिक्स एंड रिपब्लिक कॉर्प।
0: दुनिया की सबसे खतरनाक और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अतिरिक्त बैटरियां खरीदने के लिए इंडोनेशिया ने फाइनल डील पर मुहर लगा दी है। पहले से ही भारत के ब्रह्मोस का खरीदार इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में इस अचूक मिसाइल की ताकत को देख चुका है। भारत ने इसी मिसाइल के हमले से पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। मुरीद के में लश्कर और बहावलपुर में जैश के ठिकानों को ब्रह्मोस ने धूल में मिला दिया था। अब मैक 3 की विनाशकारी गति से उड़ने वाली ब्रह्मोस जब इंडोनेशिया के तटीय इलाकों में तैनात होगी तो साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करने से पहले 100 बार सोचेगा।
2: देखिए, ब्रह्मोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस समय विश्व में रशिया और इंडिया के अलावा किसी देश के पास नहीं है और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि ये शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है और ग्राउंड से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो हमारे इंडो पैसिफिक रीजन के अगर हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका इंडोनेशिया और भारत दोनों के पास होना एक तरह का एक जो मिलके हम जो है उस खतरे का सामना कर सकते हैं उसके लिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
0: दरअसल ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा होती है। हर मोर्चे पर भी ब्रह्मोस की तैनाती संभव है। इसे जमीन, समंदर, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ये मूविंग यानी चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी स्ट्राइक क्षमता इतनी कमाल है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को तबाह कर सकती है। दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। ब्रह्मोस में दूसरे स्टेज का रैमजेट इंजन लगा है जो इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है और फ्यूल की खपत को कम करता है।

0: ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका अचूक निशाना है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर यह मिसाइल सटीक वार करते हुए 1 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है, यानी इसकी अचूक मारक क्षमता के आगे दुश्मन के किसी भी टारगेट का बचना नामुमकिन है। अचूक मारक क्षमता के साथ साथ ब्रह्मोस की रफ्तार इसकी एक और बड़ी ताकत है।
1: क्या इसकी कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि 300 से ज्यादा, अब तो अभी तो इसका दूसरा वर्षन जो है वो 450 किलोमीटर तक भी जाता है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो शिप्स को बिल्कुल खत्म कर सकता है। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक है, कि कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सैटेलाइट से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, रडार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत लो फ्लाइंग है। अगर हम समुद्र से इसके बोलते हैं 5 मीटर की ऊंचाई पर भी समुद्र के ऊपर फ्लाई कर सकता है।

0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इसी दौरान ये इस डील के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडोनेशिया से यह समझौता गवाह है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्टर बन चुका है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए फीफा विश्व कप की बात कर लेते हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने ऐसा कमाल किया जिसे फुटबॉल फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। एक समय टीम जीरो के मुकाबले दो गोल से पिछड़ रही थी और टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी थी, लेकिन आखिरी 14वें मिनट में मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने जबरदस्त वापसी करते हुए मिस्र को 3-2 से हरा दिया।

0: महज 13 मिनट में मिस्र के खिलाफ 3 गोल दाग कर जैसे ही अर्जेंटीना ने मैच जीता, मानो फैंस की जान में जान आ गई। वरना तो एक बार लगा था कि अर्जेंटीना के लिए सब खत्म होने वाला है। टीम 2 गोल से पिछड़ चुकी थी, कप्तान मैसी पेनल्टी चूक गए थे और लगने लगा था कि अर्जेंटीना का खिताब बचाने का सपना खत्म होने वाला है। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना ने यादगार वापसी की और मैच अपने नाम कर लिया, जिसके बाद तो अर्जेंटीना के फैंस जश्न में डूब गए।
1: सच कहूँ तो मैं लगभग मर ही गया था। मुझे लगा कि मेरी जान निकलने वाली है, मैं तो रोने ही वाला था। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे राख से दोबारा जिंदा होकर लौट आया हूँ। इसके बाद जो खुशी मिली वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।
0: मैदान में जितनी मुश्किल से अर्जेंटीना को मिस्र के खिलाफ ये जीत हासिल हुई, इस जीत का जश्न मैदान से बाहर उतना ही जानदार तरीके से मना। मैच जीतते ही अर्जेंटीना के फैंस ने एक दूसरे को गले लगा लिया, लोग झूमने लगे। यही नहीं, तमाम फैंस तो इस जीत के बाद भावुक भी नजर आए।
1: मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नीचे गिर गया था। मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के खिलाफ पिछले विश्व कप फाइनल के बाद मैंने इतनी तकलीफ झेली होगी। मुकाबला बेहद मुश्किल था, लेकिन विश्व कप की ट्रॉफी अर्जेंटीना की है और हम इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी ट्रॉफी जीतनी है उसे पूरे 95 मिनट तक हमसे लड़ना होगा। टीम का शुक्रिया, सभी खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया।
0: अर्जेंटीना के फैंस इस नामुमकिन से लग रही जीत पर भले झूम रहे हों, लेकिन एक सवाल टीम के सामने अभी भी चुनौती बनकर खड़ा है। सवाल ये कि क्या पूरी टीम इस टूर्नामेंट में एक या दो खिलाड़ियों पर ही निर्भर है। फिलहाल तो टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है और अभी मौका इस जीत पर जमकर झूमने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: क्या आने वाले वक्त में फैक्ट्री, गोदाम और दफ्तरों में इंसानों की जगह ह्यूमनॉइड रोबोट काम करते हुए दिखाई देंगे? चीन की एक कंपनी ने भविष्य की इसी तस्वीर की एक झलक दिखाई है। रोबोट सिर्फ डांस ही नहीं करते बल्कि कलाबाजी दिखाते हैं, सामान उठाते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम भी संभालते हैं।
3: ये है चीन की रोबोटिक्स कंपनी एजीबोट के ह्यूमनॉइड रोबोट, जो अब सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं बल्कि असली काम भी कर रहे हैं। शंघाई में कंपनी के रोबोट्स ने डांस और समरसॉल्ट जैसी कलाबाजियों से सबको हैरान किया। वहीं फैक्ट्री में सामान छांटने, लैंडिंग और अनलोडिंग जैसे काम भी बड़ी आसानी से करते दिखाई दिए। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट शानदार मोशन कंट्रोल और स्मार्ट इंटरैक्शन के जरिए मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में इंसानों का काम आसान बना सकते हैं।
4: एजीबोट
3: का मानना है कि जिन देशों में श्रमिकों की कमी है वहाँ ये ह्यूमनॉइड रोबोट उद्योगों के लिए बड़ा सहारा बन सकते हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जन्मदिन तो आपने इंसानों के बहुत देखे होंगे, लेकिन जरा मिलिए इस वीआईपी बर्थडे बॉय से। इसके लिए कद्दू की शाही बग्गी बनी, फलों और सब्जियों का स्पेशल केक तैयार हुआ और गर्मी से बचाने के लिए मिस्ट स्प्रे का भी इंतजाम किया गया। दरअसल चीन के चोंगकिंग जू में जैन पांडा मांग कानकान का तीसरा जन्मदिन कुछ इस तरीके से मनाया गया है।
0: यह है चीन के चोंगकिंग जू का सबसे खास मेहमान जायंट पांडा मांग कानकान। तीसरे जन्मदिन पर इसके लिए किसी शाही दावत से कम इंतजाम नहीं किए गए। देखभाल करने वालों ने फलों और सब्जियों से खूबसूरत केक तैयार किया, जिसमें कद्दू की बग्घी और खरबूजे से बनी फूलों की टोकरी सबका ध्यान खींच रही थी। जैसे ही बर्थडे ट्रीट सामने आई, मांग कानकान भी पूरे मजे से अपने पसंदीदा फल और सब्जियों का स्वाद लेने लगा। गर्मी से राहत देने के लिए बर्फ और मिस्ट स्प्रे का इंतजाम भी किया गया, ताकि बर्थडे बॉय पूरे आराम से अपना दिन एंजॉय कर सके। मांग कानकान का जन्मदिन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जू पहुंचे। किसी ने तस्वीरें खींची तो किसी ने वीडियो बनाकर इस खास पल को कैमरे में कैद किया। कद्दू की गाड़ी, फलों का केक और ढेर सारा प्यार, इन सब ने इस नन्हे पांडा का तीसरा जन्मदिन यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: चलिए लंच टाइम में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं जुड़ते तो कहीं बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: No.
4: Oh no.
5: Welcome to Get Real.
3: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
4: Oh my God.
3: It's got to be deliciously desperate.
4: Why do these girls forgive him?
6: Well, she has a soft spot for troubled men.
3: Boo bloody hoo.
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
4: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
7: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
0: तो GNT लगातार आपसे अपील कर रहा है कि विदेश दौरों की जगह अगर आप अपने ही देश के जगहों को प्रमोट करेंगे तो हमारे देश का टूरिज्म भी बढ़ेगा। ऐसे ही आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने और फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए GNT।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर प्रम्बानन में प्रधानमंत्री मोदी ने किए दर्शन, विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत।

0: बारिश और खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर, अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़ते हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर प्रम्बानन मंदिर पहुंचे, 1000 साल पुराने इस हिंदू धरोहर स्थल पर उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रम्बानन मंदिर पहुंचने पर बच्चों ने तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, भारत इंडोनेशिया दोस्ती की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तुकला और इतिहास की जानकारी ली। यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर परिसर में 224 मंदिर मौजूद हैं, ये प्राचीन हिंदू संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने प्रम्बानन मंदिर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की, इसे भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है कदम। अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, इस बार यात्रियों की संख्या में देखने को मिल रही है अच्छी बढ़ोतरी। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शिव भक्त, श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह। अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम, पहली बार बेस कैंप पर बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर बनाए गए। अमरनाथ यात्रा में छोटे बच्चे वाले परिवारों को मिली बड़ी राहत, बालटाल और नूनवान बेस कैंप में शुरू किए गए चाइल्ड केयर सेंटर। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर खास जोर, भक्तों की सेवा में समर्पित कानपुर भंडारा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में आई गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, कई इलाकों में जलभराव की बनी स्थिति। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मॉनसून की झमाझम बारिश से अलवर के गांव की गलियां पानी पानी, बच्चों ने बहते पानी में खेलकर जमकर मस्ती की। दगड़गा गांव में बारिश ने जलभराव जैसी स्थिति बनाई, लेकिन बच्चों के लिए बारिश बनी खुशियों की वजह। पानी की बूंदों के बीच बच्चों ने मनाया मॉनसून का जश्न, गांव में देखी बारिश की खूबसूरत तस्वीर। मुंबई के मरीन ड्राइव में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सैलानियों की बड़ी संख्या। भिवाड़ी में बारिश के बाद जलभराव के बीच स्पाइडरमैन बना एक शख्स ट्रैफिक संभालता नजर आया, अनोखे अंदाज में लोगों की मदद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। पंजाब के कई इलाकों में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी, मौसम लगातार बना हुआ है बारिश वाला। हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने के अनुमान, पहाड़ों पर अचानक बाढ़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की सलाह। हिमाचल के शिमला में बादल छाए रहे, अगले दो दिन मौसम खराब रहने के अनुमान। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में बारिश का दौर जारी, तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जरूरी सावधानी बरतने की सलाह। गुजरात और मध्य भारत में लगातार बारिश का दौर जारी, कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उज्जैन में भारी बारिश से जलभराव, कई मंदिरों में पानी घुसा, श्रद्धालुओं की आवाजाही हुई प्रभावित। जलभराव से जनजीवन प्रभावित, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, राहत कार्यों में जुटी टीमें। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया, तेज बारिश के बाद पुलिया पर पानी के बहाव से प्रशासन ने बैरिगेट लगाए। सुरक्षा के लिए पुलिया के दोनों ओर कर्मचारियों की तैनाती की गई, पानी का तेज बहाव देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। मथुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। मुंबई की पवई झील के पास रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ा। महाराष्ट्र के सतारा में हुई मूसलाधार बारिश, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के पन्ना में भारी बारिश से अस्पताल में भरा पानी, राहत बचाव के लिए टीम अलर्ट। गुजरात के वापी में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, घरों और दुकानों में भी घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश का दौर जारी, स्कूल परिसर में पानी भरा। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके में रेस्क्यू का काम जारी, लापता लोगों की तलाश में जुटी टीम। पुलिस के साथ फायर रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीमों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया बचाव अभियान, कई लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी में फंसी बस, रेस्क्यू टीम ने 50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, शिवनाथ नदी का जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के पास गुरुग्राम में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव। खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन की घोषणा की, पलसाना और बावरी ठिकरिया स्टेशन के बीच बनेगा नया हाईटेक स्टेशन। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात, गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च। गोरखपुर से 31 जुलाई को शुरू होगी तीर्थयात्रा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने तीर्थयात्रियों को दी ईएमआई भुगतान की सुविधा। बिहार के कटिहार में स्कूल का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी का साथी भरा अंदाज देखने को मिला, बच्चों के साथ बातचीत करते हुए जमीन पर बैठकर खाया मिड डे मील। जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, हथियार की बरामद। इसरो ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, अपने अगले LVM3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल फ्लाइट एक्सेप्टेंस टेस्ट। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया ये टेस्ट, पहली बार नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल से 22 टन के थ्रस्ट लेवल पर की गई CE20 इंजन की जांच। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM3, ये अपने ऊपरी हिस्से को पावर देने के लिए करता है CE20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा परियोजना विवाद पर 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता, MP गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र के बीच सुलझा दशकों पुराना मुद्दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफी का किया अनावरण, इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय टीम की नई किट लॉन्च, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हैं खेल। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई, लिखा भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देश का नाम बढ़ाएंगे। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान में शुमार महेंद्र सिंह धोनी ने मनाया 45वां जन्मदिन। रांची में धोनी के फैंस ने उनके फार्म हाउस के बाहर केक काटकर जश्न मनाया। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया गया। धोनी के लाखों फैंस ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को शुभकामनाएं दी। धोनी के बर्थडे पर तेलुगु फैंस ने एनटीआर जिले में लगाया 77 फीट ऊंचा कटआउट, अपने चहेते दिग्गज खिलाड़ी को शुभकामनाएं दी। स्पेन के पंपलोना में मशहूर बुल रन की शुरुआत हो गई, पटाखे के धमाके के साथ तेजी से सड़कों पर दौड़े बुल। सैकड़ों लोग बुल के आगे आगे दौड़ते नजर आए, पंपलोना की गलियों में रोमांच का माहौल दिखा। दौड़ के दौरान कई धावक सड़क पर गिरे, बुल उनके बेहद करीब से तेज रफ्तार में गुजरे। बुल से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते रहे, लोगों ने इस रोमांचक दौड़ का उठा लुत्फ। हर साल होने वाला ये बुल रन दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। रोमांच से भरे इस आयोजन में सुरक्षा के बीच दौड़ जारी है।

0: स्पेन में पड़ रही है भीषण गर्मी, सिविल शहर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान, लोग गर्मी से राहत के लिए परेशान। हीटवेव से बेहाल स्पेन, मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी की लहर गुरुवार तक जारी रह सकती है, कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। सिविल एयरपोर्ट पर 41 डिग्री तापमान, गर्मी से परेशान दिखे यात्री। सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल, गर्मी से बचाव के उपाय करते दिखे लोग। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, स्पेन में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। माउंट एटना में दिखा अनोखा नजारा, ड्रोन वीडियो में लाल गर्म लावा क्रेटर के अंदर गिरता दिखा। सिसिली के ज्वालामुखी में बड़ी हलचल, इटली के एटना में राख और लावा गतिविधि के बाद कम हुआ कंपन। ड्रोन वीडियो में लगा कि लावा नॉर्थ ईस्ट क्रेटर की गहराई में वापस जा रहा है, यह घटना बेहद दुर्लभ बताई जा रही है। एटना पर वैज्ञानिकों की नजर, INGV के अनुसार ज्वालामुखी गतिविधि में कमी आई है, फिर भी ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी की सलाह दी गई। माउंट एटना की राख से हवाई यातायात और खेती हो सकती है प्रभावित, आबादी वाले क्षेत्रों पर खतरा कम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं जुड़ते तो कहीं बिखरते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अब बात फुटबॉल की, फुटबॉल वर्ल्ड कप का पेनिनी स्टिकर एल्बम करोड़ों फैंस की बचपन की यादों का हिस्सा रहा है, लेकिन चिली के एक फुटबॉल दीवाने ने शौक को ऐसा रंग दिया कि उसकी नई कार ही चलती फिरती वर्ल्ड कप एल्बम बन गई। आइए दिखाते हैं जुनून, यादों और फुटबॉल प्रेम की अनोखी कहानी।
2: आम कार नहीं बल्कि फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ की चलती फिरती याद है। चिली के कंटेंट क्रिएटर एरियल ऑसेस ने अपनी नई माजदा 3 को पेनिनी वर्ल्ड कप स्टिकर से पूरी तरह ढक दिया। मेसी से लेकर दुनिया भर के सितारे अब उनकी कार की बॉडी पर नजर आते हैं। इस अनोखी पहल के लिए एरियल शहर शहर घूमे, लोगों से मिले और उन्हें अपनी कार पर स्टिकर चिपकाने का मौका दिया।
3: Que nunca tuvo la oportunidad de primero tener un álbum y menos de llenarlo, porque económicamente mi familia no estaba bien, no tenía las lucas para poder comprarme.
2: बचपन का अधूरा सपना बड़ा होकर इस अंदाज में पूरा होगा, शायद खुद एरियल ने भी नहीं सोचा था। नई कार खरीदने के सिर्फ एक हफ्ते बाद उन्होंने उस पर स्टिकर चिपकाने शुरू कर दिए। पहले अपने 373 डुप्लीकेट स्टिकर्स लगाए, फिर लोगों को इस मिशन का हिस्सा बनाया। तालका से लेकर कॉन्सेप्शन और पेंको तक जहां जहां गए, लोग कार के साथ तस्वीरें लेने और अपना स्टिकर चिपकाने उमड़ पड़े।
3: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no. Porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas. O sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas.
2: अब एरियल की कार पूरी तरह स्टिकर से ढक चुकी है और सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा में है। एरियल का दावा है कि लैटिन अमेरिका में शायद ये अपनी तरह की पहली कार है। मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आखिरी वर्ल्ड कप की यादों को समेटे ये कार अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि फुटबॉल के जुनून और बचपन के सपनों को सलाम करती चलती फिरती कहानी बन चुकी है। रिपोर्ट कॉर्निश टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर प्रम्बानन में प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किए। विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत।

0: बारिश और खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर, अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। दिल्ली एनसीआर में रात भर बरसे बादल, अगले 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट, गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज भी तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सावधानी बरतने की सलाह। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़ते हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस से की बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल चुकी।

घर लौटेगी नयनिका, नयनिका पर लगेंगे इल्जाम। टूटेगा वसुधा का सपना, शुरू होगा नया ड्रामा। बिगड़ेगी विक्रांत की तबीयत, मन्नत और मान्यता होंगी परेशान।

0: वसुधा, वैसे आप भी ना अपनी कहानी वाले वॉलेट को संभाल के रखें, क्योंकि आपकी कहानी में तो होने वाली है ट्विस्ट की बौछार। अरे सच में, अब देखिए ना, आपकी कहानी का लेखक बिल्कुल आपको भी नहीं लेने देता है चैन की सांस। अब एक ट्विस्ट खत्म होता है तो दूसरा रहता है तैयार, वो भी खत्म होता है तो एक नई सिचुएशन आ जाती है, वो भी खत्म हो जाती है तो टूट जाती है आपके सर पर एक नई परेशानी। तो किस हाल में है आज हमारी वसुधा, कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी, चलिए पता कर आते हैं। लेकर चलते हैं आप सबको वसुधा के सेट पर।
1: देव के सरप्राइज पर वसुधा को लगा झटका। वसुधा का सपना, कामयाब हुई चंद्रिका। जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज वसुधा बहुत खुश है, क्योंकि आज उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन है। ऐसे में वो देव को सरप्राइज देना चाहती है। तभी तो देखिए कैसे अपने पूरे परिवार के साथ वो देव की आंखों में पट्टी बांधकर उसे अपनी फैक्ट्री की ओर ले जा रही है। वसुधा अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के पास पहुंचती तो है, लेकिन तभी अचानक वसुधा और दिव्या दोनों को ही लगता है जोरदार झटका, क्योंकि वहां पर उनकी फैक्ट्री को लग गई है नजर।
2: यही है कि बहुत एक्साइटमेंट में पूरी फैमिली आई है आज वसुधा के नए फैक्ट्री के पूजा के लिए, पर देखते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है, बुलडोजर सब कुछ तोड़ रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्री चूज वसुधा और दिव्या ने मिलकर किया था। देव को पता ही नहीं था कौन सी जगह है, हम लोगों को भी नहीं पता था, तो आज उसने इसलिए सरप्राइज देने के लिए देव को आंख वाक बंद करके आई थी वो।
3: काफ़ी एक्साइटमेंट था, काफ़ी बिल्डअप था कि वसु की फैक्ट्री जिसको हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे वो फाइनली एक प्रॉपर्टी मिलती है, जहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, जहाँ पर अचार के साथ साथ और भी तरह तरह के अचार हम बना सकते थे। लेकिन पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया है, ये नहीं पता है किसने चलाया है, क्यों चलाया है, तो काफ़ी सैड है। एक हैप्पी मोमेंट से सैड मोमेंट बन गया है।
4: आज अपनी फैमिली को लेकर आ रहे थे एक बार दिखाने के लिए, और होता है छोटी सी पूजा कर लेते हैं शुरू करने के लिए, तो जब वो ला ही रहे हैं और बड़ा एक्साइटमेंट में बता रहे हैं कि ये ऐसी जगह है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, और सडनली वो आके देखते हैं कि अरे ये फैक्ट्री नहीं है। एक शॉक लुक आता है और गायब हो जाता है कि अरे ये तो फैक्ट्री के अंदर बुलडोजर चल रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को नहीं पता, बट जो एक सपना था वो आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई देता है। तो इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट।
1: अपनी आंखों के सामने फैक्ट्री को बुलडोजर से टूटता देख सभी लोग हैरान हो रहे हैं। ऐसे में जिसने फैक्ट्री बेची है वो भी परेशान है, वो तो अधिकारियों से सच जानने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच देव भी सच जानना चाहता है।
5: बुलडोजर कैसे चला सकते हैं, आपके पास कोई नोटिस है?
6: योर नोटिस पीरियड। इस तरह से डिमोलिशन का कारण क्या है? ये फैक्ट्री इलीगल कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। देखिए हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, अब जाओ तुम्हारे सीनियर से बात करो, पर मुझे मेरा काम करने दो।
5: कहीं

0: सीन है। बताइए,
1: वही अगर कॉज कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन तो मांगेगा देव, पूरी फैमिली मांगेगी, और जब पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, कैसा क्यों किया है मासा ने, तो उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। पर अगर मासा ने कोई गलत इंटेंशन से किया, जो ऐसा कभी नहीं करेंगी, तो देव इज होपफुल कि कुछ ना कुछ अच्छी इंटेंशन रही होगी।
2: 100% एक बिल्कुल ब्रेक डाउन मोमेंट है, और उसके बाद ये जानना है कि ये किसने किया और क्यों किया, और उसके बाद आप ये ठीक है एक कह सकते हैं कि एक नई सीढ़ी थी जो वो चढ़ रहे थे, वो सीढ़ी हट गई है, तो अब क्या, अब प्लान नेक्स्ट क्या है? सपना तो नहीं टूट सकता, वो तो पूरा करना ही है, तो अब आगे कैसे बढ़ना है इससे, दैट इज अ जर्नी अहेड।
3: वही है कि सब लोग शॉक्ड है देख के कि ऐसा कैसे हो गया, यू नो, जो चीज़ फैक्ट्री डील हो गई थी 3 साल के लिए, एडवांस दे चुके हैं, तो यू नो फिर अचानक से ऐसे कैसे हो गया, तो सब लोग ऑब्वियसली बहुत दुखी है, बहुत शॉक्ड है।
4: अब वो अधिकारी तो बिना बताए ही वहाँ से चला गया, लेकिन सारिका और चंद्रिका के चेहरे के हाव भाव से तो लग रहा है कि ये उन्हीं का ही कारनामा है। खैर, जिसकी वो फैक्ट्री थी उसने चौहान परिवार को ही कोसना शुरू कर दिया, और इस पर वसुधा का दिल भी टूट रहा है।
5: बर्बाद हो गया, पता नहीं किस मनोगढ़ी में मैंने अपने गोडाउन, अब चौहानों को सौंपा था, सब खत्म हो गया।
2: तो मासा फिलहाल तो ये है कि मासा आई है, और मासा की क्या इन्वॉल्वमेंट है फिलहाल, वसु और दिव्या भी एकदम अनजान है, उन्हें कुछ नहीं पता, उनका सिर्फ इतना मानना है कि मासा को बुलाया है, रिक्वेस्ट किया है कि पूजा में आइए, तो मासा आई है, और ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वसु की जर्नी में मासा का इस तरह से वहाँ पर प्रेजेंट होना ही वसु के लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, और उसका ड्रीम ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है, वहाँ पर मासा भी साथ है, तो उसके लिए ये है नथिंग लाइक इट। तो बस ये एक्साइटमेंट है, इसके बियॉन्ड मासा की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ये हमें अंदाज़ा नहीं है।
4: फिलहाल तो सभी परिवार वाले वसुधा का हौसला बढ़ाने के लिए चले गए हैं, लेकिन दादी को पता है कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि चंद्रिका का ही हाथ है। अब देखना होगा कि कैसे दादी सभी के सामने ये सच लाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: सूरज और ईशा की ये कहानी भी खोलती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का वॉलेट। पति ब्रह्मचारी, जब से शुरू हुई है ना ये कहानी, कहानी का लेखक हम सबको इस कहानी से बांध कर रखता है। देखिए कितनी बेसब्री से रहता है हमें इसके हर नए एपिसोड का इंतजार। तो चलिए फिर जानकर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आप सबको सूरज और ईशा के पास।
7: आईपीएस ऑफिसर बन पुलिस स्टेशन पहुंची ईशा। में सूरज, ईशा, सूरज और राज। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा आईपीएस ऑफिसर बन गई है, तो वहीं सूरज दादा भाई बन गया है, जो लोगों की मदद तो करता है लेकिन अपने स्टाइल में, उन्हें सिखाता है सबक, क्योंकि होती है दादा भाई की अदालत। लेकिन ये राज ईशा को पता नहीं है, उसे तो अब भी लगता है कि सूरज आईएएस ऑफिसर ही है, इसीलिए तो जब मौका आया पुलिस स्टेशन जाने का तो ईशा चाहती है कि सूरज भी उसके साथ चले। तो भाई ईशा तो वर्दी में तैयार है और पहुंच गई है पुलिस स्टेशन, और उसके पीछे पीछे है सूरज, जो चश्मा लगाकर मुंह पर कपड़ा ओढ़कर ईशा के पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पुलिस वालों को पता चले, क्योंकि कुछ पुलिस वाले हैं जो दादा भाई को जानते हैं, और अगर उन्होंने पुलिस स्टेशन में सूरज को पहचान लिया तो ईशा को सब सच पता चल जाएगा, इसीलिए वो अपनी पहचान छुपा रहा है। ऐसे में ईशा सूरज से नकाब हटाने को भी कहती है, लेकिन सूरज मना कर देता है और बना देता है बहाना।
8: सूरज शार्प माइंडेड तो है ही है, क्योंकि वो आईएएस रह चुका है, और साथ ही साथ पहले भी गुंडा था, अब आईएएस ऑफिसर भी बन गया, और उसके बाद तो बाहुबली गुंडा बन गया, तो ऑफ कोर्स उसके पास सब है, साम दाम दंड भेद, कैसे यूज करना है, क्या तौर तरीके हैं, लेकिन ईशा जी भी कहीं ना कहीं आईपीएस ऑफिसर है, वो भी चालाक है। तो जब से दादा भाई का नाम ईशा जी ने सुना है तब से उनका यही कहना है कि ये दादा भाई इंदौर शहर में जो भी है इसका खात्मा तो मैं करके रहूँगी। ईशा जी को खुद नहीं पता कि दादा भाई सूरज जी है, एंड सूरज यही चाह रहे कि ईशा जी अपने आईपीएस बनने की जो खुशी है कम से कम एक दो दिन तक जी ले, और स्पेशली कुछ टाइम, एक साल के बाद ईशा जी आई है तो कुछ टाइम मैं स्पेंड कर लूँ ईशा जी के साथ खुशियों वाली। एंड वो चीज़ें पॉसिबल होने से पहले कमिश्नर ऑफिस से कॉल आ जाता है कि आईपीएस ईशा आपको आना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स अभी अभी यू नो अपॉइंट किए गए हैं सभी का इंट्रोडक्शन है एक दूसरे के साथ, तो इट्स गेट टुगेदर वी कैन से। तो ईशा जी रेडी हो जाती है और सूरज बोलता है कि आप जाइए, सेलिब्रेशन आपके आने के बाद होगा। एंड ईशा जी वहाँ पे बोलती कि सूरज कुछ भी हो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम भी एक आईएएस ऑफिसर हो, मेरा भी रुतबा बनेगा कि मैं आईएएस की बीवी हूँ, तुम चलो तुम्हें सब देखेंगे। तो सूरज मना करते रहता है लेकिन फाइनली वो मना लेती है और सूरज आता है, लेकिन सूरज डरते हुए आता है बिकॉज अगर किसी ने पकड़ लिया कि ये दादा भाई है तो ईशा जी के सामने सच्चाई आ जाएगी और ईशा जी कहीं ना कहीं यू नो सूरज से तुरंत ही नफरत करना शुरू कर देंगी कि आखिर ये सब हुआ क्यों कैसे, क्योंकि वो बहुत ही फुर्सत में सारी चीज़ें ईशा जी को बताना चाहता है, ऐसे होश पोश में नहीं।
7: इन सब के बीच ईशा को उसके ट्रेनिंग के साथी भी मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो काफी खुश है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्तों से सूरज को मिलवा दी सूरज वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। भाई फिलहाल तो इस राज पर पर्दा पड़ा है कि सूरज अब आईएएस ऑफिसर नहीं बल्कि दादा भाई बन चुका है, लेकिन जब ये सच ईशा को पता चलेगा तो इनके रिश्ते में क्या दरार आ जाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा।

0: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: मन्नत और विक्रांत की ये कहानी भी हमें लंबे टाइम से एंटरटेन करती हुई आई है, लेकिन मन्नत की जिंदगी में तो खुलता है परेशानियों का वॉलेट। सच में इनकी परेशानियां खत्म ही नहीं होती। जैसे ही एक ट्विस्ट होता है खत्म, इनके चेहरे पर आती है एक प्यारी सी मुस्कुराहट, जिसका रहता है हम सबको बेसब्री से इंतजार। लेकिन वो मुस्कुराहट इतनी जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि एक दूसरा ट्विस्ट रहता है कहानी में तैयार। लेकिन सुपर एंटरटेनिंग है ये कहानी, क्योंकि ये कहानी हमें बांध कर रखती है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज।
2: अभी प्लीज
0: बेहोश हुआ विक्रांत, परेशान हुई मन्नत और मान्यता। कहानी में आएगा नया ट्विस्ट। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते ही रहते हैं, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब विक्रांत उर्फ अभिमन्यु की तबीयत बिगड़ गई है और वहाँ पर मौजूद है मन्नत, मान्यता और बाकी के सभी घर वाले, और देखिए कैसे वो अभिमन्यु की ये हालत देखकर घबरा गए हैं। सबसे ज्यादा घबरा तो मन्नत रही है। ऐसे में मान्यता को समझ ही नहीं आ रहा कि मन्नत ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। हालांकि बाकी लोग आकर विक्रांत को अस्पताल पहुँचाने की तैयारी कर देते हैं। भाई जहाँ सभी शक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मन्नत अपने प्लानिंग में लगी हुई है, कैसे वो धैर्य को अपनी बातों में फंसा दे ताकि धैर्य सच उगल दे। ऐसे में उसका साथ दे रहे हैं रॉनी।

0: तमाशा तो इससे पहले भी हुआ था जब मान्यता ने कर दी थी सुसाइड करने की कोशिश, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभिमन्यु का कहीं अफेयर चल रहा है। लेकिन बड़ी ही चालाकी से अभिमन्यु और बाकी घर वालों ने मान्यता को बचा लिया।
1: कैसे करूं भरोसा, उनसे कहा था कि तुम वापस आओगे, तुम वापस नहीं आए, मैं वेट कर रही थी तुम्हारा, पर तुम वापस नहीं आए। अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुम गुरुद्वारे जाओगे, तुम गुरुद्वारे नहीं, तुमने झूठ बोला मुझसे। कितनी बारी फोन किया मैंने तुम्हें, तुमने फोन नहीं उठाया मेरा। कैसे करूं मैं भरोसा, बोलो। तुमने इसलिए नहीं उठाया ना फोन क्योंकि तुम किसी और के साथ थे ना। मान्यता रुक जा।
2: मान्यता प्लीज,
1: आगे कहीं भी चलिए। मान्यता रुक जा।
2: मान्यता रुक,
1: छोड़ो मुझे, छोड़ो अभी मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जीना मुझे, मर जा रहा है मुझे, छोड़ो।
2: होश में आ, होश में आ मान्यता। होश में आ, ऐसे देख, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? थोड़ी देर कर दी मैंने आने में, थोड़ी सी देर कर दी मैंने आने में, तो पता नहीं क्या क्या कर रही, क्या क्या सोच रही है।
1: ठीक है, तो बताओ कहाँ थे तुम इतनी देर? इतना टाइम नहीं लगता है वेन्यू डिसाइड करने में।
2: काम था, काम था। हाँ पाजी,
3: हाँ, मैंने वीरे को रोक लिया था।
2: अब बोल।
1: तो ठीक है अभिमन्यु।
2: जी जी।
1: तुम्हें पता है कि मान्यता तुम्हें लेकर कितनी इमोशनल है, तुम्हारी छोटी सी भी बात को पत्थर की लकीर समझ लेती है। तो आपसे जहां कहीं भी जाओ उसे बता कर जाना, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक थोड़ा संभल कर।
2: नहीं सेट है दीदी, अब आप ना और ज्यादा ध्यान दूंगा। ओए, और ज्यादा ध्यान दूंगा। सेट, हाँ बाजी, पानी का इंतजाम।
0: कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब मन्नत सामने से ही मान्यता को चैलेंज कर देगी कि वो विक्रांत को हासिल करके ही रहेगी, यानी कि अब शादी में कई ट्विस्ट आने बाकी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: आज के बाद से हम दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। आपकी पत्नी मैं हूँ मिस्टर विक्रांत सलूजा, आपके लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी, जैसे सावित्री यमराज से लड़कर अपने सत्यवान को वापस ले आई थी, वैसे ही वक्त और हालात से लड़कर आपको याद दिलाऊंगी कि आपका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ।
4: जब बात करें हम वॉलेट्स की तो देखिए इनमें है कितनी सारी वैरायटी, कितने सारे पैटर्न्स, कितने सारे ब्रांड्स, और बिल्कुल ऐसी है हमारे पास भी आपके लिए एंटरटेनमेंट की वैरायटी। हमारी ये अगली खबर जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट का हर रंग, यानी एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ड्रामा सब कुछ एक साथ। मैं जानती हूँ आपसे नहीं हो रहा है इंतजार, फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
0: शादी के बंधन में बंधे अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर।
5: कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई,
0: जिंदगी की नई शुरुआत, झूम कर नाचे घर वाले।
5: रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां।
0: अंशुला और रोहन की रिसेप्शन पार्टी में चमके बॉलीवुड के कई सितारे।

शर्मिला कपूर और रोहन ठक्कर बंध गए हैं शादी के बंधन में और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में उनके घर वाले उनका साथ दे रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और अर्जुन कपूर वो तो अपनी बहन का हाथ थामे उसे दूल्हे की ओर ले जा रहे हैं।

बहन की शादी की खुशी अर्जुन के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अब शादी तो संपन्न हो गई, बीती रात रखी गई रिसेप्शन पार्टी भी, जहां पर अंशुला और रोहन ने एक दूसरे का हाथ थामे जमकर खिंचवाई ढेर सारी फोटोज। इसी के साथ रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे भी। सबसे पहले नजर डालिए अंशुला कपूर के पापा बोनी कपूर पर, जिनके चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती है। इसी के साथ संजय कपूर भी अपने बेटे के साथ वहां पहुंचे हैं। साथ ही अनिल कपूर भी, जो सूटेड बूटेड अंशुला कपूर की शादी में आए, और तो और सिल्क साड़ी पहने जाह्नवी कपूर भी अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही हैं। भाई वाकई जाह्नवी का ये रूप इससे पहले कभी और देखने को मिला नहीं होगा। वैसे इनके साथ साथ अर्चना कपूर भी गजब ढा रही हैं। इन्होंने चुना है इंडो वेस्टर्न स्टाइल, और देखिए कैसे अपना टशन दिखा रही हैं। इसी के साथ देखिए अर्जुन कपूर को भी, जो सूट बूट पहने अपनी बहन के रिसेप्शन में पहुंचे हैं खुशियों का तड़का लगाने। अब बात करेंगे वरुण धवन की, जो सूट बूट में अंशुला कपूर की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे हैं और अपना टशन दिखा रहे हैं। इसी के साथ बॉबी देओल भी पूरे जोश के साथ पहुंचे हैं अंशुला और रोहन की रिसेप्शन पार्टी में। भूमि पेडनेकर भी खास मेहमान बनकर पहुंची हैं, और इन्होंने इस रिसेप्शन पार्टी के लिए चुना है इंडियन स्टाइल। साथ ही नजर डालिए बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा जी पर, जिन्होंने हर बार की तरह इस रिसेप्शन पार्टी के लिए भी चुनी है सिल्क साड़ी, और सिल्क साड़ी को वो बखूबी कैरी भी कर लेती है और हमेशा की तरह एवरग्रीन दिखती है। अब बात करेंगे जोड़ियों की। वैसे जोड़ी में सबसे पहले बॉलीवुड जोड़ी रितेश और जेनेलिया की आती है, जो इस रिसेप्शन पार्टी में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पहुंची हैं और साथ ही अपना स्वैग दिखा रही हैं। इसी के साथ नूपुर सेनन भी अपने पति स्टेबिन बेन के साथ पहुंची हैं। एक तरफ जहां नूपुर सेनन ने इस रिसेप्शन पार्टी के लिए लहंगा चोली अटायर चुना है, तो वहीं उनके पति स्टेबिन भी इंडियन अटायर में नजर आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी के साथ रकुल प्रीत भी अपने पति जैकी भगनानी के साथ नजर आई। रकुल प्रीत ने चमचमाता इंडो वेस्टर्न स्टाइल चुना है। इनके अलावा शबाना आजमी भी अपने पति जावेद अख्तर के साथ नजर आई। इसी के साथ चंकी पांडे भी दिखे अपनी बीवी के साथ। एटली भी पहुंचे हैं अपनी बीवी के साथ अंशुला और रोहन को उनकी शादी की ढेर सारी बधाइयां देने।

इनके अलावा सोनू निगम, अनु मलिक,

गुलशन ग्रोवर और भी कई सितारे पहुंचे हैं अंशुला और रोहन की शादी की रिसेप्शन पार्टी में और साथ ही दे रहे हैं दोनों को शादी की ढेर सारी बधाइयां। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: आपने फाइनली अपनी सेविंग से खरीदा एक लिमिटेड एडिशन डिजाइनर वॉलेट. ओ माय गॉड, दिस इज सो रॉकिंग. लेकिन अगर वो वॉलेट हो जाए गलती से आपसे गुम या उसे कोई चोरी कर ले तो डेफिनेटली हो जाएगा ना आपके लिए शॉकिंग. एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग. ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. देख लीजिए सैराब सीरियल के बीटीएस नजारे जहां नयनिका इस बच्ची संग शूटिंग भी कर रही है और कर रही है एंजॉय भी. इंडियाज बेस्ट डांसर में हो गया है बुगी वुगी गैंग का रीयूनियन. साथ साथ नजर आए जावेद, नावेद और रवि बहल. इसी के साथ देख लीजिए खास मेहमान बनकर आए हैं अरशद वारसी और शुरू हो गई है यहाँ कॉमेडी और मस्ती.
2: उसको सबसे ज्यादा स्ट्रगल ट्रेन में करना पड़ता है क्योंकि ट्रेन में चढ़ने नहीं मिलता और चढ़ने मिलता है तो उतरने नहीं मिलता. तो ट्रेन में चढ़ने के लिए अगर आप इसे ट्रेन कर पाए.
3: हम लोग बहुत ही एडवांस है इंडिया में, मुंबई स्पेशली. हमारे इनविजिबल एस्केलेटर होते हैं ट्रेन के बाद. इनविजिबल एस्केलेटर का डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ
4: बच्चों. अभी हम लोग ना उसको दिखाने का है मुंबई में ट्रेन में कैसे बैठते हैं. मैंने बोला था ना एस्केलेटर होता है यहाँ पे. हम लोग मैं दिखाता हूँ कैसे होता है. आ जाओ भाई, तू यहाँ पे आ. अभी ये यहाँ पे ट्रेन में जाने वाली है, ठीक है. हम लोग एस्केलेटर है, ठीक है. ये देखो कैसे जाते. आ जाओ
5: कितना सिंपल है.
2: चमक कौन मार के गया.
5: ऑटोमेटिक अंदर ऑटोमेटिक बाहर.
1: सामने आए हैं नजारे शैलेश लोढ़ा की बिटिया रानी के शादी के इनसाइड नजारे. आप भी डाल लीजिए इन वीडियोस और तस्वीरों पर एक नजर.

0: अक्षा चौधरी, आई एम सॉरी नाउ?
1: नो।
2: रियलिटी शो लॉकअप में होने वाला है नया बवाल, जहां श्रेया और आकांक्षा के बीच शुरू होगी नई लड़ाई, साथ ही होगा बवाल।
3: पिछले शो में रोटियां मिलते मिलते जीते थे यार, रोटियां मिलने वाला सिस्टम ये मैडम।
4: आप बहुत सीनियर
3: है,
5: कोई भी होगा सीनियर आर्टिस्ट अपने घर पे होगा।
3: रोटियां बच्चे होते ना तब तो बताती है चीजें।
6: सो सैड।
5: सीनियोरिटी गई भाड़ में, मेरे जूते के नीचे सब।

0: रियलिटी शो अलायंस में होने वाली है दो दो वाइल्ड कार्ड एंट्री। भाई कंटेस्टेंट बनकर आएंगे एलिगोनी और सीमा सजदे।
1: बावरे जी,
2: किशोर जी,
0: तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहां बावरी हो गई है बेहोश।
1: बावरे जी,
2: किशोर जी,
3: गेंद लौटा दो।
0: हस्तिनापुर के वीर का नया प्रोमो सामने आया है, जहां पर आ गए हैं गुरु द्रोणाचार्य।
4: संभव शब्द नहीं होता।
5: द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर में आगमन, जिनकी शिक्षा बदल देगी राजकुमारों का भविष्य।
0: जल्द आने वाली है फिल्म आवारापन 2। ऐसे में इसमें नजर आएंगे अनिरुद्ध रावल, परेश रावल के बेटे।

0: खुद का मैस्कोट आया है टिकली।
1: लव्ड शेफ का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां हो गई है टिकली यानी नए मेहमान की एंट्री, साथ ही चल रही है मस्ती अनलिमिटेड।
2: इस शो में निया और तेजा चिल्ला चिल्ला के टिकली, अंकिता खराब गाना गा के टिकली, उस शो में एक और टिकली आ गई।
3: हमारी टीम सास बहू और बेटियां ही खोल रही है आपके लिए एंटरटेनमेंट का ये वॉलेट, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली खबर की ओर। वेल, ये खबर तो है आपके फेवरेट सितारे से जुड़ी, जिनसे की है हमारी टीम सास बहू और बेटियां ने ये प्यारी सी मुलाकात। हमने तो जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल, और इन्होंने बताया है हमें अपनी जिंदगी के बारे में, तो चलिए फिर जानते हैं इनकी जिंदगी का सफर, लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ। जी हाँ, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे से मुलाकात।

0: ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਕੋਕਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ
1: ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸੋਂ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ
2: लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में वो बता भी रहे हैं हमें लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही
0: फिल्में अगर आपको रुला दे
3: ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी
0: फिल्म अगर आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो भाई फिल्म मेकर को मिलती है सबसे बड़ी खुशी और ऐसी खुशी मिल रही है राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर इम्तियाज अली को जो अपनी फिल्म मैं वापस आऊंगा का लाइव रिएक्शन लेने पहुंचे थिएटर्स में यूं तो ये फिल्म जून के महीने में रिलीज हुई थी लेकिन धीरे धीरे इस फिल्म ने लोगों के बीच में जगह बना ली है आज सास बहू और बेटियां निकला है इम्तियाज अली के साथ उनकी फिल्म का लाइव रिएक्शन ले ले थिएटर्स में जाकर इम्तियाज के साथ हम फिल्म देखेंगे दर्शकों से करेंगे बातचीत जानेंगे उनका फीडबैक फिर चाहे युवा हो फिर चाहे वो सीनियर सिटीजन हो मैं वापस आऊंगा ने सबके मन में इमोशंस जगा दिए हैं
4: We want more films like this.
5: Thank you. Thank you. आप देखते रहो मैं बनाता रहूँ.
4: Can I request you to make a sequel to this that shows that a love like that can happen even today?
5: Thank you. I'll see what I can do.
0: फिल्म आधारित है भारत के 1957 के पार्टीशन की और आज के जमाने में वो लोग जिन्होंने उस बंटवारे के दर्द को झेला था ये फिल्म उसको बयां करती है तो दर्शक कितने इम्प्रेस हुए फिल्म से ये जानने के लिए इम्तियाज ने इन सभी से लिया रिएक्शन किसी को गले लगाया किसी से हाथ मिलाया किसी की बातें सुनी
6: मतलब आपने जिस तरह से दो सोल्स का जो कनेक्शन दिखाया दोनों अलग है फिर भी दोनों मिल रहे हैं एंड देन मैं वापस आऊंगा एंड वी फील लाइक हाँ हम जा रहे हैं अपने लव के पास इट्स लवली
7: आई फेल्ट सो मच थ्रू दिस मूवी आई हैव बीन क्राइंग फॉर लाइक 10 मिनट्स लेट एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर ट्राइंग टू डिपिक्ट इन दिस मूवी एंड थैंक यू फॉर द एंड क्रेडिट्स दैट वाज वेरी नाइस
8: थैंक यू स्प्रेड द वर्ड स्प्रेड द वर्ड
0: इम्तियाज के साथ खाएंगे हम पॉपकॉर्न और समोसा जानेंगे उनके जमशेदपुर के दिनों में जहां वो पले बढ़े जानेंगे कि उनकी कौन सी फिल्म दर्शकों को छूती है फिर चाहे वो जब वी मेट हो हाईवे हो तमाशा हो रॉकस्टार हो या फिर हो अमर सिंह चमकीला मैं वापस आऊंगा मैं शर्वरी वाघ वेदांग राणा की जोड़ी है साथ में है नसरुद्दीन शाह और दलजीत दोसांझ जैसे कलाकार फिल्म बेहद इमोशनल है और फिल्म देखने के बाद दर्शकों का एक बेहद इमोशनल रिएक्शन इम्तियाज को मिला तो सीधा चलते हैं मुंबई की बारिश के बीच थिएटर्स में जहां इम्तियाज अली आज हमारे संग करेंगे ये खास थिएटर वाला डे आउट
9: आज हम निकले एक खास डे आउट पर और मेरे साथ एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने मिलेनियल से लेकर जेन जी को रोमांस करना सिखाया मेरे साथ है मिस्टर इम्तियाज अली और इम्तियाज जी से मैंने कहा कि आपने मिलेनियल्स से लेकर जेंजी तक लोगों को रोमांस करना सिखाया मुझे याद है कि 2007 में आई सोचा ना था एंड दैट वाज अ वेरी कमिंग ऑफ एज फिल्म एंड नाउ इन 2005 फिल्म को बहुत वर्ड ऑफ माउथ मिला था एंड आई थिंक 2026 में अब मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई है आई थिंक वही हो रहा है बिकॉज कई फिल्में स्लोली स्लोली स्लोली दिलों तक पहुंचती हैं एंड आई थिंक ये फिल्म धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है
5: इस फिल्म का पहला गाना भी धीरे धीरे ही है
9: बट व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन आर यू गेटिंग पोस्ट बिकॉज उस वक्त तो मिलते लेकिन अब भी जो स्लोली स्लोली वर्ड ऑफ माउथ जो कहता है ना कि मुझे आपकी पहली फिल्म में ऐसा ही हुआ था So I think I'm getting this deja vu. And even Tamasha also, people said कि वो इतिहास में लिखी जाएगी
5: जी मगर इस बार क्या हुआ है ना जो अलग है कि मैं वापस आऊंगा मैं वो इतिहास तभी लिखा जा रहा है जब अभी भी फिल्म थिएटर में है
9: ये भी बड़ी बात है
5: ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है ना कि मतलब जो बिजनेस है फिल्म मेकिंग का और जो रिकवरी का पैटर्न है वो बेस्ड है सिनेमा परफॉर्मेंस पे थिएट्रिकल परफॉर्मेंस पे ना तो जब सिनेमा थिएटर में फिल्म चलती है और लोग उसको पसंद कर लेते हैं इन दिस केस तो रिट्रीव ही कर लिया उन लोगों ने तब इट्स गुड फॉर बिजनेस लाइक दिस फिल्म हैज बीन फॉर अस
9: यस
5: That is different from other films, and I would actually, मतलब ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपने देखा होगा कि almost बीड़ा सा उठा लिया था कि अगर ये film ठीक हुई इम्तियाज की तो फिर हम जो है ना we'll make sure that जनता आएगी हम ही push करके भेज देंगे and we will make sure that ये picture theater में रहते हुए ही लोगों तक पहुंच जाए।
9: सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है।
5: सोशल मीडिया का भी हाथ है सर, मगर सोशल मीडिया के बियॉन्ड जैसे मैं थिएटर में जाके देख रहा हूँ ना कि एक बड़ी ऑडियंस वो भी है जो सोशल मीडिया में मेरे से तो इंटरेक्ट नहीं करती है, वो फिल्म की जनता है जो सोशल मीडिया में नहीं है। कहने का मतलब ये भी है कि जितने लोग सोशल मीडिया में होते हैं वो लोग फिल्में नहीं देखते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट एक जनरल जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि एक बंदे ने देखी कहीं पर किसी जगह, उसने चार लोगों को कहा, दो गए, उन दोनों ने फिर आठ लोगों को कहा, उनमें से छह गए, इस तरह से फिल्म बनी।
9: तो हम बात करते रहे इम्तियाज सर के साथ क्योंकि हम थिएटर्स के अलग अलग रिएक्शन ले रहे हैं। अब फिल्म चल रही है, अभी ऑडियंस निकलेगी, विल गिव यू लाइव व्हाट पीपल से टू द डायरेक्टर व्हेन डायरेक्टर गोस डायरेक्टली टू द पीपल। स्टे ट्यून्ड।
0: वैसे फिल्म वापस आऊंगा को रिलीज के कई दिनों बाद वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी मिली और इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है। कई लोग ट्रोल करता है, कोई प्यार देता है, लेकिन दर्शक इस पे रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे दर्शक हमें मिले जो इम्तियाज अली के सिनेमा के फैन हैं और उन्होंने ही मैं वापस आऊंगा को रिलीज के एक महीने बाद भी थिएटर्स में एक्टिव रखा है।
9: सर एक आपके देखिए आपकी फिल्म का ही आई सी रॉकस्टार क्यों अच्छी लगती है वो फिल्म आपको, मतलब इट्स वन ऑफ द सर की बेस्ट क्रिएशन।
10: मैं भी 21 साल का हूँ, जब आपकी मूवी रिलीज हुई थी तो मुझे सबकी तरह समझ में नहीं आई थी जब मैंने वो
5: आप बहुत छोटे होंगे ना उस वक्त,
10: क्योंकि मैंने सुना है कि लाइफ के अलग अलग एज पे मूवी सेम मूवी अगर आप देखेंगे तो आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो मैंने फिर आपकी वो मूवी देखी, फिर मैंने तमाशा भी देखी, तो मैंने वो फिल्म देख के सीखा कि मैं कैसे अपने डैड को अपनी मम्मी को बता सकता हूँ कि मैं कैसे ये करना चाहता हूँ। तो सर आपकी सारी मूवीज हमेशा रिलेटेबल रहती है। मैं वापस आऊंगा अभी, मैं जब लास्ट में जब नसीर सर उनको मिलते हैं वीडियो कॉल पे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आपका मैजिक हमेशा मतलब बहुत मजा आता है सर आपकी फिल्म देखने में। चमकीला भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी सर, थैंक यू सो मच, आप इतनी अच्छी मूवीज बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।
9: सर मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स अलग सोशल वर्कर्स, जो काम हमारे भाषण नहीं कर पाते हैं वो फिल्में कर देती हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफाउंड इज द मीडियम, लाइक उन्होंने इतनी बातें बोली, वो ऐसे बोलेंगे शायद कोई नहीं समझेगा।
5: एब्सोल्युटली, मतलब मुझे लगता है ना देयर इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कुछ भी नहीं हूँ बट मेरा जो ये मीडियम है ये बहुत बड़ा है। सिनेमा इज वेरी वेरी बिग, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल, इट कैन इन्फ्लुएंस यू to be a more ethical person, you know, हर तरह से बहुत बहुत powerful और explosive medium है ये। जिस तरह से बातें घर कर जाती है ना, मैंने खुद भी, मुझे लगता है कि फिल्मों से बहुत कुछ अपनी जिंदगी में शामिल किया है। मतलब जितना मैंने moral science book से नहीं दे लिया उतना तो cinema से लिया हो। So I know that responsibility. I think that अपनी तरफ से कोई गलत चीज ना चली जाए मेरी किसी भी फिल्म में। This one has to keep in mind.
9: आपकी फिल्में युवाओं को बहुत कनेक्ट करती है, बहुत कम ऐसी फिल्में होती है, मतलब बनती तो है लेकिन युवाओं को जो इंस्पायर करती है, एक होती है युवाओं को जैसे बॉबी आई, लव स्टोरी आई, सैयारा आई, हर सदी में आती है, लेकिन कुछ फिल्में होती है जो युवाओं को इंस्पायर करती है
5: जी।
9: तो आपको जब आप युवा थे आपको किस तरह की फिल्में इंस्पायर करती
5: है? क्या होता है ना कि आदमी की उम्र कोई भी हो जाए उसके अंदर का जो एक सेल्फ एज होता है ना वो अलग होता है। Maybe that keeps coming out in my films. When I was younger, I used to like all kinds of films. मतलब मेरा तो बहुत ही रेंज था, मतलब मुझे शोले मेरी फेवरेट फिल्म है, मगर साथ में जुनून भी मेरी फेवरेट फिल्म है, जो श्याम बेनेगल वाली, शशि कपूर वाली। सो हर तरह की फिल्में मुझे पसंद हुआ करती थी, बट जो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले वाली फिल्म है ना, जहाँ ध्यान हटता नहीं है, जब आप डूब जाते हैं और आप मतलब अपने वातावरण से ट्रांसपोर्ट आउट हो जाते हैं, वो फिल्में मुझे बहुत पसंद।

0: इम्तियाज अली पहुंचे मुंबई के थिएटर में जहां फिल्म खत्म हुई और हमें बहुत सारे चेहरे इमोशनल मिले। ऐसे में इम्तियाज अली को देखकर सब बहुत एक्साइटेड थे। किसी ने आंसुओं के साथ, किसी ने अपनी बातों के साथ, किसी ने गले लगकर फिल्म के रिएक्शन को बयां किया।
1: This girl is actually crying and
2: It was too good. I have seen all your films. I mean, I have no words to be honest. Emotions, love story, everything was so good. And starting, I was like, "Ki nahi rona hai." Like everyone was crying, but my emotions control nahi kar paya apne. It was too good. So thank you so much. Like we want more films like this. And yeah, thank you.
3: आप देखते रहो, मैं बनाता रहूँगा.
2: I actually fought with my love, my husband, because he didn't want to see this movie. I said, "Kuch bhi ho jaye, main ja rahi hu." So I brought my mother-in-law with me.
3: Best.
2: And she's saying partition, jhagda jhagdi hoga.
1: Can we get her?
2: Yes, ma'am. She said partition hai, jhagda. I said, "Mummy, kuch jhagda wala movie nahi hai. It's a love story. Please come with me. Your son doesn't want to come." She's also come here and she's enjoyed the movie so much.
3: अच्छी लगी आपको मैं?
2: She's still trembling. She saw that love.
3: अच्छी लगी ना?
2: थैंक यू।
4: दादी नानी लोग ये सब सुनाते थे कि ऐसे पार्टीशन हुआ, हम लोग भागे थे, तो वो सब रियल में देखे थे, बहुत अच्छी। इट्स गुड, थैंक यू
3: सो मच, थैंक यू। You should also do work like that. I'm sure that you are also like that in your work.
2: I am, sir, yes. And that's why I felt like someone so legendary is speaking for the truth. There's hope, man, in this world. What are we?
3: This is
2: what we live for.
3: Yeah, this is what we
2: work for, man. We
3: work for man.
1: तो इस वक्त हमें थिएटर के अंदर और लाइव ऑडियंस के रिएक्शंस मिल रहे हैं, और सबसे मेरे को जो दिल को छुआ, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, सवाल थे, तो इम्तियाज, दिस इज द आपने कमाया है अपनी फिल्मों से, सो व्हाट इमोशंस यू गेट व्हेन यू मीट पीपल, हैव सो मेनी क्वेश्चंस, दे एनालाइजिंग अ फिल्म, आई मीन इट्स लाइक यू नो, एंड सो मच लव।
0: दर्शकों की बात करें तो सबका रिएक्शन बहुत मिक्स था। आइए जानते हैं कि इम्तियाज अली और दर्शकों के बीच में क्या क्या बातें हुई। इम्तियाज अली की फिल्में युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन फिल्म मैं वापस आऊंगा देखने के लिए युवाओं के साथ यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी हैं, और एक मिला जुला ऑडियंस देखने को मिला। वैसे यहाँ पर सब लोग सेल्फी खिंचा रहे थे, भाई वो जमाना गया जब लोग फिल्म के अभिनेता अभिनेताओं के साथ फोटोज खिंचाते थे। आजकल लोग डायरेक्टर को भी उतना ही प्यार देते हैं जितना पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों को। इसके बाद मौका था पॉपकॉर्न और समोसे का, और इसी के साथ इम्तियाज अली ने अपनी जमशेदपुर की यादें ताजा करी, यानी वो शहर जहां उन्होंने सबसे पहले फिल्में देखना शुरू किया था।
1: पिक्चर का मजा आता है पॉपकॉर्न के साथ, और इम्तियाज अली सर के साथ मैं पॉपकॉर्न एंड समोसे, सर हम बात कर रहे थे समोसे की
3: जी,
1: तो जमशेदपुर का समोसा और बॉम्बे के समोसे में क्या फर्क है?
3: सर जमशेदपुर का समोसा बहुत अच्छा होता है, जो बॉम्बे के समोसे से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो चीजें मेमोरी में होती है ना, वो चीजें ज्यादा अच्छी होती है जो प्रेजेंट है उससे। मगर समोसा इज वेरी एसोसिएटेड, इट्स एन इमोशन। पॉपकॉर्न भी, मगर ये जो पॉपकॉर्न है ना, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा मॉडर्न है। मैं क्योंकि थोड़ा पुराने जमाने वाला आदमी हूँ ना, तो जो पॉपकॉर्न हुआ करता था, जो पेपर के पैकेट में आता था, इसमें बहुत ही अजीब तरह का मक्खन होता था, नमक बहुत ज्यादा होती थी, वही याद आता है आजकल।
0: दिल्ली के हिंदी कॉलेज से इम्तियाज अली ने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मुंबई में उन्होंने सीरियल भी बनाए, ओटीटी शोज भी बनाए और फिल्मों से नाम कमाया। लेकिन आज सास बहू बेटे आपको ट्रिविया दे रहा है कि इम्तियाज अली ने एक फिल्म में भी अभिनय किया था, तो आज हम जानते हैं कि कौन सी वो फिल्म थी जिसमें इम्तियाज अली ने काम किया था, और क्या एक्टर बनना उनका भी ख्वाब है।
1: सबसे जब मिलते हैं सबकी पर्सनालिटी से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन थोड़ा इन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। सो आई रिमेम्बर ब्लैक फ्राइडे आपका छोटा सा रोल, एंड आल्सो अभी आपने फिल्म में खुद को ही आपने अभी रिप्ले किया था। आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल कम टू यू टू बिकम एन एक्टर, सो व्हाट डू यू थिंक एक्टिंग, एंड यू नेवर आई मीन फुल फ्लेज्ड एक्टिंग के बारे में?
3: I'm not interested in acting at all. I always wanted to direct. Theater में मैंने act किया है, और ये जो दोस्त दोस्तों की फिल्म में उसने बहुत बोला, मैंने कर दिया उस तरह का था, मतलब
0: इम्तियाज अली को पूरे 26 साल हो चुके हैं फिल्में बनाते हुए। फिल्म सोचाना के साथ उन्होंने करियर शुरू किया था, जब वी मेट से प्रसिद्धि पाई, उसके बाद रॉकस्टार, लव आजकल, हाईवे जैसी फिल्मों से उन्होंने नाम कमाया और अब मैं वापस आऊंगा के साथ उन्होंने अपना 25 साल का सफर पूरा किया, लेकिन आज भी लोग उनकी पुरानी फिल्मों के लिए याद रखते हैं।
1: इमोशन जो है हर इंसान को, हमें इंसान को इंसान बनाती है।
3: मैं आपसे ये बोल रहा था, आपका सवाल का जवाब, सवाल का जवाब ये है सर कि क्या हो रहा है ना कि जब मैं थिएटर में जा रहा हूँ, लोगों को रिएक्ट करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जिंदगी की सच्चाई है। यानी कि एक आदमी जो इमोशन में रिएक्ट कर रहा है ना, वो अपने ही किसी गम या अपनी किसी खुशी से रिएक्ट कर रहा है, वो इमोशन उसका जिंदगी का ट्रूथ है। यहाँ पे हम लोग हैं, हम चाहते हैं हमारी पिक्चर चले एंड ऐसे वैसे, वो तो हो गए, बट दैट इज अ वेरी बिग रियलिटी एंड आई वैल्यू इट। मतलब एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो हो जाता हूँ, मतलब आई फील दैट आई मस्ट रिस्पेक्ट व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू, ऐसा होता है मेरे साथ।
1: लोग जनरली आपको कौन सी फिल्मों के लिए याद करते हैं? ऑफ कोर्स जब वी मेट इज लाइक अ नेशनल, आपकी सबसे बड़ी हिट थी, बट दे टॉक अबाउट तमाशा, दे टॉक अबाउट रॉकस्टार। यस,
3: रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, मगर इट डिपेंड्स ऑन सेंटर, यू नो, जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि मैं झांसी में चला जाऊँ, वहाँ ज़्यादा हो सकता है लोग, मगर यूथ जो है ना वो रॉकस्टार की बात ज़्यादा करता है। बट जो और मतलब बहुत सारे लोग जब भी मेट की बहुत बात करते हैं, तमाशा की बहुत सारे यूथ जो है वो बात करते हैं, अक्सर लोग हाईवे की बात करते हैं, बहुत एक पर्सनल तरीके से उनका उनसे कनेक्शन है, अलग अलग फिल्मों की बात करते हैं।
0: भाई, दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स में अभी भी इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा देख रही है, तो उम्मीद है कि वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिल्म को रिलीज हुए अभी 4 हफ्ते हो चुके हैं और धीरे धीरे फिल्म अभी भी थिएटर्स में लोगों का दिल जीत रही है। आज सास बहू और बेटिया के साथ इस थिएटर वाले डे आउट में हमने इम्तियाज अली से यही जाना कि फिल्म बनती है सिर्फ और सिर्फ दिल से।
1: और कुछ बोलना चाहेंगे अभी आज हम सब दर्शकों के साथ? नहीं, आई फील दैट समोसा है, व्हाट यू हैव टू टेल,
3: वेलकम टू द सिनेमास, व्हाट यू गेट इन द सिनेमा यू कांट गेट एनीवेयर एल्स।
1: थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, आज हमने लाइव महसूस किया कि सिनेमा के बाद फिल्म बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, और अगर एक फिल्मकार खुद आके अपने प्रोडक्ट को सैंपल करे, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द बेस्ट। एंड आप इसी तरह उम्मीद लोगों के जहन में जलाते रहिए, जो जो एक बहुत बड़ा है, मैं कहता हूँ कि आप एक तरह सोशल वर्क कर रहे हैं फिल्मों के थ्रू, सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट टू कम सून। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर, मैं वापस आऊंगा।
3: थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।
0: मुंबई सामित्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

तो चलिए खोल देते हैं आपके लिए भी एंटरटेनमेंट का वॉलेट। अब लेकर चल रहे हैं हम आपको इस अगली खबर की ओर, जिससे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी गर्मा गर्म। हो रहा है लंच टाइम, मुझे भी लग रही है जोरों की भूख, लेकिन फिलहाल आपकी एंटरटेनमेंट की भूख को करते हैं खत्म। लेट्स चेक इट आउट।

पंजाब के रंग में रंगे सितारे, खाने में लगा पंजाबी तड़का, खाने के साथ साथ भांगड़े का मजा। गोल्डफिंच होटल में हो रहा है रंगला पंजाब इवेंट यानी कि पंजाबी फूड फेस्टिवल, जो लेकर आया है बंजारा द रेस्टोरेंट बाय गोल्डफिंच होटल। और ऐसे में यहाँ का जायका और पंजाबी तड़के का स्वाद चखने के लिए सितारे पहुँच चुके हैं। भैया पंजाबी फूड फेस्टिवल है तो ऐसे में पंजाबी लुक में आना तो बनता है, पंजाबी डांस भी बनता है और खाने के तो यहाँ क्या कहने। तो यहाँ के सभी रंग आपके लिए लेकर आया है सास बहू और बेटियाँ। तो चलिए देखते हैं पंजाबी फूड फेस्टिवल के ये नज़ारे। भाई इस फूड फेस्टिवल में खास मेहमान बनकर आए हैं कई सितारे, जैसे कि सना सुल्तान, वर्षा हेगड़े, आयुष शर्मा, रश्मि गुप्ता, शिवांगी गिरी, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मोहित कपूर और बाकी के सभी सितारे जो हुए हैं इस खास इवेंट में शामिल और पहुंचे हैं पंजाबी खाने का मजा उठाने के लिए। तो शुरुआत हुई यहाँ डांस से। ढोल ताशे पर देखिए कैसे सभी नाच रहे हैं और मना रहे हैं खुशियाँ।

0: से सिर्फ गरीबी देखी है। मैं सोचा कि शादी के बाद मेरा जिंदगी कुछ बदल जाएगा, मतलब गरीबी से छुटकारा मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने अच्छा पढ़ा लिखा है, मगर उनका पगार बहुत कम होने के कारण मुझे भी काम करना पड़ता। जीवन इतना कठिन है कि ये सब करना पड़ता है बच्चों के लिए। मैं सोचती हूँ कि मैं जैसा जिंदगी बिताई वैसा जिंदगी मेरे बच्चों को ना मिले, इसलिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। धंधे पे आना, घर पे जाना, घर का काम करना, मैं अपना लाइफ ही भूल गई।
1: दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है, चलना मुश्किल हो जाता है। वैसे यहाँ मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं अभीरा और अरमान की भी। ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। एक्चुअली कहानी का लेखक ना हमें बिल्कुल भी बोर होने नहीं देता, लेकर आता है इसमें इतने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और ऐसा ऐसा ड्रामा कि हम सब इस कहानी से बंधे रहते हैं। लेट्स चेक इट आउट।
2: रंग लाती अभीरा की कोशिशें, ठीक होता अरमान, घर वालों की बढ़ती उम्मीदें,

एक्सप्रेस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की हर कोशिश रंग ला रही है। अरमान अब धीरे धीरे ठीक होने लगा है, ऐसे में अभीरा बहुत खुश है। तभी तो देखिए कैसे आज अभीरा और अरमान दोनों ही बेडरूम में एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, वो भी रोमांटिक वाला, और प्यार भरे पल बिता रहे हैं।

0: लेकिन इन प्यार भरे पलों में भी कहीं न कहीं अरमान को टेंशन हो रही है, जिस पर अभीरा उसका साथ दे रही है।
1: अच्छा लिसन, अब से मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी, मैं बार बार तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, तो जब भी तुम्हें लगेगी तुम्हें वॉक करने में मेरी हेल्प की जरूरत है तो मुझे बता दे।
2: ये दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार ही है, तो वो बोलता है उसको काम करने के लिए और ये बोलती है कि नहीं काम नहीं, मेरी प्रायोरिटी पहले तुम हो, उसके बाद काम वाम देख लूँगी मैं, अगर इतना ज़्यादा हम लड़ ही रहे हैं इस बात को लेकर। तो ये एक है, अभीरा अरमान दोनों के पॉइंट स्ट्रॉन्ग है आई थिंक।
0: यहाँ अरमान अभीरा एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो वहाँ पोदार फॉर्म में कृष ने पूरा पसारा फैला दिया है क्योंकि वो केस की फाइल ढूंढ रहा है। ऐसे में वहाँ पर अरमान अभीरा दादी और माधव पहुँचते हैं और कैबिन को इस तरह फैला देख परेशान होते हैं। अभीरा तो कृष को डांट भी लगाती है, लेकिन तब कृष सबके सामने सच बताता है।
3: बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम।
1: क्या हुआ?
3: कल कैफे से निकलने के बाद हम एक क्लाइंट से मिलने गए थे, अब उसने भी फॉर्म छोड़ दिया। अब ये सोचिए कल क्या होगा, कल पापा का इतना इम्पोर्टेंट केस है और कल अगर पापा केस हारे ना तो सब खत्म हो जाएगा और अब कोई स्टाफ भी नहीं, मुझे पापा की प्रेप में मदद करनी पड़ेगी और बाय चांस पापा कल का केस हारे ना ये फॉर्म बर्बाद हो जाएगी, इस फॉर्म को कोई नहीं बचा पाएगा।
0: यहाँ कृष्ण ने अपनी परेशानी बता दी तो वहाँ दादी सा को झटका लग गया, वो तो इस बात को लेकर इमोशनल हो रही हैं, उनके पति के सपने पर ग्रहण लग रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी को कैबिन से बाहर निकाल दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो वहीं बाहर सभी लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर दादी सा ने ऐसा क्यों किया। तभी वहां पर आता है संजय, बस फिर क्या, उसे देखकर अरमान का गुस्सा भड़क उठता है और फिर होती है माधव और संजय के बीच बहसबाजी भी।
3: एक

0: तो मुझे लगता है जिसने आपको फॉर्म से निकाल के मेरे को सही किया। अपना करियर तो चला सकते हैं लेकिन फॉर्म नहीं चला सकते हैं।
1: अच्छा तो फिर फॉर्म कौन चला सकता है? तुम जो खुद अपने दो पैरों पे ढंग से खड़ा नहीं हो पाता।
2: संजय क्या नशा किया तुमने आज? कुछ भी बोलते जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। टीवी पे तो देख ही लिया होगा ना कैसे न्यूज चैनल्स पे तुम्हारी न्यूज घूम रही है। तुमने सिर्फ उस बेटर पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी धक्का मुक्की की वजह से मासा भी गिरने वाली थी और तुमने उनकी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। अरे अपने घर की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ कहीं तो जिम्मेदारी लो।
1: आप तो रहने दीजिए भाई साहब, सारी उम्र अपनी जिम्मेदारी से आप खुद भागते रहे और मुझे ज्ञान दे रहे। सारा शहर जानता है कि मासा के दोनों बेटे निकम्मे निकले। इस फॉर्म को मैं आगे लाया हूं, सिर्फ मैं।
2: अरे आंखें खोलो संजय, फॉर्म बंद होने की कगार पे है।
1: आप अपने करियर के बारे में सोचिए, वही बहुत होगा।
2: क्या बोला तुम? क्या कहना क्या चाहते?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दरवाजा खुल गया।
2: दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया।
3: दादी साहब नाराज होने से ज्यादा उनका दिल टूट जाता है इस बात को लेके कि ये जो फर्म है ये पुश्तैनी फर्म है, दादा साहब की विरासत है, पोदार खानदान की विरासत है जो उन्होंने नींव रखी थी। उन्होंने मेहनत करके फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ उन्होंने खड़ा किया और आज उस फर्म का इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है कि कभी इसको दे दी, कभी उसको दे दी, कभी यहाँ से छीन के इधर दे दिया, उधर दे दिया। अभी कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि पूरी बागडोर इसकी संजय बंसल एंड क्रिश बंसल के हाथ में है, तो कुछ सही नहीं चल रहा है फर्म में और काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और शायद फर्म बंद भी करनी पड़ सकती है और बर्बाद हो सकते हैं, मतलब पूरे पूरे, क्योंकि सारा इनका काम और इनका सब एवरीथिंग जो भी जहाँ से भी पैसा आता है फर्म से ही आता है, तो काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है फर्म पे।
4: बस संजय माधव और अरमान के बीच बहसबाजी और बढ़ती कि तभी अभीरा ने कैबिन का दरवाजा खोल दिया और जैसे ही अभीरा अरमान कृष और माधव के साथ वापस कैबिन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दादी सा अपने पति की तस्वीर लिए इमोशनल हो रही हैं। उन्हें देख बाकी सभी इमोशनल होते हैं।

0: ये लोग फर्म से लौटे हैं और चार पांच फैमिली के मेंबर्स सब लोग चाबी लेकर खड़े हैं कि अरमान तुम, बिकॉज वो काबिल है, उसने संभाला है, उसने हमेशा पुदार फर्म को अगर लॉस में है या बहुत काबिल लॉयर है बेसिकली. तो दादी सा को उस पर बहुत यकीन है और वो ईमानदार भी है काम को लेकर, और वो कर ही देता है जब उसको करना होता है, तो वो फर्म को ले आता है फिर से उसी जगह. तो बट अब क्या है, अरमान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. अब उसको बार बार वही चीज़ें याद आती है, इतनी जल्दी वो घाव भर नहीं रहे उसके, एंड उसको बार बार ये थॉट आता है कि इन्होंने मेरे साथ ये किया था, वो किया था. ये परिवार नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए माँ पापा, मायरा मुक्ति, अभीरा मैटर करते हैं और कोई मैटर नहीं करता.
1: अरमान तो चाबी लिए बिना ही वहाँ से जाने लगता है. तभी एक एक कर सभी अरमान को मनाने की कोशिश करते हैं और तानिया भी भरपूर कोशिश करती है कि अरमान पुदार फर्म को फिर संभाल ले, लेकिन अभीरा अरमान की ढाल बनकर आती है. अभी अरमान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और ये बात अभीरा बखूबी जानती है और बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके पति को कोई भी स्ट्रेस हो. ऐसे में वो अरमान को लेकर वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन अरमान उसके मन में कहीं न कहीं पुदार फर्म को गिरने न देने की बातें आ ही रही हैं. देखना होगा क्या अरमान पुदार फर्म को बचा पाएगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.

0: साथ है।
1: ईशान और नौनिका बताइए इनकी जिंदगी के वॉलेट में क्या है।
2: वेल, ढेर सारा प्यार,
1: और हम तो यही चाहते हैं कि इनकी ये जोड़ी यूं ही बनी रहे और ना लगे इन्हें किसी की भी बुरी नजर। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये जो बुरी नजर है ना, ये लग ही जाती है, और कोई ना कोई कहानी में फिर ऐसा ट्विस्ट लेकर आती है कि हम सब भी हो जाते हैं इनकी तरह परेशान। तो किस तरफ रुक कर रही है आज ये कहानी, क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज, या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा? लेट्स फाइंड आउट। लेकर चलते हैं आप सबको सैराब के सेट पर।
3: सवालों के घेरे में नौनिका, बेटी टिन्नी ने लगाए नौनिका पर इल्जाम। देखी माँ बेटी की नफरतें। प्लस के सीरियल सैराब में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। असल में मुंबई से नौनिका अपने घर लौट आई है, और ऐसे में कुछ घर वाले तो नौनिका को देखकर काफी खुश हैं, लेकिन नौनिका की बेटी उस पर इल्जाम लगा रही है। ऐसे में नौनिका का पति भी यहां पहुंच गया है, जो उसे सवालों के घेरे में डाल रहा है। बाकी के घर वाले भी नौनिका को ताना देने से चूक नहीं रहे। ऐसे में अब नौनिका मुश्किल में है, क्योंकि वो घर वालों को ये सच नहीं बताना चाहती कि उसे कैंसर है, इसीलिए तो चुपचाप वो सबकी बातें सुन रही है।
4: जो पूछूंगी सबके सामने पूछूंगी, और जो सुनूंगी सबके सामने। जिस तरह मुझे सवाल पूछने का हक है, उसी तरह मुझे जवाब ना मिलता, लेकिन मैं फिर भी यही सवाल कर चाहती हूँ। तेरे सवाल के जवाब
5: इस बात की शर्म, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे शर्म आनी चाहिए।
3: नौनिका अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी सुनना नहीं है। वो तो अपनी माँ को खरी खोटी सुना रही है, यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि वो अपनी माँ से नफरत करती है।
5: एक माँ होने के नाते मैं तेरी इस बेइज्जती को स्वीकार करूँगी?
4: कौन सी बेइज्जती?
5: तू सबके सामने इस तरह मुझे जिम्मेदारी, क्या बेइज्जती से कम है?
4: आप जब मुंबई के लिए निकल गए, तब मैंने आपसे पूछा कि वहां जाकर आप ईशान से मिलो कि या नहीं। फिर आपने वहां पहुंच गए, आप उनसे मिले ही नहीं, बल्कि उसके घर जाके रुकी। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों किया आपने?
6: सेमिनार का दौर खत्म हो गया, मेरा दिन ही अपनी माँ से पूछो कि उस सिंगर के घर एक्स्ट्रा दो दिन रुकने की असल वजह क्या है।
7: क्या कारण है जिसकी वजह से तुम ये नहीं बता पा रही हो?
8: ताकि इन सबके मन को शांति मिल जाए, और ना ये तमाशा ही नहीं चलता रहेगा।
7: बताओ।
5: वो तभी बाद में पता चलेगा।
4: मॉम, आपका ना दिमाग खराब हो गया है। इस एज में अपने से छोटे 11 साल लड़के के साथ आप इन्वॉल्व हो गए।
5: एक बार फिर से कहना, क्या कहा तुमने दीदी?
4: मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू।
9: सब अभी पूछ रहे हैं नौनिका को कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे, किस कारण के लिए ईशान के घर तुम थे। तो नौनिका कुछ नहीं बताती, और साइड में टिन्नी सुन रही होती है चुपचाप, कुछ नहीं बोलती है। लेकिन बाद में टिन्नी भी उसके ऊपर आ जाती है और बोलती है कि मॉम आपको बताने पड़ेगा अभी क्या बात है, आप क्यों रुकी दो दिन तक। तो बहुत कुछ सीन क्रिएट होता है और फिर भी नौनिका कुछ नहीं बोलती है और बाद में ऐसा दिखाया जाएगा कि ईशान की एंट्री होती है। तो अभी देखने को मिलेगा कि ईशान आके नौनिका को सपोर्ट कैसे करता है।
0: नौनिका मामा, हो गई ईशान के साथ तुम्हारी मुंबई की सोलो ट्रिप पूरी? घर की याद नहीं आई?
10: मैं किसी ट्रिप के लिए मुंबई नहीं गई थी।
0: किस लिए गई थी, अब तो सच बोल दे।
3: ऐसे में अब नौनिका का रक्षक बनकर ईशान आएगा।
11: मैं सच बताता हूँ नौनिका के बारे में।
3: जो घर वालों को ये सच बताएगा कि उसे कैंसर है।
11: शायद आप सच सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे।
3: जिसका इलाज करवाने के लिए वो मुंबई आई थी।

0: भाई ऐसे में नयनिका की बेटी टिन्नी को ये पता चल चुका है कि नयनिका को कैंसर है। ऐसे में टिन्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और देखिए कैसे वो अपनी माँ से गले लगकर रो रही है, उससे माफी मांग रही है। ऐसे में माँ ने भी अपनी बेटी को माफ कर दिया है। देखने को मिला माँ बेटी का इमोशनल मोमेंट, जहाँ दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही हैं और एक दूसरे पर प्यार भी जता रही हैं।
1: फिलहाल हमने वो शूट किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने शूट किया है। टिन्नी बहुत रिग्रेट फील करती है और बहुत ही दुखी हो जाती है ये सुन के कि नयनिका को क्या बीमार है। उसे पता चल जाता है कि फाइनली उसे पता चल जाता है कि नयनिका इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एंड फिर वो बहुत दुखी हो जाती है और बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और फाइनली नयनिका माफ़ भी कर देती है टिन्नी को और फिर से उन दोनों का बॉन्ड पहले जैसा हो जाता है। अभी देखते हैं।
0: तो भाई माँ बेटी का बॉन्ड तो ठीक हो गया है, लेकिन घर वालों को नयनिका कैसे समझाएगी और कैसे ईशान के साथ नयनिका की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी, यही है सीरियल में आने वाला ट्विस्ट।
2: हेलो नयनिका, कहाँ हो तुम?
3: तुम्हें किडनैप करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज के बाद ईशान के बिना नयनिका नहीं। आई लव यू ईशान, आई लव यू।

0: इस सपने की तरह क्या हमारी कहानी कभी पूरी होगी?
1: जगदात्री, देखिए आज तो वॉलेट के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि काश आपके पास एक ऐसा मैजिक वॉलेट होता जिसको खोलकर ना आप बंद कर लेती हर परेशानी और हर ट्विस्ट, और फिर उसे इतनी दूर रखाती कहीं लॉक कर कि कभी ना आए आपके पास कोई ऐसी परेशानी जो लेकर आए आपकी आंखों में आंसू। वैसे हमें तो है अपनी जगदात्री पर पूरा विश्वास, लेकर चलते हैं आपको सीधा जगदात्री के सेट पर।
2: गया जगधात्री का दूल्हा।

जी टीवी के सीरियल जगधात्री में फाइनली जगधात्री का इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि शिवाय दूल्हा बनकर पहुंच गया है शादी के मंडप में। और देखिए कैसे शुरू हो गई है शादी की रस्में। दोनों दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और फिर शादी के बंधन में बंधने के लिए मंडप में बैठ भी जाते हैं।

जगधात्री, जिसे लग रहा था कि उसकी हार होगी, लेकिन शिवाय के आने पर उसे कहीं न कहीं खुशी महसूस हो रही है। शादी की रस्में फिर शुरू हो जाती हैं। जगधात्री के पापा कन्यादान की रस्म अदा करते हैं।

और माया जगधात्री और शिवाय दोनों का गठबंधन जोड़ती है और फिर शुरू होते हैं शादी के मंत्र। दोनों एक दूसरे के साथ लेते हैं अग्नि के साथ फेरे।

0: वाइट और रेड, ये मुनावली हमने पहनी हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो महाराष्ट्रन वेडिंग के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं, सिंबल्स होते हैं उनके, वो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं हम। कुछ चीज़ें हमने पहनी हुई है, जैसे मुंडावली है, नथ है, बुगड़ी है, ये हरी चूड़ियाँ हैं विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हैं। एंड शिवाय का मूड कुछ अलग चल रहा है, वो उन्होंने संकल्प तो लिया हुआ है जीवन में कि जगधात्री के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और आई थिंक इट कम्स नेचुरली टू हिम कि वो हमेशा जगधात्री के साथ खड़े रहें। और जबकि वो यहाँ से शादी के मंडप से, मतलब शादी में मौजूद नहीं होते हैं फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बट फिर वो मन बना के आ जाते हैं और शादी का कार्यक्रम शुरू होता है उसके बाद। बट इन दोज मोमेंट्स पता नहीं शिवाय के दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त, बट जगधात्री के माइंड में ये चल रहा है कि वो जब देखती है उन्हें इस रूप में और फिर से एक बार इतने अहम मौके पर वापस आकर स्टैंड लेकर, तो उनके मन में जो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, वो समझ जाती है कि हाँ यही है जो उनके लिए बना है।
1: आज सच आए वे सारा शहर।
2: भाई जगधात्री को शिवाय में अपने असली जीवन साथी की झलक दिख गई है, ऐसे में उसने मन ही मन शिवाय को अपना पति मान ही लिया है, और शिवाय ने उससे वादा भी किया है कि हर कदम पर वो उसका साथ देगा चाहे कुछ भी हो जाए।

0: वहीं दूसरी ओर आरती का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि जगधात्री और शिवाय की शादी हो रही है। ऐसे में उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी शादी रोकने की, लेकिन वो नाकाम रही। तभी तो देखिए कैसे आज आरती का गुस्सा उतर रहा है तपस्या की माँ रेखा पर। लेकिन रेखा भी कम नहीं, वो भी आरती का करारा जवाब दे रही है, जिस पर आरती को और भी गुस्सा आ रहा है।
1: वाह, देखा जगन, पल्लवी, सुनाली, देखा आज आरती देशमुख को उसी के घर में बाहर वाले उसकी औकात याद दिला रहे, ये दिन आ गए हैं। बहुत हो गया ये फ्री का खाना, निकलो।
2: फ्री का खाना? आरती जी, हमने कम कोशिश नहीं की जगधात्री को इस घर से बाहर निकालने की, क्यों सब पता?
1: ओ बहनी, और आपकी सारी कोशिशें, आपकी सारी प्लानिंग जगधात्री के ही काम आई। आज उसकी शादी के मंत्र गूंज रहे इस घर में, मेरी घर में शिवाय के साथ साथ मेरे ले लिया वो, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम?
3: यहाँ बैठ के बस सुन रहे हैं।
0: भाई मंत्र सिर्फ सुन ही नहीं रहे, बल्कि अब तो उन्हें जगधात्री और शिवाय के साथ आगे रहना भी पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जगधात्री और शिवाय शादी के अगले पड़ाव में पहुंच गए हैं, जहां पर शिवाय अपने हाथों से जगधात्री को अपने नाम का मंगलसूत्र पहना रहा है।
4: तेरी बन जाना आज तो सजना,
0: और उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर भी भर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अब भी कश्मकश चल रही है।
5: जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई है मैंने, हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन रियलिटी यही है, हकीकत यही है कि तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं है। तुम्हारा मेन फोकस सिर्फ मिशन पे है, और तुम वापस से एक बार शादी से मिशन के लिए करना चाहती हो, तो एक उम्मीद होती है प्यार में कि शायद प्यार दो तरफा होगा, शायद एक बार तुम मुझसे कह दोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसी उम्मीद पे आज तक मैं था। इस शादी से पहले मैं एक आखिरी बार इनसे पूछता हूँ कि चलो ठीक है, भले ही मिशन की मजबूरी, लेकिन एक बार मेरा दिल रखने के लिए बोल दो। लेकिन इतना ह्यूमिलिएशन इनके साथ होते हुए मैं देख नहीं सकता, तो मैं पहुँच ही जाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि इनका परिवार फिर से इनके साथ बदतमीजी करेगा, और वही है कि मैंने तो बहुत प्यार किया है तुमसे आज तक, तुम मजबूर हो, लेकिन कोई बात नहीं। तो शायद अगर ये प्यार दो तरफा होता तो शायद ये शादी दूसरे तरीके से होती, या पता है मुझे कि ये शादी तो हो रही है लेकिन इसमें प्यार नहीं है, तो मिक्स्ड इमोशंस हैं शिवाय के, जहाँ पे प्यार है नहीं है, फीलिंग्स हैं नहीं हैं, अनकही बातें हैं दोनों के अंदर, उनकी आँखों में है सब कुछ जो आई थिंक शब्दों में बयान ही किया जा सकता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं फेरों के दौरान।
0: अब जगधात्री और शिवाय की शादी तो संपन्न हो गई है, ऐसे में जगधात्री और शिवाय दोनों ने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया।
4: जो खट

0: और तो और आशीर्वाद में आज जगधात्री को माया ने अपने सोने के कंगन भी जगधात्री को पहना दिए और जगधात्री ये प्यार पाकर बहुत खुश है। वैसे सबसे ज्यादा खुश तो इस बात पर है कि शिवाय आज भी उसके साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि जगधात्री कब और कैसे शिवाय से अपने प्यार का इजहार करेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब तो वक्त आ गया है एंटरटेनमेंट के इस वॉलेट को बंद करने का। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर प्रम्बानन में प्रधानमंत्री मोदी ने किए दर्शन, विश्व धरोहर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा भारत।

0: बारिश और खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर। अब तक 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। करनाल में तेज बारिश के बाद खुशी से खिले धान किसानों के चेहरे। पिछले कई दिनों से किसान कर रहे थे बारिश का इंतजार। दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का दौर। अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। गुड़गांव में जल भराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। गुजरात में 1 साथ 4 मॉनसून सिस्टम हो रहे एक्टिव। अगले 24 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। केरलम और महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़ते हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम के साथ की बातचीत। हर संभव मदद का दिया भरोसा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे। 1000 साल पुराने इस हिंदू धरोहर स्थल पर उनका भव्य स्वागत हुआ। तंबानन मंदिर पहुंचने पर बच्चों ने तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का स्वागत किया। भारत इंडोनेशिया दोस्ती की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। पीएम मोदी ने तंबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तुकला इतिहास की जानकारी ली। यूनेस्को विश्व धरोहर तंबानन मंदिर परिसर में 224 मंदिर मौजूद। ये प्राचीन हिंदू संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने तंबानन मंदिर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। इसे भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा। अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इस बार यात्रियों की संख्या में देखने को मिल रही अच्छी खासी बढ़ोतरी। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे शिव भक्त। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह। अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए। पहली बार बेस कैंप पर बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर बनाए गए। अमरनाथ यात्रा में छोटे बच्चों वाले परिवारों को मिली है बड़ी राहत। बालटाल नुनमान बेस कैंप में शुरू किए गए चाइल्ड केयर सेंटर। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर खास जोर है। भक्तों की सेवा में समर्पित कानपुर भंडारा। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में आई गिरावट। लोगों को मिली गर्मी से राहत। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में जल भराव की बनी स्थिति। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी। मानसून की झमाझम बारिश से अलवर के गांव की गलियां पानी पानी। बच्चों ने बहते पानी में खेलकर जमकर मस्ती की। एक गांव में बारिश की वजह से जल भराव हुआ लेकिन बच्चों के साथ बारिश बनी खुशियों की वजह। पानी की बूंदों के बीच में बच्चों ने मनाया मानसून का जश्न। गांव में दिखी बारिश की खूबसूरत तस्वीरें। मुंबई के मरीन ड्राइव में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सैलानियों की बढ़ी संख्या। भिवाड़ी में बारिश के बाद जलभराव के बीच में स्पाइडर मैन बना एक शख्स ट्रैफिक संभालता हुआ नजर आया। अनोखे अंदाज में लोगों से कर रहा अपील। पंजाब के कई इलाकों में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी। मौसम लगातार बना हुआ है बारिश वाला। हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। पहाड़ों पर अचानक से बाढ़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की सलाह। हिमाचल के शिमला में बादल छाए रहेंगे। अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान। मुंबई ठाणे रायगढ़ में बारिश का दौर तेज। तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी। गुजरात और मध्य भारत में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी। उज्जैन में भारी बारिश से जलभराव हुआ। कई मंदिरों में पानी घुसा। श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई। जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। राहत कार्य में जुटी टीमें। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया। तेज बारिश के बाद यह फैसला लिया। सुरक्षा के लिए पुलिया के दोनों ओर कर्मचारियों की तैनाती की गई। पानी का तेज बहाव देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए। मथुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। मुंबई की पवई झील के पास रिहायशी इलाके में घुस गया मगरमच्छ। वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने मिलकर मगरमच्छ को पकड़ा। महाराष्ट्र के सातारा में हुई मूसलाधार बारिश। प्रशासन ने लोगों से नदी नाले और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के पन्ना में भारी बारिश से अस्पताल में भर गया पानी। राहत बचाव के लिए टीमें अलर्ट। गुजरात के वापी में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हुए। घरों और दुकानों में घुस गया पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश का दौर जारी। स्कूल परिसर में भर गया पानी। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके में रेस्क्यू का काम जारी। लापता लोगों की तलाश में जुटी टीमें। पुलिस के साथ फायर रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीमों ने युद्धस्तर पर शुरू किया बचाव अभियान। कई लोगों को सुरक्षित निकाला। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी में फंसी बस। रेस्क्यू टीम ने 50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ। शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ा। दिल्ली के पास गुरुग्राम में जोरदार बारिश हुई। कई इलाकों में जलभराव हुआ। खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की नए स्टेशन की घोषणा। यहां पर ठिकरिया स्टेशनों के बीच में बनेगा नया हाईटेक स्टेशन। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात। गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च। गोरखपुर से 31 जुलाई को शुरू होगी तीर्थ यात्रा। पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। बिहार के कटिहार में स्कूल का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी का सादगी भरा अंदाज। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। हथियार किए बरामद। इसरो ने अपने नाम की एक और बड़ी उपलब्धि। अपने अगले LVM3 मिशन के जरिए क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल फ्लाइट टेस्ट। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया टेस्ट। पहली बार नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल से 22 टन के थ्रस्ट लेवल पर की गई CE20 इंजन की जांच। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM3। ये अपने ऊपरी हिस्से को पावर देने के लिए करता है CE20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल। अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा परियोजना विवाद पर 4 राज्यों के बीच में ऐतिहासिक समझौता। MP गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र के बीच में सुलझा ये मुद्दा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम की नई किट लॉन्च। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे खेल। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों को दी बधाई। लिखा भरोसा है हमारे खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार। महेंद्र सिंह धोनी ने मनाया 45वां जन्मदिन। रांची में फैंस के साथ काटा केक। इस खास मौके पर हैप्पी बर्थडे माही के नारों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। धोनी के लाखों फैंस उनको विश करने पहुंचे। धोनी के जन्मदिन पर तेलुगु फैंस ने NTR जिले में लगाया 77 फुट ऊंचा कट आउट। अपने चहेते दिग्गज खिलाड़ी को दी शुभकामनाएं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है। अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है। जोड़ों में
गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। ये है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से

0: मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनको देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
3: घर के बड़े सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि संस्कारों की सबसे मजबूत नींव होते हैं। दादी की मुस्कान, उनका सलीके से तैयार होना और माथे पर पल्लू रखना आज भी अपनापन और सम्मान का एहसास कराता है। ये कोई पुराना फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की खूबसूरत पहचान है। बदलते दौर में भी ऐसे नज़ारे रिश्तों की गर्माहट और परंपराओं की मिठास को जीवंत रखते हैं। यही संस्कार हर घर को परिवार बनाते हैं। कला और हुनर किसी पहचान या मंच के मोहताज नहीं होते। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला सिर पर पानी से भरा मटका रख कर जिस संतुलन और आत्मविश्वास के साथ घूम रही है वो हर किसी को हैरान कर रहा है। बिना एक बूंद पानी गिराए किया गया ये प्रदर्शन उसकी सालों की मेहनत और अभ्यास की कहानी कहता है। लोग महिला के टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और एकजुटता से भी लड़े जाते हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान जब बमबारी में पुल तबाह हो गए तब सैनिकों को नदी पार कराने के लिए महिलाओं ने खुद पानी में उतरकर मानव पुल बना दिया। ये नज़ारा साहस, टीम वर्क और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जिस देश के लोगों में ऐसा जज्बा हो उसे हराना किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं होता। माँ की ममता अनमोल होती है लेकिन पिता का त्याग भी किसी मिसाल से कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक डिलीवरी बॉय अपनी छोटी बच्ची को सीने से बांध कर काम करता नजर आ रहा है। बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन पिता ने उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई है। रोजी रोटी और बेटी दोनों का फर्ज निभाता ये पिता लोगों का दिल जीत रहा है। बचपन में लंबे लंबे पैरों पर चलते कलाकारों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। तब समझ नहीं आता था कि आखिर वे इतनी ऊंचाई पर संतुलन कैसे बना लेते हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कलाकार बड़ी सहजता से स्टिल्ट यानी लंबे खम्भों पर चढ़कर चलता नजर आ रहा है। सालों की मेहनत, अभ्यास और बेहतरीन संतुलन का ये प्रदर्शन लोगों को बचपन की यादों में भी ले जा रहा है।
4: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
6: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने मंदिर प्रम्बानन में प्रधानमंत्री मोदी ने किए दर्शन, विश्व धरोहर के जीर्णोद्वार में मदद करेगा भारत।

0: बारिश और खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ यात्रियों का उत्साह चरम पर, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। करनाल में तेज बारिश के बाद खुशी से खिले धान किसानों के चेहरे, पिछले कई दिनों से किसान कर रहे थे बारिश का इंतजार। दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का दौर, अगले 2 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, गुड़गांव में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। गुजरात में 1 से 4 मॉनसून सिस्टम हो रहे एक्टिव, अगले 24 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। केरलम और महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़ते हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम के साथ की बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव, और आज हम बात करेंगे प्रार्थना की शक्ति की। ईश्वर की आराधना सच्चे मन से की जाए तो प्रार्थना का संपूर्ण फल मिल सकता है। माना जाता है कि अगर प्रार्थना सच्चे मन से की जाए तो उसके प्रभाव से आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ जाती है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप कर्म ही ना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन प्रार्थना तभी स्वीकार होती है जब इसे करने का तरीका सही हो। तो ऐसे में आइए जानते हैं प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है और क्या है प्रार्थना के नियम।

0: अरदास, दुआ, हृदय की आवाज। ईश्वर से वार्तालाप है प्रार्थना। परम शक्ति का आह्वान है प्रार्थना। ईश्वर को हृदय की बात कहना और कृपा दृष्टि बनाए रखने की कामना करना, यही तो है प्रार्थना। प्रार्थना के कई स्वरूप हमारे सामने आते हैं। कोई कहता है कि भगवान की स्तुति और चरण वंदना है प्रार्थना, तो कोई कहता है कि मन, कर्म और वचन से अपने इष्ट देव को पुकारना है प्रार्थना। आस्था कहती है कि जब मुश्किल में होती है जीवन की नैया, तब संकटों से बाहर परमेश्वर ही निकालते हैं हमारी नैया। जानकार बताते हैं कि ये अनुभूति विरले लोगों को हासिल होती है, जब आपका मन ईश्वर से एकाकार होता है। माना जाता है कि उस समय ईश्वर आपके रक्षक और मार्गदर्शक दोनों बन जाते हैं। आस्था कहती है कि भक्त की करुण आवाज सुनकर भगवान दौड़े आते हैं। कहा भी जाता है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, लेकिन जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं, उनकी अर्जी अवश्य पूर्ण करते हैं भगवान। आज हम आपको प्रार्थना की शक्ति और उसके चमत्कारों की महिमा बताएंगे। हाथ जोड़े, सिर झुकाए, मन ही मन में कामना हर कोई करता है। देवालयों में भक्तों की तादाद प्रार्थना की शक्ति बयां करती है। तो आज हम आपको प्रार्थना की ताकत और प्रार्थना करने के सही तरीके आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी प्रार्थना भी ईश्वर तक विधिवत पहुंच सके।
1: प्रार्थना का अर्थ है अपने आप को उस ईश्वरीय शक्ति के समक्ष नतमस्तक या समर्पण कर देना। जब हम अपने से बड़े या भगवान या किसी के निमित्त अलग अलग प्रकार के मंत्र हम बोल सकते हैं या वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, इन्हीं शब्दों को विशेष तौर पे जब हम बोलते हैं तो उसको प्रार्थना कही जाती है।
0: ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। प्रार्थना से व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है। प्रार्थना की वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। यानी जब बुरा दौर आता है और इंसान की फितरत ही ऐसी बन गई है कि उसे बुरे दौर में ही ईश्वर की याद आती है। कहा भी गया है कि ईश्वर का सुमिरन सुख में करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में दुखों का अंत हो जाए।
1: ये सरासर जगत जो है ना, शब्द ब्रह्म है ऐसा कहा जाता है। और एक हमारी जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो अपना रूप परिवर्तित करती है। तो जब हम अपने विशेष प्रकार के शुभ और मंत्र, जिन्हें हम बोलते हैं, वाक्यों को, शब्दों को हम बोलते हैं, तो व्यक्ति के साथ साथ उनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है और वो ऊर्जा चारों ओर फैलकर हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। इसलिए प्रार्थना का तुरंत लाभ मिलता है।
0: कभी कभी लगता है कि आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर आपकी कामना क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो अगर आप इस स्थिति में हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं।
1: ब्रह्मांड के अंदर हमारी प्रार्थना अनसुनी रहने के मात्र वही कारण, हमने सही स्थिति में, सही जगह पे और सही प्रार्थना नहीं की। हमारे मन में भाव है दूषित, हम चाहते हैं कि उसने मुझे पीड़ा दी, उसको पीड़ा दे, तो ये प्रार्थना नहीं है, ये श्राप है। तो भगवान आपको ये कहता है कि आपके लिए यदि किसी ने आपको बुरा दिया है तो ब्रह्मांड उसको उसका फल देगा, परंतु आप भगवान से अपने कल्याण की कामना करें। आप अपने कल्याण की कामना और दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, शुद्ध विचार रखेंगे, शुद्धता से जब कार्य करेंगे तो आपकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं आएगी।
0: आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है, और तार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। माना भी जाता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, फिर क्यों हम धर्म से विमुख हो जाते हैं, अधर्म और अनीति पर चलने लगते हैं? यही कारण होता है कि ईश्वर भी उनसे अपना मुख मोड़ लेते हैं जो सत्कर्म नहीं करते। इसके अलावा भी एक कारण ये भी माना गया है कि आपकी प्रार्थनाएं तब स्वीकार नहीं होती, तो हो सकता है कि आप सही ढंग और सच्चे मन से प्रार्थना ही न कर रहे हों। चलिए हम आपको बताते हैं प्रार्थना से जुड़े नियम।
1: प्रार्थना सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करने, शुद्ध से मतलब स्नान आदि, हाथ पांव धो के नहीं तो, और साफ स्वस्थ वातावरण में, क्योंकि वातावरण का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप एक दुर्गंध युक्त वातावरण में बैठ के करेंगे तो आपके मन से वो भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे, शब्दों में जान नहीं आ पाएगी। तो स्वच्छ रह के शुद्ध वातावरण में और एकांत में करें, या धार्मिक स्थान जैसे मंदिर। मंदिर हमारा इतना सुंदर व्यवस्था होती है कि जहां हम बोलते उसका वाइब्रेशन उसके गोपुर में बहुत अधिक फैलता है, तो कई गुना फल हो जाता है, वहां पर करनी चाहिए।
0: सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए, आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है। मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना मत करें। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचें, फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थनाएं, चाहे जो हो, चाहे आप धन संपत्ति चाहते हो, संतान की इच्छा रखते हो, या फिर अच्छी नौकरी चाहते हो, सभी तरह की इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। प्रार्थना का सटीक तरीका हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: प्रार्थना भक्त को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। प्रार्थना से जुड़े कई पहलू हैं जो आपके लिए जानने काफी जरूरी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रार्थना करने का सही तरीका आखिर क्या है।

0: प्रार्थना है हृदय का उद्गार। प्रार्थना से होगा ईश्वर का साक्षात्कार। माना जाता है कि भावहिल भक्त की वेदना से ईश्वर का दरबार डोल जाता है। प्रार्थना चाहे एकांत में की गई हो या सामूहिक, इसका प्रभाव आपके मंतव्य पर निर्भर करता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि यदि आपकी प्रार्थना सच्ची है तो इसका असर होकर ही रहेगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलकर ही रहेगा। सनातन संस्कृति का विश्वास है कि हम यदि नित्य ही ईश्वर की वंदना करें तो संकट हमें छू भी नहीं सकता। कबीर दास जी कहते भी हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह हमारी आस्था ही है जो कहती है कि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो आए हुए संकट में भी ईश्वर हमें बचा लेते हैं, और ये सब हमारी प्रार्थना की शक्ति का ही कमाल होता है। और वो शक्ति तब और बढ़ जाती है जब कई लोग एक ही साथ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की शक्ति बड़ी प्रबल होती है और वो नियति को भी बदल कर रख देती है और आपकी मनचाही इच्छा पूरी करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे करें प्रार्थना, तो चलिए आपको प्रार्थना करने का सही तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक एकांत स्थान में बैठें, उसके बाद रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। फिर सबसे पहले अपने ईश गुरु या ईश्वर का ध्यान करें, उसके बाद जो प्रार्थना करनी है उसे करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें, जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें।
1: सबसे पहले प्रार्थना करने का अर्थ है अपने आप को अच्छा करना, अपने आप को शुद्ध करना। प्रार्थना कई प्रकार की हो सकती है। प्रार्थना आपकी कामना पूर्ति होने की प्रार्थना भी हो सकती है और एक अपनी आध्यात्मिक अपनी उन्नति के लिए भी हो सकती है। दोनों के लिए भी फल मिलता ही मिलता है। केवल इस बात का सावधानी रखनी चाहिए कि किसी का अनिष्ट करने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये मंत्र या हम ये मानसिक जब ये हमारी तरंगे चलती हैं तो सबसे पहले हमें नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसा ना करें।
0: माना जाता है कि प्रार्थना एक माध्यम है आत्मा और परमात्मा के बीच का। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर निराशा और नकारात्मक भावों को नष्ट कर देती है। बस सच्चे मन से अपने ईश्वर को याद करके प्रार्थना करें और बार बार प्रार्थना करें, क्योंकि सच्चे मन से और दिल से निकलने वाली प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। लेकिन प्रार्थना का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्म छोड़ दें। तो अब समझिए प्रार्थना में बसी शक्तियों के बारे में। प्रार्थना से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रार्थना करने से मनुष्य भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। कर्म का स्थान प्रार्थना नहीं ले सकती, प्रार्थना का स्थान कर्म नहीं ले सकता। प्रार्थना ईश्वर के साथ संबंध को गहरा करती है। प्रार्थना व्यक्ति को उसकी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ने में मदद करती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रार्थना करने के लाभ कौन कौन से हैं और किस तरह से प्रार्थना न सिर्फ हमारी रक्षा करती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व में भी चार चांद लगाती है।
1: आप सही जगह पर और सही स्थिति में अगर प्रार्थना करते तो उसका निश्चित लाभ मिलता है। आप जब एक बार मन से ईश्वरीय जिसमें आपकी श्रद्धा है अगाध श्रद्धा से समर्पण भाव से उन मंत्रों का या उनका नाम लेकर पुकारते हैं, सबसे पहले आपके तन और मन की स्थितियां सुधरने लगती है। आप किसी भी विकट परिस्थिति में फंसे हो, इन स्वरूपों में आप तुरंत उन विकट परिस्थितियों का हल निकाल लेते हैं। तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति आपको ये आपका आत्मबल बढ़ाती है और आप उससे बाहर आ जाते हैं।
0: प्रार्थना शरीर और आत्मा को शक्ति देती है, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है। प्रार्थना व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाती है जिससे वे अधिक साहसी और दृढ़ बनते हैं। प्रार्थना व्यक्ति की इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से जोड़ती है, व्यक्ति के चरित्र को आकार देती है। ईश्वरीय सहायता से व्यक्ति में आंतरिक बदलाव होता है। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है।
1: जिस भाव की आपको करना चाहते हो, अपने आराध्य, अपने इष्ट या जिससे आपकी मानसिक कामना है उसके मंदिर आदि उसके द्वार पर बैठकर करें, शुद्ध भावना से करें, तो उसमें विशेष तौर पर आपको फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर रोग है, आपके ऊपर कोई मुकदमा है, तो हनुमान जी के मंदिर में बैठ के उनके द्वार पर बैठकर या मंदिर के अंदर बैठकर लाल रंग के वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को और हनुमान जी के आगे राम जी की उपासना करने, राम के नाम का जाप करने वाले से तुरंत हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, मुकदमे में रोग में लाभ दे देंगे आपको। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को इसी प्रकार से अलग अलग देवताओं या ईश्वर की अलग अलग स्वरूप की उपासना करने से तुरंत से पहले आपके प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे।
0: प्रार्थना के मूल में यही भाव है कि कर्म तो व्यक्ति को करना ही होगा, क्योंकि उसके लिए किए गए कर्म का फल निष्फल नहीं जाएगा, लेकिन उस कर्म की प्रेरणा प्रार्थना से ही मिलेगी। इसलिए आप भी कर्म तो करें ही, साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना भी करें, ताकि ईश्वर से आपके मन का जुड़ाव हो सके और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो सके।
2: प्रार्थना से न सिर्फ हमारा मन निर्मल होता है, बल्कि ईश्वर के साथ एकाकीकार करने का माध्यम भी है। सभी धर्मों में प्रार्थना करने का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। सभी धर्म गुरुओं और संतों ने प्रार्थना को मोक्ष का द्वार कहा है। प्रार्थना की शक्ति को अगर आपने समझ लिया तो ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी।
0: ईश्वर को पाने की राह है प्रार्थना। परमात्मा से एकाकार होने का भाव है प्रार्थना। जब व्यक्ति अपने इष्ट के सामने ध्यान लगाता है या निवेदन करता है, तो व्यक्ति का मन निर्मल होकर दिव्य और अलौकिक अनुभूति करता है। ये प्रार्थना मन के अंतःकरण से निकलकर प्रभु के द्वार तक जाती है और वहां से आशीर्वाद स्वरूप में लौट कर आती है। आस्था कहती है कि हम कहीं से भी ईश्वर को पुकार सकते हैं। माना जाता है कि प्रार्थना करते समय स्थान का उतना महत्व नहीं रह जाता है जितना भाव का होता है।
1: ईश्वरीय आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, शरीर ठीक होता है, और ईश्वर से सत्य भावना से सही स्थिति में मांगने वाले व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। तीन प्रकार से हो सकती है। एक मानसिक हो सकती है, मनी मन प्रार्थना करें। एक उपांशोते मतलब बोल के धीरे धीरे के इतना, और एक इतना वाचिक हो सकती है कि हम जोर जोर की बोलें। हर प्रकार की उसका प्रार्थना का लाभ निश्चित शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से होता ही है।
0: गीता का भाव कहता है कि संसार में हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही हमें वापस जाना है। जो कुछ भी हमें यहाँ मिला उसका भोग करके यहीं पर छोड़कर चले जाना है। भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है, फिर भी विशेष अनुग्रह की चाह में हम विधाता से फरियाद करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा के भाव से ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि प्रार्थना से हमारे तन और मन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। प्रार्थना से हमारा मस्तिष्क स्वच्छ विचारों को धारण कर स्वस्थ बनता है। प्रार्थना से हमारे मनोविकार दूर होते हैं। प्रार्थना हमें विनम्र और विनयी बनाती है। प्रार्थना मन में ऊर्जा का संचार करती है। प्रार्थना ईश्वर में लीन होने का एक माध्यम है। प्रार्थना की सार्थकता वर्तमान समय में बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रार्थना हमें अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करने का अभ्यास कराती है, जिससे आप अपनी मंजिल पा सकें, या फिर आपने जो चुनौती स्वीकार की है, जो संकल्प किया है, उसे आप सफलता पूर्वक पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है उस परम सत्ता का अनुभव करना और उसका साधुवाद करना, जो हमारी संस्कृति का सार है। प्रार्थना याचना नहीं है। प्रार्थना ईश्वर और मानव के प्रति एकत्व का माध्यम है। प्रार्थना आत्मा की पुकार है। प्रार्थना आत्मशुद्धि का आह्वान है। माना जाता है कि प्रार्थना हमारे भीतर विनम्रता को निमंत्रण देती है। ईश्वर से प्रार्थना करना दरअसल कर्म को ईश्वरीय मार्ग से जोड़ने की कोशिश है। माना जाता है कि ईश्वर से की गई प्रार्थना से आंतरिक बल मिलता है, जिससे मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो आप प्रार्थना की शक्ति को पहचानिए और ईश्वर से जुड़कर अपना जीवन धन्य कर लीजिए।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. One more time. or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s Hits or ask your device to play 90s Hits on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: चलिए अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां दुर्गा पूजा का रंग अभी से चढ़ने लगा है। हालांकि दुर्गा पूजा के शुभारंभ में अभी वक्त बचा है, लेकिन शहर की मशहूर चोर बागान दुर्गोत्सव समिति ने दुर्गा पूजा का एक भव्य म्यूरल पेश किया है। इस म्यूरल के जरिए एक तरह से कोलकाता में मां दुर्गा के आगमन का शंखनाद हो चुका है। देखिए कोलकाता से हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
2: दुर्गा पूजा भले ही दूर है, लेकिन कोलकाता पर इस त्योहार का रंग अभी से चढ़ने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी शहर मां के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है, और इसकी पहली खूबसूरत झलक चोर बागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के भव्य म्यूरल में देखने को मिली है। दुर्गा पूजा भले इस साल अक्टूबर में है, लेकिन कोलकाता इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर देता है। कहीं पंडालों के डिजाइन तैयार होने लगते हैं, तो कहीं मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ थीम को अंतिम रूप देने लग जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चोर बागान दुर्गोत्सव समिति ने इस साल के उत्सव का म्यूरल सबके सामने रख दिया है।
3: ये बनाने में, ये चित्र बनाने में टोटल हम लोगों को 4 दिन समय लगा है। आज से हम लोगों के दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है, आज जी खूंटी पूजा के माध्यम से। और साल का जो हमारा थीम भी है वो है अकाल बोधन। हम जानते हैं कि जिस वक्त हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, असल में वो भगवान श्री राम जी ने ही वो अकाल बोधन किया था। अब उस समय के अकाल बोधन को इस समय से मिलाने का एक चैलेंज है।
2: दरअसल म्यूरल किसी बड़ी दीवार पर बनाई गई ऐसी विशाल चित्रकला, जो केवल देखने के लिए नहीं होती बल्कि एक संदेश भी देती है। इस म्यूरल में माँ दुर्गा के स्वागत की भावना, बंगाल की लोक संस्कृति और उत्सव की ऊर्जा को खूबसूरती से उकेरा गया है। चोर बागान दुर्गोत्सव समिति हर साल अपने अलग थीम और भव्य पंडाल के लिए जानी जाती है। इस बार भी म्यूरल के जरिए उसने जता दिया है कि उत्सव की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे महालया और फिर षष्ठी करीब आएगी, वैसे वैसे कोलकाता की गलियां दुर्गा पूजा के उत्सव में रंगती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए जन्मदिन तो आपने इंसानों के बहुत ज्यादा देखे होंगे, लेकिन जरा मिलिए इस VIP बर्थडे बॉय के साथ। इसके लिए कद्दू की शाही बग्घी बनी, फलों और सब्जियों का स्पेशल केक तैयार हुआ। गर्मी से बचाने के लिए मिस्ट स्प्रे का इंतजाम किया गया। चीन के चोंगकिंग जू में जॉइंट पांडा मांग कान कान का तीसरा जन्मदिन कुछ यूं मनाया गया।
2: यह है चीन के चोंगकिंग जू का सबसे खास मेहमान जायंट पांडा मांग कान कान। तीसरे जन्मदिन पर इसके लिए किसी शाही दावत से कम इंतजाम नहीं किए गए। देखभाल करने वालों ने फलों और सब्जियों से खूबसूरत केक तैयार किया, जिसमें कद्दू की बग्घी और खरबूजे से बनी फूलों की टोकरी सबका ध्यान खींच रही थी। जैसे ही बर्थडे ट्रीट सामने आई, मांग कान कान भी पूरे मजे से अपने पसंदीदा फल और सब्जियों का स्वाद लेने लगा। गर्मी से राहत देने के लिए बर्फ और मिस्ट स्प्रे का इंतजाम भी किया गया, ताकि बर्थडे बॉय पूरे आराम से अपना दिन एंजॉय कर सके। मांग कान कान का जन्मदिन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जू पहुंचे। किसी ने तस्वीरें खींची तो किसी ने वीडियो बनाकर इस खास पल को कैमरे में कैद किया। कद्दू की गाड़ी, फलों का केक और ढेर सारा प्यार, इन सब ने इस नन्हे पांडा का तीसरा जन्मदिन यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर या फिर कुछ और पर्यटन स्थलों को देखने के लिए सैलानी आए, तो आप अपने आसपास की उन खूबसूरत जगहों की तस्वीरें जीएनटी को भेजिए, ताकि हम आपके भेजे गए उन वीडियोस को दिखा पाएं। हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस हमें भेज रहे हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक अनछुए पर्यटन स्थल चूड़धार पीक पर, जहां अध्यात्म का एहसास है तो ट्रैकिंग का एडवेंचर भी आपको मिलेगा।

आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ट्रैक पर जो एक आध्यात्मिक ट्रैक है। इसका नाम है चूरधार पीक। और इस शिखर तक पहुंचने के लिए आपको मेरी तरह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर आना होगा, जहां नोहराधार से होते हुए घने जंगलों, पहाड़ी रास्तों और खूबसूरत घाटियों को पार करते हुए हम इस चूरधार शिखर तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि चूरधार सिरमौर में शिवालिक माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और ये पीक हिमाचल उत्तराखंड के लोगों के आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोभूमि भी है। इसलिए यहाँ बने भोलेनाथ के मंदिर का भी आस्थावानों के बीच काफी महत्व रहा है। जब आप तकरीबन 8 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई कर यहाँ पहुँचते हैं तो नेचर अपने कई रंगों के साथ आपका स्वागत करेगी। कहीं बुरान से लदे पौधे तो कहीं सर्दियों में बर्फ का दीदार भी होगा। नेचुरल ब्यूटी से भरे चूरधारा पीक का नजारा न केवल अध्यात्म का एहसास देता आया है बल्कि तन मन को भी सुकून देता है। तो अगर आप देश के अनछुए पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरी नजर में चूरधार पीक द बेस्ट प्लेस है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
3: If one party is saying we will never raise taxes even on millionaires and billionaires.
2: More top sports.
4: And he's gonna go! There's the tying goal!
2: And everything in between.
4: This game is over!
2: Upgrade now for the premium listening experience.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
8: NCR में जारी है बारिश का दौर, अगले दो दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में जल भराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। चार मॉनसून सिस्टम एक्टिव, अगले 24 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। करनाल में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसल को हो रहा है लाभ, पिछले कई दिनों से किसान कर रहे थे बारिश का इंतजार। जम्मू कश्मीर में धूमधाम से जारी अमरनाथ यात्रा, बारिश और खराब मौसम पर आस्था भारी, अब तक 1,00,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े प्रंबानन हिंदू मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना की, बोले हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला।

0: सक्षम शादी की शपथ आज इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। और शादी और करियर सभी की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक अहम फैसला भी होता है, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच एक लकीर खींचनी जरूरी होती है। इसी पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक अहम बयान दिया है। आखिर सात फेरों पर क्या दी है उन्होंने बड़ी सीख। शादी से पहले आप निर्भरता क्यों जरूरी है। जीवन साथी पर संयम, संस्कार, संकल्प का मंत्र कैसे करेगा काम, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजशास्त्री, साइकोलॉजिस्ट और समाजसेवी मौजूद रहेंगे। तो युवाओं को शादी और करियर पर अहम सीख दी गई है, इसको लेकर यूपी की राज्यपाल का एक बयान चर्चा में है। दरअसल आनंदीबेन पटेल ने लड़कियों को खास तौर पर एक अहम सीख, एक अहम सलाह दी है। उन्होंने साफ किया है कि वो लव मैरिज की विरोधी नहीं है, पर आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। दरअसल लखनऊ में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने यह बयान दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में यह समारोह हुआ था। इसमें राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को उपाधि पुरस्कार बांटे। साथ ही दीक्षांत समारोह में मां बेटी सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। और इसी दौरान राज्यपाल ने पहले पढ़ाई करियर पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी को पसंद किया है तो आत्मनिर्भर न होने तक शादी न करें। सम्मेलन में छात्राओं के स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाया गया। उनका तर्क है कि समाज में कई महिलाएं सबके, खासतौर पर युवाओं के लिए एक मिसाल बनी है। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम उन्होंने लिया, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स भी एक मिसाल है। यानी कि महिलाओं के स्वाभिमान की पहली सीढ़ी होती है आत्मनिर्भरता। और इसी तरह राज्यपाल ने महिलाओं को समाज में बराबरी के हक वाली अहम सीख दी है, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ये किसी पर डिपेंड ना हो, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सके। तो आइए आपको कुछ और महिलाओं के उदाहरण भी बता देते हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है समाज में। इसमें टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा शामिल है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पूर्व डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है। साथ ही निशानेबाज मनु भाकर भी सुर्खियों में है। और इनके अलावा वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी का नाम भी आता है। साथ ही साथ वायुसेना की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट ने भी मिसाल कायम की है और वो युवाओं को सीख दे रही हैं कि पढ़ाई लिखाई और अलग राह अपनाकर ऐसे कामयाबी छुई जा सकती है। लेकिन आनंदीबेन पटेल ने क्या सीख दी है महिलाओं को, वो सुनवाते हैं आपको।
1: आपका प्रेम उनके साथ है, उनका भी प्रेम आपके साथ है, तो जब तक पगभर न हो, आत्मनिर्भर न हो, तब तक नो मैरिज, ये आपकी संकल्प होनी चाहिए। मित्रों, मैं लव मैरिज का विरोध नहीं करती हूँ मित्रों, लेकिन जो दशा हो रही है महिलाओं की, बेटियों की, क्या प्राप्त हुआ।
0: तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मीनल पाठक, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ परवेश मलिक हैं, फाउंडर हैं मिशन जागृति के। आप दोनों का स्वागत है। साथ ही साथ दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मीनल आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की जो सलाह है उस पर आपका विचार क्या है। मीनल, मेरी आवाज अब तक आ रही है? चले परेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आनंदीबेन पटेल की सलाह को आप किस तरीके से देखते हैं?
2: नमस्कार पहले तो, और गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को, सभी को नमस्कार। और मैं हमेशा कहता हूं कि गुड न्यूज टुडे हमेशा अच्छी खबरों को साथ लेकर आता है, तो उस मुद्दे पर आज मैं माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुद्दे पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बात तो लव मैरिज का उन्होंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, और जो आज के दौर में जो जरूरत है किसी भी लड़के लड़की को विवाह के बाद में मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर होना बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों जब विवाह के बंधन में बनते हैं तो वो सिर्फ दोनों का ही नहीं होता, वो एक पूरा दो परिवारों का भी होता है और उनका आगे भविष्य भी होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आजकल हम देखते हैं कि दिल्ली NCR में तो चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन गाँव देहात के इलाकों में आज भी महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अत्याचार होता रहता है, हम देखते रहते हैं मीडिया के माध्यम से। लेकिन जब लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी और आत्मनिर्भर होने के बाद वो एक विवाह के बंधन में बंधती हैं तो मुझे लगता है कि उनका जीवन अधिक सुगमता से और अच्छे तरीके से चल सकता है।
0: आपने यहाँ पर एक लाइन बोली जिसका जिक्र किया कि चले दिल्ली NCR तो नहीं, यानी कि आप कहना ये चाह रहे कि मेट्रो सिटीज में तो नहीं, लेकिन हम जब गांव देहात में इस तरह की बात करते हैं। आनंदीबेन पटेल की जो सीख है वो एक तरीके से देश की महिलाओं के लिए, हर महिला के लिए है कि आप पहले आत्मनिर्भर हो और फिर उसके बाद आप शादी का रास्ता चुने। लेकिन सर सवाल यहां पर यही है, मीनल के पास चले उससे पहले एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर लूं, सवाल यहां पर यही है कि हमारा समाज उस तरह की लिबर्टी देता है क्या? चलिए मेट्रो सिटीज में कह सकते हैं आजकल पेरेंट्स या फिर आजकल कपल्स भी बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है, इंडिपेंडेंट है, वो भी चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आज भी गांव देहात दूर दराज के इलाकों में हर तबके के लोगों में क्या वाकई ऐसा होता है, इतनी लिबर्टी मिल पा रही है महिलाओं को?
2: नहीं, एज ए NGO और एज ए सोशल एक्टिविस्ट के माध्यम से मैं, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आज भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जो दूर दराज के जो राज्य हैं, उनमें आज भी महिलाओं की वो सिचुएशन नहीं है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिनकी वजह से वो आत्मनिर्भर बन सके। वो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो जो पुरानी रूढ़िवादी बेड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहता हूं कि पहले की तुलना में और आज की तुलना में अंतर बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी भी हम देखते हैं तो गांव देहात से दूर दराज से बहुत सारी लड़कियां अपने बलबूते पर, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं और वो बेड़ियों को तोड़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं।
0: देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सबसे बड़ी मिसाल है इसकी, किस जगह से कहां से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन एक चीज तो है कि संघर्ष आज भी महिलाओं को करना पड़ रहा है। चलिए इसी को लेकर चर्चा आपसे मैं आगे करूंगी। सीमा समृद्धि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप चर्चा सुन रही हो, इस चर्चा में शामिल हो, पहले तो सवाल यही कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल की जो सलाह है उसको लेकर आपकी राय क्या है और क्या प्रैक्टिकली, क्योंकि सवाल मेरा यही था, क्या आज भी हम शहरों की मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, यहाँ पर महिलाओं को फुल इंडिपेंडेंस है, उनके पास, उनको तमाम कानून का पता है, कायदे कानून सब कुछ पता है, अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश भी करेगा तो उनको पता है कि कौन सा रास्ता लेकर जाना है और किस तरीके से वो अपने आत्मनिर्भर बन सकती हैं, लेकिन क्या ये चीज हम दूर दराज के इलाके, गाँव देहात, हर तबके के लोगों में क्या वाकई इतनी सोच में बदलाव आया है या नहीं? दोनों सवालों का जवाब सीमा जी।
3: देखिए नवजोत जी, यहाँ पर सिर्फ बात मेट्रो सिटी या फिर गांव की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है देश की 50% आबादी की, उनके हक अधिकार के, उनके अपने खुद के निर्णय, उनकी स्वतंत्रता, इन सारी चीजों की बात हो रही है। अब हमारा देश दो तीन धड़ों में बटा हुआ है, अगर हम कस्बा की बात करें, हम मेट्रो सिटीज की बात करें और हम गांव की बात करें, अगर इन सारी चीजों में हम फीमेल राइट को ही अलग अलग तरीके से डिफाइन करने लगेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो माननीय राज्यपाल आनंदी भाई बेन पटेल जी का जो सजेशन है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि वो जो बेटियां अगर अपने लाइफ की निर्णय ले रही हैं और जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो फिर ऐसे में वो कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी। और ये आज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं देख रही हूँ कि जो बेटियां अपने जीवन के निर्णय खुद ले रही हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उसके बाद अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, तो उनको समाज एज ए विमेन, एज ए इंडिपेंडेंट फीमेल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उनको एक फाइनेंशियली, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो हमने उनको सीमित कर दिया कि पैसे से तो सब कुछ नहीं हो जाता है, अगर सपोर्ट है, लेकिन सामाजिक उनकी स्वीकारता अभी भी नहीं है, ये सच है। एक बेटा बेटी दोनों अगर रिलेशनशिप में आते हैं और उनकी मैरिज नहीं हुई है, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उस बेटी पर डालने की बजाय उसका करेक्टर असैसिनेशन करने की जगह हम उसके पार्टनर को इक्वली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे और हम उस बेटी का चरित्र का हनन करने लगते हैं और उनको हम बहुत सारे सजेशन देते हैं। नो डाउट उनके उनकी फ्रीडम के लिए, उनके राइट के लिए, उनको अपनी लाइफ से एक सिक्योर करने के लिए हमें सजेशन दें, लेकिन सोसाइटी का जो पार्ट उनके डिसीजन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन लोगों के अंदर, उन पुरुषों के अंदर भी, और इवन की पुरुष क्या महिला, उनके अंदर एक्सेप्टेंस वो डेवलप होनी चाहिए। तो फिर शायद मुझे लगता है कि कोई भी बेटी अगर इस तरीके से परेशान होगी तो कई केसेस में तो देखा कि सुसाइड कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अभी रिसेंटली, शायद 2 महीने पहले की बात है, कि एक बच्ची, उसका रेप हुआ था, उसके बाद वो बेटी 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी, 6 या 7 मंथ की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये उसको राइट दिया कि उसकी इंडिविजुअल, उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो उस अनवांटेड चाइल्ड को
0: जी
3: रख सकती है या नहीं। तो एक तरफ हमारे सर्वोच्च न्यायालय की इंटरप्रिटेशन है जो कि एक पॉजिटिव प्रोग्रेस
0: नहीं, कानून तो देखिए इस मामले में, अब जब आपने शुरुआत ही अपने जवाब की थी कि 50% आबादी की बात है, देखिए कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन वही बात है, आपने जवाब उसका भी रखा है कि समाज कितना उस चीज को एक्सेप्ट करता है। आनंदीबेन पटेल की राय बहुत सही है, एकदम सही उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पहले आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, और उसके बाद फिर आप अपने फैमिली की प्लानिंग करो। डॉक्टर निशा, मेरे ख्याल से आजकल जब आप काउंसलिंग करती होंगी, ऐसा कहा जाता है, और इनफैक्ट आजकल इस बात की शुरुआत हो भी गई है कि जब भी एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उससे पहले एटलीस्ट वो एक काउंसलिंग सेशन इस तरह का ले ले। बहुत जगह इस तरह की चीजें मैंडेटरी भी हैं, और आजकल परिवार भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हम एक बार काउंसलर के पास जाएं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि कानून ने तो हक दिया है, लेकिन क्या हमारा समाज उतना हक देता है?
4: देखिए, आई वुड से दैट अगर जो हस्बैंड वाइफ या प्री पैरेंटल काउंसलिंग के लिए अगर कपल जाते हैं तो ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और मुझे जो उनके बयान से लगता है, देखिए अगर आत्मनिर्भरता की हम जब बात करते हैं तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल लेवल पर नहीं होती, वो एक थॉट लेवल पर भी होती है, आपके इमोशनल लेवल पर भी है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी के बहुत फैसले आप अपनी मर्जी से करते हैं या अपने परिवार वालों की मर्जी से करते हैं, और क्या आप उन फैसलों को लेने में सक्षम है कि नहीं है, वो भी एक बहुत जरूरी बात है। अगर आप उन फैसलों को, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से या कमाना भी जरूरी नहीं है, आप उसको कैसे संभालते हैं, कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में भी बहुत सारी वुमेन अगर डिपेंडेंट नहीं है, हम आत्मनिर्भरता सिखाते हैं इवन बियॉन्ड जेंडर, आई थिंक सो वो होनी जरूरी है। कई बार क्या होता है, मेन भी और बॉयज भी जब उनकी शादियां होती हैं, वो अपने पेरेंट्स के बिजनेस को ज्वाइन किया होता है किसी ने, तो कई बार वो सेटल नहीं होते, एक अच्छी फैमिली से होते हैं तो लड़के की भी नई नई जॉब लगी है तो शायद वो भी जॉब में सेटलमेंट या परमानेंसी नहीं है और उसको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कई बार उसको लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं। पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि जब शादी होती है तो दो लोगों के में बीच में, अगर परिवार हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है कि जब भी शादियां होती है तो परिवार दो परिवारों में होती है ऐसा माना जाता है, तो कई बार फैमिली इंटरफेरेंस भी आती है, और कहाँ फैमिली को इंटरफेरेंस करनी चाहिए, कहाँ नहीं, कहाँ पर बाउंड्रीज होनी चाहिए, कहाँ नहीं। और ये सिर्फ बाउंड्रीज पेरेंट्स को लेकर नहीं है, इवन आप अपने काम पर कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपने मोबाइल पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ओवरऑल हर रिलेशनशिप में आप अपने एक्सेस के साथ कितना संबंध रख रहे हैं, आपके एक्सेस आपकी प्रेजेंट लाइफ का हिस्सा है नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो ऐसे में लोगों से मिलना जुलना भी रहता है, आप सोशलाइज कर रहे हैं, आप कितना फ्रीक्वेंट करना चाहते हैं, तो जो प्री मैरिटल काउंसलिंग है उसमें आत्मनिर्भरता की बात आती है, तो ये सारे मुद्दे उसमें कवर होते हैं। तो हम सिर्फ आत्मनिर्भरता में फाइनेंशियल चीजों की बात नहीं कर सकते, अगर छोटी उम्र में शादी होती 21-22 साल की, तो क्या आगे पार्टनर पढ़ना चाहता है नहीं पढ़ना चाहता, अभी बच्चे करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये सारे मुद्दे उस पर्टिकुलर एक टॉपिक के अंदर आते हैं और इस शब्द के अंदर आते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है।
0: ठीक है, मीन अलब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, जो सीख दी है आनंदीबेन पटेल ने वो बराबरी की सीख दी है, कानून, समाज, हर जगह, इनफैक्ट हमारा धर्म भी बराबरी की सीख ही देता है, लेकिन सवाल वहां पर यही आता है कि क्या समाज उसको एक्सेप्ट करता कि नहीं। हम सभी लोग यहां मौजूद है, प्रैक्टिकली हम सब आए दिन इस तरह की चीजें देखते ही रहते हैं। कितना जरूरी है एक महिला के लिए इंडिपेंडेंट होना और उसके पेरेंट्स को इस बात का रियलाइजेशन होना कि जब तक बेटी इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती हम इसकी शादी आगे नहीं करेंगे, या फिर जब तक हमें वैसा कपल वैसा लड़का नहीं मिल जाता जो कि हमारी बेटी को उस तरीके से रिस्पेक्ट करे, जैसा भी निशा जी कह रही थी कि शादी के बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू की जा सकती है, तब तक वो आगे रिलेशनशिप में नहीं जाएगी।
5: मुझे ऐसा लगता है नवजोत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन इट लीव्स यू अ बिग वे टू टेक योर ओन डिसीजंस। ये सिर्फ शादी के पहले की बात नहीं है, मतलब शादी आप कितना 20 25 30 साल में कर लेते हैं, यू हैव स्टिल 70 इयर्स ऑफ योर लाइफ लेटर ऑन आफ्टर इवन मैरिज। ये आपको आपको किस तरह से अपनी लाइफ को आगे व्यतीत करना है उसकी बात है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ मैरिज थिंग, एंड आई बिलीव द वे शी वॉन्ट्स टू से इज कि आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका आत्मनिर्भर होना आपकी पूरी आने वाली जिंदगी की फाउंडेशन है। तो सिर्फ प्यार के चक्कर में पड़ जाना, जल्दी से एक बच्चा कर लेना और इन सब चक्करों के कारण आप अपने आगे आने वाली पूरी लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज इवन इफ यू गेट मैरिड एंड इवन इफ दिस सो कॉल्ड सोसाइटी एक्सेप्ट्स यू, देन व्हाट? देन अगेन यू आर एट द मर्सी ऑफ योर फैमिली एंड योर हस्बैंड। आप एक एक रुपए के लिए अगर अपने पति के अपनी फैमिली के लिए मोहताज है तो वो किस तरह का जीवन है? वो तो कोई एक्सेप्टेड लाइफ है ही नहीं। दिस इज व्हाट शी वांट्स टू से कि चाहे प्यार है प्यार नहीं है, शादी करना चाह रहे हैं, गलत रिश्तों में पड़ रहे हैं, सबसे पहले अपने आप आत्मनिर्भर होइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए। आपका मानसिकता बदल जाती है जब आपके हाथ में आपके पैसा आता है। यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड द रिस्पेक्ट विच पीपल हैव फॉर यू व्हेन यू आर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इज वेरी डिफरेंट। जितना भी हो सके, चाहे मैं ये कहना चाहूं कि आई लव माई मदर एज अ होम मेकर एंड आई लव द वे शी हैज ब्रॉट अप द होल फैमिली और उन्होंने पूरी जिंदगी फैमिली के लिए कितना कुछ किया, लेकिन समवेयर इनसाइड माई हार्ट आई नो कि आई रियली वॉन्टेड टू सी माई मदर स्टेपिंग आउट ऑफ दैट होम, डूइंग समथिंग फॉर हरसेल्फ और अपने आप को एक प्रायोरिटी देकर अपने लिए भी वो कुछ करती। आज वो 78-79 की है, बहुत सुंदर दिखती है, उनकी बहुत अच्छी लाइफ रही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए वो वाले मोमेंट्स जो वो खुद जी सकती थी, खुद उनको एक अपने ऊपर एक एक आपको अपने ऊपर भी तो एक रिस्पेक्ट आती है, अपने ऊपर भी तो एक फील आती है ना कि वाओ मैंने ये किया, उनको भी वो फील आनी चाहिए। दिस इज फॉर एवरी वुमेन एंड दिस इज फॉर एवरी मैन इन इटसेल्फ, लाइक इट्स समथिंग विच इज पास्ड ऑन फॉर द होल जनरेशन, फॉर द एंटायर यूथ। क्योंकि आजकल हमारा यूथ सोशल मीडिया को देखकर, टीवी को देखकर, बहुत सारे वी कैन सी लॉट ऑफ सीरीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और वहां पर वी हैव सीन की टीनेजर्स और बहुत जल्दी ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं जो एज अ इंडियन कल्चर आफ्टर 20s 25 होती है।
0: ठीक है,
5: सो इट्स जस्ट अ सोसाइटी थिंग विच शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग अराउंड दैट प्लीज आप अपने आप अपना करियर पहले डिसाइड कर लीजिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद ये सब चीजें तो लाइफ का पार्ट एंड पार्ट है, ये तो चलता ही रहेगा। इसके कारण जो लाइफ का मेन स्टे है उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, बाद में पढ़ के करियर।
0: हाँ बिल्कुल, परेश जी आपके पास आना चाहूंगी, बराबरी वाली बात तो हो रही है लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, उन्होंने कहा कि युवा खुद अपनी उड़ान तय करें। एक तरफ हम कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन ऐसे बहुत से कपल्स भी होते हैं दोनों में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ घर संभाल रही, और आजकल तो होम मेकर उसको कहा जाने लगा है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं, आजकल एटलीस्ट लोग इस बात को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि अगर महिला घर पे भी है तो वो बच्चों की देख रेख कर रही है, उनकी देखभाल कर रही है, एक भविष्य बना रही है, देश के ही एक भविष्य को उज्ज्वल बना रही है। ये कंपैटिबिलिटी कितनी जरूरी होती है? आप एक एनजीओ चलाते हैं, कमियां कहां पर आप देखते हैं? क्योंकि जब ये बात कही जाती है कि बच्चे खुद, युवा खुद तय करें उनकी उड़ान क्या होनी चाहिए।
2: मैम बिल्कुल बात सही है और दोनों का ही जिम्मेदारी होती है, पर मैं यहाँ एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, सीमा जी, मीनल, डॉक्टर निशा भी उसको समझें और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि जब कोई भी लड़का लड़की आत्मनिर्भर बनते हैं, मैंने पहले कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि आज के समाज में आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही होती है। पहले वो 25 तक हो जाती थी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि लगभग कम से कम 30 से 35 साल तक शादियां हो रही हैं। फिर जब 30-35 साल में जब शादी होती है, एक दो साल और उनको लग जाते हैं, 40 साल के आसपास कभी बच्चा होता है, फिर जब वो रिटायर हो रहे होते हैं 60-65 साल, तो ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव हो जाता है अपने बच्चों के प्रति कि वो तो एक तरफ तो वो रिटायर हो रहे हैं, दूसरा भी बच्चा सेटल नहीं हुआ। तो मुझे इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करें कि आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में कहीं वो एक एज, क्योंकि हर एक चीज की, हर एक फंक्शन की, हर एक किसी भी काम की एक एज होती है, तो इसके बारे में भी जरूर से जरूर विचार करना चाहिए कि आत्मनिर्भरता के चक्कर में
0: एक वैलिड पॉइंट है। बिल्कुल परवेज, बिल्कुल मैं इस सीमा जी इसी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, ये भी बहुत वैलिड पॉइंट है, कोई इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब उस चक्कर में हो ये रहा है कि कई जेंजीज हम देखते हैं, निशा जी अगर आपको याद हो कितनी बार हम लोग इसको लेकर चर्चा करते हैं कि जेंजी शादी ही नहीं करना चाहते हैं, ये भी एक एक, एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है। सीमा जी इस पर पहले अपनी बात रखिएगा।
3: देखिए नवजोत जी, हमारा जो देश है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। हम पूरी तरीके, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो यहाँ का कल्चर है भारत को, हम लोग एक फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये भी सच है कि इस इंस्टीट्यूशन ने ऐसा नहीं है कि लोगों को कमजोर किया है, लोगों को स्ट्रोंग ही किया है और स्ट्रेंथ ही दी है। लेकिन इशू सबसे बड़ा ये है कि वो स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर जेंडर को ज्यादा मिली, हमेशा वो मेल को मिली, फीमेल को उतनी नहीं मिली। और इसीलिए हम देखेंगे कि एक लड़की जब शादी के बाद पूरी तरीके से दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है तो उससे उसका करियर भी छिन जा रहा है, उससे उसकी पढ़ाई, उसके इंडिपेंडेंसी, उसकी फ्रीडम, बहुत सारी चीजों से उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि अभी सर का कहना है कि एज बढ़ती जा रही है, ये सच है कि एक फीमेल की भी एज बढ़ती जा रही है और मेल की भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वही हमारे समाज के पैरामीटर भी दो तरीके के हैं। लड़की की एज अभी भी जैसी वो 18 के क्रॉस हुई, जैसे वो 21 एज हुई, उसके बाद तुरंत फैमिली प्रेशर में आना शुरू हो जाती है। वो अलग बात है कि जो लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं वो कहती हैं बहुत सारी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे और हमारी मर्जी होगी तब हम शादी करेंगे। ऐसी मुझे लगता है फैमिली में मुश्किल से 1% है। और इसका अगर हम अभी रिसेंट एग्जाम्पल देखें तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। मैं इस चीज पर नहीं जाना चाह रही कि जो महाराष्ट्र की घटना हुई है, शिया जिसने अपने जो प्यून से थे उसका मर्डर कर दिया उसने धक्का दे करके, उस लड़की की एज 20 ईयर है और उसका उसके ब्रदर का स्टेटमेंट है कि हमारे पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे थे कि तुम शादी करो और इसी फैमिली में करो। तो क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाने से हम अपनी फीमेल को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं?
0: बिल्कुल।
3: क्या हम अपने बच्चों को उनकी चॉइस की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या हमने अभी भी एज ए सोसाइटी जो हमारी फैमिली है उस फैमिली में हमारे बड़े बुजुर्ग के डिसीजन, कास्ट का अलग एंगल, तमाम तरीके के एंगल्स हैं। मैंने देखे एक हमारे जानने वाले एक दूर के रिलेटिव हैं, उन्होंने अपनी शादी ही नहीं की, वो अभी 50 ईयर्स के, उनका ये कहना है कि हम जिनको पसंद करते थे उनके परिवार ने उनको उनको जान से मारने की धमकी दी और पिस्टल भी रख दी अपनी बेटी के सीने पे कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर इस लड़के से शादी की। अब सोचिए कि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी, हमने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया है और इसमें भी डाइवर्सिटी में हम अपने ऑर्थोडॉक्स विचारों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
3: हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो कल्चर परिवार का ऐसा है, हमारे खानदान का, हमारे एरिया का, हमारे कास्ट का। तो ये जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो कमियां हैं उन पर सभी को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। सही एज में शादियां भी होंगी, परिवार जैसे इंस्टीट्यूशन भी नहीं टूटेंगे और बच्चे भी इंडिपेंडेंट होंगे।
0: मैंने सीमा जी शुरुआत ही इसी बात से इसीलिए की थी।
3: एग्जैक्टली।
0: कि कानून बराबरी का हक देता है लेकिन समाज एक्सेप्ट करता है। आपने बहुत अच्छी यहाँ पर बात पेरेंट्स की ही कर दी है।
3: नवजोत जी आप देखिए, जो भी क्रिकेटर है हमारे, हम क्या करते हैं, क्रिकेट तो मैदान में जाकर

0: 1836 में उन्होंने एक विडो से शादी की थी, जब मेरी इंडिया में, भारत में जो विधवा विवाह अलाउ नहीं था। तो हम जिन लोगों को पढ़ रहे, जो हमारे प्रेरणा होते हैं, हम उनकी पर्सनल लाइफ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, और हम जाकर के सिर्फ उनको ऐसे देखना चाहते हैं कि वो तो क्रिकेटर है, ये तो फिल्म मेकर है, इसने ये किया, कोई राइटर है,
1: उनकी पर्सनल लाइफ से भी बिल्कुल इंस्पिरेशन ली जा सकती है। सीमा जी, लौटते एक बार निशा जी को इंक्लूड कर लेती हूँ। मैंने निशा जी इसीलिए इस बात से शुरुआत की थी, उन्होंने वही समाज फैमिली ही हमेशा आड़े आती है। बेटी इंडिपेंडेंट हो गई लेकिन शादी कहां करेगी ये डिसाइड हम करेंगे। यही बात आनंदीबेन पटेल कह रही हैं कि युवाओं को अपनी उड़ान डिसाइड करने दीजिए।
2: देखिए क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों का बेस्ट जान चाहते हैं और बेस्ट समझते हैं, तो इसलिए वो बच्चों को गाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगेन वीसिया के केस की बात हो रही है कि अगर हम बॉर्न एंड ब्रॉटअप के टाइम बच्चे को ये बोलने का हक दे कि अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं या कोई चीज नहीं करना चाहते हैं तो आपको किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और लाइफ में पेरेंट्स कई बार ना नहीं सुनना चाहते या उन्हें लगता है कि अगर हम पेरेंट्स से ना सुनेंगे या पेरेंट्स बोल देते हैं कि हम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, आपको प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं देंगे या तुम मायके नहीं आ सकती हो, वाइस वर्सा, इवन लड़का भी अगर ऐसा कोई फैसला लेता है तो पेरेंट्स कई बार कह देते हैं कि तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं होगा या तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यही रूल है इस घर का और सदियों से यही होता आया है। तो वो इसे जब हम फैमिलीज में बोलते हैं, साइकोलॉजी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं इनमेंचमेंट, बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे वही फैसले लेते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं, जैसा पेरेंट्स को लगता है। इवन लड़कियां भी ये बोलती हैं कि मैं अफेयर तो कर सकती हूं पर शादी मैं सिर्फ अपने घर वालों की मर्जी से करूंगी, और ऐसे शब्द लड़कों की तरफ से भी आते हैं कि भाई शादी तो मैं उसी से करूंगा जिसे मेरे घर वाले पसंद करेंगे, पर मैं अपनी पर मैं डेट किसी के साथ भी कर सकता हूँ।
1: हाँ।
2: तो कहीं ना कहीं बहुत बचपन से ही ये डाल दिया जाता है मन में कि शादी आपकी परिवार के लोग या माता पिता तय करेंगे। अब जब आप इंडिपेंडेंस की बात आती है तो वो अगेन हमारे ऑटोनॉमी के जो राइट है वो हमारे अगेन बचपन में ही शुरू हो जाते हैं, जिसमें कहते हैं 3 से 5 साल की उम्र में ऑटोनॉमी और गिल्ट की फीलिंग वो इस पर्टिकुलर एज में शुरू हो जाती है। उस एज में ही ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप इनिशिएशन लेते हो किसी काम को करने का, नहीं लेते हो, और उसमें आपकी फैमिली आपके इनिशिएशन लेने पर, काम करने पर आपको गिल्टी फील तो नहीं कराती है कि आपका फैसला गलत है या आपने अपनी मर्जी से कोई सेंटेंस ले लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर माँ बाप ने शादी कर दी, अरेंज मैरिज कर दी, तो लड़के या लड़की को दूसरी जगह शादी करानी, तो सारी जिंदगी वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि हमने तो कहा नहीं था, हम तो कहीं और चाहते थे, और लड़की के केस में भी ऐसा ही होता है।
1: निशा जी ठीक है, लेकिन एक और जो परवेश जी ने बहुत अच्छी बात कही थी जिसको लेकर शायद जवाब अभी आप दोनों की तरफ से आया नहीं, हमारे साथ मीनल भी मौजूद हैं, कि आत्मनिर्भर होने के चक्कर में उम्र बीतती जा रही है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप तीनों अपनी बात रखिएगा। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, युवा अपने डिसीजन खुद ले पाए ये भी बहुत जरूरी है, सीख आनंदीबेन पटेल दे रही है, लेकिन एक सवाल ये भी वाजिब है जो परवेश जी कह रहे हैं कि इस चक्कर में युवाओं की उम्र भी बढ़ती जा रही है, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। रही है Thank you.

0: need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबर।

0: आश्रम शादी की शपथ, इसी को लेकर चर्चा आज हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं को ये कहा है कि पहले आप आत्मनिर्भर हों और उसके बाद ही अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, और इसी को लेकर चर्चा हम लगातार कर ही रहे हैं, क्योंकि इसके इस सीख के तमाम ऐसे पहलू जिनको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक बार मीनल आपके पास आते हुए, जब आत्मनिर्भरता की बात आती है वो बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है आप के लिए, लेकिन सवाल यहाँ पर परवेश जी का भी सही है कि उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि युवाओं की उम्र बढ़ जाती है, इस पर आपकी राय क्या है?
1: मुझे ऐसा लगता है हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी भी कम नहीं है दैट वी हैव टू रियली बी वरिड कि हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छे से पैदा हो रहे हैं। बट ये भी बात समझने वाली है कि अभी ना, पहले कैसे था, पहले जब शादी हो जाती थी बहुत छोटी एज में हो जाती थी तो लेडीज को लेडी की तरह समझा ही नहीं जाता था, उसको एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन वैल्यू की तरह नहीं माना जाता था, उसको ऐसे जैसे गाय भैंस होती है उसको शादी करके ले आए, अब घर में बांध दिया है खूंटे से, अब वो वही रहेगी और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन टाइप है, उस टाइप से चल रहा था। अब वहां से देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन टुडेज टाइम, हर लड़की को उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े लिखे, इंडिपेंडेंट हो जाए, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो समवेयर फील कि हमारा भी एक बहुत बड़ा एक रोल रहेगा अपनी लड़की की आगे आने वाली जिंदगी को एक हैप्पी जिंदगी बनाने के लिए। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो नाउ वेरी इन दैट सेंस वॉन्ट कि उनके भी लड़की का एक करियर हो, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो डॉक्टर हो, वो सब वो जैसे अपने बेटे के लिए सोचते हैं वो अपनी बेटी के लिए भी सोचते हैं, और इस तरह से वो अपना बेटी का करियर भी चाहते हैं और उसके बाद ही सोचते हैं कि अब उसकी शादी हो जब वो इंडिपेंडेंटली एक ऑफिस ऑफिस ज्वाइन कर ले और अपनी उसकी इनकम हो जाए। वो आप देखिए सोशल लेवल पे बहुत अच्छा एक डिसीजन है, बट जो यहाँ पर सर ने बोला बिल्कुल सही बोला, बिकॉज मेरे साथ ऑलमोस्ट लाइक 10-15 ईयर्स बैक जितने भी कॉर्पोरेट बैंकिंग स्पीयर में लड़कियां थी, आई मूव्ड आउट ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग व्हेन आई वाज एवीपी एंड आई गॉट मैरिड देन, बट बहुत सारी जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में मेरे साथ की गर्ल्स थी दे स्टिल नॉट मैरिड, दे आर अराउंड माई एज मिड 40s, बट वो जोनल हेड्स हैं, वो बैंक्स के जोनल हेड्स हैं, वो बैंक्स को हेड कर रही हैं, तो एज अ करियर वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी हैं, बिकॉज समवेयर उनको जो एक फैमिली लाइफ के लिए लड़की को स्टेपिंग बैक करनी पड़ती है बेबीज होने के बाद, जिस टाइप का उनका टाइम निकल जाता है वो उनकी लाइफ में नहीं आया।
0: मैं इस पर आने ही वाली थी ये सवाल, लेकिन फटाफट से मैं परवेश जी आपके पास आऊंगी, जल्दी से एक बार सीमा जी इस पर आपकी राय। देखिए ये हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में ऐसा हो रहा है, जब एक महिला आत्मनिर्भर हो जाती है तो आजकल देखा जा रहा है वो सिंगल रहना चाहेगी, सिंगलहुड को लेकर भी हमने बहुत सारे शोज किए, स्पेशली अगर महिलाओं की बात करें, आज की जो जेन जी है अगर वो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उनको लगता है कि हम किसी और के लिए ना करके हम क्यों ना अपने पेरेंट्स के लिए ही करें सब।
2: देखिए फीमेल जो इंडिपेंडेंट है वो क्यों नहीं अब शादी करना चाहती है, क्योंकि उनके लिए अब शादी के मायने बदल चुके और समाज उनपे वही कस्टम्स, वही सारी चीजें जो रूढ़वादी सोच है उसको इम्पोज करके रखना चाहता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ गई हो, कितना भी वो इंडिपेंडेंट हो। अगर एक फीमेल जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग है लेकिन उसको घर में जाकर के जो उसके इन-लॉज हैं, उनके हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स, सभी लोगों के उसी तरीके से आज भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि वो उसके लिए खाना बनाएगी या उसको बाउंड करेंगे वो लोग उसकी फ्रीडम को, तो ये बहुत ही मुश्किल है। मीनल जी का बिल्कुल कहना है कि जो आज फीमेल बैंकिंग सेक्टर में है उनकी जो फ्रेंड है अगर वो जोनल लेवल पे पहुंची है तो वो इसलिए पहुंच पाई है वहां पर क्योंकि उन्होंने फैमिली नहीं बनाई, उन्होंने शादी नहीं की, अदरवाइज फैमिली के सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है। और लेकिन आज भी फीमेल जो है, आज भी फैमिली अपनी बहू को, अपने बेटे की पार्टनर को सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो अपनी बेटी को तो करना चाहते हैं और बेटी को भी एक लिमिट तक करना चाहते हैं कि जब तक उसकी शादी नहीं कर दी तो बेटियां तो अल्टीमेटली इन सारी चीजें में सफर लड़कियां ही कर रही हैं, तो फिर वो डिसीजन ले रही हैं कि जब हमारे लिए समाज का स्ट्रक्चर हमारे फेवर वाला मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमें अपनी चीजों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो हम फिर क्यों वो स्टेप।
0: एक बार जल्दी से निशा जी इस पर आपकी राय। मैम, मेरा ऐसा मानना है, अगेन इंडिपेंडेंस का मतलब या आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, और मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की औरतों को समझने की जरूरत है।
3: नहीं नहीं सवाल मेरा ये था कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं सवाल ये था, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, लेकिन ऐसा एक ट्रेंड चल पड़ा है जब एक महिला आत्मनिर्भर हो जाती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसे लगता है कि अब शादी की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, यानी कि मेरे अपने पेरेंट्स में, क्यों ना उन्हीं के लिए सब कुछ करूं।
0: नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, कंपेनियनशिप की जरूरत हर इंसान को होती है, और अगर कोई अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहा है या करना चाहता है, और अगर उसको एक राइट पार्टनर मिले, जिस तरह एक लड़का अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता है और उनके लिए करना चाहता है, और अगर आप एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करते हैं तो ये बहुत, और जो इंडिपेंडेंट है वो अपने पेरेंट्स को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यहां मुझे लग रहा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंस या नहीं करना चाहता शादी, वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ अगर आप रॉन्ग रिलेशनशिप में आ जाए तो अगर आपने शादी कर ली तो डिवोर्स से निकलने का तरीका आसान नहीं है। साथ में उन्हें एक ऐसा लगता है एक वक्त के बाद कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नहीं नहीं मुझे एक पार्टनरशिप चाहिए, मुझे एक बच्चे को अपने साथ नहीं रखना, आई नीड अ मैन हु कैन इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजंस एंड लेट मी अलाउ टू टेक डिसीजंस एंड हेल्प मी वेयर आई एम। मैं कई कई जगहों पर मैं वीक हो सकती हूँ, जहां वो मुझे सहारा दे, जहां वो वीक हो मैं उसे सहारा दू, मुझे एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर एक पका हुआ घड़ा है उसे बदलने मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है कई बार। और आप एक 23-40 साल के इंसान की आदतों को बदलने की बात करते हैं, जैसा कि सर ने बोला कि इसके साथ साथ वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी बॉडी के चेंजेस आते हैं। डेफिनेटली एक पार्टनर की जरूरत हर इंसान को होती है। ऐसा हो तो फिर अफेयर्स ना हो, लिव इन रिलेशनशिप्स ना हो, लोग रिलेशनशिप में जाए ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे धोखे खा लिए होते हैं, आपको पता है, कई बार आपको लगता है कि भाई जब जरूरत पड़ती है शायद कोई साथ नहीं देता है, और मुझे बहुत सारी जरूरतों में खुद को ही साथ लेना पड़ता है, तो ऐसे में या मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है। पार्टनर की जरूरत सबको होती है, पर कहीं ना कहीं आपके पास ट्रॉमाज, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वो चीजें भी मेन रोल प्ले करती है। और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने के बाद आप ये सोचते हो कि मुझे पार्टनर भी शायद उसी स्टेटा का मिल जाए, अगर कम स्टेटा का मिलता है तो वो मेरी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरी कर सकता है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स, कुक से लेकर ड्राइवर से लेकर हर चीज, आप पैसे खुद कमा रहे हो तो हम मूवी देखने जाना है, तो ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपकी सोच मिले, जिसके जो आपके स्ट्रगल को समझ पाए, जो समझ पाए कि आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं था और वो रास्ता आसान नहीं था। तो औरतों की सोच ये नहीं है कि मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, वो उस हद तक आकर आती है क्योंकि उन्हें लगता है कि बंधन में ना बन जाए हमारी इंडिपेंडेंस। जैसे लड़कों को भी लगता है शादी के बाद इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है, उस तरह एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की को लगता है शादी के बाद मुझे बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ेगा।
3: ठीक है,
0: तो इस वजह से
3: परवेश जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि आत्मनिर्भरता की सीख जो दी गई है, हालांकि ये बहुत जरूरी है समाज में, हर बार जब हम लोग आपके साथ चर्चा करते हैं ये बात होती है, इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, और निशा जी ने सही कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपको अपने परिवार में भी इंडिपेंडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब आत्मनिर्भर होने के बाद क्या कुछ चेंजेस आएंगे अगर हम इस सीख को मानते हैं, और हर पेरेंट अगर इस बात को मानता है कि हाँ हमें अपनी बेटी के लिए इतनी लिबर्टी जरूर उनको देनी है।
4: मैं पहले तो डॉक्टर निशा जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकती है, उनसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। आत्मनिर्भर होने के बाद आज के दौर में मुझे लगता है कि लोगों को, हम हर चीज सिखाते हैं अपने बच्चों को, टीनेजर्स को, जेंजी को, लेकिन रिश्तों को कैसे संभालना है वो नहीं सिखा रहे। आज अगर मैं अपनी एक बेटी का पापा हूं तो मैं अपनी बेटी को कहता हूँ तुम्हें झुकना नहीं है कहीं पर भी, और जब एक एज बढ़ जाती है आत्मनिर्भरता के चक्कर में तो कोई भी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो एक पका हुआ घड़ा होता है वो कहीं भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो ही रिश्ते बच पाते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, और इसलिए जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही कंपेनियन वो ढूंढते हैं, और सबको चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप के साथ ही वो रह के जीवन बिता सकें, ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है तो उनको लगता है कि मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरी भावनाओं को समझ सके, मेरी जीत को, मेरी हार को साझा कर सके, हर एक चीज को, तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसके चक्कर में जब वो जो पक्का घड़ा होता है बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए आज के दौर में जब नए नए रिश्ते होते हैं, नई नई शादियां होती हैं, आप अगर डाटा उठाएंगे तो आज के दौर में, पिछले मुकाबले के दौर में, आज ज्यादा तलाक हो रहे हैं, ज्यादा रिश्ते टूट रहे हैं, चाहे वो शादी से पहले टूटे या शादी के बाद में टूटे।
3: सीमा जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप?
2: हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूंगी,
3: आपका भी रिएक्शन लूंगी, एक सेकंड।
2: नवजोत जी, हमने अपनी बेटियों को पढ़ना, आगे बढ़ना, इंडिपेंडेंट होना सब सिखा दिया है। अब ये प्रवेश सर जो है, मलिक सर या निशा मैम, हमारा ओवरऑल सभी का डिस्कशन में एक ही चीज है, फीमेल ओरिएंटेड ये डिस्कशन है, जिसमें क्या है कि लड़कियां शादी नहीं करना चाह रही हैं। इस ये क्वेश्चन मार्क यही है कि उनको सही पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लड़कों के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं आई है कि पढ़ी लिखी फीमेल जो वर्किंग है उसके साथ कैसे उसको टैकल करना है, उस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में फीमेल तो सदियों से निभाती आई है, वो पिटती रही है, वो मायके नहीं गई है, हमारे सिस्टम में वो पूरे घर में शिफ्ट हो गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है? वो मेल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लॉज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन चीजों को समझे। अगर वो समझ लेंगे तो ये फिर कौन लड़की नहीं ये चाहेगी कि मैं इंडिपेंडेंट भी हूं, मेरे इन लॉज भी काफी सपोर्टिव है, मेरा पार्टनर भी हमें सपोर्ट कर रहा है। मेल हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, उसको बना बनाया सपोर्ट सिस्टम मिला है। फीमेल मांग रही है कि मुझे वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और फीमेल को तो अकेला छोड़ दिया है सोसाइटी ने। अगर वो इंडिपेंडेंट हुई तो उससे ये कहा गया तुम्हारे पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते, मेरे घर में तुम्हारे संस्कार मैटर करेंगे, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें बातों को मानना पड़ेगा। आप ये समझिए नवजोत जी, मैं जब कोर्ट में देखती हूँ एक लड़की जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनके सामने कंडीशन रखी गई कि आप अपनी जॉब नहीं करेंगी और हमारा बेटा आईएएस अधिकारी है। जब वो शादी करके अपने घर जाती हैं, उसके करीब 6-7 साल बाद डिस्प्यूट होता है, लड़का कहता है मैं तुम्हें एक भी पैसा मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब आप सोचिए, अगर वो लड़की यही तो सोचेगी कि काश हमने उस समय पर अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज इनके सामने मुझे
3: ऐसे ही केसेस को लेकर तो आनंदीबेन पटेल की ये सलाह है कि क्यों महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हालांकि देखिए, सिक्के के दोनों पहलू हैं, किससे कहानियां दोनों जगह से आती है, कई जगह ऐसे भी है कि पुरुष भी परेशान होते हैं, दोनों चीजें बराबर चलती रहती है। हाँ, ये हो सकता है कि 60-40 वाला रेशो होता हो। सीमा जी, मिनल,
1: तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये स्त्री को कच्चा और पक्का भड़ा बुलाना, यही सोच और यही मानसिकता तो बदलनी है। ये लड़की को कोई वो घड़ा बनाया जा रहा है।
4: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति थोड़ा सा उम्र में बड़ा हो जाता है, उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
3: ठीक है, क्योंकि उसकी नेचर वैसी बन जाती है।
4: जी
1: मैम, अब वो एक कच्चा और पक्का घड़ा नहीं रही,
2: टाइम चाहिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए टाइम चाहिए उसको।
3: ठीक है, ठीक है निशा जी, ठीक है। मीनल, 10 सेकंड बचे, फटाफट से निशा जी।
5: मैम, मेरा ऐसा मानना है, अगर आज की डेट में, क्योंकि मैं पैरेटल काउंसलिंग के केसेस करती हूँ, प्री मैरिटल काउंसलिंग के केसेस करती हूँ, तो अगर पुराने जमाने में औरत दबती थी तो कहीं ना कहीं वो आवाज भी नहीं उठाती थी। तो सबमिसिव होना कई बार आपकी चॉइस नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। जब हम इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं तो वॉइसिंग आउट योर ओपिनियन, अगर आप मिस कैरेज करके हॉस्पिटल से आई हैं, आपका पति आपको खाना बनाने के लिए बोलता है, तो आप बोल सकती हैं कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम्हें मेरा ध्यान रखना है।
3: यानी कुल मिलाकर देखिए, बात वही है निशा जी, वक्त अभी इतना ही है, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आनंदीबेन पटेल ने सलाह दी है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि वो अपनी फैमिली प्लान करे, उससे पहले उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहे गुड न्यूज।
6: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
7: Order for Jennifer C.
8: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
7: Yeah. Can you handle that much caffeine?
8: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
7: Oh, really? That's great.
8: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
7: Yeah, you just said that.
8: Did you say I just said that?
7: Yeah, I'm cutting you off.
8: I can't have any more? Why not?
9: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
10: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
11: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
12: दिल को छू जाती ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
15: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
3: बात मौसम की, दिल्ली जो अभी तक बारिश के लिए तरस रही थी, वहां कल से अच्छे खासे बादल बरस रहे हैं. बारिश के बाद दिल्ली में उमस गायब है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिन दिल्ली में इसी तरह का मौसम बना रहने वाला है.

0: 2 जुलाई को दस्तक देने के बाद दिल्ली में मानसून की धमक अब दिखनी शुरू हुई है। मंगलवार को दिन भर बादल टूटकर बरसे और ऐसा बरसे कि अपने साथ सारी तपिश, सारी उमस और सारी शिकायतों को बहा ले गए। झमाझम बारिश के बाद न केवल राजधानी का पारा डाउन हुआ बल्कि लोगों के पसीने छुड़ाने वाली उमस भी छुअंतर हो गई है।
1: एक तरफ तो देश के कई राज्यों में जो बारिश है इस समय लोगों के लिए मुसीबत, पर वहीं राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बारिश एक उमस वाले दिनों में सौगात बनकर आई है। और वहीं बारिश को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जो है इशू किया है, तो देखा गया कि ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया, फिर दिल्ली को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया। उसी बीच तस्वीरें आप मेरे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस की देख रहे हैं जहां लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं। एक तरफ तो उमस से राहत और वहीं दूसरी तरफ झमाझम बरसते हुए बादल। आने वाले एक दो दिन में देखा जाएगा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बारिश पड़ने का अनुमान है। साथ ही अगर बात की जाए साउथ वेस्ट मानसून की, तो देखा जा रहा है कि मानसून ने अभी रफ्तार पकड़ी है और उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जाएगा कि एक दो दिन तक जो मानसून के बादल हैं वो दस्तक देंगे, जहां देखा जा सकता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने के आसार पैदा हो सकते हैं।
0: दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि मौसम अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मेहरबान रहने वाला है। 8 से लेकर 13 जुलाई तक दिल्ली के आसमान पर बादलों का डेरा रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह या दोपहर से पहले हल्की बारिश हो सकती है, वहीं कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की भी संभावना है।
2: देखिए, आने वाले 7 दिनों की बात करें तो दिल्ली में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आने वाले 2 दिनों में पूरी पूरी संभावना है देखने को मिल सकती है, और उसके बाद हल्के स्तर की वर्षा भी जारी रह सकती है। तो जहां तक रिकवरी का सवाल है तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सीजन की शुरुआत ही है। आने वाले समय में हाँ, ये जरूर हो सकता है वीक 2 वीक 3 में वर्षा थोड़ी सी कम दिखाई देती है ओवरऑल, परंतु फिर भी हल्के स्तर की वर्षा दिल्ली को मिलते रहने की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों में दिखाई देती है।
0: मानसून वाली राहत केवल दिल्ली वाले ही महसूस नहीं कर रहे, बल्कि राहत के इन फुहारों ने राजस्थान के पर्यटन की रौनक भी लौटा दी है। अब तक गर्मी की वजह से राजस्थान में टूरिस्ट का आना कम था, लेकिन बारिश के पहुंचते ही अब सैलानी भी बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जयपुर है जो अब पर्यटकों से गुलजार नजर आने लगा है।
3: राजस्थान वैसे तो अपनी प्रचंड गर्मी के लिए जाना जाता है, पर जैसे ही मॉनसून की एंट्री हुई है तो उसी के साथ में गुड न्यूज की भी एंट्री हुई है, क्योंकि चारों तरफ माहौल जो है वो बहुत ज्यादा खुशनुमा हो गया है और गर्मी से सभी को राहत मिली है। जयपुर के इस वक्त जलमहल पे मैं मौजूद हूँ, चारों तरफ मैं देख पा रही हूँ कि पर्यटक जो गर्मी में नहीं आ रहे थे, जो काफी कम हो गए थे, वो एक बार फिर राजस्थान आने लग गए हैं। यहाँ को यहाँ की जगह जगह जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने लग गए हैं। और जलमहल में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो जल भराव है वो भी बारिश से बढ़ चुका है, पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया अपने लेवल से। तो ऐसे में ये जो देखने का, जो भी टूरिस्ट यहाँ इसको देखने आ रहे हैं, तो उसका मजा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि चारों तरफ जब बादल छाए हुए रहते हैं तो पीछे की जो पहाड़ियां हैं, जो अरावली हिल्स हैं, उनका भी जो व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है।
0: फिलहाल तो देश का मॉनसून मैप यही बता रहा है कि बरसने वाले बादलों की देश के बड़े हिस्से में एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अब दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, जिसका असर अब उत्तर भारत में नजर आने लगा है। लिहाजा मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली के अलावा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में तेज बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे।
4: अभी रसोई में बर्तन साफ करने के काम आने वाला मामूली सा लूफा अब दुनिया भर में बिकने वाला ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुका है। चीन के एक दूरदराज पहाड़ी इलाके में उगने वाला यही प्राकृतिक स्पंज हजारों लोगों की कमाई का जरिया बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट।

0: ये है चीन के हेनान प्रांत का शोंगचेक काउंटी, जहां हेबिशान पहाड़ों की तलहटी में उगने वाला लूफा अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। कभी घरों में इस्तेमाल होने वाला एक साधारण स्पंज आज विदेशी बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। सैन फ्रांसिस्को के एक स्ट्रीट स्टॉल पर बिकते सूखे लूफा स्पंज ने लोगों का ध्यान खींचा। $3 से $6 कीमत वाले ये प्रोडक्ट अब अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय कंपनियों ने भी लूफा को नए रूप दिए हैं। अब इससे सिर्फ किचन स्क्रबर ही नहीं बल्कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट, घरेलू सामान, जूते के इंसोल और पालतू जानवरों के खिलौने तक बनाए जा रहे हैं।
1: 目前啊，我们这个斯瓦洛出口业务占整体业务的65%，产品已经走进了欧美、日韩、东南亚等50多个国家，170多个城市。
0: इस कारोबार ने शोंगचेक काउंटी के लोगों को घर के करीब रोजगार भी दिया है। जहां पहले अतिरिक्त लूफा को बेकार समझकर जला दिया जाता था, वहीं अब यही लूफा परिवारों की आय का जरिया बन गया है।
2: 我是真的有想到，我们做出的这个产品呀，普普通的小产品，能让全世界各地的人都能用到，真的感觉非常的骄傲和自豪。
0: शोंगचेक का लूफा उद्योग अब सालाना करोड़ों युआन का कारोबार कर रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। पहाड़ों में उगने वाला ये साधारण पौधा अब चीन के गांवों को दुनिया के बाजारों से जोड़ने वाली बड़ी कहानी लिख रहा है। रिपोर्ट कुनी
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, चाय पर चर्चा में स्वागत है आपका। आज एक ऐसे बड़े हिंदू मंदिर की तस्वीर के साथ शुरुआत करेंगे जो इंडोनेशिया में सनातन की विरासत का हिस्सा बना हुआ। दिखाएंगे वो खूबसूरत और ऐतिहासिक पल जब प्रधानमंत्री मोदी हजारों साल पुरानी इस यूनेस्को धरोहर को देखने पहुंचे और बताएंगे इस हिंदू मंदिर का सुनहरा इतिहास।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आपको आज हम लेकर चलेंगे ज्ञान और बुद्ध की नगरी बोधगया भी, जहां एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 प्रतिमाएं आपको नजर आएंगी। कैसे ये सभी प्रतिमाएं बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए पूजनीय है और साथ ही देखने में एक दूसरे में कितनी अलग है, इसकी तफसील से जानकारी देंगे।
3: नमस्कार, मैं अशोक गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। पूरे देश में मॉनसून बादलों ने डेरा जमा लिया है, एक तरफ गर्मी से राहत मिल गई है तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश मुसीबत भी बन रही है। इस परेशानी से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान, तो कैसे स्थानीय प्रशासन के साथ राहत बचाव एजेंसियां बाढ़ और पानी में फंसे लोगों की मदद कर रही हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देख लेते हैं हेडलाइंस।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
7: प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े ब्रह्मानंद हिंदू मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना, बोले हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का दौर, अगले दो दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, गुरुग्राम में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। गुजरात में एक साथ चार मॉनसून सिस्टम एक्टिव, अगले 24 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। करनाल में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसल को हो रहा लाभ, पिछले कई दिनों से किसान कर रहे थे बारिश का इंतजार। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में तैयार हुआ देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर, पर्यटकों को मिलेगा रोमांच का तड़का, बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया।
4: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस खास हिंदू मंदिर की जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। नाम है प्रम्बानन मंदिर, खासतौर से भोलेनाथ को समर्पित इस मंदिर परिसर में शिव के अलावा आपको बता दें विष्णु और ब्रह्मा के ऊंचे ऊंचे मंदिर भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी इंडोनेशिया यात्रा के आखिरी दिन भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती देते हुए ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे। यहां पर जाहिर सी बात है, जब भी हमने देखा है प्रधानमंत्री को विशेष करके कि जब भी वो बाहर जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं या फिर विदेशों में क्या, हम अपने देश में ही देखें, जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से ही हम बात करें, शिव को लेकर एक विशेष इनका लगाव, एक प्रेम हमेशा झलका है।
3: तस्वीरों में देखा है आज। इनफैक्ट प्रधानमंत्री को हमने भावुक होते हुए भी देखा जब उनके कानों में महामृत्युंजय की गूंज सुनाई दी, तो इमोशनल्स आई डोंट नो कैसे कनेक्ट करते हैं, बट जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है ना पीएम की, तो वो कनेक्ट आम लोगों का भी उनके साथ बहुत इजीली हो जाता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
8: बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें आज हम देख ही रहे थे।
3: चलिए अब भारत इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मौजूद इस यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। दोनों ही देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया है।

दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के आखिरी दिन जावा द्वीप के योग्यकार्ता में स्थित वहां के सबसे बड़े सनातन मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ करीब 1100 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर पहुंचे मोदी। वहां की सनातन शिल्पकला और आध्यात्मिक आबोहवा देखकर भाव विभोर हो गए। दिल्ली से 7763 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर की पावन ध्वनि अनुगुंजित हुई तो उन्हें भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का स्मरण हो आया।

0: अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था, ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सनातन के भव्य दिव्य और भक्तिभाव से सराबोर मंदिर में पहुंचकर आरती करने और स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी का हृदय भक्ति के रंग और उमंग से भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि परम्बानंद परिसर को यूनेस्को ने साल 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। इनमें भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के 3 मुख्य मंदिर हैं। इनमें सबसे बड़ा शिव मंदिर है जो 154 फीट ऊंचा है। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है, जब जावा द्वीप पर हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव था। मान्यता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई पिकातन ने शुरू कराया था। इंडोनेशिया का ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म का प्रभाव कितना व्यापक और युगातीत था। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं इस बात की गवाही देती हैं कि भगवान राम और कृष्ण ने अवतार बेशक भारत भूमि पर लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सार्वभौमिक और कालातीत है। पीएम मोदी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इंडोनेशिया के योग्यकार्ता पहुंचकर उन्होंने परम्बानंद मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा।
0: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए शिव के भक्त पीएम मोदी थोड़े भावुक भी हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया कि बार बार भगवान शिव की सेवा का अवसर मिलना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है।
0: चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: बताया जा रहा है कि परम्बानंद मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ASI एनास्टाइलोसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीक के जरिए मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाता है। खास बात यह है कि इस परियोजना की शुरुआत 2026-27 में हो रही है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 1927 में जावा और परम्बानंद आने का शताब्दी वर्ष भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा पर ही देखिए GNT स्पेशल आज शाम 6 बजे। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की कई छोटी और बड़ी प्रतिमाओं को देखने के लिए पर्यटक बोधगया पहुंचते हैं। विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु भी यहां पर बने बौद्ध मंदिरों में अध्ययन करने के लिए आते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी ही कई और जानकारियों को यहां बना एक मंदिर भी लोगों तक पहुंचा रहा है, जिसका नाम है पल्युल नामड्रोलिंग मंदिर।
3: आपको बता दें, ये मंदिर जितना खास है उतना ही खास है यहाँ पर मौजूद वो 1002 बुद्ध की प्रतिमाएं, जो कि अलग अलग मुद्रा में यहाँ पर रखी गई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यही छोटी छोटी अनोखी कलाकृतियों वाली प्रतिमाएं, जिनको खास तौर से देखने के लिए देसी विदेशी लोग यहाँ पहुंचते हैं।
1: कतार में सजी हुई भगवान बुद्ध की ये मूर्तियाँ न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि कुछ वजहों से खास भी हैं। भगवान बुद्ध की ये मूर्तियाँ एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में एक ऐसा बोध मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध की ऐसी 1002 मूर्तियाँ हैं। पल्यूल नामड्रोलिंग नाम के इस बौद्ध मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा स्थापित है। वहीं गर्भगृह के चारों तरफ की दीवारों पर भगवान की अलग अलग मुद्रा में बनाई गई ये सभी मूर्तियां यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को खींचती रही हैं। यही वजह है कि हरियाली के बीच बनाई ये खूबसूरत और आकर्षक मंदिर अपनी इन सभी नायाब मूर्तियों के चलते पर्यटकों को एक अलग तरह का सुकून और शांति देता रहा है।
4: बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का छोटा छोटा टाइप बुद्ध भगवान का मूर्ति बना करके हर जगह मतलब उसमें रखा हुआ है। वो देखने में एक अलग टाइप का सुकून मिलता है कि एक शांति का रूप लगता है और यहाँ मतलब आने पे बहुत ही शांति महसूस होती है। हर चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधा, शाम को घूम मतलब अच्छा लगता है आना।
1: इस मंदिर में मौजूद ऐतिहासिक तथ्यों को देखने और उनके मर्म को समझने के लिए ही हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के साथ साथ विदेशों से भी लोग आते रहते हैं। बोधगया का ये एक ऐसा इकलौता बौद्ध मंदिर है जहां पर एक साथ भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बताया जाता है कि मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था जिन्होंने 2 साल से ज्यादा का समय लेते हुए इन्हें तैयार किया।
5: भगवान का हमारे शास्त्र में लिखा है ये पवित्र स्थल जो महाबोधि टेम्पल बोधि ब्रिज के नीचे उसी मतलब वज्रसान में 1002 भगवान बुद्ध का यहाँ पर निर्वाण प्राप्त करने का, सिद्धि प्राप्त करने का ये मान्यता है। अभी तक 4 हो गया, चौथावा है अभी और बाकी 998 और बुद्ध यहीं पर मतलब निर्वाण प्राप्त करेगा, यह हमारा मानना है जी।
1: इसी मान्यता के चलते बौद्ध धर्म को मानने वालों ने बोध गया में भगवान बुद्ध की इस पावन निर्वाण स्थली पर अनूठी मूर्तियां बनाने की कवायद की।
5: हमारा मंदिर में 1002 मूर्ति बनाने का मान्यता यही कि हमारा परम पावन हमारा पूज्य हमारा अपना रूट गुरु जी पेनोर ही सोलनेस पेनोर रुम्बछे उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि ये इस मतलब पवित्र स्थल में बौद्ध गया में 1002 मूर्ति बनाए जाए।
1: बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पंच रत्न की मुद्रा अलग अलग बताई गई है, उसी के हिसाब से इन 1002 मूर्तियों को आकार दिया गया है। यानी भगवान तो एक ही है लेकिन उनकी मुद्रा अलग अलग है। फिलहाल तो 2015 के बाद से पल्यूल नामड्रोलिंग बौद्ध मंदिर और इसमें रखी गई इन नायाब मूर्तियों की यही विशेषता देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए बात रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी के साथ मयूरभंज के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से जारी है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मूर्तियों पर पेंटिंग का काम तेजी के साथ चल रहा है और कारीगरों को ये उम्मीद है कि तय वक्त से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा। तो पुरी और बारीपदा में रथ यात्रा उत्सव को लेकर अभी से ही उत्साह का माहौल है और ऐसा माना जाता है कि बारीपदा का रथ उत्सव पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है।
6: बस एक हफ्ते की बात है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी और श्रद्धालुओं के मन की मुराद पूरी होगी। 16 जुलाई को निकलने वाली यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में तीनों भव्य रथों नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। असल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रथों के निर्माण का एक खास विधान और एक पूरी प्रक्रिया है जिसके चलते रथ निर्माण का काम बेहद खास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरी में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है बल्कि पूरे ओडिशा समेत देश के करीब करीब हर इलाके में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और इसके लिए बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी की जाती है जैसी पुरी में होती है। ओडिशा के मयूरभंज के बारीपदा में भी रथ यात्रा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जहां पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन होता है। यहाँ पर रथ लगभग तैयार हैं, पहिए अपनी जगह लग चुके हैं, लकड़ी का भव्य ढांचा आकार ले चुका है, रंग बिरंगे वस्त्र और सजावट अंतिम रूप ले रही हैं। दूसरी तरफ मूर्तियों की पेंटिंग चल रही है जिसमें कारीगर दिन रात लगे हुए हैं ताकि वक्त पर काम पूरा हो सके।
7: प्रभा होने वाला है, सारथी होने वाला है, जो रथ का जो अश्व है वो पेंटिंग होगा, रथ का जो पहिया वो थोड़ा सा बाकी है वो सब हो गया।
6: 15 जुलाई तक काम होना है लेकिन बारिश के चलते काम में थोड़ी बाधा आ रही है, लेकिन कारीगरों को विश्वास है कि वक्त से पहले काम पूरा हो जाएगा।
8: सब बच्चे लग रहे हैं काम पर, वो काम करके कुछ ही दिनों में काम कंप्लीट करके रथ में लगाएंगे, फिर रथ यात्रा शुरू होगा।
6: दिव्य रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू हुआ था जो करीब करीब 70-75% बनकर तैयार है। मयूरभंज के बारीपदा की रथ यात्रा का अपना महत्व है जहां आयोजन पूरी रथ यात्रा से एक दिन बाद शुरू होता है और यहां रथ खींचने की परंपरा 3 दिनों तक चलती है। इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता यह है कि देवी सुभद्रा के रथ देवदलन को केवल महिलाओं द्वारा ही खींचा जाता है। बिना मुखौटे वाला 6 नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होती हैं। भक्तों को अब केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भगवान के काज में शामिल होने का उन्हें मौका मिलेगा। ओडिशा का बारीपदा जिसे द्वितीय सुक्षेत्र भी कहा जाता है इन दिनों अलग ही उत्साह में है, एक अलग ही आवरण में नजर आ रहा है। ये भगवान जगन्नाथ के प्रति आगाध आस्था का, सदियों पुरानी परंपरा का उत्साह उस दिव्य रथ यात्रा का है जब भगवान गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों के बीच पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो एक तरफ चार धाम यात्रा, वहां की खबरें हमने दिखाई, अभी भी दिखा रहे हैं कि देखिए इतनी बारिश के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद श्रद्धालु जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि किस तरह से रथ यात्रा की तैयारी हो रही है और अब आपको बता दें अमरनाथ यात्रा में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हालांकि ये वाकई हैरानी होती है, देखिए श्रद्धालुओं को इतनी कठिन चढ़ाई, मुश्किलें भी हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि सरकार ने काफी कुछ आसान किया है, अब सुविधाएं भी पहले से कई ज्यादा है, लेकिन मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन जो श्रद्धा है वो कम नहीं किसी भी हाल में।
2: देखिए वही है ना कि आप किस तरीके से, ये एक हमारी संस्कृति भी आप कह सकते हैं और ये एक लोगों के मन में रहता है कि अगर चारधाम यात्रा हमने कर ली है तो हम अमरनाथ यात्रा भी जाएं, तो वो एक कनेक्शन भगवान के साथ रहता है। और फिर वापस से मैं वही बात कहूंगी कि जब तक बुलावा नहीं आया तो कोई जा नहीं सकता है।
9: एग्जैक्टली, मैं तो कुछ लोगों को कहते हुए आज सुबह ये भी सुन रही थी कि हमारे लिए तो मोक्ष की प्राप्ति की तरह है इस यात्रा को करना, कि अंतिम पड़ाव यही माना जाता है, इसके बाद फिर आगे कुछ बचता नहीं है और जीवन में जितनी भी हम चीजों का मोह माया है ना, वो सब दूर हो जाता है, उससे हम दूर हो जाते हैं।
3: बिल्कुल, यानी कि वर्ल्डली जितनी भी चीजें हैं उससे दूरी हो जाती है। वाकई आपको बता दें कि देखिए बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था का जो ये सैलाब है इसी तरह से लगातार उमड़ रहा है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब तक 1,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
9: बिल्कुल, देखिए इन्हीं में से एक है कानपुर की शिव सेवक समिति जिसने बालटाल और नुनवान बेस कैंप पर बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर बनाया है ताकि उनके माता पिता बिना किसी टेंशन के अपने बच्चों को वहां छोड़कर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें।

0: आस्था और भक्ति की ये डगर थोड़ी मुश्किल भरी भले ही हो, पथरीले रास्ते सब्र का इम्तिहान भले ही ले, लेकिन पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने की चाह ऐसे तमाम मुश्किलातों पर भारी पड़ रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आस्था का आलम यह है कि महज 5 दिनों में ही तीर्थयात्रियों के दर्शन का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। मंगलवार तक 1,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और लाखों हैं जो भी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अकेले मंगलवार को ही 28,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए।
1: अमरनाथ यात्रा में एक हफ्ता भी नहीं बीत गया और 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। कहीं न कहीं ये साफ दर्शाता है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा को लेकर देश भर में श्रद्धालुओं का उत्साह कितना हाई है। और साथ ही साथ अब की बार जिस अंदाज से रजिस्ट्रेशन से ही ये अनुमान लगा था कि रिकॉर्ड तादाद में अब की बार अमरनाथ यात्रा पर यात्री आएंगे, वो साफ जाहिर हो रहा है। फिलहाल मौसम भी मेहरबान है और जिस स्थिति से अमरनाथ यात्रा चल रही है उससे साफ जाहिर है कि इस बार रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करेंगे।
0: इस बीच अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघल गया है, लेकिन न तो भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी आई है और न ही उनके दर्शन की तादाद में। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है। यात्रा मार्ग पर आस्था और भक्ति के तमाम रंग दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग संगठनों और राज्यों की तरफ से जगह जगह भंडारे के इंतजाम किए गए हैं। ऐसा ही एक भंडारा शिव सेवक समिति कानपुर की ओर से चलाया जा रहा है, जहां खाने पीने ठहरने के पूरे इंतजाम हैं। कानपुर शिव सेवक समिति ने बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप में चाइल्ड केयर सेंटर भी खोल रखा है, मतलब वो जगह जहाँ माँ अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर बाबा के दर्शन के लिए जा सकती हैं।
2: कभी ऐसा होता था कि हम, जैसे मेरी बहू है, उसके बच्चा है, उसकी इच्छा है कि मैं बाबा का दर्शन करूं, लेकिन बच्चे जा नहीं सकते, नहीं बच्चे लेके जाएं। जैसे हम लोग तो दो दो बच्चे लेके चले गए, विंध्याचल चले गए, मैहर चले गए, वैष्णो देवी चले गए, यहाँ एंट्री नहीं है। तो इसने ये इतना अच्छा चाइल्ड के लिए इतने खिलौने रख दिया कि जब तक 8 घंटा में महिलाएं आती हैं तो ये यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं।
0: श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के नियमों के मुताबिक 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुख्य गुफा की यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में ये चाइल्ड केयर सेंटर बच्चों के माता पिता के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है।
3: चाइल्ड केयर, जब पहली साल हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग, महिलाएं और बच्चे जो हैं यहाँ पर साथ साथ रोते रहते थे कि हम जा नहीं पाए, बच्चे रो रहे होते थे। तो एक मन में एक आया कि अगर बच्चे हमारे पास हो तो ये लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पास कुछ खिलौने वगैरह थे तो 2-3 बच्चे हम लोगों ने यहाँ टेबल पे ही तखत पे रखा और उनके वो लोग गए आ गए। ये लीगली नहीं था, हम लोगों का पर्सनल एक एफर्ट्स था जिसको पहली बार किया था। तो डीसी साहब यहाँ पर थे, डीसी साहब ने देखा, उसके बाद उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप ये सर्विस को, अगर आपको परमिट करें तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा बहुत रिस्क है इसमें, अगर किसी बच्चे को खाने में या कहीं गुम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हमने कहा अगर भोलेनाथ ने लिखी होगी तकलीफ तो होगी, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर।
0: माता पिता भी बिना किसी मानसिक तनाव या चिंता के बाबा बर्फानी के दर्शन कर पा रहे हैं। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ डे।
4: चलिए कोलकाता लिए चलते हैं आपको, जहां दुर्गा पूजा का रंग अभी से ही चढ़ने लगा। हालांकि दुर्गा पूजा के शुभारंभ में अभी वक्त है, लेकिन शहर के मशहूर चौरबागान दुर्गोत्सव समिति ने दुर्गा पूजा का एक भव्य म्यूरल पेश किया है।
5: आपको बता दें, इस म्यूरल के जरिए एक तरह से कोलकाता में मां दुर्गा के आगमन का शंखनाद हो चुका है। तो देखिए कोलकाता से हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: दुर्गा पूजा भले अभी दूर है, लेकिन कोलकाता पर इस त्योहार का रंग अभी से चढ़ने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी शहर माँ के स्वागत की तैयारियों में जुट गया है और इसकी पहली खूबसूरत झलक चोर बागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के भव्य म्यूरल में देखने को मिली है। दुर्गा पूजा भले इस साल अक्टूबर में है, लेकिन कोलकाता इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर देता है। कहीं पंडालों के डिजाइन तैयार होने लगते हैं तो कहीं मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ थीम को अंतिम रूप देने लग जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चोर बागान दुर्गोत्सव समिति ने इस साल के उत्सव का म्यूरल सबके सामने रख दिया है।
1: ये बनाने में, ये चित्र बनाने में टोटल हम लोगों को 4 दिन समय लगा है। आज से हम लोगों के दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो रहा है, आज जी खूटी पूजा के माध्यम से। और साल का जो हमारा थीम भी है वो है अकाल बोधन। हम जानते हैं कि जिस वक्त हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, असल में वो भगवान श्री राम जी ने ही वो अकाल बोधन किया था। अब उस समय के अकाल बोधन को इस समय से मिलाने का एक चैलेंज है।
0: दरअसल म्यूरल किसी बड़ी दीवार पर बनाई गई ऐसी विशाल चित्रकला जो केवल देखने के लिए नहीं होती बल्कि एक संदेश भी देती है। इस म्यूरल में माँ दुर्गा के स्वागत की भावना, बंगाल की लोक संस्कृति और उत्सव की ऊर्जा को खूबसूरती से उकेरा गया है। चोर बागान दुर्गोत्सव समिति हर साल अपने अलग थीम और भव्य पंडाल के लिए जानी जाती है। इस बार भी म्यूरल के जरिए उसने जता दिया है कि उत्सव की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे महालया और फिर षष्ठी करीब आएगी, वैसे वैसे कोलकाता की गलियां दुर्गा पूजा के उत्सव में रंगती नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आफत की बारिश में मिशन जिंदगी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Tune in's how to, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का दौर, अगले दो दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। गुजरात में एक साथ चार मॉनसून सिस्टम एक्टिव, अगले 24 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट। मिशन जिंदगी में जुटी है एनडीआरएफ। करनाल में बारिश से खिले किसानों के चेहरे, धान की फसल को हो रहा लाभ। पिछले कई दिनों से किसान कर रहे थे इसी बारिश का इंतजार। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में तैयार हुआ देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर। पर्यटकों को मिलेगा रोमांच का तड़का, बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया। क्या बिजली कड़क रही है पीछे बैकग्राउंड में, डर नहीं लगता देख के?
1: अब तो दिल्ली एनसीआर में कड़क रही है शगुता, बैकग्राउंड नहीं रहा।
2: दो दिन पहले याद है मैं यही कह रही थी कि काश ऐसा मौसम दिल्ली एनसीआर में भी हो जाए।
0: दिखा ना, आपने एंजॉय किया ना सुबह, ये बताओ।
2: बिल्कुल हमने एंजॉय किया, लेकिन बेचारे जो गुड़गांव से नोएडा या नोएडा से गुड़गांव ट्रेवल करते हैं ना, उनके लिए जरूर थोड़ा मुश्किल हो गया।
0: नहीं, उनको कह दिया गया ना वही रहिए, अभी मत आइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आपके लिए स्पेशली बोला गया है ये। लेकिन देखिए, मानसून के बादल तो आपको हर जगह नजर आएंगे। अब मानसून की वजह से ना एक चीज जरूर होती है कि कोई ना कोई टेंशन हो, सब चीजें दूर हो जाती हैं, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। बालकनी में चाय लेकर बैठ जाइए आप बस।
1: एक बात करूं शगुफ्ता, ये जो आप कह रही है ना, बड़ा अच्छा लगता है और हम कर भी रहे हैं। हमें जो फर्स्ट हाफ में टाइम मिल रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सड़कों पे आते हैं ना, तो फिर आपको मॉनसून का दूसरा रूप दिखता
2: आज
1: है।
2: कितना टाइम लगा पहुंचने में?
1: मुझे आज कंपैरेटिव कल ज्यादा मुझे वक्त लगा था, आज मुझे यूजुअली जैसे मैं 20 मिनट में अगर ऑफिस आती हूं, तो आज समझ लीजिए कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा
2: मुझे, 45 मिनट, क्योंकि मेरा भी वही है 20-25 मिनट में पहुंचाते, लेकिन आज बहुत ज्यादा बारिश थी, 45 मिनट लगे आने में।
0: तो बारिश की वजह से मतलब राहत तो कई इलाकों में है, लेकिन बारिश की वजह से दुश्वारियां भी बहुत ज्यादा हैं। महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के इलाकों में क्या हाल है वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, दिखाते हैं आपको।

0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। मानसून कई इलाकों में जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद तो बाढ़ और बारिश में लोगों के लिए जिंदगी बचाना चुनौती बन गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। यहाँ हाईवे पर बहते तेज बहाव में घंटों तक लोगों की जान अटकी रही। अंडरपास के एक तरफ एक कार पानी में फंस गई, तो दूसरी ओर पर्यटकों की बस भी दरिया बनी सड़क पर अटक गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के बीच नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार पर फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है और यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर है उसको बाहर निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है।
0: नवसारी के अंडर पास के पास घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फिर एक एक करके बस से भी करीब 50 पैसेंजर को इसी तरह रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा तेज बारिश के बाद सूरत की शक्ल भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में यहां 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सबसे बुरा हाल यहां के आजाद नगर का नजर आया। यहां बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुंचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
2: पालघर जिले में सुबेरे 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भर आया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर

0: निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
1: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
2: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
3: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मॉनसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगू की है, जहां कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो दिल्ली में अब मॉनसून अपने तेवर दिखाने लगा है। राजधानी में दस्तक देने में मॉनसून ने थोड़ी देरी जरूर कर दी, लेकिन अब झमाझम बारिश ने सारी कसर पूरी कर दी। दिल्ली में कल से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। आज सुबह से आसमान में बादलों का डेरा था, थोड़ी ही देर बाद बादल बरसे और जमकर बरसे। दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के तमाम इलाकों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है।
5: अगर आप आज की बात करें, सबसे पहले दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के लिए अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है। नॉर्थ के लिए हमने कुछ आवर्स के लिए 3 बजे तक हमने रेड अलर्ट दे रखा है, स्पेसिफिकली नॉर्थन पार्ट ऑफ एनसीआर दिल्ली। फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन रेनफॉल एक्टिविटी आज और कल मेजरली रहने वाली है, जिसके लिए हमारा जेलो अलर्ट है, क्योंकि ये उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा।
6: उमस वापस से होगी, क्योंकि उमस से ही लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।
5: थोड़ा बहुत रेनफॉल उसके बाद होता रहेगा, कम रहेगा। तो मेजरली हमने ये बताया, बिन अराउंड अबाउट 12 जुलाई तक हल्का फुल्का रेनफॉल एनसीआर दिल्ली में होता रहेगा।
7: देश की राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश के बाद आखिरकार लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम जो है वो पूरी तरीके से सुहावना हो चुका है। लोगों को आखिरकार उमस से राहत मिली, क्योंकि लगातार उमस जो है वो बढ़ती जा रही थी, बारिश देखी नहीं जा रही थी। हालांकि बीच बीच में हवाएं जरूर चल रही थी, मौसम जरूर बन रहा था बारिश वाला, लेकिन मानसून में जो बारिश देखी जाती है वो दिल्ली में अभी बाकी थी। लेकिन अभी की तस्वीरें दिखाऊं तो कर्तव्य पथ में इस वक्त मौसम देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ी देर पहली ही जो है यहाँ पर बारिश हुई और उसके बाद से इस तरीके से आसमान पर जो बादलों का डेरा है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आज रुक रुक कर जो है इसी तरीके से हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखी जाएगी। मौसम जो है इसी तरीके से बनेगा और लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलने वाली है। हर कोई जो है वो परेशान था, मौसम जैसा था और आज कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि फोटो शूट चल रहा है।
8: क्योंकि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इतनी गर्मियां थी, इतनी उमस हो रही थी, लोग बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन आज इतना मौसम सुहाना हो गया, बरसात हो गई है, लोगों को बहुत ही अच्छी राहत मिली है।
7: What's your name?
9: Anil.
7: कहाँ से आए हो?
9: USA.
10: Like, USA, California.
9: USA, California.
7: California. California. Are you enjoying weather or not?
10: You like the weather?
7: Mausam. Like the weather?
9: Say it's garam.
7: It's humidity, yeah?
10: Yeah.
9: Yes.
6: How do you feel, ma'am?
11: I love it here. It's so beautiful.
7: Monsoon ka season hai aur July, August ye do mahine aise hote hain jab sabse zyada peak mein barish rehti hai. Halanki pura desh is waqt jo hai barish jahan pe dekhi ja rahi hai, halanki kahin rahat hai to kahin aafat bhi hai, lekin baat agar Delhi NCR ki jaye to Delhi mein logon ko garmi se pareshani thi lekin ab unko rahat zarur mil gayi hai. Camera person Anurag Saxena ke saath Manisha Ladda, Delhi. Good news today.
4: ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे फिर क्यों चर्चा में है सलमान की मातृभूमि.
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
13: Sports all the time right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations like ESPN Radio.
14: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
13: Big 12 Radio.
15: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
13: and
15: down.
13: Talk sports.
16: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
13: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
4: सलमान खान की बात कर लेते हैं जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म SVC 63 की शूटिंग में बिजी है, लेकिन इस बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई उनकी दो तस्वीरें और तस्वीरों के साथ ही लिखा गया कैप्शन उन्हें कुछ दूसरी वजहों से भी सुर्खियों में ले आया है.
17: दरअसल आपको बता दें सलमान ने कैप्शन में लिखा है मातृभूमि, जिससे सोशल मीडिया पर कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है. देखिए ये रिपोर्ट.

7 जुलाई की शाम सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दो तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में सलमान खूबसूरत वादियों के बीच चेयर पर बैठे हैं, आसपास धुंध है। उन्होंने रगेड जीन्स, ब्लैक वेस्ट और काउबॉय हैट पहनी हुई है। इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सलमान खान ने बस एक शब्द लिखा है, मातृभूमि। सलमान का इतना लिखना था कि सोशल मीडिया पर कयासों की बाढ़ आ गई है। लोग अपने अपने तरीके से इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है उसके मुताबिक सलमान ने इस पोस्ट में मातृभूमि के ट्रेलर का हिंट दिया है। माना जा रहा है कि मातृभूमि की रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के साथ ट्रेलर जल्द लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें फिल्म की कहानी और डायलॉग्स की बड़ी झलक देखने को मिल सकेगी। अब मातृभूमि के ट्रेलर रिलीज के कयास और सलमान की इन तस्वीरों में आपसी संबंध है या नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसकी बड़ी वजह है मातृभूमि के रिलीज को लेकर बना हुआ सस्पेंस। मातृभूमि फिल्म का टाइटल बदला गया। पहले ये फिल्म बैटल ऑफ गलवान के नाम से रिलीज होने वाली थी, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद फिल्म का नाम बदलकर मातृभूमि किया गया। इसके बाद फिल्म के कंटेंट में बदलाव किए गए, 40 दिन का रीशूट तक करना पड़ा। मातृभूमि टाइटल के नाम से नए गाने की शूटिंग तक की गई, लेकिन संकट के बादल फिर भी नहीं छटे। 3 जुलाई को खबर आई कि मातृभूमि अब भी सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई है, लेकिन इसके अगले ही दिन सलमान खान फिल्म्स ने इस खबर को निराधार बताया। और साफ किया कि मातृभूमि तो अभी सेंसर बोर्ड को सबमिट ही नहीं की गई है, ऐसे में अटकाए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पोस्ट में लिखा गया था कि इस तरह के सभी दावे गलत हैं, जिनमें कहा गया कि मातृभूमि को CBFC से जुड़ी कोई दिक्कत आई है या इसके सर्टिफिकेशन को रोक दिया गया है। सर्टिफिकेशन के लिए फिल्म अभी CBFC के पास भेजी ही नहीं गई है, इसलिए ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। सलमान खान की ओर से किए गए इस दावे

0: उम्मीद जगी की मातृभूमि अगस्त या सितंबर में रिलीज की जा सकती है, जैसे कि पहले खबरें आ रही थी। और अब अपनी तस्वीरों के साथ सलमान खान के इस पोस्ट ने उम्मीदों को और हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन्नी टुडे।
1: चलिए अब बात राजकुमार राव की कर लेते हैं, जो इन दिनों सौरव गांगुली की बायोपिक पर काम कर रहे हैं। आज सौरव गांगुली का बर्थडे है और उनके जन्मदिन पर उनकी बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी की फर्स्ट झलक भी सामने आ गई है।
2: अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि जो फर्स्ट लुक होगा ना वो ओवल स्टेडियम में जो दादा की लॉट्स वाला उसमें जो दादा का शर्ट वाला है ना वही आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वही तस्वीर आई है इनकी। चलिए दिखाते हैं आपको।
0: क्रिकेट जगत के दिग्गज सितारे सौरव गांगुली पर बन रही बायोपिक दादा द सौरव गांगुली का ये फर्स्ट लुक है, जिसने लॉर्ड्स की ऐतिहासिक यादें ताजा कर दी है। खास बात ये है कि सौरव गांगुली का आज जन्मदिन है और आज ही मेकर्स ने उनकी बायोपिक की पहली झलक रिलीज कर एक तरह से उन्हें बधाई के साथ साथ सम्मान दिया है। दादा द सौरव गांगुली के इस पहले पोस्टर में राजकुमार राव को उसी अंदाज में दिखाया गया है जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नई पहचान बना दी थी। 2002 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर नेटवर्थ सीरीज जीतने के बाद सौरव गांगुली ने बालकनी में अपनी जर्सी लहराकर जीत का जश्न मनाया था। ये तस्वीर आज भी भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार पलों में गिनी जाती है। उसी ऐतिहासिक पल को उनकी जिंदगी पर बन रही फिल्म के पहले लुक में दोबारा जीवंत किया गया है। फिल्म में सौरव गांगुली का किरदार निभा रहे राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दादा सौरव गांगुली। बायोपिक में सौरव गांगुली के क्रिकेट करियर के साथ साथ उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व की भी झलक देखने को मिलेगी, जिसके लिए राजकुमार राव ने महीनों की तैयारी की, बाएं हाथ से क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस की। पेशेवर और फुर्तीले क्रिकेटर की तरह दिखने के लिए राजकुमार राव ने अपना काफी वजन घटाया और अपने शरीर को सुडौल बनाया। किरदार को पूरी तरह से बंगाली पृष्ठभूमि में ढालने के लिए राजकुमार ने बंगाली भाषा और उसके खास उच्चारण में लहजे को बारीकी से सीखा है, ताकि उनकी कप्तानी वाले संवाद बिल्कुल असली लगे। फिल्म की शूटिंग कोलकाता के ऐतिहासिक इडन गार्डन्स, बेहाला और दुखीराम कोचिंग सेंटर पर की जा रही है, जहां गांगुली ने बचपन में क्रिकेट सीखा था। फिल्म में सौरव और डोना गांगुली की खूबसूरत प्रेम कहानी भी अहम हिस्सा होगी। एक्ट्रेस तानिया मणिकंतला डोना गांगुली के किरदार में नजर आएंगी। वहीं युवा अभिनेत्री सजा भट्टाचार्य डोना के यंग वर्जन का रोल निभाएंगी। फैंस को बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जब सौरव गांगुली की जिंदगी की ये प्रेरणादायक कहानी सिनेमा घरों में दर्शकों के सामने आएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, ये उस कप्तान की कहानी है जिसने भारतीय क्रिकेट का मिजाज बदल दिया। दादा की फर्स्ट लुक के साथ रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, 14 मई 2027 जब ये फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी जारी हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना,

0: हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसे स्कूल में लिए चलेंगे जो कि रंगों से सजा है। यहाँ पढ़ाई के साथ मधुबनी पेंटिंग भी सिखाई जा रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्कूल एक शमशान घाट में चल रहा है। वहीं शमशान जिसे जिंदगी की आखिरी मंजिल माना जाता है।
0: अब यहाँ मधुबनी का जिक्र हुआ है तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये कितनी बड़ी कला है खासतौर पर इस पूरे इलाके की।
2: मतलब मिथिलांचल की अगर आप बात करें तो मिथिलांचल की पहचान है मधुबनी पेंटिंग। दरभंगा एयरपोर्ट अगर आप जाएं और भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में मधुबनी पेंटिंग आपको अयोध्या में भी नजर आएगा, अयोध्या एयरपोर्ट में मधुबनी पेंटिंग आपको नजर आएगी। तो विश्व विख्यात है, मतलब अगर मिथिला की बात हो मधुबनी पेंटिंग उसका पर्याय माना जाता है, इतनी बड़ी चीज।
0: एक चीज बताइए, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे फुलकारी है, बहुत कम लोग हैं जो उस कढ़ाई से वाकिफ हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसा है कि मधुबनी के आर्टिस्ट बहुत कम हो गए हैं?
2: मधुबनी के आर्टिस्ट बहुत, कहते हैं ना कि ग्रेड लेवल 1 या 2 आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मधुबनी हमारे घरों में बसा है। वहाँ पे जितने भी पर्व त्यौहार हमारे होते हैं लोकली, जितने भी छोटे बड़े पर्व त्यौहार, वहाँ पर वो आकृतियां बनाई जाती हैं और हर महिला उसमें इन्वॉल्व होती है। तो वो खूबसूरती आप घरों की दीवारों पे भी देखेंगे, आप साड़ियों में भी देखेंगे और इसी तरह से आप देख,
0: यानी उस कला को देखिए किस तरीके से जीवंत भी रखा जा रहा है, बच्चे उसको सीख भी रहे हैं और उससे कमाई भी हो रही है।
3: चित्रकारी करते ये नन्हे हाथ सिर्फ रंग नहीं भर रहे बल्कि अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। कोई लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा उकेर रहा है तो कोई पक्षियों और प्रकृति को अपनी कल्पना के रंगों से सजा रहा है। इन रंगों में छिपी है आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद। सबसे खास बात ये कि हुनर किसी आर्ट स्कूल में नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के एक शमशान घाट में चल रहे अपन पाठशाला में निखर रहा है।
4: मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम शमशान घाट में चलने वाली अपन पाठशाला के बच्चों के बीच हम हैं और आज इसलिए हमारी मौजूदगी है कि तमाम बच्चे मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं, जिन्हें सम्मान करने वाले लोग खरीदारी करते हैं तो इन बच्चों को कुछ आमदनी भी हो जाती है। क्या बनाई हो तुम?
5: मिथिला पेंटिंग।
4: मिथिला पेंटिंग तो अब बनाने आ गया?
5: आ गए।
4: तो एक चीज तो पढ़ाई के अलग भी एक चीज सीखने को मिला।
5: हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई के अलावा एक यही चीज भी सीखने को मिला है।
3: इस स्कूल में 28 बच्चे रोजमर्रा की पढ़ाई के साथ मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बच्चे राधा कृष्ण मछलियाँ, मोर, पक्षियों से जुड़े खूबसूरत चित्र बना रहे हैं। इन पेंटिंग्स की बाजार में अच्छी खासी डिमांड है। लोग न सिर्फ बच्चों के बनाए चित्र खरीदते हैं बल्कि उन्हें सम्मानित भी करते हैं।
6: मधुबनी और मिथिला पेंटिंग इसलिए क्योंकि इन लोगों में पढ़ाई के साथ साथ इनकी सर्वांगिक विकास हो और इसका डिमांड भी आएगा। जैसे हमने एक दिन लगाया तो लोगों ने कहा कि जे सुमित जी ये जितने भी बनाएंगे आप हमें दे दीजिएगा, जितने आप कॉस्ट कहेंगे। हम कहे कि नहीं, इसके मालिक बच्चे हैं, जितना वह कॉस्ट कहेंगे आपको उतना देना पड़ेगा। वो कहे कि नहीं, हम बढ़ा कर देंगे। एक का 150-200 रुपया आया है ऐसा उनका, और 28 बच्चे इसमें सीख रहे हैं और या सीख लेंगे तो इन्हीं का एक बैंक बना देंगे।
3: यहाँ ट्रेनिंग ले रहे बच्चे अभी पेपर पर पेंटिंग करना सीख रहे हैं, कल यही बच्चे बड़े कैनवस पर पेंटिंग करेंगे। इस स्कूल ने उन्हें सिर्फ एक कला नहीं सिखाई बल्कि अपनी संस्कृति को करीब से समझने का मौका भी दिया है।
4: फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है आज, तो एक अलग चीज तुम सब बना रही हो।
5: बहुत खुशी हो रहा है।
4: बहुत खुश हो रहा है। क्या बनाई हो?
5: मिथिला पेंटिंग।
4: मिथिला पेंटिंग में क्या थीम है?
5: ये इसमें होता है जो इसमें कलर,
4: बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व का ये थीम है। आप देख सकते हैं सूर्य देव को अर्घ देती छठवर्ती का ये मधुबनी पेंटिंग है।
3: ये पहल बता रही है कि सही शिक्षा और सही हुनर मिल जाए तो हर मुश्किल जगह भी उम्मीदों की नई पाठशाला बन सकती है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए स्पेन लिए चलते हैं। स्पेन के पाम्पलोना शहर में एक बार फिर से शुरू हो गया है दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग रेस का त्यौहार सैन फर्मिन फेस्टिवल। यहां सैकड़ों लोग सड़कों पर दौड़ते हैं और उनके पीछे दौड़ते हैं विशाल बुल। तो चलिए रोमांच से भरी इस रेस के सफर पर आपको साथ में लेकर चलते हैं।
8: रोमांच, रफ्तार और जोखिम, यही है स्पेन की मशहूर सैन फर्मिन बुल रन की पहचान। पटाखे की आवाज के साथ ही शुरू हो गया है दुनिया का सबसे रोमांचक और खतरनाक त्योहार। गेट खुलते ही 6 विशाल बुल तेज रफ्तार से सड़कों पर निकल पड़े और उनके आगे आगे भागने लगे सैकड़ों लोग। पाम्पलोना की संघरी गलियों में कुछ ही मिनटों तक चलने वाली ये दौड़ देखने में जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही खतरनाक भी है। इस दौड़ के दौरान कई लोग गिर पड़े लेकिन बुल बिना रुके आगे बढ़ते चले गए और आखिर में बुल रिंग पहुंच गए।
9: Scary. It was scary. I mean, I did a lot of research and I kind of knew what I expected, but to see those 800-pound animals coming through, it was a little daunting. It was a little more than I was bargaining for.
8: हर साल सैन फर्मिन फेस्टिवल में दुनिया भर से हजारों लोग पाम्पलोना पहुंचते हैं। खतरा होने के बावजूद लोग इस दौड़ का हिस्सा बनते हैं क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच है। हालांकि इस दौड़ में हर साल कई लोग घायल भी होते हैं लेकिन रोमांच का जुनून लोगों को फिर से यहीं खींच लाता है और यही वजह है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये परंपरा दुनिया के सबसे चर्चित और जोखिम भरे आयोजनों में गिनी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: तो फाइनली दिल्ली और NCR को बारिश भिगो चुके हैं। आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे बारिश में
10: सुबह। हालांकि रात को ज्यादा हुई थी तो वो तो देख नहीं पाए लेकिन सुबह बहुत प्लेजेंट था।
11: शगुप्ता सुबह प्लेजेंट नहीं, बारिश हुई है। मैंने रील बनाई है, रील नहीं मतलब आपकी वाली रील नहीं बनाई है, मैं हमेशा मौसम का रील बनाती हूँ। वो स्टोरी में आप देखिएगा झमाझम बारिश हुई है, लगभग 8:30-9 के आसपास, बहुत तेज बारिश।
7: तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह की बारिश फिलहाल दिल्ली NCR को तरबतर करती रहे और हम और आप चाय का मजा लेते रहे। तो कल फिर शाम 5 बजे चाय पर मिलते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates, 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स. सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
11: पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े प्रम्भानंद हिंदू मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना. बोले हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला. काशी विश्वनाथ मंदिर में अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे बनारसी। गेट पर दिखानी होगी लोकल आईडी। सावन के चलते प्रशासन की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का दौर। अगले दो दिन तक तेज बारिश का अलर्ट। गुरुग्राम में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह। गुजरात में एक साथ चार मॉनसून सिस्टम एक्टिव। अगले 24 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट। मिशन जिंदगी में जुटी एनडीआरएफ। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में तैयार हुआ देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर। पर्यटकों को मिलेगा रोमांच का तड़का। बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मंदिर की करेंगे जो भारत की धरती पर नहीं लेकिन जहां पहुंचकर हर और भारत ही नजर आता है। एक ऐसा हिंदू मंदिर जो उस देश में है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है। एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल पुराना बताया जाता है लेकिन अपने वजूद में आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। भारत के दिल में जो रामायण और राम कहानी सदियों से बसी है वो भारत की सीमाओं और महासागर के पार मौजूद इस मंदिर में आज भी पूरी आस्था के साथ कही और सुनी जाती है।
1: से हजारों किलोमीटर दूर जहां धड़कता है भारत, वो मुस्लिम देश जहां कभी पूजे जाते थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंडोनेशिया का वो धाम जहां आज भी बसती हैं सीता, जहां मिलते हैं राम, जहां का धर्म इस्लाम है लेकिन संस्कृति में राम है। वो भूमि जिसका उल्लेख मिलता है रामायण में, वो द्वीप जहां साल भर गाई और सुनाई जाती है रामलीला, महादेव का वो मंदिर जिसने एक सहस्राब्दी में झेले प्रकृति के जाने कितने वार, कितने प्रहार, मगर आज भी खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है। आज सुनाएंगे कहानी इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: इंडोनेशिया के इसी प्रम्बानन मंदिर में आज भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इस 1000 साल पुराने मंदिर में दर्शन किए। ये मौका बेहद खास रहा। इस अनुपम और अनमोल विरासत को सदियों से सहेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और अब भारत इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मौजूद इस यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा था वो दृश्य जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे।
2: जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण में मान सकता हूँ।
1: मध्य जावा की धरती, आसमान को छूते शिखर और पत्थरों में दर्ज 1000 साल पुराना इतिहास, यही है प्रम्बानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता की भव्य पहचान। तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी न जाने कितनी आपदाएं झेलने के बाद भी ये मंदिर अपनी जगह सदियों की कहानियां समेटे खड़ा है। बीते कई सालों से इस मंदिर में पूजा तो नहीं होती, लेकिन पवित्रता और महत्व उतना ही है जितना भारत में किसी मंदिर का होता है। इंडोनेशिया दौरे के तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक परिसर में पहुंचे। एक बार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर दो देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का सेतु बन गया। मानो हजारों साल का इतिहास सामने आ गया।
2: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं, और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री ने पहले आसमान से इस अद्भुत मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की खिड़की से मंदिर का दीदार करवाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे।
2: इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मानंद मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के काम में एनास्टाइलोसिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा। एनास्टाइलोसिस एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प तकनीक है जिसका उपयोग नष्ट हो चुके प्राचीन स्मारकों या खंडहरों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के तहत स्मारकों के गिरे हुए मूल टुकड़ों जैसे पत्थरों और खम्भों आदि को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़कर इमारत का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी एनास्टाइलोसिस तकनीक के माध्यम से ब्रह्मानंद मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाएगा। वैसे ये परियोजना सिर्फ पत्थरों को जोड़ने की नहीं बल्कि इतिहास को भविष्य से जोड़ने की भी है। भारत न केवल इस साझा सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार में भूमिका निभाएगा बल्कि इसके पूरा होने पर इंडोनेशिया में 7 उत्सव मनाने का वादा भी PM मोदी इंडोनेशिया के लोगों से करते आए हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: 1927 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जावा और ब्रह्मानंद की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गुरुदेव टैगोर वहाँ की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रभाव और स्थानीय लोगों की कला से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस यात्रा के संस्मरणों और अनुभवों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया था, जिन्हें बाद में टू जावा फ्रॉम द पिलग्रिम इन इंडिया नाम की एक किताब के रूप में संकलित किया गया था। अब लगभग एक सदी बाद भारत उसी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन का भी अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश और वहाँ हिंदू धरोहर के संरक्षण में भारत की भूमिका ये बताती है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ व्यापार या रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विरासत पर भी आधारित है। पीएम मोदी ने इस विरासत को इतने साल सहेजने के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया और ये भरोसा भी जताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग इसे देखने पहुंचेंगे।
2: 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है।
1: विदेशी धरती पर 1000 साल पुराने मंदिर की ये यात्रा वास्तव में एक संदेश है, संदेश कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं मानता, बल्कि दुनिया भर में फैली भारतीय सभ्यता की धरोहरों के संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: द्वीपों के देश इंडोनेशिया में आखिर कैसे अस्तित्व में आया ये हिंदू मंदिर, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर जाया करते थे। इन्हीं में से कई व्यापारियों ने इसी द्वीप को अपना घर बना लिया और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इसी के साथ शुरुआत हुई एक संस्कृति और संस्कारों के एक मिले जुले और साझा स्वरूप की। भारत के गए इन लोगों ने धीरे धीरे धरती के इस कोने पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीज बोए और कालांतर में उन्हीं बीजों से पनपा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी प्रम्बानंद मंदिर के निर्माण की, पुनर्निर्माण और विस्तार की।
1: इंडोनेशिया की धरती पर ये वो मंदिर है जहाँ सृष्टि के निर्माता भी हैं, पालनकर्ता भी और देवों के देव भोले शंकर भी मौजूद हैं। ये त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
3: What is the history of
4: the history of the Prambanan temple? Is the biggest complex of Hindu temple in Indonesia.
3: It was built.
4: The was built in 9th century, but there are about 856 after Christ.
1: हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर आया करते थे और इसकी सुंदरता की वजह से यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे ऋषि परंपरा इस द्वीप की पहचान बन गई। माना जाता है कि जब इंडोनेशिया में हिंदू राजवंशों का शासन हुआ करता था, तब संजय वंश के राजाओं ने 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर संजय वंश के राजा राकाई पिकातन की देन माना जाता है। कभी यहाँ करीब 240 मंदिर थे और पूरे प्रम्बानन क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिरों का विशाल समूह मौजूद था। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के आकार में करवाया गया था। इसके बीच में भगवान शिव का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है, आसपास विष्णु और ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिमूर्ति मंदिर कहा जाता है। मंदिर परिसर में 250 छोटे बड़े मंदिर और हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना गया है,
5: क्योंकि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये प्रम्बानन मंदिर है जो कि 9वीं सदी में निर्मित इंडोनेशिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जब चौथी सदी थी उस समय की बात है जब हिंदुत्व का यहाँ पर बहुत आधिपत्य था और सब यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे. अब 2% से कम लोग बच गए हैं जो हिंदू हैं, लेकिन प्रम्बनन मंदिर जो है यहाँ पर, पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती है. ये सुनसान है बिल्कुल, एक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मंदिर यहाँ पर स्थापित है. अगर आप तीनों मंदिरों को देखें और तीनों मंदिरों के, यानी सामने विष्णु मंदिर आप देख रहे हैं, शिव मंदिर देख रहे हैं और ब्रह्मा मंदिर देख रहे हैं, और सबके ठीक सामने का जो हिस्सा है वो है उनके वाहनों का मंदिर है, यानी नंदी मंदिर, हंस मंदिर और वरुण मंदिर. तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गरुड़ का महत्व होता है. गरुड़ यानी कि विष्णु जी की सवारी, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह भी होता है ना, वो भी गरुड़ ही है. मैं आपको यहाँ के नोट पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गरुड़ का जो चिन्ह है ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है.
1: बताया जाता है कि 11वीं सदी में भूकंप और ज्वालामुखी की चपेट में आने की वजह से ये मंदिर परिसर मलबे में दब गया था. 17वीं सदी के शासकों ने मंदिर की फिर से खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया. 1918 तक मंदिर का वास्तविक स्वरूप तैयार हो सका. 2006 में फिर भयंकर भूकंप इस क्षेत्र में आया. परिसर में बाकी मंदिर लगभग ध्वस्त हो गए, लेकिन जहां परिसर के बाकी मंदिर खंडित होते रहे, मुख्य त्रिमूर्ति मंदिर को हर बार नाम मात्र ही नुकसान पहुंचा. कीर्ति नगारा और त्रिभुवना जैसे हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया में कई बरस शासन किया. श्री विजया और गजामधा जैसे साम्राज्य इंडोनेशिया के सबसे सशक्त साम्राज्य थे. बौद्ध धर्म भी तब सह अस्तित्व के साथ इस द्वीप पर पनपने लगा था. बाद में संजय वंश के राजाओं ने वर्तमान इंडोनेशिया की आधारशिला रखी, मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया. प्रम्बानन मंदिर का जीर्णोद्धार भी इसी दौर में हुआ. 14वीं सदी में व्यापार के लिहाज से इस्लाम ने इंडोनेशिया में कदम रखा और धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति इस्लामिक हो गई. लेकिन इंडोनेशिया के लोगों ने अपनी पारंपरिक हिंदू और बौद्ध विरासतों को न सिर्फ सहेजा बल्कि उनके महत्व को भी बरकरार रखा. आज इंडोनेशिया भारत से सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत करना चाहता है, जिसका आधार यही सांस्कृतिक विरासत है. वैसे तो इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर ब्रह्मा विष्णु और महेश के ही हैं, लेकिन इस मंदिर में बहती आस्था की एक धारा रामायण और राम कहानी से भी जुड़ती है. प्रम्बानन मंदिर परिसर में सेंद्रा तारी रामायण का मंचन लगभग पूरे साल नियमित रूप से किया जाता है. इसे यहाँ रामायण बेले कहा जाता है. इस मनमोहक शो में स्थानीय संस्कृति और जावनीज संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है.
5: इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में 9वीं सदी का निर्मित ये प्रम्बानन मंदिर बताता है कि दोनों देशों की ऐतिहासिक साझेदारी, पारंपरिक साझेदारी कैसी है. और उसी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता है ये रामायण बाले बताता है कि आज दोनों देशों के रिश्तों को किस तरीके से यहाँ के लोग सहेज कर रखते हैं, परंपराओं को किस तरीके से सहेज कर रखते हैं.
1: हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर इस धरती का परिचय हिंदुस्तान के इतिहास से नहीं है, पर सदियों पहले यहाँ अयोध्या नगरी स्थापित कर दी गई थी.
3: Is it true that the meaning, one meaning of Yogyakarta, the place, is also related somehow to Ayodhya?
6: Well, the city of Yogyakarta actually derived from the words Ayodhya. Yes, the palace of प्रिंस रामा.
1: रामलीला की यह तस्वीर भारत में रामनवमी या दशहरे की नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया की है. इंडोनेशिया की परंपरा, जहां के जर्रे जर्रे में इस्लाम है, लेकिन हर रहवासी के रोम रोम में राम बसते हैं. मान्यता है कि रामायण काल में वानर राज सुग्रीव ने अपने दूतों को सीता को ढूंढने के लिए जावा द्वीप भेजा था, जो वर्तमान का जावा है.
5: बहुत हम महत्व
7: देंगे. डेफिनेटली हमारे पिछले जो 600 साल पहले लोग आए थे, जो श्री विजय राजा, उन्होंने यहाँ पे छाप छोड़ी है. और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी था पहले 100 साल पहले, तो इसके कारण क्या, बुद्धिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तो उसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हिंदुइज्म तो एग्जिस्टेंस है ही. और ऐसे कहा जाता है कि रामायण के युग के ज़माने से यहाँ पे वाली इनके मुख देखे तो जो उनकी सेना थी वो इनके जैसे लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिमिलरिटी तो है.
1: इंडोनेशिया और इंडिया की समानता की कहानियाँ पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी. पर जिस तरह वर्तमान के इंडोनेशिया ने उस संस्कृति को सहेजा है वो अनोखा है। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर में मौजूद है और इस शहर में हर ओर आज भी राम और रामायण के निशान देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जकार्ता का मतलब स्थानीय भाषा में अयोध्या होता है।
8: ये जो शिल्पकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसमें वानर सेना को प्रतीकात्मक तौर पर देख सकते हैं और वो राम सेतु बनाने के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर राम जी का महत्व बहुत ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर विष्णु को पूजनीय माना गया है। योग्यकर्ता, जिसे स्थानीय उच्चारण के साथ जोग जकार्ता कहा जाता है, ये अयोध्या का दूसरा नाम है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प।
1: जावा द्वीप पर बसे योग्यकार्ता को लेकर ये मान्यता है कि इस शहर का नाम श्री राम की अयोध्या के नाम से लिया गया। जो जकार्ता का शाब्दिक अर्थ इंडोनेशिया में माना जाता है वो है एक ऐसा शहर जो समृद्ध और फलने फूलने के लिए है। अयोध्या में जब श्री राम का राज्य था उन दिनों की कल्पना भारत के सबसे स्वर्णिम काल के तौर पर की जाती है। तब समृद्धि और वैभव चरम पर था। इसी समृद्धि को आधार बनाकर अयोध्या से जोग जकार्ता का नाम पड़ा। यहाँ रहने वाले लोग इस शहर का सम्मान अयोध्या के बराबर ही करते हैं। अद्भुत है अयोध्या से लगभग 8000 किलोमीटर दूर और अद्भुत है यहाँ की कहानी। कहानी एक देश से अधिक उन करोड़ों लोगों की, उस संस्कृति की जिसने हजारों साल के इतिहास में अपनी पूजा पद्धति बदली, अपना मजहब बदला, लेकिन अपनी तहजीब को कभी नहीं बदला। जब यहाँ हिंदू अधिक थे तब राम उनके पूर्वज थे। अब जब दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान यहाँ बसते हैं, राम तब भी इनके पूर्वज हैं। ये थी कहानी प्रम्बानन मंदिर, योग्यकार्ता और भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में धड़कते भारत की। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता से श्वेता सिंह, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी है, आप देखते रहिए।
9: बाइक सवार पर महिला ने दागी गोलियां, मनचले ने छेड़ा तो कर दी फायरिंग। प्रयागराज के नैनी ब्रिज पर ऑटो से स्टंट, ज्योमेट्री बॉक्स को बना डाला आईफोन 17। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: अब बात रथ यात्रा की। ओडिशा के पुरी के साथ मयूरभंज के बारीपदा में रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारियां अंतिम चरण में है। मूर्तियों पर पेंटिंग का काम तेजी के साथ चल रहा है और कारीगरों को पूरी उम्मीद है कि तय वक्त से पहले ये काम पूरा हो जाएगा।
11: बस एक हफ्ते की बात है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी और श्रद्धालुओं के मन की मुराद पूरी होगी। 16 जुलाई को निकलने वाली यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में तीनों भव्य रथों नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। असल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रथों के निर्माण का एक खास विधान और एक पूरी प्रक्रिया है जिसके चलते रथ निर्माण का काम बेहद खास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरी में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, बल्कि पूरे ओडिशा समेत देश के करीब करीब हर इलाके में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और इसके लिए बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी की जाती है जैसी पुरी में होती है। ओडिशा के मयूरभंज के बारीपदा में भी रथ यात्रा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जहां पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन होता है। यहां पर रथ लगभग तैयार हैं, पहिए अपनी जगह लग चुके हैं, लकड़ी का भव्य ढांचा आकार ले चुका है, रंग बिरंगे वस्त्र और सजावट अंतिम रूप ले रही है। दूसरी तरफ मूर्तियों की पेंटिंग चल रही है जिसमें कारीगर दिन रात लगे हुए हैं ताकि वक्त पर काम पूरा हो सके।
12: प्रभा होने वाला है, सारथी होने वाला है, जो रथ का जो अश्व है वो पेंटिंग होगा, रथ का जो पहिया वो थोड़ा सा बाकी है वो सब होगा।
11: 15 जुलाई तक काम होना है लेकिन बारिश के चलते काम में थोड़ी बाधा आ रही है, लेकिन कारीगरों को विश्वास है कि वक्त से पहले काम पूरा हो जाएगा।
13: सब बच्चे लग रहे हैं काम पर, वो काम करके कुछ ही दिनों में काम कंप्लीट करके रथ में लगाएंगे, फिर रथ यात्रा शुरू होगा।
11: दिव्य रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू हुआ था, जो करीब करीब 70-75% बनकर तैयार है। मयूरभंज के बारीपदा की रथ यात्रा का अपना महत्व है, जहां आयोजन पूरी रथ यात्रा से एक दिन बाद शुरू होता है और यहां रथ खींचने की परंपरा 3 दिनों तक चलती है। इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता यह है कि देवी सुभद्रा के रथ देवदलन को केवल महिलाओं द्वारा ही खींचा जाता है। बिना मुखौटे वाला छौ नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होती हैं। भक्तों को अब केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे

0: उत्साह में है, एक अलग ही आवरण में नजर आ रहा है। ये भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध आस्था का, सदियों पुरानी परंपरा का उत्साह उस दिव्य रथ यात्रा का है जब भगवान गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों के बीच पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े ब्रह्मानंद हिंदू मंदिर में किए दर्शन पूजन, विधि विधान से पूजा अर्चना, बोले हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे, बनारसी गेट पर दिखानी होगी लोकल आईडी, सावन के चलते प्रशासन ने तैयारी। दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का दौर, अगले दो दिन तेज बारिश का अलर्ट। गुजरात में 104 मॉनसून सिस्टम एक्टिव, अगले 24 घंटे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट, मिशन जिंदगी में जुटी एनडीआरएफ। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में तैयार हुआ देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर, पर्यटकों को मिलेगा रोमांच का तड़का, बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूलभुलैया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज भी बादलों का डेरा, लगातार दो दिनों से रुक रुक कर हो रही है लगातार बारिश, मौसम सुहावना। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में भी गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत, देर शाम जोर पकड़ सकती है बरसात। राजधानी समेत आसपास के इलाकों में अभी दो दिन मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट, AQI में संतोषजनक सुधार। गुरुग्राम में भी जारी है रिमझिम बरसात, सुहाने मौसम के बीच ठंडी हवाओं से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरस रहे हैं बदरा, जोरदार बरसात से कई जगहों पर भर गया पानी।

0: कुल्लू की ऊपरी पहाड़ियों में बारिश के बाद बदल गया नजारा। दुर्गम पहाड़ियों में शांत झरने में कई गुना बढ़ा जलस्तर, दिखा अद्भुत नजारा। नवसारी में भारी बरसात के बाद तूफान पर अंबिका नदी रौद्र रूप में नजर आई। पुणे में जबरदस्त बारिश का असर, बेड़े ब्रिज डूब गया, छोड़ा गया 27,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी, ट्रेन सेवा प्रभावित। वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी, कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वडोदरा में भारी बारिश से उफान पर ओरसंग नदी, प्रशासन हुआ अलर्ट, निचले इलाकों में रह रहे लोगों से चेतावनी। राजस्थान में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से राहत, लेकिन तेज बारिश से सड़कें जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है, उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज। मुंबई के मरीन ड्राइव में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सैलानियों की बढ़ी आमद। भिवाड़ी में बारिश के बाद जल जमाव के बीच स्पाइडरमैन बना एक शख्स ट्रैफिक संभालता हुआ नजर आया। उज्जैन में भारी बारिश से जल जमाव, कई मंदिरों में भर गया पानी, श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित। आगरमालवा में मां बगलामुखी मंदिर जाने वाला मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया है, तेज बारिश के बाद पुलिया पर पानी के बहाव से प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाए। मथुरा के भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब के कई इलाकों में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी, मौसम लगातार बना हुआ है बारिश वाला। हिमाचल प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर लगातार रहेगा जारी, पहाड़ों पर अचानक बाढ़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखने की अपील। हिमाचल के शिमला में बादल छाए रहने का अनुमान, अगले 2 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान। मुंबई ठाणे और रायगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी, तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी, कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हरिद्वार दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेम नगर आश्रम में चल रही मुरारी बापू की राम कथा में शामिल हुए। राम कथा आयोजन पर सभा भक्तों और प्रशासन को बधाई, बोले देवभूमि पर भक्तों का हमेशा स्वागत। चित्रकूट दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 124 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। अलवर दौरे पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। गडकरी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, एक्सप्रेसवे पर होने वाले काम के ऑडिट के दिए आदेश। हाईटेक हुआ इंदौर का कमला नेहरू चिड़ियाघर, देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी तैयार की गई है, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना मकसद। बच्चों के लिए बनाई गई है आधुनिक भूलभुलैया, बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा, जल्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के शिवभक्तों के लिए रेलवे की सौगात, गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान, पहुंच। गोरखपुर से 31 जुलाई को शुरू होने जा रही है तीर्थयात्रा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने तीर्थयात्रियों को दी ईएमआई भुगतान की सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर प्रम्बानन मंदिर पहुंचे, 1000 साल पुराने इस हिंदू धरोहर स्थल पर उनका भव्य स्वागत हुआ। परंबारन मंदिर पहुंचने पर बच्चों ने तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। भारत इंडोनेशिया दोस्ती की खूबसूरत तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंबारन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तुकला और इतिहास की जानकारी ली। यूनेस्को विश्व धरोहर परंबानंद मंदिर परिसर में 224 मंदिर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परंबानंद मंदिर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। इसे भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला माना जाता है। अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे शिव भक्त। श्रद्धालुओं की यात्रा को लेकर भारी उत्साह। अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। पहली बार बेस कैंप पर बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर सेंटर बनाए गए। अमरनाथ यात्रा में छोटे बच्चों वाले परिवारों को मिल रही है बड़ी राहत। बालटाल और नुनवान बेस कैंप में शुरू किए गए हैं चाइल्ड केयर सेंटर। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए खास जोर। भक्तों की सेवा में समर्पित नजर आए कानपुर भंडारा। सम्राट कैबिनेट ने कुल 22 एजेंडों पर मोहर लगाई। पटना एम्स के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा भोसौला में 26.76 एकड़ भूमि अधिग्रहण। इस परियोजना में लगभग 348.90 करोड़ की आएगी लागत। परिवहन व्यवस्था के विकास में भी अहम फैसला। बिहार सरकार ने राजधानी पटना को राज्य के 4 प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण को मंजूरी दी। बिहार के कटिहार में स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी का सादगी भरा अंदाज। बच्चों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए जमीन पर बैठे। आटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए स्टेशन की घोषणा कर दी। पलसाना और बाबरी ठेकरिया स्टेशनों के बीच बनेगा नया हाईटेक स्टेशन। टेनिस स्टार जोकोविच ने रच दिया इतिहास। खेला विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल। 5 घंटे 15 मिनट चला ये 5 सेट वाला मैराथन मैच। जोकोविच ने कनाडा के फेलिक्स को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हरा दिया। लगातार 8वीं बार सेमीफाइनल्स में पहुंची है जोकोविच। अब शुक्रवार को सेमीफाइनल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और डिफेंडिंग चैंपियन जेनिक से होगा आमना सामना। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में ईशान किशन अभी भी नंबर 1। ईशान के अलावा टॉप 1 में 2 भारतीय खिलाड़ी और जिसमें अभिषेक शर्मा दूसरे पायदान पर और तिलक वर्मा 6 नंबर पर। सौरव गांगुली की बायोपिक दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया। गांगुली के जन्मदिन पर मेकर्स ने जारी किया पोस्टर। राहू में तेरे रूबरू का ट्रेलर हुआ आउट। 17 जुलाई को रिलीज होने जा रही है फिल्म। प्रज्वल देवराज और राजवीर शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर हुआ रिलीज। 24 जुलाई को आ रही है फिल्म। फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग का आज अयोध्या में पहला दिन। अनुपम खेर ने शेयर की फर्स्ट पोस्ट। अभी खत्म नहीं हुई है कांतारा फ्रेंचाइजी। ऋषभ शेट्टी ने दिया अपडेट। कांतारा 2 पर काम जारी। चीन के शियामेन शहर के 100 साल पुराने हैपिंग पियर पर अरोरा थीम वाला शानदार लाइट शो। शियामेन में अनोखे लाइट शो को देखने के लिए पहुंचे लोग। डांस परफॉर्मेंस और रंग बिरंगी रोशनी। लुजियांग रिवर वाटरफ्रंट पर ओरोरा जैसा नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वाटर फ्रंट अब बन गया है शहर का नया नाइट टूरिज्म आकर्षण। अरोरा थीम वाली शानदार लाइट शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। चीन के फुजियान प्रांत में रोशनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अनोखा संगम देखने को मिला। इस शो ने रात की खूबसूरती में चार चांद लगाए। एजी बॉट के रोबोट का दमदार डेमो, फैक्ट्री से लेकर शॉपिंग और लॉजिस्टिक्स तक के काम करने में माहिर। एजीबॉट का ग्लोबल मिशन, कंपनी का लक्ष्य इस साल कुल कमाई में 30-40% हिस्सा विदेशी बाजारों से हासिल करना। दुनिया में बढ़ा एजीबॉट का नेटवर्क, यूरोप, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंचा। कमी का समाधान बने रोबोट, लेबर कमी का समाधान है। कंपनी का कहना यह है कि विदेशी बाजारों में रोबोट मैन पावर की कमी दूर करने में माहिर। विदेशी ग्राहक खरीद रहे हैं रोबोट, एजी बॉट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक रोबोट को सीधे खरीद सकते हैं। चीन के चिड़ियाघर में पांडा मैंग कैनकैन का तीसरा बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। छोटे पांडा के लिए फल और सब्जियों का शानदार केक तैयार हुआ। 3 साल के पांडा मैंग कैनकैन की बर्थडे पार्टी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कीपरों ने प्यार से सजाया हुआ खास केक उसको दिया। चीन में पांडा के जन्मदिन पर अनोखा फल सब्जी वाला केक तैयार किया गया। केक पर कद्दू की गाड़ी और खरबूजे की टोकरी तैयार की गई। गर्मी से बचाने के लिए पांडा की पार्टी में बर्फ का इंतजाम, चिड़ियाघर में खास सजावट। पांडा मैंग कैनकैन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। कीपरों ने उसके जन्मदिन पर प्यार और शुभकामनाओं के साथ जश्न मनाया। स्पेन के पंपलोना में मशहूर बुलरन की शुरुआत हो गई है पटाखे की धमाके के साथ तेजी से सड़कों पर बुलरन। सैकड़ों लोग बुल के आगे आगे दौड़ते हुए नजर आए। पंपलोना की गलियों में रोमांच का माहौल। दौड़ के दौरान कई धावक सड़क पर गिर गए, बुल उनके बहुत करीब से गुजरे। बुल से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। लोगों ने इस रोमांचक दौड़ का उठाया लुत्फ। हर साल होने वाला ये बुल रन दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र बन जाता है। रोमांच से भरे इस आयोजन में सुरक्षा के बीच दौड़ लगातार जारी। स्पेन में पड़ रही भीषण गर्मी, सिविल शहर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है, लोग परेशान। हीट वेव से बेहाल स्पेन। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी की लहर गुरुवार तक जारी रह सकती है, कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार। सिविल एयरपोर्ट पर 41 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, गर्मी से परेशान नजर आए यात्री। सड़कों पर निकलना हो गया दूभर, गर्मी से बचाव करने के लिए उपाय करते हुए नजर आए लोग। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, स्पेन में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतनी होगी। माउंट एटना में दिखा अनोखा नजारा, ड्रोन वीडियो में लाल गम लावा क्रेटर के अंदर गिरता हुआ नजर आया। सिसली की ज्वालामुखी में बढ़ी हलचल, इटली के एटना में राख और लावा गतिविधि के बाद कम हुआ कंपन। ड्रोन वीडियो में लगा कि लावा नॉर्थ ईस्ट क्रेटर की गहराई में वापस जा रहा है। एटना पर वैज्ञानिकों की नजर, INGV के अनुसार ज्वालामुखी गतिविधि में कमी आई है। माउंट एटना की राख से हवाई यातायात और खेती हो सकती है प्रभावित, आबादी वाले क्षेत्रों पर खतरा कम। चिली के एरियल ओसेस ने बचपन के स्टिकर एल्बम के सपने को कर दिया साकार। द 33 वर्षीय एरियल ओसेस ने सिर्फ दो हफ्तों में अपनी कार पर 373 स्टिकर्स लगवाए। एरियल ने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा। कमेंट करने वालों को उन्होंने स्टिकर्स उपलब्ध कराए। एरियल की इस अनोखी पहल को दुनिया भर से मिल रहा है प्रोत्साहन। कई देशों के लोगों ने उन्हें अपनी कार लेकर आने के निमंत्रण दिए। स्टिकर बनाने वाली कंपनी ने भी एरियल ओसेस के खास अभियान का समर्थन किया। उनकी स्टिकर से सजी कार अब सोशल मीडिया पर वायरल। डेनमार्क की दिग्गज साइकिलिस्ट मैट्स पेडरसन ने जीती 2D फ्रांस साइकिल रेस। फ्रांस में कार का सोना से फॉइक्स के बीच 182 किलोमीटर की होती है 2D फ्रांस साइकिल रेस। पेडरसन ने डिफेंडिंग चैंपियन तादेस पोगाकर को हराकर ग्रीन जर्सी हासिल की। चीन के शापिंगबा में 300 मीटर लंबा शानदार स्काई वॉक खोला गया है। पर्यटकों को देता है 8D का अनुभव। स्काई वॉक से पर्यटक देख सकते हैं ऐतिहासिक शहर का नजारा। जमीन से 69 मीटर ऊंचा है स्काई वॉक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: बाइक सवार पर महिला ने दागी गोलियां, मनचले ने छेड़ा तो कर दी फायरिंग। प्रयागराज के नैनी ब्रिज पर ऑटो से स्टंट। ज्योमेट्री बॉक्स को बना डाला आईफोन 17। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
0: मानसून के बादल देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुके हैं। बादलों ने जहां पर लोगों को गर्मी से राहत दी है तो वहीं पर कुछ इलाकों में बादलों से मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। हाल ये हो चुका है कि महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम शहरों में इतना पानी बरस चुका है कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये बारिश ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही हैं। इसके लिए NDRF से लेकर NDRF और SDRF ने कमर कस ली है।

0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। मानसून कई इलाकों में जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद तो बाढ़ और बारिश में लोगों के लिए जिंदगी बचाना चुनौती बन गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। यहाँ हाईवे पर बहते तेज बहाव में घंटों तक लोगों की जान अटकी रही। अंडरपास के एक तरफ एक कार पानी में फंस गई, तो दूसरी ओर पर्यटकों की बस भी दरिया बनी सड़क पर अटक गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के बीच नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार पर फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है और यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर है उसको बाहर निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है।
0: नवसारी के अंडर पास के पास घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फिर एक एक करके बस से भी करीब 50 पैसेंजर को इसी तरह रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा तेज बारिश के बाद सूरत की शक्ल भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में यहां 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सबसे बुरा हाल यहां के आजाद नगर का नजर आया। यहां बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुंचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
2: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
3: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
4: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मानसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगू की है, जहाँ कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
7: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics, Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
10: प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े ब्रह्मानंद हिंदू मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना, बोले हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, धूमधाम से निकली अनासरा फल भरा शोभा यात्रा, भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में आप अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे, बनारसी गेट पर दिखानी होगी लोकल आईडी, सावन के चलते प्रशासन की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में जारी है बारिश का दौर, अगले 2-3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट, गुरुग्राम में जलभराव के बाद वर्क फ्रॉम होम की सलाह।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट।
10: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। बाबा बर्फानी के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। श्री अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में ही 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है और वो है बाबा बर्फानी की दुर्गम यात्रा में भक्तों की आस्था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या इस यात्रा के प्रति उनके अटूट विश्वास और उत्साह का प्रतीक बन रही है।

0: अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर दिन बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी व्यवस्था के साथ यात्रा का संचालन कर रहा है।
1: इस साल की अमरनाथ यात्रा में एक हफ्ता भी नहीं बीत गया है, 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, जो साफ दर्शाता है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में क्या उत्साह है। और इस बात का अंदाजा तभी हुआ था जब अब की बार रिकॉर्ड तादाद में 4 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन की थी। उसके बाद भी हजारों की तादाद में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर जारी है।
0: श्रद्धालुओं की भारी आमद के बीच प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील भी की है कि वो अपनी निर्धारित पंजीकरण तिथि के अनुसार ही यात्रा पर पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि तय तारीख के अनुसार यात्रा करने से भीड़ का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का मौका मिलेगा। वैसे इस साल श्रद्धालुओं की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए कई नए इंतजाम किए गए हैं। इन्हीं में सबसे खास पहल है पहली बार शुरू की गई चाइल्ड केयर सुविधा। दरअसल 13 साल से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा कारणों से पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की अनुमति नहीं है। ऐसे में कई श्रद्धालुओं के सामने बच्चों की देखभाल को लेकर परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पहली बार बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप में विशेष चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए हैं।
2: जैसे मेरी बहू है, उसके बच्चा है, उसकी इच्छा है कि मैं बाबा का दर्शन करूं, लेकिन बच्चे जा नहीं सकते, नहीं बच्चे लेके जाएं। जैसे हम लोग तो दो दो बच्चे लेके चले गए, विंध्याचल चले गए, मैहर चले गए, वैष्णो देवी चले गए, यहाँ एंट्री नहीं है। तो इसने ये इतना अच्छा चाइल्ड के लिए इतने खिलौने रख दिया कि जब तक 8 घंटा महिलाएं आती हैं तो ये यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं।
0: इन केंद्रों पर श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित देखभाल में छोड़कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहां प्रशिक्षित स्टाफ बच्चों की देखभाल करेगा और श्रद्धालुओं के लौटने तक उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।
3: डीसी साहब यहां पर थे, डीसी साहब ने देखा, उसके बाद उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप ये सर्विस को अगर आपको परमिट करें तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा बहुत रिस्क है इसमें, अगर किसी बच्चे को खाने में या कहीं गुम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, तो हमने कहा अगर भोलेनाथ ने लिखी होगी तकलीफ तो होगी, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर।
0: जाहिर है आस्था के इस महापर्व में अब श्रद्धालुओं को केवल दर्शन ही नहीं बल्कि बेहतर सुविधाएं भी मिल रही हैं। चाइल्ड केयर के अलावा यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और दूसरी जरूरी सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल रहा है।
4: आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बाबा के अच्छे दर्शन हुए और कबूतरी पास बैठे थे और बहुत शांति मिला आत्मा को।
5: वो शिवलिंग अब पिघल गए हैं तो क्या कोई निराशा भी है?
4: नहीं नहीं, कोई निराशा नहीं है, वो बाबा तो हरदम भाई भाई है, कोई निराशा नहीं है। शिवलिंग पिघल गया है थोड़ा सा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, दिखाई दे रहे हैं बाबा अभी देखने के लिए। कैसे
5: ये यात्रा कैसी रही, इतनी लंबी यात्रा?
4: हाँ बहुत अच्छी रही।
0: 3 जुलाई से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। हर दिन हजारों श्रद्धालु जम्मू और कश्मीर पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा के शुरुआती दिनों से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए 9 जुलाई तक के सभी पंजीकरण स्लॉट पूरी तरह भर चुके हैं और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन श्रद्धालुओं के पास वैध रजिस्ट्रेशन नहीं है वो फिलहाल यात्रा पर ना आएं और नए स्लॉट उपलब्ध होने का इंतजार करें। इससे यात्रा का संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। बालटाल से अशरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: ओडिशा के पुरी के साथ मयूरभंज के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। तैयारियां अंतिम चरण में है, मूर्तियों पर पेंटिंग का काम तेजी से हो रहा है और कारीगरों को उम्मीद है कि तय वक्त से पहले काम पूरा भी हो जाएगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है, बारीपदा में रथ उत्सव की तैयारियां तेज। आपको बता दें कि पुरी और बारीपदा में रथ यात्रा उत्सव को लेकर अभी से ही उत्साह का माहौल है। ऐसा माना जाता है कि बारीपदा का रथ उत्सव पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है।
7: बस एक हफ्ते की बात है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी और श्रद्धालुओं के मन की मुराद पूरी होगी। 16 जुलाई को निकलने वाली यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी में तीनों भव्य रथों नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। असल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के रथों के निर्माण का एक खास विधान और एक पूरी प्रक्रिया है, जिसके चलते रथ निर्माण का काम बेहद खास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरी में ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, बल्कि पूरे ओडिशा समेत देश के करीब करीब हर इलाके में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और इसके लिए बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी की जाती है जैसी पुरी में होती है। ओडिशा के मयूरभंज के बारीपदा में भी रथ यात्रा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, जहां पुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन होता है। यहां पर रथ लगभग तैयार हैं, पहिए अपनी जगह लग चुके हैं, लकड़ी का भव्य ढांचा आकार ले चुका है, रंग बिरंगे वस्त्र और सजावट अंतिम रूप ले रही हैं। दूसरी तरफ मूर्तियों की पेंटिंग चल रही है, जिसमें कारीगर दिन रात लगे हुए हैं ताकि वक्त पर काम पूरा हो सके।
8: प्रभा होने वाला है, सारथी होने वाला है, जो रथ का जो अश्व है वो पेंटिंग है, रथ का जो पहिए वो थोड़ा सा बाकी है, वो सब हो गया।
7: 15 जुलाई तक काम होना है, लेकिन बारिश के चलते काम में थोड़ी बाधा आ रही है, लेकिन कारीगरों को विश्वास है कि वक्त से पहले काम पूरा हो जाएगा।
9: सब बच्चे लग रहे हैं काम पर, वो काम करके कुछ ही दिनों में काम कंप्लीट करके रथ में लगाएंगे, फिर रथ यात्रा शुरू होगा।
7: दिव्य रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू हुआ था, जो करीब करीब 70-75% बनकर तैयार है। मयूरभंज के बारीपदा की रथ यात्रा का अपना महत्व है, जहां आयोजन पूरी रथ यात्रा से एक दिन बाद शुरू होता है और यहां रथ खींचने की परंपरा 3 दिनों तक चलती है। इस रथ यात्रा की सबसे बड़ी और अनूठी विशेषता यह है कि देवी सुभद्रा के रथ देवदलन को केवल महिलाओं द्वारा ही खींचा जाता है। बिना मुखौटे वाला 6 नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होती हैं। भक्तों को अब केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भगवान के काज में शामिल होने का उन्हें मौका मिलेगा। ओडिशा का बारीपदा, जिसे द्वितीय सुक्षेत्र भी कहा जाता है, इन दिनों अलग ही उत्साह में है, एक अलग ही आवरण में नजर आ रहा है। ये भगवान जगन्नाथ के प्रति आगाध आस्था का, सदियों पुरानी परंपरा का उत्साह उस दिव्य रथ यात्रा का है, जब भगवान गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों के बीच पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है। इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में प्रधानमंत्री ने की पूजा। आपको बता दें कि सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में ओम नमः शिवाय की गूंज जब सुनाई थी तो पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल से सराबोर उठा।

इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जावा द्वीप के योग्याकर्ता में वहां के सबसे बड़े और ऐतिहासिक प्रम्बानंद मंदिर पहुंचे। 1000 साल से ज्यादा पुराने प्रम्बानंद मंदिर परिसर में पहुंचकर पीएम मोदी भाव विभोर देखे। दिल्ली से 7769 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में ओम नमः शिवाय की गूंज जब सुनाई दी तो पूरा वातावरण भक्तिमय माहौल से सराबोर हो उठा।

0: अगर मैं ल्हासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था, ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद थे। सनातन के दिव्य और भक्ति भाव से सराबोर मंदिर में पहुंचकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना और आरती की और उसके बाद स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में मौजूद लोगों से भी मुलाकात की। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये मंदिर त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। इनमें भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के 3 मुख्य मंदिर हैं। इनमें सबसे बड़ा शिव मंदिर है जो 154 फीट ऊंचा है। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली से प्रेरित है। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई पिकातन ने शुरू किया था। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं। इस मंदिर को यूनेस्को ने 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। यहां पहुंचे पीएम मोदी ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशिया हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा।
0: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ASI एनास्टाइलोसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इस तकनीक के जरिए मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाता है। खास बात यह है कि इस परियोजना की शुरुआत 2026-27 में हो रही है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 1927 में जावा और प्रम्बानन आने का शताब्दी वर्ष भी है। इस परियोजना के 2029 में पूरा होने का अनुमान है, जिसमें पीएम ने एक बार फिर से इंडोनेशिया आने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जम्मू कश्मीर का राजौरी अब सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि नई सोच और एडवांस तकनीकी सोच के लिए भी पहचान बना रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के 17 साल के छात्र इमरान चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक ऐसा स्टार्टअप खड़ा किया जिसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है और इसी से जुड़ी आज की हमारी चौथी गुड न्यूज है। AI शिक्षा स्टार्टअप में राजौरी के युवा का कमाल। मुश्किल हालातों और कम संसाधनों के बीच रहते हुए भी इमरान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने लैगनेवर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की जो आज देश के तेजी से बढ़ते एडटेक सेक्टर में सुर्खियां बटोर रहा है।

0: इमरान ने महज 17 साल की उम्र में अपनी काबिलियत, मेहनत और बुलंद हौसलों के दम पर ये साबित कर दिखाया है कि सपने बड़े हों और इरादे मजबूत तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डूंगी क्षेत्र के रहने वाले इमरान चौधरी ने लैग नेवर AI एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे छात्रों की पढ़ाई और ज्यादा आसान हो गई है। इमरान की इस पहल को छात्रों का शानदार समर्थन भी मिल रहा है। लैग नेवर AI को अब तक 10,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं।
1: 6 महीने पहले एक ऐप बनाई थी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसका नाम था लैग नेवर AI। वो अभी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ की जाती है और उनको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ये ऐप लॉन्च की उसके बाद हमारी जो थ्रू द एम्प्लॉयड जो वैल्यूएशन थी वो 5 करोड़ है। सिर्फ 6 महीने में हमने 5 करोड़ की वैल्यूएशन बना ली कंपनी की एक छोटे से एरिया से।
0: सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि महज 6 महीने पहले शुरू हुई इस कंपनी ने करीब 5 करोड़ रुपए का अनुमानित मूल्यांकन हासिल कर लिया है। भारत के तेजी से बढ़ते एडटेक सेक्टर में इतने कम समय में ये मुकाम हासिल करना इमरान और उनकी टीम की मेहनत, लगन का प्रमाण है।
1: दिन पहले हमने इसको ग्लोबल लेवल पे लॉन्च किया है और ग्लोबल लेवल पे हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आए हैं, इंटरनेशनली यूजर्स। सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास यूजर आए हैं, हमारे पास यूजर आए हैं और उनने इंटरेस्ट भी दिखाया है और उनने प्रीमियम यूजर्स भी आए हैं। हमारे हर एक फ्यूचर को उनने यूज किया और अच्छी फीडबैक दी है।
0: इस कंपनी की सफलता के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि 12 सदस्यों की समर्पित टीम की कड़ी मेहनत और साझा विजन है। कंपनी की मार्केटिंग टीम ने लैग नेवर AI को ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। प्रभावी रणनीति और निरंतर प्रचार के दम पर ही ये प्लेटफॉर्म हजारों छात्रों तक पहुंच सका है और ये कामयाबी यहीं तक सीमित नहीं है। अब इमरान चौधरी की इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिल रही है। उन्हें अमेरिका की कंपनी ब्लैक रॉक के प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रोग्राम के लिए चुना गया है। ये चयन उनकी प्रतिभा और उद्यमशीलता का बड़ा सम्मान माना जा रहा है।
1: हमारा इतना बड़ा कंपटीटर हो तो हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से हम आगे अभी स्टेप अप करेंगे और अभी हमें ग्लोबल लेवल से अमेरिका से ब्लैक रॉक से एक इनवाइट ओनली सिलेक्शन मिली है जिसमें हमें 6 महीने का एक सेशंस रहेंगे हमारे बैंगलोर में और उस 6 मंथ्स के सेशन में हमारे मल्टीपल इवेंट्स होंगे, मल्टीपल इवेंट के कंट्रीज में भी भेजेंगे और वहाँ पे रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा और हमें एक डिफरेंट लेवल की कंपनी बना के भेजेंगे लैग नेवर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।
0: राजौरी जैसे सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र से निकलकर वैश्विक पहचान हासिल करने वाले इमरान आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं जो तकनीक के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सपना देखते हैं।
2: अकेला बैठ के कुछ ना कुछ करता ही रहता था, सोचता रहता था और उस टाइम हमें भी ना था पता कि ये इतना कुछ कर रहा है, कोडिंग वगैरह सीख रहा है। इसने 10th में ये ऐप जब बना दी, जब पूरी तरीके से बना के इसने कर दिया, लॉन्च कर दिया, तब उसके बाद इसने अपनी टीम वगैरह बनाई, मार्केटिंग ऑफिसर्स लॉन्च किए, सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट किया और काफी मेहनती लड़का है।
0: वैसे इमरान को बचपन से ही नई नई चीजें सीखने, तकनीक को समझने और अपने विचारों पर प्रयोग करने का शौक था। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनके इनोवेशन की ताकत बनी और आज उसी जुनून ने उन्हें एक सफल युवा उद्यमी के रूप में नई पहचान दिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सीमा से सटे इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास जम्भीर नाले पर बना पहला स्थायी स्टील पुल बनकर अब तैयार हो चुका है और अब उसे लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये पुल करीब 10 सीमावर्ती गांवों के लिए साल भर बिना बाधा के संपर्क सुनिश्चित करेगा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है राजौरी में स्थायी पुल से कनेक्टिविटी को मिले पंख। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में सीमा से सटे इलाकों के लिए एक महत्वपूर्ण पुल बन गया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के प्रोजेक्ट संपर्क ने जंभीर नाले पर 60 मीटर लंबा पहला स्थायी स्टील पुल बनाया है, जिसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। आजादी के बाद पहली बार इस जगह पर स्थायी पुल बनने से नौशेरा सब डिवीजन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। खासकर के एलओसी के पास बसे करीब 10 गांवों के लोगों के लिए यह पुल किसी लाइफलाइन से कम नहीं। दरअसल पहले बारिश के मौसम में जंभीर नाले का जलस्तर बढ़ने पर संपर्क पूरी तरह से टूट जाता था और गांव का मुख्य राजमार्ग से संपर्क कट जाता था, जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस स्थायी स्टील पुल के बनने से पूरे साल सुरक्षित और बिना बाधा के आवाजाही संभव हो सकेगी।
4: जिला के सीमा से सटे हुए गांव रायपुर में पहला 60 मीटर स्टील ब्रिज तैयार हो चुका है और अब इसे यातायात के लिए खोला गया है। ये वही ब्रिज है जहां आज से करीब 10 साल पहले ये ब्रिज नहीं हुआ करता था और नाला जो आप मेरी तस्वीरों में नीचे देख रहे हैं, इसी नाले में एक बारात के साथ जाते हुए बारातियों की गाड़ी अचानक नदी में पलट गई थी और 67 यानी 67 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद इन तमाम गांव के लोगों की ये मांग थी कि यहां पर पुल बनाया जाए, यानी इस नाले के ऊपर ब्रिज जो है वो बनाया जाए। तब से लेकर ये मांग जो है वो जोर पकड़ रही थी, क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा करीब 10 साल पहले इसी नाले पे घटा था, जब 67 लोग पानी में डूब गए थे। और उसके बाद से लगातार बीआरओ ने इस काम को अपने हाथ में लिया और आखिरकार बीआरओ ने इस पुल को कंप्लीट किया। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्टील से बना हुआ ये ब्रिज है और इस इलाके का पहला ऐसा ब्रिज है जो स्टील से प्योर पूरी तरह से स्टील का ब्रिज है और लगभग सीमा से सटे हुए 10 गांवों को ये जोड़ता है। अब बॉर्डर एरिया की रोड कनेक्टिविटी इस पुल के बनने से बहाल हो चुकी है, यानी अब बरसात के दिनों में लोगों को पानी कम होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इस नाले से और वो लोग जो हैं वो आसानी से यहाँ से पार हो जाएंगे। इस पुल के बनने से बहुत बड़ा फायदा इन तमाम लोगों को होने वाला है।
3: सहारनपुर के एक किसान ने जिले का नाम पूरे प्रदेश के लिए रोशन कर दिया है। बसंत कुमार को बागवानी की बेहतरीन तकनीक, दुर्लभ आम की किस्मों के संरक्षण और प्राकृतिक तरीके से बागों की देखरेख के लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है 100 साल पुराने आम के बाग को सम्मान। जी हाँ, 72 साल के बसंत कुमार अपने बागों की देखभाल बच्चों की तरह करते हैं। उनके पास करीब 2.5 एकड़ का 100 साल से भी अधिक पुराना पुश्तैनी आम का बाग है, जिसे उनके पिता ने लगाया था। उनके बाग में आज भी आम की भरपूर पैदावार होती है। वो अपने बाग में प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, समय समय पर जुताई, खरपतवार की सफाई और प्राकृतिक तरीकों से पौधों की सुरक्षा करते हैं। वसंत कुमार पुराने पेड़ों को बचाने के साथ साथ उनकी कलम तैयार कर नई पौध भी विकसित कर रहे हैं, जिससे ये विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। आज बसंत कुमार के पास 130 बीघा आम के बाग मौजूद हैं, जिनमें आम की 20 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। लखनऊ आम महोत्सव में वो 16 किस्म के आम लेकर पहुंचे थे। इसके बाद उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया।
5: आप लखनऊ गए थे, मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया है, कौन कौन सी वैरायटी आप लेकर गए थे और क्या कुछ हुआ?
6: देखो जी, हम तो 15-16 के करीब वैरायटी लेके गए थे। इससे पहले जो है आम की कुछ वैरायटी है जो ठेकेदारों ने जिन्हें सेल किया गया है उन्होंने तोड़ ली थी, कुछ पे आई भी नहीं। ये जो हमारे पिताजी का बाग लगाया हुआ है इसमें वैरायटी जितनी भी है इनमें भी बढ़ा के कम से कम दुगुनी चौगुनी करके जाने मुझे अगर जिंदगी रहेगी तो।
5: बसंत कुमार जी, आप ये बताइए जो इस आपके बगीचा पहले थे कितने एकड़ का बगीचा है आपका?
6: ये 2-2.5 एकड़ का होगा, ये 2.5 एकड़ का होगा।
5: और अगर बात करें तो लगभग कितनी वैरायटियां जो हैं टोटल कितनी होंगी?
6: मेरे पास वैरायटी 20-22 वैरायटी होंगे।
3: मुंबई में मॉनसून पहुंच चुका है और बारिश की फुहार से पूरा शहर लबालब भरा हुआ है, लेकिन जोरदार बारिश के बाद भी फिल्म स्टार के फैंस की दीवानगी कम नहीं हो रही। शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर भारी बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ जमा है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, भारी बारिश में भी इकट्ठा हुए शाहरुख के दीवाने। जी हाँ, मुंबई में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है लेकिन फिल्म स्टार्स के फैंस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। वो अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए उनके घर के आगे लगातार डटे हुए हैं। भारी बारिश के बावजूद भी वो उनके घरों से हटने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ बात हो रही है बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की। जोरदार बारिश में भी फैंस अपने फेवरेट एक्टर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं और बारिश में भीगते हुए भी उनके घर के बाहर खड़े हैं।
7: शाहरुख खान को देखने के लिए सिर्फ एक झलक ही काफी है और एक झलक देखने के लिए किस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से लोग शाहरुख खान के घर पर पहुंच रहे हैं, ये आप तस्वीरों से देखें। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई इलाके के बांद्रा स्थित शाहरुख खान के घर मन्नत में और देखिए हर कोई उनकी तरह जो है स्टाइल कर रहा है और हर कोई यहाँ पर आकर सेल्फी खिंचा रहा है। वो सारे फैंस हैं जो शाहरुख खान को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं?
8: मैं असम से आई।
7: असम से आई है। शाहरुख खान के घर को पहली बार आप देख रहे हैं?
8: नहीं नहीं, पहले भी देखा, चार बार। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ।
7: बहुत बड़ा, तो कभी मुलाकात हुई है उनसे?
8: बर्थडे में देखा है दो बार।
7: अच्छा, हेलो हाय, गया सेल्फी हो गई आपकी?
8: नहीं नहीं,
7: तमन्ना है मतलब?
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
11: Swing and a foul out of play off to the left.
10: Big 12 Radio.
12: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
10: Talk Sport.
13: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
10: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Looking for even more of the audio you love? Upgrade to TuneIn Premium to remove ads like this one and score more of the content you love. That's more curated news.
2: If one party is saying we will never raise taxes, even on millionaires and billionaires.
1: More top sports.
3: And he's gonna go! There's the tying goal!
1: And everything in between.
3: This game is over!
1: Upgrade now for the premium listening experience.
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को पूरा किया। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, धूमधाम से निकली अनासरा फल भरा शोभा यात्रा, भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाएंगे फल। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन। लगातार बारिश से साफ हुई दिल्ली एनसीआर की हवा, केवल 59 दर्ज किया गया एक्यूआई, राजधानी में इस साल की सबसे साफ हवा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है,
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, पुराना वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। ऐसी दो खबरों की पड़ताल आज हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए

0: उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि छेड़खानी से तंग आकर महिला ने बाइक सवार पर गोलियां दाग दी। क्या इस वीडियो की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ऑटो का स्टंट का ये वीडियो प्रयागराज के नैनी ब्रिज का है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई आगे जानिए। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि एक मुस्लिम युवती को बाइक सवार एक युवक पर पिस्तौल से गोलियां दागते हुए देखा गया है। दावा यह किया जा रहा है कि मनचला युवती के साथ छेड़खानी करता था, उसका पीछा करता था, परेशान होकर महिला ने पिस्तौल निकाली, उस पर गोलियां दाग दी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

0: बाइक सवार पर गोलियां दागती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बुर्का पहने एक महिला को सड़क पर पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। तभी एक बाइक सवार युवक उसके सामने आकर बाइक रोक देता है। दावा किया जा रहा है कि ये लड़का काफी समय से लड़की को छेड़ रहा था, जिससे तंग आकर अचानक लड़की ने पिस्तौल निकाली और उस पर दनादन गोलियां बरसा दी। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक बाइकर लड़का बहुत देर से लड़की को छेड़ रहा था, लड़की बर्दाश्त करती रही, लड़का अचानक उसके सामने बाइक लगा देता है, लेकिन अब लड़की के अंदर का गैंगस्टर जाग गया और धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बुर्का पहने एक महिला को सड़क पर पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। तभी एक बाइक सवार युवक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दावा यह किया जा रहा है कि यह लड़का काफी समय से इस लड़की को परेशान कर रहा था और तंग आकर अचानक लड़की ने पिस्तौल निकाली और दनादन गोलियां बरसा दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। तो ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। हमने इसकी पड़ताल शुरू की दावे की सच्चाई जानने के लिए। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसे कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें इसके असली होने पर संदेह हुआ। वीडियो की शुरुआत में बाइक सवार का एक पैर अचानक से गायब होकर फिर से दिखने लगता है। इसी तरह से वीडियो में मौजूद सभी बाइक्स का रंग एक ही नजर आ रहा है, जो संभव नहीं है। साथ ही साथ सड़क के पास पेड़ भी नजर आ रहे हैं, कपड़े भी दिख रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल स्थिर नजर आ रहा है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या जाने इस रिपोर्ट।
0: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। सर्च के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर का पोस्ट किया गया वीडियो मिला। साथ ही एक और वीडियो 29 जून को अपलोड हुआ मिला। वीडियो में हमें एक वाटरमार्क नजर आया। सर्च के दौरान यही वीडियो एक वेरिफाइड एक्स हैंडल पर भी मिला। इसे 28 जून 2026 को अपलोड किया गया था। वीडियो के साथ ये जानकारी सामने आई कि ये AI की मदद से तैयार किया गया है। इसके आधार पर वायरल वीडियो को हमने डीप फेक डिटेक्शन टूल्स की मदद से चेक किया। सबसे पहले इस वीडियो को हाइव मॉडरेशन की मदद से एनालाइज किया गया और इस एनालिसिस में वीडियो के 79% AI से बने होने की संभावना की पुष्टि हुई। इस एनालिसिस के मुताबिक इस वीडियो को सीडेंस 2 मॉडल की मदद से बनाए जाने की संभावना अधिक है, जो AI वीडियो जनरेट करने वाला एक टूल है। इसी तरह डीप फेकोमीटर के 9 डिटेक्टर्स में से 6 ने इसके AI होने की सर्वाधिक संभावना की पुष्टि की। साइट इंजन के एनालिसिस ने 78% तक वीडियो के AI से बने होने के संकेत दिए। इस तरह हमारी जांच में एक मनचले युवक पर युवती के पिस्तौल से गोली चलाने वाला वीडियो AI से बना हुआ साबित हुआ। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हमारी जांच में वायरल पोस्ट फर्जी साबित हुई। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इसमें एक शख्स को ऑटो रिक्शा से लटककर खतरनाक स्टंट करते हुए देखा जा सकता है। दावा यह किया जा रहा है कि वायरल वीडियो यूपी के प्रयागराज के नैनी ब्रिज का है। वायरल वीडियो में ऑटो रिक्शा पर स्टंट करने वाले लड़के को एक साइकिल चालक से टकराते हुए भी देखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है इस वीडियो की इस रिपोर्ट में जानिए।
2: So सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ऑटो सड़क पर दौड़ रही है। इसी दौरान एक युवक ऑटो से आधा शरीर बाहर निकाल कर झूलता और डांस करता नजर आता है। कुछ ही सेकंड बाद युवक का हाथ सड़क पर जा रहे एक साइकिल सवार से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वो अपना संतुलन खो देता है और सड़क पर गिर पड़ता है। वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि टक्कर के बाद भी ऑटो नहीं रुकी। युवक बिना पीछे देखे वहां से निकल गया, जबकि ये शख्स सड़क पर पड़ा हुआ था। हालांकि ऑटो के पीछे चल रहा एक बाइक सवार तुरंत रुका, उसने सबसे पहले उसके ऊपर गिरी साइकिल हटाई और फिर उन्हें उठाने में मदद की। आसपास मौजूद कुछ दूसरे लोग भी मौके पर पहुंच गए और उसकी सहायता की। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो यूपी के प्रयागराज के नैनी ब्रिज का है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि प्रयागराज के नैनी ब्रिज पर आप एक घंटे खड़े रह जाएंगे तो ऐसे नमूने मिल जाएंगे, कार्यवाही आवश्यक। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
1: सोशल मीडिया पर ऑटो पर यह खतरनाक स्टंट शेयर किया जा रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ऑटो सड़क पर दौड़ रहा है और इसी दौरान युवक ऑटो से आधा शरीर बाहर निकालता है, झूलता है, डांस करता नजर आ रहा है। कुछ ही सेकंड्स के बाद युवक का हाथ सड़क पर जा रहे एक साइकिल सवार से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार है कि वो अपना संतुलन खो बैठा है और सड़क पर ही गिर जाता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि प्रयागराज के नैनी ब्रिज का यह वीडियो है। लोग पुलिस से कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की जांच शुरू की। सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमारा ध्यान पुल पर गया। पुल का डिजाइन बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो जानकारी सामने आई कि यह दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय जानकारी भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि करती हो, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो का संबंध दिल्ली से है तो ये घटना कब की। दूसरा सवाल कि कहीं स्टंट के पुराने वीडियो को जानबूझकर हाल फिलहाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक्स हैंडल पर भी काफी वायरल मिला। डीसीपी यमुनानगर प्रयागराज के एक्स हैंडल की ओर से यूजर्स को जवाब देते हुए बताया गया था कि वीडियो की गहनता से जांच करने पर नैनी यमुना पुल का होना नहीं पाया गया है बल्कि 2.5 वर्ष पुराना दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज का पाया गया है। कृपया भ्रामक सूचना नहीं फैलाएं, अन्यथा इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें कई पुरानी खबरें मिली जिनमें वायरल वीडियो को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का बताया गया था। 15 दिसंबर 2023 को पब्लिश एक खबर में बताया गया था कि दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर ऑटो रिक्शा चालक के स्टंट का मामला सामने आने पर दिल्ली पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए वायरल वीडियो के आधार पर ऑटो रिक्शा चालक की पहचान की और वाहन को सीज करते हुए कुल 32,000 रुपए का चालान भी किया। सर्च के दौरान दिल्ली पुलिस के एक्स हैंडल पर हमें एक पोस्ट मिली। इसमें वायरल वीडियो का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया कि सिग्नेचर ब्रिज पर ऑटो रिक्शा के स्टंट करने के प्रकरण का संज्ञान लेते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने ऑटो रिक्शा को सीज करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कई धाराओं में कुल 32,000 रुपए का चालान किया। यह पोस्ट 14 दिसंबर 2023 को की गई थी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल पोस्ट फेक साबित हुई। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर 2023 में हुई एक घटना के वीडियो को अब प्रयागराज के ब्रिज का बताकर झूठ फैलाया जा रहा है। प्रयागराज के नैनी ब्रिज पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए, और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
5: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
10: बच्चे अपनी अनोखी सोच और देसी जुगाड़ से कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ स्कूली बच्चों ने साधारण से ज्योमेट्री बॉक्स को बिल्कुल आईफोन 17 जैसा बना दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे अपने स्कूल में बैठे हुए हैं, इसी दौरान उन्होंने एक साधारण ज्योमेट्री बॉक्स लिया और उसे बिल्कुल नए आईफोन की तरह डिजाइन करना शुरू कर दिया। बच्चों ने बॉक्स पर कैमरा जैसा डिजाइन बनाया, स्क्रीन तैयार की और पीछे की तरफ एप्पल जैसा लोगो भी बना दिया। पहली नजर में देखने पर ये सचमुच किसी असली स्मार्टफोन जैसा लगता है। बच्चों ने इतनी बारीकी से इसे तैयार किया कि वहाँ मौजूद मास्टर जी भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए। वीडियो में मास्टर जी का रिएक्शन भी देखने लायक रहा।
11: के मन में सफाई करना।
10: आज के समय में लोग अक्सर अपने आसपास फैली गंदगी की शिकायत तो करते हैं, लेकिन उसे साफ करने की जिम्मेदारी बहुत कम लोग उठाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिमला की एचपी कॉलोनी के कुछ छोटे बच्चों ने ऐसा काम कर दिखाया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। इन बच्चों ने खुद आगे आकर अपनी कॉलोनी की सफाई शुरू कर दी और लोगों को स्वच्छता का बड़ा संदेश दिया। सोशल मीडिया पर इन बच्चों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे हाथों में कचरे के बैग लेकर सड़कों पर फैला कूड़ा साफ करते नजर आ रहे हैं। लोगों को बच्चों की ये सोच और मेहनत काफी पसंद आ रही है।
11: वेरी गुड।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: No.
13: Oh no.
12: Welcome to Get Real.
13: I got something to say.
12: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
13: Oh my God.
14: It's got to be deliciously desperate.
13: Why do these girls forget her?
15: Well, she has a soft spot for troubled men.
14: Boo bloody.
12: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
13: Love runs deeper than we know.
12: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
7: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है.
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
5: गुड न्यूज टुडे.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधावा। एक ऐसा शो है जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम की करेंगे, क्योंकि मौसम है मेहरबान। दूसरे राज्यों से सबक लेते हुए मॉनसून को हल्के में लेना मना है। विलीन होते बाबा अमरनाथ के दुर्लभ दर्शन, बाबा बर्फानी के दर पर आस्था बेशुमार। और जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के आने से पहले आस्था के मार्ग पर सुरक्षा की परीक्षा हुई। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
2: सौरभ गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को ICC के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, ये सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को पूरा किया। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, VIP और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, धूमधाम से निकली अनासरा फल भरा शोभा यात्रा, भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाएंगे फल। देवभूमि में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की करेंगे। इस साल देर से आया दक्षिण पश्चिम मॉनसून जुलाई के दूसरे हफ्ते में आक्रामक तेवर दिखा रहा है। इस वक्त देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है और इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में दूसरे दिन भी जबरदस्त बारिश देखने को मिली है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मगर कई राज्यों में भारी बारिश के चलते लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे में जगह जगह लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

0: जुलाई के इस तीसरे हफ्ते में मॉनसून की मेहरबानी देश के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण, बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में दूसरे दिन भी अच्छी बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में काले घने बादलों का डेरा था और ठंडी हवा भी चल रही थी। दोपहर होते होते बादल जमकर बरसे। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक और नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक ये बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आई।
1: मौसम विभाग ने 7, 8 और 9 जुलाई को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था और वो अलर्ट अब सच भी साबित हो रहा है, क्योंकि बीते दो दिनों से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं और आज की तारीख यानी कि बुधवार को आपको जगह जगह पे इस तरह से बारिश होते हुए दिल्ली और NCR के पूरे इलाके में दिखाई देगा। उसका असर आपको सड़कों पर भी दिखेगा। हालांकि दिल्ली में फिलहाल बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति नहीं हुई है। इसका कारण ये है कि फिलहाल दिल्ली में मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। IMD का जो नोटिफिकेशन था वो असल में लाइट रेन्स या वेरी लाइट रेन्स को लेकर था और शाम के समय हवाओं की रफ्तार तेज होगी, ये भी मौसम विभाग ने कहा था। और दिल्ली वाले भी इस मौके का लुत्फ उठा रहे हैं, बारिश को फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं।
0: दिल्ली NCR में मानसून तो पिछले हफ्ते ही आ गया था, लेकिन बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से लोगों का उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल था। मगर अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 जुलाई तक दिल्ली NCR में बारिश का ये दौर जारी रहेगा।
2: लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलने वाली है, हर कोई जो है वो परेशान था। पूरे देश में लगातार जो है वो बारिश देखी जा रही थी, लेकिन बात अगर दिल्ली की जाए तो हर किसी को इंतजार था, क्योंकि यहाँ पर भी गर्मी बढ़ रही थी, तापमान बढ़ रहे थे और लोगों को राहत की जो है उम्मीद थी कि कब राहत होगी। तापमान की अगर आज हम बात करेंगे तो 25 डिग्री के आसपास आपका न्यूनतम तापमान बना हुआ है और वही अधिकतम तापमान 38 डिग्री के आसपास जो है बना हुआ है। तो कुल मिलाकर लोगों को जो है राहत मिली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर कोई यहाँ पर जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है।
3: रेनफॉल एक्टिविटी आज और कल मेजरली रहने वाली है, जिसके लिए हमारा येलो अलर्ट है, क्योंकि ये मार्च उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा।
2: उमस वापस से होगी, क्योंकि उमस से ही लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।
3: थोड़ा बहुत रेनफॉल उसके बाद होता रहेगा, कम रहेगा। तो मेजरली हमने ये बताया, बिन अराउंड अबाउट 12 जुलाई तक हल्का फुल्का रेनफॉल NCR दिल्ली में होता रहेगा।
0: इस साल देर से आया दक्षिण पश्चिम मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका है। इसके असर से कुछ राज्यों में जोरदार बारिश भी देखने को मिल रही है, खासकर पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम और मध्य भारत में, जहां अत्यधिक भारी बारिश के चलते न सिर्फ नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है बल्कि सड़कें भी किसी नहर की तरह नजर आने लगी हैं। मुंबई, पुणे और नासिक से आई इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई में जहां लगातार बारिश से मीठी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं नासिक में नंदनी नदी में पानी बढ़ने से इसका असर रिहायशी इलाकों में दिखने लगा है। इसी तरह पुणे में खड़कवासला डैम से 27,000 क्यूसेक पानी मूठा नदी में छोड़े जाने के चलते मूठा नदी उफान पर है। इन हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है।
4: वसई विरार इलाके में लगातार छठे दिन भी बारिश का कहर शुरू है। आज लगातार छठे दिन बारिश के कारण पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वसई वेस्ट के मानिकपुर रोड पे। आप देख सकते हैं किस तालाब का स्वरूप इस रोड पे आ चुका है। ये जो बस है पीछे दो दिन से पानी में बंद पड़ चुकी है। ऐसे ही हाल जो नाला सोपारा हो, विरार हो, सब जगह का है। नाला सोपारा का सेंटर पार्क हो, तुलिंज हो, कई लोग जो है घरों में फंस चुके हैं, दुकानों में पानी है। रिकॉर्ड तोश बारिश जो है वसई विरार में पहली बार हुई है। इसके पहले ऐसी बारिश वसई वालों ने कभी देखी नहीं है, ना हो चुकी है।
5: पिछले कुछ दिनों से पूना में जोरदार बारिश हो रही है और अभी हम जहां खड़े हैं वहां से जो पुणे का प्रसिद्ध पुल जो है भिड़े पुल, वो पानी में गया है। खड़कवासला धरण जो है, जो डैम है, वहां से 27,000 क्यूसेक की तेजी से पानी छोड़ा गया है और यहाँ पर हम देख सकते कि इसमें जो भिड़े पुल है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आवाजाही जो है बंद की है। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ये जो मुठा नदी पात्र है वहाँ यहाँ के जो सिटीजन्स है या फिर जो नागरिक है उन्होंने नहीं जाना चाहिए और इसी तरह आगे भी बारिश जारी रहने की संभावना है।
0: प्रशासन की हिदायत के बावजूद कई लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर वसई से सामने आई है जहां दो कारें पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि दमकल विभाग की टीम ने दोनों कारों में सवार तीन लोगों को सही सलामत बचा लिया। उधर पुरुलिया जिले में यात्रियों से भरी एक बस उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब कुमारी नदी का पानी एक अस्थायी पुल के ऊपर से बह रहा था। तभी ड्राइवर ने बस को पुल से ले जाने की कोशिश की और वो पलट गई। हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर बस में सवार सभी यात्रियों को बचा लिया। दिल्ली से अमित भारद्वाज और मनीषा लड्डा के साथ वसई से प्रवीण नलावडे और पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल, गुड न्यूज टुडे।
6: बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे जिसे लेकर तीर्थयात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं के इसी उत्साह की बदौलत पहले पांच दिनों में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 1,00,000 को पार कर गया। हालांकि इस बीच खबर आई कि पवित्र अमरनाथ गुफा में बना प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पिघल गया है, जबकि यात्रा अभी 28 अगस्त तक चलने वाली है। बावजूद इसके यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को जोश और उत्साह में उनकी कोई कमी नहीं आई है।
7: बाबा अमरनाथ में अटूट आस्था रखने वाले ये श्रद्धालु जयकारों का उद्घोष करते हुए पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं। कोई घोड़े और खच्चर पर सवार होकर जा रहा है, कोई पालकी पर सवार होकर जा रहा है और कोई पैदल चलकर पवित्र गुफा तक दर्शनों के लिए दौड़ा चला जा रहा है। सबके मन में बस जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस है। इनमें कोई परिवार की खुशहाली की मुराद लेकर आया है और कोई रोजी रोटी में तरक्की की मुराद लेकर आया है। बाबा बर्फानी में अटूट आस्था रखने वाले इन भक्तों का मानना है कि श्री अमरनाथ जी उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
8: आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बाबा के अच्छे दर्शन हुए और कबूतरी पास बैठे थे और बहुत शांति मिला आत्मा को।
9: ये यात्रा कैसी रही, इतनी लंबी यात्रा?
8: बहुत अच्छी रही यात्रा, सब कुछ यात्रा कुछ हम चलते हैं यात्रा की, अच्छी रही यात्रा।
10: मैं इंदौर शहर से हूँ, हम लोग आए थे दर्शन करने, साथी लोग, हम एक ग्रुप के हैं। हम बाबा के यहाँ दर्शन करने गए थे, बहुत ही बढ़िया सुकून मिला हमको बाबा के दर्शन करके। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बाबा सबको ही दर्शन दे रहे हैं।
7: श्री अमरनाथ जी की इस यात्रा में अब तक 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, जबकि पिछले साल पहले 5 दिन में करीब 93,000 शिव भक्तों ने अपनी यात्रा पूरी की थी। यानी इस साल शुरुआत 5 दिनों में शिव भक्तों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है।
11: इस साल की अमरनाथ यात्रा में एक हफ्ता भी नहीं बीत गया है, 1,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, जो साफ दर्शाता है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में क्या उत्साह है। और इस बात का अंदाजा तभी हुआ था जब अब की बार रिकॉर्ड तादाद में 4,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन की थी। उसके बाद भी हजारों की तादाद में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर जारी है।
7: हालांकि एक दिन पहले खबर आई कि अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का बना शिवलिंग लगभग पूरी तरह से पिघल गया है, जबकि अभी यात्रा शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये यात्रा इस साल 28 अगस्त तक चलनी है। बावजूद इसके देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था बरकरार है और वो दर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज भी श्रद्धालुओं के जत्थे को कड़ी सुरक्षा में पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया।
12: दिन प्रतिदिन बाबा अमरनाथ के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। 10,000 लोग हैं जत्था में और बहुत उत्साह है भगवान के प्रति और सब लोग चाहते हैं भगवान के दर्शन मिले हम लोगों को। बाबा के जब शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे तो हम लोगों को यह मन में है कि हम बाबा की गुफा तक ही पहुंचे, बाबा के स्थान तक पहुंचे और वहां बाबा को प्रणाम करके आए। सर
13: सुना है कि बाबा भोले शंकर की जो स्वरूप है वो लुप्त होता जा रहा है, पर भक्तों की आस्था है, भक्तों का एक विश्वास है, हमें वहाँ दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और हम अपनी आस्था को मद्देनजर रखते हुए वहाँ बाबा भोले शंकर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे।
14: मायूस होने की जरूरत नहीं है, देखो महादेव जी तो कन कन में है, एक ये उन्होंने अपना स्वरूप उठाया था वहाँ पे, ठीक है, जो अमर कथा सुनाई थी गुफा में, जगह मगर वहाँ पर शिवलिंग स्तंभ नहीं है, लुप्त हो चुका है, बाबा जी अंतर ध्यान हो चुका है, उस जगह महत्ता तो है जहाँ माता पार्वती जी ने भोले बाबा से अमर कथा सुनी, अमर कबूतर है वहाँ पर, जो मैं मानता हूँ जो हमारा मानना है शिवलिंग की महत्ता तो है ही है, उस जगह की महत्ता बहुत ज्यादा है जहाँ पर भोले बाबा ने अपना आसन दिया।
7: देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए यात्रा वाले रूट पर जगह जगह लंगर चल रहे हैं जहाँ खाने और विश्राम का इंतजार किया गया है। इनमें कुछ भंडारे ऐसे हैं जहाँ का भक्तिमय माहौल तीर्थ यात्रियों को खासा रास आ रहा है।

0: इन भंडारों में रोजाना होने वाली पाठ पूजा और भजन कार्यक्रमों में ये श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सफल सुखद यात्रा की कामना करते हैं। वहीं एक भंडारा ऐसा भी है जहां बच्चों की देखभाल का इंतजाम किया गया है।
1: अमरनाथ यात्रा में आपको हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर दिखेगी। हर राज्य के यहां पर भंडारे लगते हैं, हर राज्य के यहां पर श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेयर है कानपुर की मैडम प्रमिला जी। मैडम आप अमरनाथ यात्रा पे आइए, पहले अपना आप बताइए कि कब से आपका लगाव है अमरनाथ यात्रा के साथ और जो यहाँ पर जो कानपुर का ये भंडारा लगा है इसमें आपकी क्या क्या योगदान है?
2: देखिए मेरा आने का तो बहुत दिन से मन था अमरनाथ से, जब से मैं समझने लायक हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाई। लेकिन ये मेरा छठवां या सातवां बार है। मेरे बहन का लड़का पहली बार ले आया था मुझे, लेकिन उसके बाद से ये मेरा बेटा लेके आता है। और ये इतने अच्छे से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली बार, अगर पहली बार की फोटो दिखाएं या दोबारा दिखाएं, तिबारा हमारे पांचवी छठी बार पांचवा है, तो हर बार एक नया काम करता है। अब इस बार देखिए इसने सब व्यंजन का तो ये भगवान को भोग लगाता है और हजारों आदमियों को ये भोजन कराता है। हमारा इसके साथ बस इतना ही है कि मैं इसके साथ लगी रहती हूँ कि हमसे जो हो जाए।
1: क्या आपने ये जो खासतौर से मैं चाइल्ड केयर को लेकर बड़ा ये हुआ कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि बच्चों के केयर के लिए भी यहाँ पर जो है एक व्यवस्था हो?
3: चाइल्ड केयर जब पहली साल हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग महिलाएं और बच्चे जो हैं यहाँ पर साथ साथ रोते रहते थे कि हम जा नहीं पाए, बच्चे रो रहे होते थे। तो एक मन में एक आया कि अगर बच्चे हमारे पास है तो ये लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पास कुछ खिलौने वगैरह थे तो दो तीन बच्चे हम लोगों ने यहाँ टेबल पे ही तखत पे रखा और उनके वो लोग गए आ गए। ये लीगली नहीं था, हम लोगों का पर्सनल एक एफर्ट्स था जिसको पहली बार किया था। तो डीसी साहब यहाँ पर थे, डीसी साहब ने देखा, उसके बाद उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप ये सर्विस को अगर आपको परमिट करें तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा बहुत रिस्क है इसमें, अगर किसी बच्चे को खाने में या कहीं गुम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हमने कहा अगर भोलेनाथ ने लिखी होगी तकलीफ तो होगी, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर।
0: श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोशिश है कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा का अनुभव यादगार हो। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब आज जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की, जो एक हफ्ते बाद अपने भव्य और दिव्य रथ पर सवार होकर आने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में दिव्य उत्सव आरंभ होने वाला है। इस मौके पर इस पौराणिक नगरी में आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। देश के सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों में शामिल पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए बन रहे रथों से जुड़ा कार्य अपने अंतिम दौर में है। 3 दिन तक चलने वाला जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 16 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें बड़ी संख्या में देश से श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। उससे पहले आस्था के इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा भी ली गई। सुरक्षा एजेंसियों ने जगन्नाथ मंदिर के नजदीक के अलावा रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल की, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए की जा रही सुरक्षा तैयारियों को परखना था।
5: बुधवार का दिन दोपहर का वक्त जगत के पालनहार की नगरी पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया। पवित्र क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियों और फायर ब्रिगेड के सायरन का शोर अचानक उठा और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन को सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। ये समझने में देर नहीं लगी कि कुछ संदिग्ध लोगों ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर पर भक्ति और आस्था के रंग में बाधा डालने की कोशिश की है। उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया। जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन की घेरेबंदी के बीच स्पेशल टेक्निकल यूनिट के कुछ कमांडोज इमारत में दाखिल हुए और वहां पहरा दे रहे आतंकी को ढेर कर दिया। इसके बाद इमारत में कुछ आतंकियों को काबू किया गया ताकि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएं। पूरी तरह ये भरोसा कर लेने के बाद कि अब कोई आतंकी खुला नहीं घूम रहा, प्रशासनिक भवन में मौजूद सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में तैनात घायल पुलिस कर्मियों को स्ट्रेचर से निकालना शुरू किया गया ताकि आतंकियों की गोली से घायल हुए पुलिस वालों को तुरंत से तुरंत इलाज मिल सके। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन के बाहर आम लोगों की भी भीड़ लग गई, जिन्हें कुछ देर बाद ये बात समझ आ गई कि जगन्नाथ यात्रा से पहले वहां मॉक ड्रिल हो रही है ताकि जगन्नाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा पर खतरों से निपटने के लिए आपसी तालमेल और तैयारियों को परखा जाए। यही वजह रही कि तलाशी अभियान और लोगों के बचाव के लिए रिमोट कंट्रोल रोबोटिक वाहन और डॉग स्क्वाड भी ऑपरेशन में शामिल हुए। ऐसी ही तस्वीर पुलिस रेलवे स्टेशन पर भी सामने आई, जहां स्पेशल टेक्निकल यूनिट को हावड़ा पुरी एक्सप्रेस में यात्रियों को बंधक बनाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वहां भी बगैर वक्त गवाए स्पेशल टेक्निकल यूनिट के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया ताकि ट्रेन की बोगी में बंधक बनाए यात्रियों को छुड़ाया जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान पूरी रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन स्थितियों से निपटते हुए सुरक्षा कर्मियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया।
6: रथ यात्रा 2026 के लिए व्यापक पुलिस बंदोबस्त करा जा रहा है। इसमें प्राय 12,000 से अधिक पुलिसकर्मी, होमगार्ड, सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो है इसमें मुतयन करी जाएंगी। सभी कंटीजेंसी के विषय में चिंता करा गया है और उसके बारे में प्रबंध करे जा रहे हैं। ट्रैफिक के लिए व्यापक प्रबंध करा जा रहा है। भारी संख्या में CCTV लगाया जा रहा है। उत्तराछक से लेकर पुरी तक और पूरा पुरी शहर रथ यात्रा के समय में CCTV सर्वेलेंस में रहेगा। उसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर्स स्थापित करे जा रहे हैं विभिन्न जगह में। मैं आप सभी के जरिए जन साधारण से अपील करता हूं कि जब वो रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी की तरफ आते हैं तो विभिन्न समय में पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक विंग की तरफ से जो जो एडवाइजरी दी जा रही है उसका वो ध्यान करें और उसका पालन करें।
5: सनातन धर्म के लिहाज से अति महत्वपूर्ण चार धामों में से प्राचीन नगरी पुरी एक है, जहां सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव की तैयारी अंतिम दौर में है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को समर्पित जगन्नाथ मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र में माहौल ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों में शामिल पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए बन रहे रथ करीब 90% से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से ही संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एक आकार नजर आते हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ की यात्रा निकाली जाती है। इस बार रथ यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई से होगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: क्या घर में देवी देवताओं का चित्र बेडरूम में लगा सकते हैं? पति पत्नी और परिवार का चित्र किस जगह लगाना चाहिए और चित्र लगाने में किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? घर में लगने वाले चित्रों का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
9: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है। गुंडी

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अपने घरों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए घर में तमाम तरह के चित्र लगाते हैं। इन चित्रों को लगाने का एक तरीका है और इन चित्रों को लगाने के नियम भी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए घर में कैसे चित्र आपको लगाने चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे मंत्र के बारे में। 12 राशियों के दैनिक राशि

बजे तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपके घर के चित्रों के बारे में। घर में जो चित्र लगते हैं वो हमारे ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, अपने लोगों की यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए विभिन्न चित्र लगाते हैं। और जो चित्र हम अपने घर में लगाते हैं ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगे निकलती हैं। जब आप इनको देखते हैं तो इनकी तरंगे आपके अंदर प्रवेश करती हैं और इसी कारण से चित्रों का सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। जब आप चित्रों के संपर्क में आते हैं तो ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्र का प्रयोग करके मन को प्रभावित किया जा सकता है और इसके अलावा स्वभाव पर, ग्रह पर और भाग्य पर भी असर डाला जा सकता है। अलग अलग तरह के चित्र आपके मन, आपके स्वभाव और आपकी सोच पर असर डालते हैं। चित्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्याओं से बचाव करें, वाद विवाद से बचाव

करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अपनी जरूरत के हिसाब से सुंदरता बढ़ाने के लिए हम घर में अलग अलग चित्र लगाते हैं, तो घर में कैसे चित्र लगाने चाहिए आइए जानते हैं। पूजा उपासना करने के लिए घर में देवी देवता या अपने गुरु का चित्र आप लगा सकते हैं। ये चित्र जितना साफ होगा और जितना स्पष्ट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, और इन चित्रों को पूजा स्थान पर या अपने कार्य स्थल पर लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र आप लगा सकते हैं, या पति पत्नी का संयुक्त चित्र जिसमें पति पत्नी दोनों मौजूद हों, ऐसा चित्र भी लगा सकते हैं। माता पिता या भाई बहन का चित्र उत्तर दिशा की तरफ लगाना चाहिए। अगर किसी मृत व्यक्ति का चित्र लगाना है, अपने पूर्वज आदि का चित्र लगाना है, तो इसको दक्षिण दीवार पर लगाना बेहतर होगा। घर के डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में संयुक्त परिवार का चित्र लगाना फायदेमंद होता है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनका जो संयुक्त चित्र है वो डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया में लगा सकते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। केले का दान कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
तुला राशि, परिवार की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए और भाग्य को बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाने चाहिए। घर में प्रेम बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में, मुख्य द्वार पर फूलों का या पानी का चित्र लगाना अच्छा होगा। आर्थिक संपन्नता के लिए, पैसे रुपए के लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र आपको लगाना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र आप लगा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और काम में नाम और यश के लिए उगते हुए सूर्य का चित्र अपने काम के स्थान पर लगाइए। हर तरह के कष्ट या कृष्ण जी का चित्र आशीर्वाद की मुद्रा में लगाना बेहतर होगा। अब जब आप चित्र लगाते हैं तो चित्रों को लगाने में सामान्यतः किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए। जहां तक हो सके घर में कोई भी चित्र लगाएं, रंगीन और सुंदर चित्र लगाना बेहतर होगा। जंगली जानवरों के, आग के, कांटों के, युद्ध के चित्र न लगाएं। चित्रों को साफ सुथरा रखिएगा और चित्रों पर धूल मत जमने दीजिएगा। पूजा के स्थान पर पति पत्नी और बच्चों का चित्र मत लगाइए और अपने बेडरूम में सामान्यतः देवी देवताओं के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। घर में बहुत सारे चित्र लोगों के न लगाएं, क्योंकि बहुत सारे चित्र लगाने से रिश्तों में उलझन पैदा होती है, रिश्तों में दिक्कत आ जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी,
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक समस्या हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, धन खर्च पर ध्यान बनाए रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन के लेन देन में सावधानी रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की घर में लगाए जाने वाले चित्रों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। भोजन जब भी करें हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए। अगर आप तनाव में, चिंता में भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन विष के समान होता है। अब जान लेते हैं दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को, किसी भी भगवान को पीला फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: अंक 13 एक अशुभ अंक है, क्या अंक 22 के साथ भाग्य ज्यादा होता है, क्या 31 अंक वालों का वैवाहिक जीवन खराब होता है, क्या है अंक 4 की विशेषताएं और इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: TIT भोपाल, जेन जी गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। Sage University, transforming your passion into profession.
13: अब
10: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, ये सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की दिख रही अपार आस्था की भी।
13: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्तिमय उल्लास के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ते दिखते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का काफिला अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता नजर आता है। जगह जगह शिविर में श्रद्धालु पूजा अर्चना, आरती और भजन के साथ अपना समय बहुत ही बढ़िया तरीके से बिताते दिखते हैं। इन शिविरों में उनकी सुविधा की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि पहली बार श्रद्धालुओं के बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पवित्र गुफा में जाने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने तक 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बालटाल और ननवान बेस कैंप में बने चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख सकते हैं। बारिश के बीच भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है, हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन भक्त धाम में पहुंचकर पूरे भक्त भाव में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के बीच छाता और बरसाती से खुद को बचाते हुए भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से पवित्र धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस है, साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल रास्ते अभी ठीक हैं, भक्तों की संख्या भले ही कम हुई है लेकिन भक्त जितने भी हैं बाबा केदार के दरबार तक जरूर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अब कम नजर आ रही है, लेकिन भीड़ कम होने का फायदा उन श्रद्धालुओं को मिल पा रहा है जो बद्री विशाल के दरबार तक पहुंच रहे हैं। उन्हें दर्शन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा भी करनी नहीं पड़ रही और सुगम तौर पर बद्री विशाल के दर्शन का अवसर मिल रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पुरी में 16 जुलाई को शुरू होने वाली रथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक से लेकर मॉक ड्रिल तक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं ताकि विभागों के बीच आपसी तालमेल से रथ यात्रा सुचारू और सुरक्षित आयोजन रूप से हो सके। वहीं ओडिशा के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बारिश के बावजूद कारीगर और कलाकार अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार 16 तारीख तक काम पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रथ और उसके पहियों की पेंटिंग की जा रही है। उधर झारखंड के रांची में जगन्नाथ पूर्व मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ देवी देवता मौसी बाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे उसे अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। पूरी से आए कलाकार रथ पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये बिहार की बोधगया का वो मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध अलग अलग मुद्रा में दिखते हैं। इस बौद्ध मंदिर में 1002 भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियों के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह में चारों तरफ की दीवारों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। इस मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था। इस मंदिर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के साथ साथ विदेश से भी लोग आते रहते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बीच वसई के वसंत नगरी सिग्नल इलाके से राहत की एक तस्वीर सामने आई। यहां फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी की वजह से पानी के बीच दो कार में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यहां पानी के तेज बहाव में दोनों कार बहने लगी थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक कार के ड्राइवर और दूसरी कार से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों कार को भी पानी से बाहर निकालकर सड़क तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
10: और अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की। अपने इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। इसके तहत भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। दोनों देशों का मानना है कि इससे भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते और मजबूत होंगे।

0: माथे पर त्रिपुंड, भगवा कुर्ता और दिल में भक्ति की भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के अंतिम दिन योग्यकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। कंधे पर अलग तरह का स्टॉल लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मंदिर में पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ की सनातन शिल्पकला, आध्यात्मिक आबोहवा देखकर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। दिल्ली से 7763 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर की पावन ध्वनि की अनुगूंज हुई तो उन्हें भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का स्मरण हो आया।
1: अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर का वीडियो साझा करते हुए इसे मैजेस्टिक प्रम्बानन टेंपल बताया। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सनातन के भव्य दिव्य भक्ति भाव से सराबोर मंदिर में पहुंचकर आरती करने स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हृदय भक्ति से भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने साल 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये मंदिर मध्य जावा में जोग जकार्ता के पास शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इनमें सबसे प्रमुख 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है, जिसके उत्तर में ब्रह्मा और दक्षिण में विष्णु मंदिर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नकाशी में रामायण की इंडोनेशियाई शैली को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है, जब जावा द्वीप पर हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव था। इन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली से प्रेरित है, जिसमें ऊंचे विमान, बड़े प्रांगण, वास्तुशास्त्र की मंडल अवधारणा नजर आती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक पूरी रामायण कथा पत्थर पर उकेरी गई है। एक समय में इस परिसर में लगभग 240 मंदिर थे, वहीं पूरे क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिर हैं। माना जाता है कि इसे ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई तिकातन ने शुरू किया था। यहाँ हर साल मई से अक्टूबर के बीच पूर्णिमा की रातों में खुले मंच पर रामायण बैले का भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इंडोनेशिया का ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म का प्रभाव कितना व्यापक था। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं इस बात की गवाह हैं कि भगवान राम और कृष्ण ने अवतार बेशक भारतवर्ष में लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सार्वभौमिक और कालातीत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सौभाग्य की बात है कि इंडोनेशिया में यहाँ पहुंचकर उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्वार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मंदिर परिसर के कई छोटे मंदिरों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग देगा। इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्वार करेगा।
1: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि बार बार भगवान शिव की सेवा का असर मिलना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है।
1: चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: सदियों पुराने इस मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में राजनीतिक बदलावों के कारण ये मंदिर उपेक्षित हो गया था। बाद में आए भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से साल 2006 के जावा भूकंप के बाद मंदिर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर की फिर से खोज हुई, उसके बाद संरक्षण का काम शुरू किया गया। अब खास बात यह है कि मंदिर के जीर्णोद्वार परियोजना की शुरुआत 2026-27 में हो रही है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1927 में जावा और परमानंद आने का शताब्दी वर्ष भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज दिल्ली की हवा 2026 की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज हुई, तो वहीं बनारस वालों को मिलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में अलग द्वार से दर्शन करने की सुविधा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश से दोहरी राहत मिली है। एक तरफ दिल्ली वालों को ठंडी साफ हवा मिली और साफ आसमान भी देखने को मिला। आज राजधानी में साल 2026 की सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। यहाँ शाम 4 बजे AQI 59 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। 12 जून को दर्ज किए गए पिछले सबसे अच्छे AQI से थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आई है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। IMD ने कल भी राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारसी लोग अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे। CM योगी ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से प्रवेश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसके तहत गेट पर लोकल ID दिखाकर वो दर्शन के लिए जा सकेंगे। दरअसल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन उपलब्ध करवाने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए भारतीय रेलवे सौगात लेकर आया है। गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च किया गया है। जुलाई और अगस्त के महीने में गोरखपुर से 2 विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही हैं। ये ट्रेनें श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ साथ देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कराएंगी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार हो गया है, जिसमें पर्यटकों, खासतौर पर बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी यहां शुरू की गई है। इसके जरिए यहां पर्यटकों को रोमांच का तड़का तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया उन्हें मनोरंजन के साथ एजुकेट भी करेंगी।
2: और अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की। राम मंदिर में दान को लेकर हाल के दिनों में सामने आए कथित गड़बड़ी के मामले ने भले ही चर्चा तेज कर दी है, लेकिन राम भक्तों की आस्था आज भी अटूट बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर रहे हैं। हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

0: आपदाम परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रामलला की नगरी अयोध्या में चंदा चोरी की घटना के बाद क्या सब बदल गया है?
1: एकदम गंदी धूप है, आप लोग अयोध्या प्रॉपर घूम
2: रहे हैं? दोपहर है, हमको तो लग ही नहीं रहा है। हाँ, हमको तो लग रहा है शाम है।
1: चंदा चोरी की बात कर रहा हूँ, जो चर्चा आजकल चल रही है ना मंदिर में, जो डोनेशन का हुआ है स्कैम,
2: वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो मैं नहीं जानती ना।
1: लेकिन आप जितना घूमी है सब नॉर्मल लग रहा है?
2: हाँ, वो सब नॉर्मल लग रहा है।
1: चंदा चोरी की जो घटना हुई उसका कोई असर दिख रहा है आपको या फिर नॉर्मल है सब कुछ, कोई चर्चा नहीं है?
3: अभी तो चर्चा नहीं सुना। अच्छा,
1: इन पर सब नॉर्मल है जहाँ जहाँ घूम?
0: क्या अयोध्या में भीड़ और वो उत्साह कम हो गया है?
4: तमाम यंगस्टर्स में देख रहा था एकदम खुशी से नहा रहे हैं, एकदम
5: हर कोई खुशी से नहा रहा है। चोरी का जो ये बात है ना, तो ये तो वो जाने, ट्रस्ट वाले लोग जाने, उससे आम आदमी को उससे क्या देती है? आम आदमी अपना आया है रामलला का दर्शन करने, दर्शन करते रहा है, जा रहा है।
0: क्या अयोध्या में भगवान राम के भक्तों में पहले जैसी आस्था नहीं रही?
1: चंदा चोरी की आजकल खबरें आ रही हैं, असर कुछ है या सब नॉर्मल है?
6: सब नॉर्मल है, सो खाली चलते रहता है, सब नॉर्मल।
1: वो ट्रस्ट की बात है,
6: वो उनका अपना पर्सनल मामला।
1: हम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है,
6: के लिए सब नॉर्मल है।
1: दर्शन सुगम हो गए?
6: बहुत बढ़िया दर्शन किए हम लोगों ने।
1: आप लोगों के भी सुगम दर्शन हो गए? घटनाओं का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है?
3: नहीं,
1: नॉर्मल है,
3: नॉर्मल।
7: कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी घोटाला किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए।
0: इन सवालों के जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने पड़ताल की। तो अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। और लोगों से अयोध्या में चंदा चोरी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं है।
1: मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा, और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल मनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना, ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है। कि चोरी वगैरह अलग प्रकरण चला उसके बाद क्या जो जमीन है, मैं यहाँ सरयू घाट में देख रहा हूँ भीड़ है, लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, युवा नहीं, युवा एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा, कुछ असर पड़ा है अयोध्या?
8: असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा,
1: मतलब मंदिर अंदर में लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत?
8: बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर अंदर में,
1: लखनऊ चौक पर भी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं।
8: यस सर, आप देख सकते हैं सब लोही क्या नाम है ले ही रहे हैं लोग, भीड़ में कोई उसमें कमी नहीं है।
1: खबरें आजकल चल रही है ना डोनेशन थेफ्ट वगैरह का, चंदा चोरी वगैरह, आप जब अयोध्या में आए कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है?
9: हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं, और फर्स्ट बार आए हैं तो इसके कोई जानकारी अभी है नहीं, अभी तो घूमने की अभी जस्ट आए हैं। अच्छा तो है।
0: इसके बाद हमारी टीम लता चौक, जो कि अयोध्या का नया सेल्फी पॉइंट भी है, वहाँ बने सूर्य स्तंभ दिन हो या रात दबकते और चमकते रहते हैं। भरी दोपहरी में भी लोग यहाँ सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। जब उनसे चंदा चोरी के मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में सब पहले जैसा है।
1: सरयू किनारे से हम आए हैं अब लता चौक, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जो सेल्फी पॉइंट बन गया है, और अभी जो है फिलहाल अयोध्या में भरी दोपहरी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ पर आना जाना फोटो खिंचाना लगा हुआ है। शाम होते होते रात होते होते तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं। देखिए फोटोग्राफर्स तमाम यहाँ पर हैं, खूब फोटोज क्लिक करते हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं सेल्फीज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक परिवार यहाँ आया भी हुआ है जो फोटोज क्लिक कर आ रहा है। सामने वो प्रसिद्ध लता चौक है, खूबसूरत लता चौक, लता जी की वीणा है, और उसके ठीक पीछे अगर कैमरामैन गौरव जूम कर पाए तो वो सूर्य स्तंभ है, यानी कि भगवान भास्कर, और जो कि कहीं ना कहीं कुल देवता हैं श्री रामचंद्र के। अब आप यहाँ देखें तमाम फोटोग्राफर्स हैं, ये नए जो कपल्स होते हैं, नई नई जिनकी शादी होती है, वो भी यहाँ पर कई बार फोटो खिंचाने आते हैं। तो मैंने जैसा कहा, अयोध्या केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पर भी बदल रहा है। अब आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती अयोध्या की फिलहाल बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अयोध्या में कैसा माहौल है? मजा आ रहा है?
10: मजा आ रहा है भैया,
1: बढ़िया माहौल है। क्या क्या देख लिया?
10: हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए, राम मंदिर देख लिए, सुग्रीव किला कानपुर से।
1: कानपुर से आए जो आप जैसे घूम रहे होंगे, मंदिर जा रहे होंगे, पहले भी शायद आए ही होंगे, कोई बदलाव है? सब पहले जैसा ही नॉर्मल?
10: उस पे तो कोई बदलाव नहीं, वो ना
1: सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे।
10: रास्ता में तो कमी थोड़ी है लोग।
0: आखिरकार हमारी टीम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वार यानी राम मंदिर पहुंची और जहां मौजूद श्रद्धालुओं से भी यही सवाल पूछा। लोगों ने कहा राम जी के आगे कुछ हो जाए लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ेगी।
1: आपने सरयू की चंचलता देखी, लता चौक की सुंदरता देखी, आप देखें राम मंदिर की वो समरसता, आस्था का वो केंद्र जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ते हैं, घटनाएं कुछ भी हो जाए लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ती। उसका उदाहरण है ये जीती जागती भीड़ जो सामने की ओर आपको आती दिखेगी। ये आप देखें तो तमाम लोग जो यहाँ पर आते दिखेंगे, बैठते दिखेंगे और इन गाड़ियों में चढ़ते दिखेंगे, ये परिवार हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं और आवागमन करते हैं, और भी तमाम लोग हैं। क्या माहौल है चाची? क्या माहौल है? क्या लग रहा है
11: भैया?
1: लग रहा है
11: अच्छा, बहुत लग रहा है।
1: बदलाव तो नहीं दिख रहा है अयोध्या में? जो चंदा चोरी की खबरें आई उसके बाद कुछ बदलाव तो नहीं है? सब नॉर्मल है?
11: सब नॉर्मल तो भैया दिखात है, चोरी वोरी वाला हमें सब कुछ पता नहीं चला है।
1: देखिए एमपी से परिवार आया है, क्या बढ़िया तस्वीर आप देखिए, खुद देखिए, यही श्री रामचंद्र की आस्था है अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूर्ण कराने के लिए। जहाँ एक बेटा आता है और राम मंदिर में दर्शन कराता है तो कैसे कह दिया जाए कि अयोध्या बदल गई है, या कैसे कह दिया जाए कि इस चोरी का असर जमीन पर भी है। जरूर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, आरोपियों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसी कार्रवाई करें, नजीर बने नए लोगों के लिए। लेकिन अयोध्या अभी भी वैसे ही है, रामचंद्र को लेकर आस्था अभी भी वैसी है, सरयू का वो कलकल बहता जल अभी भी वैसा ही है।
0: हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से जुड़ा है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार।
13: अमेरिका के ईरान के साथ अंतरिम समझौता खत्म करने की घोषणा के बाद कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बुधवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1677 अंकों की गिरावट के साथ 76,503 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 516 अंकों की गिरावट के साथ 23,882 पर बंद हुआ। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ने से बुधवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 800 रुपए गिरकर 1,48,450 रुपए तक पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,39,800 रुपए पर बनी रही। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और अमेरिका की ईरान के साथ डील खत्म होने से 8 जुलाई को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 63 पैसे कमजोर होकर 95.59 के स्तर पर बंद हुआ।
12: सौरव गांगुली के जन्मदिन पर फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
14: राजकुमार राव की फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक आया सामने। सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उन पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। विक्रमादित्य मोटवानी निर्देशित दादा द सौरव गांगुली स्टोरी में राजकुमार राव लीड रोल में हैं। इस फिल्म के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने इसके रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर सामने आ चुका है, जिसमें सस्पेंस थ्रिल के साथ एक्शन भी है। ट्रेलर में तकनीक और इंटरनेट की दुनिया के जीवन पर हो रहे नकारात्मक असर को दिखाने की कोशिश भी की गई है। इंद्रदास निर्देशित फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू में आर्य कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिश्वास जैसे नए कलाकार अहम रोल में है। ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
15: मैं बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पे, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगी। कौन हो तुम?
16: तुम्हारी हमदर्दी वो मेरे से बदला लेना चाहता है।
14: अनुपम खेर ने अयोध्या में अपनी फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कुछ खास तस्वीरें भी साझा की। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित फिल्म श्री राम भूमि में अनुपम खेर मुख्य रोल में नजर आएंगे। अनुपम के अलावा इस फिल्म में ऋतिक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिका में दिखेंगे। प्रज्वल देवराज राजवी शेट्टी स्टार कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। गुरुदत्ता गनिका लिखित और निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर में सालाना भैंस दौड़ प्रतियोगिता कमला की झलक दिखाई गई है। प्रज्वल देवराज जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं और फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है, जहां राजवी शेट्टी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस फिल्म में संपदा मित्रा, रमेश इंदिरा, सुष्मिता भट्ट, श्रीधर केएस, गोविंद गौड़ा और निरंजन भी भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी।
12: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, ये सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे दर्शन।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
12: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
14: ये तस्वीरें आपको आपका बचपन याद दिला देंगी। बारिश में अपने स्कूल बस को छोड़ के बच्चे सड़क पर जमा पानी में उछल कूद कर रही है और बारिश का भरपूर मजा ले रही है। बच्ची को चिंता रही कि घर जाएगी तो पेरेंट्स नाराज होंगे और स्कूल पहुंची तो टीचर्स, उसे तो बस भरे हुए पानी में उछलना कूदना भा रहा है। लोग बच्ची का ये वीडियो देख पसंद कर रहे हैं और अपना बचपन याद कर रहे हैं।

0: जवान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां ऑक्सीजन तक भरपूर मात्रा में नहीं है, लेकिन उसकी आस्था अनंत है। इस ऊंचाई पर ये जवान अपने हौसले और साहस बनाए रखने के लिए न सिर्फ ईश्वर का शुक्रिया कर रहा है बल्कि प्रार्थना भी कर रहा है कि उसका हौसला बना रहे और वो अपने कर्तव्य निभा सके।
1: भारत की जय, भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, गो माता की जय।
0: अब इन तस्वीरों को देखिए, इन जराफ का जुगाड़ बोर्ड एक्टिव हो चुका है और वो सड़क पर अपनी ये जुगाड़ कार लेकर उतर चुके हैं। इन भाई ने जिंदगी पर मजबूत पकड़ वाली बात को सच मुच ड्राइविंग टेक्निक में बदल दिया है। लोगों को ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं, इस शख्स की सेफ्टी को लेकर भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनका ये जुगाड़ तो एकदम एक्सपर्ट लेवल का नजर आ रहा है, लेकिन इनके सर्वाइवल लेवल पर शक होना लाजमी भी तो है। अब इस मंगोलियन घुड़सवार की घुड़सवारी स्किल को जरा देखिए, कैसे घोड़े पर सवार ये घुड़सवार खिलाड़ी पहले बाई तरफ से झुककर कपड़ा उठाती है और दाई तरफ से भी ऐसा ही करती है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है सिर्फ हैरान नहीं हो रहा बल्कि उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल रहा है और वो है अविश्वसनीय।
2: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई में मानसूनी बारिश के बीच भारी भरकम पेड़ों के गिरने की घटनाओं की। दरअसल मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश और हवाओं से पेड़ों के गिरने की घटनाओं ने शहर में हड़कंप मचा दिया है। बीएमसी के मुताबिक 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच शहर में लगभग 1,100 पेड़ गिर चुके हैं। इनमें से 523 पेड़ 5 जुलाई सुबह 8 बजे से 6 जुलाई सुबह 8 बजे तक के 24 घंटों में गिर गए। बीएमसी ने बताया कि इस सीजन 6 दिनों में गिरे पेड़ों की संख्या पिछले 3 वर्षों के अलग अलग मॉनसून सीजन में दर्ज घटनाओं से भी अधिक है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के साथ 72 से 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जो कि सामान्य से लगभग 3 गुना अधिक है। हवा की गति के कारण पेड़ों के गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए बीएमसी ने अपने सभी पब्लिक पार्क अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं और लोगों से तेज हवा और बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने और बाहर निकलने से बचने की अपील की है। मुंबई में हमने पेड़ गिरने की असली वजह जानने के लिए एक्सपर्ट से बात की और उनकी राय जानी।
3: पूरे मुंबई में तकरीबन सैकड़ों पेड़ गिर चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि बीएमसी ने अब तक इसे कोई सीख नहीं ली है। आज फिर अंधेरी सवे के ठीक बाहर एक शख्स के ऊपर, जो अपने दफ्तर जा रहा था, विरार से आया था, दफ्तर जा रहा था, उसके सर पर एक ब्रांच जो है वो गिरा है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है पेड़ सरकारी नहीं है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती है। आइए यहाँ के कॉरपोरेटर और जो बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं उनसे पूछते हैं किसकी जिम्मेदारी है।
4: सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है और जो भी व्यक्ति यहाँ पे जख्मी हुआ है हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। और अभी ये पता चला है कि जो व्यक्ति जख्मी हुआ है अभी होश में है, तो मैं बस यही
3: मेरा सर जानना है कि जिम्मेदारी किसकी होती है ये बता दीजिए, क्योंकि भले ही प्राइवेट प्रॉपर्टी में है, ब्रांच तो पूरा पेमेंट पे है, लोग जहां चल रहे हैं, पब्लिक जहां चल रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती
4: है। जो अभी लेटेस्ट मैंने रिपोर्ट ली है उसके हिसाब से ट्रिमिंग की परमिशन विल्सन कंपनी ने बीएमसी से मांगी थी और बीएमसी ने उनको परमिशन दी थी और उनके हिसाब से बीएमसी विल्सन कंपनी ने ट्रिमिंग की थी, लेकिन यहाँ पे देख के नहीं लगता कि ट्रिमिंग बराबर हुई है और साइंटिफिक तरीके से जो ट्रिमिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो अब फर्स्ट लुक में ये लग रहा है कि विल्सन कंपनी ने जिनको परमिशन मिला था उन्होंने बराबर ट्रिमिंग नहीं किया है। तो आज के तारीख में अभी लग रहा है कि दोषी विल्सन कंपनी है और अगर ये पाए गए दोषी तो मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
3: तो लेकिन बीएमसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर मान लीजिए परमिशन दिया है चेक करने की, कि मान लीजिए कटवाई हुई कि नहीं, छटाई हुई कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है?
4: इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल बीएमसी की है, बीएमसी अधिकारी की है कि उन्होंने जब परमिशन दिया तो उसके बाद वो काम पूरा हुआ कि नहीं और सही ढंग से हुआ कि नहीं, ये देखना बीएमसी के अधिकारियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। तो जो भी दोषी पाए गए पाए जाते हैं इसमें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है।
3: मैम आप कॉरपोरेटर हैं, आपको नहीं लगता कि इसके लिए आवाज उठानी चाहिए? आप लोगों को क्या इसको लेकर बीएमसी को थोड़ा सा तो उनको हरकत में लाना चाहिए?
5: हाँ ऑलरेडी ये पॉइंट्स

0: रेज हुए हैं और इसके ऊपर मतलब काम भी चल रहा है और प्रशासन भी काम कर रहा है, पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उनको ऑलरेडी परमिशन दी गई थी।
1: मुंबई में एक बहुत बड़े पैमाने पर छोटे बड़े हर रोड को सीमेंट कंक्रीट का किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं कई रूट्स में जो पेड़ों के ये सीमेंट कंक्रीट हुआ है, डिके हुआ है, उसको ऐसे ये ट्री फॉलिंग इंसिडेंट जो है वो बढ़ रहा है।
2: जी बिल्कुल, मतलब पेड़ों के और कंक्रीट का जो रिलेशन है वो बहुत ही रिस्की रिलेशन है, क्योंकि पेड़ों को बिल्कुल भी कंक्रीट पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से जो हवा, पानी या कोई न्यूट्रिशन होता है वो पेड़ों को मिलना कम हो जाता है। और इसका इफेक्ट एक दिन में नहीं दिखता है, इसका इफेक्ट एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ते जाता है और कंपाउंड होते होते वो इवेंचुअली एक दिन वो पूरा सड़ जाता है अंदर से और फिर ट्री फॉलिंग के केसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ में जो बाकी इश्यूज होते हैं पेड़ों के, जो ये डीके जो होता है जहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन नहीं है, पर वहाँ पे भी कई बार पेड़ों में उनके हेल्थ कंडीशन की वजह से पेड़ों में डीके या सड़न आ जाती है पेड़ों के अंदर, तो उसकी वजह से भी कई बार पेड़ गिर जाते हैं। इम्बैलेंस होता है कैनोपी में, प्रूनिंग अगर ठीक से नहीं होता है तो, जब तेज़ हवा चलती है तो उसके कारण भी पेड़ गिर जाते हैं। पर ये जो इश्यूज है वो जब तेज़ हवा चलती है बारिश के जब मौसम में, तो वो ज़्यादा एस्केलेट हो जाते हैं और फिर पेड़ गिरने की संभावना बारिश के सीजन में बढ़ जाती है।
3: तो ये नेचुरल कलामिटी तो है
2: जी,
3: साथ में ही कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ट्रिमिंग प्रॉपर हुई है, जाड़ की जो क्वालिटी है जो हमने अभी असेसमेंट जो किया है वो ये है, कहीं कहीं कोई कोई जाड़ पुराने भी हो गए थे और भारी बारिश की वजह से भी ये हुआ है, प्लस में कुछ कुछ जगह पे झाड़ में कीड़े लग गए उसकी वजह से भी ये हुआ है और मल्टीपल कारण है उसके, कोई एक सिंगल कारण में बता नहीं सकते। गार्डन और ट्री को एक अलग से विभाग बना के उस पे एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए, जितने भी झाड़ है उसकी एक स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक, मतलब मैं बोलती हूँ कि भाई अगर कीड़ा लगा है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ये झाड़ की एक हर एक चीज की एक आयुष्य होती है, मतलब कोई किसी को 40 साल, जैसे हम बोलते हैं कि पीपल का झाड़ है तो 80 साल 100 साल, मैंगो का ट्री है तो 30 साल 35 साल, ऐसे एक असेसमेंट होना चाहिए कि ये झाड़ अभी इतने साल से लगा है या ये वीक हो गया है, तो उस पर एक मापदंड बनना चाहिए जिसमें आपको लगे कि भाई ये रोड साइड के झाड़ है या कहीं के भी, तो उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि भाई ये रिस्की लग रहा है तो कोई भी झाड़ को आप काट दो और उसका सलूशन हो जाएगा, तो मैं ये नहीं मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि झाड़ को बचाना भी हमारी प्रायोरिटी है।
4: रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव के स्टूडेंट ने अपनी प्रतिभा के दम पर खास पहचान बनाई। इस एंटरप्रेन्योर को AI एजुकेशन स्टार्टअप के लिए ग्लोबल पहचान मिली। सीमित संसाधनों के बीच उसने 6 महीने पहले एक कंपनी बनाई और इतने कम समय में ही उसके मुख्य प्रोडक्ट AI ऐप के 10,000 से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं।

0: प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। मतलब ये कि किसी इंसान में अगर कोई खास हुनर या योग्यता है तो उसे आगे बढ़ने या सफल होने के लिए किसी विशेष उम्र, साधन, धन या सिफारिश की जरूरत नहीं होती। सच्ची प्रतिभा हर हाल में अपना रास्ता बना ही लेती है। ऐसा ही कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के छोटे से गांव डूंगी के महज 17 साल के इमरान चौधरी ने। सत्रह साल के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर इमरान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड एजुकेशन में अपने शानदार योगदान के लिए पहचान बनाई है। ऐसे इलाके में जहां बुनियादी सुविधाओं और टेक्नोलॉजी से जुड़े संसाधन सीमित हैं, वहां पलने और बढ़ने के बावजूद इमरान ने इनोवेशन के अपने जुनून को एक सफल वेंचर में बदल दिया और लैग नेवर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। इमरान ने लैगनेवर एआई बेस्ड एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे स्टूडेंट की पढ़ाई और ज्यादा आसान हो गई है। ये प्लेटफॉर्म को छात्रों के लिए एजुकेशन को ज्यादा सुलभ और पर्सनलाइज्ड और इंटरैक्टिव बनाने के मकसद से बनाया गया है। ये एप्लीकेशन एआई असिस्टेड लर्निंग, पर्सनलाइज्ड स्टडी सपोर्ट, रिविजन टूल्स, क्विज और अकेडमिक गाइडेंस देता है। ये पारंपरिक क्लासरूम एजुकेशन की जगह नहीं लेता बल्कि उसे बेहतर बनाता है।
1: 6 महीने पहले एक ऐप बनाई थी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसका नाम था लैगनेवर एआई। वो अभी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा यूज की जाती है और उनको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक मिली है हमें और मल्टीपल 17 कंट्रीज में हमने लॉन्च किया हुआ अभी, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, दुबई, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं और अरबिक यूज़ करते हैं, और उस अरबिक लैंग्वेज में बिकॉज वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज ही अरबिक है तो उसमें स्टूडेंट को हर एक चीज़ मिल रही है। फ्लैश कार्ड्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट को माइंड मैप्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट को उसकी कंट्री का सिलेबस मिल रहा है, बोर्ड्स मिल रहे हैं।
0: इमरान ने एआई की दुनिया में ऐसी धाक जमाई है कि कंपनी के मेन प्रोडक्ट लैगनेवर एआई ऐप के 10,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। महज 6 महीने पहले बनाई गई कंपनी का वैल्यू 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसे इमरान अपनी 12 लोगों की टीम की मेहनत का नतीजा बताते हैं।
1: हमारी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 5 करोड़ की है जस्ट इन 5 to 6 months। अभी हम इसको डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। और हमारा गोल यही है कि एजुकेशन को हम एआई के साथ रिफॉर्म कर दें। और अभी तक इतना कोई बड़ा कंपटीशन तो है नहीं है जैसे जो पर्टिकुलर एड टेक में और एआई में हमारा इतना बड़ा कंपटीटर हो। तो हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से हम आगे अभी स्टेप अप करेंगे।
0: इमरान की इस उपलब्धि को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्हें अमेरिका की कंपनी ब्लैक रॉक के प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रोग्राम के लिए चुना गया है।
1: अभी हमें ग्लोबल लेवल से अमेरिका से ब्लैक रॉक से एक इनवाइट ओनली सिलेक्शन मिली है जिसमें हमें 6 महीने का एक सेशंस रहेंगे हमारे बैंगलोर में, और उस 6 मंथ के सेशन में हमारे मल्टीपल इवेंट्स होंगे, मल्टीपल इवेंट के कंट्रीज में भी भेजेंगे और वहाँ पे रियल लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें एक डिफरेंट लेवल की कंपनी बना के भेजेंगे लैगनेवर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।
0: इमरान को बचपन से ही नई नई चीजें सीखने, तकनीक को समझने और अपने विचारों को प्रयोग करने का शौक था जो आज इन्हें इस मुकाम तक लाया है।
2: इमरान ने सब बच्चों से अलग सोचा। जब सब बच्चे खेलने के कूदने के पीछे सोच रहे थे तब इसने 7th क्लास से ही, ये 7th में मेरे साथ ही था, ये अकेला रहता था, लास्ट पे होता था या फिर कहीं पे भी इसके कोई दोस्त नहीं थे होते, अकेला बैठ के कुछ ना कुछ करता ही रहता था, सोचता रहता था। और उस टाइम हमें भी ना था पता कि ये इतना कुछ कर रहा है, कोडिंग वगैरह सीख रहा है। इसने 10th में ये ऐप जब बना दी, जब पूरी तरीके से बना के इसने कर दिया, लॉन्च कर दिया, तब उसके बाद इसने अपनी टीम वगैरह बनाई। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएशन हूँ तो इस फील्ड में मैं मार्केटिंग का थोड़ा बहुत जानता हूँ। जिस तरीके से इमरान ने मुझे मार्केटिंग का ऑफिसर बनाया और अभी तक हमने काफ़ी यूजर्स भी अचीव किए हैं मार्केटिंग।
0: इमरान का इरादा एआई आधारित एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जिसके जरिए देश दुनिया के कोने कोने में बैठे स्टूडेंट्स विश्व स्तरीय शिक्षा पा सके। एक छोटी सी जगह से निकलकर ग्लोबल मंच तक पहुंचने की इमरान की ये कहानी साबित करती है कि अगर इरादे बुलंद हों तो संसाधन कभी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन के शियामेन शहर के 100 साल पुराने हिपिंग पियर पर और रेरा थीम वाले शानदार लाइट शो ने सबका जीता दिल। इसके साथ ही आइए आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: चीन के शियामेन शहर के 100 साल पुराने हिपिंग पियर पर ओरोरा थीम वाला शानदार लाइट शो आयोजित किया गया। लाइट शो में नीली, हरी, बैंगनी रोशनी ने पर्यटकों का मन मोह लिया। डांस परफॉर्मेंस और रंग बिरंगी रोशनी ने यहां शाम को यादगार बना दिया। लुजियांग रिवर वाटर फ्रंट पर ओरोरा नुमा नजारा देखने के लिए लाखों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस शो ने रात की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। वहीं स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी इस दृश्य का भरपूर मजा लिया। चीन के आईजी बोट कंपनी ने अपने रोबोट का दमदार डेमो दिखाया। फैक्ट्री से लेकर शॉपिंग और लॉजिस्टिक्स तक आईजी बोट के रोबोट ने स्मार्ट कामकाज का शानदार प्रदर्शन कर लोगों को लुभाया। ये आईजी बोट के ग्लोबल मिशन का हिस्सा है। कंपनी का लक्ष्य इस साल कुल कमाई में 30-40% हिस्सा विदेशी बाजारों से हासिल करना है। दुनिया में इस दौरान आईजी बोट का नेटवर्क यूरोप, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, जापान और दक्षिण कोरिया तक फैल चुका है। कंपनी का कहना है कि विदेशी बाजारों में उनके रोबोट मैन पावर की कमी दूर कर मैन्युफैक्चरिंग को गति देंगे। चीन के चिड़ियाघर में पांडा मैंग कैन कैन का तीसरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस छोटे पांडा के लिए फल और सब्जियों से बना खास केक तैयार किया था। 3 साल के पांडा मैंग कैन कैन की बर्थडे पार्टी में बड़ी संख्या में लोग आए। पांडा का रखरखाव करने वालों ने खास तौर पर सजाया हुआ केक पांडा को खिलाया। केक पर कद्दू की गाड़ी और खरबूजे से फूलों की टोकरी सजाई गई थी। गर्मी से बचाने के लिए पांडा की बर्थडे पार्टी में बर्फ का इंतजाम भी किया गया था। चिली में एक फुटबॉल फैन एरियल ओसेस ने बचपन के स्टिकर एल्बम के सपने को अपनी कार पर सजाकर पूरा किया। ओसेस ने अपनी नई कार को पूरी तरह स्टिकर से ढक दिया। कुल 373 स्टिकर्स कार पर लगवाने में ओसेस को 2 हफ्ते का वक्त लगा। 3 दिन पहले पूरे हुए ओसेस के सपने का हिस्सा सोशल मीडिया यूजर्स भी बने। उनके कैंपेन को कमेंट करने वालों को उन्होंने स्टिकर्स उपहार में दिए। अब एरियल ओसेस की इस अनोखी पहल को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। कई देशों के लोग उन्हें अपनी कार लेकर आने का न्योता दे रहे हैं। माउंट एटना में एक बार फिर अनोखा नजारा देखने को मिला। एक ड्रोन वीडियो में ज्वालामुखी का लाल गर्म लावा क्रेटर के अंदर गिरता हुआ नजर आ रहा है। सिसिली के ज्वालामुखी का लावा नॉर्थ ईस्ट क्रेटर की गहराई में वापस जाता नजर आ रहा है। ये घटना बेहद दुर्लभ बताई जा रही है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि माउंट एटना की राख से हवाई यातायात और खेती प्रभावित हो सकती है, लेकिन उन्होंने आबादी वाले क्षेत्रों पर कम खतरा होने की संभावना जताई है।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
5: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop, effortlessly.
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच की।
0: आईसीसी T20 रैंकिंग में ईशान किशन और अभिषेक वर्मा की पोजीशंस बरकरार, गेंदबाजों को हुआ घाटा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग का ऐलान किया है। इस लिस्ट में बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन अभी भी नंबर 1 पर काबिज है। ईशान किशन के अलावा टॉप 10 में 2 भारतीय खिलाड़ी और शामिल है, जिनमें बाएं हाथ के दूसरे विस्फोटक बैटर अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर हैं, तो वहीं बैटर तिलक वर्मा 6 नंबर पर काबिज है। T20 गेंदबाजों की ICC रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले, पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे, इंग्लैंड के आदिल राशिद एक स्थान ऊपर चढ़ते हुए तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के एडम जापा एक स्थान ऊपर चढ़ते हुए 4 स्थान पर हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती को 2 स्थान का घाटा हुआ है, जिससे अब वो 5 स्थान पर हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह को 2 स्थान का घाटा हुआ है, वो 8 स्थान पर पहुँच गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया स्पीड स्टार मिल गया है। राजस्थान के रामपुर से निकलकर घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाने वाले 23 साल के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए पहली बार सीनियर भारतीय टीम में शामिल किया गया। टीम इंडिया में जगह मिलने पर अशोक ने कहा कि वो अपनी गति से कभी समझौता नहीं करेंगे और उनका सपना एक दिन दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों की सूची में शामिल होना है। दिग्गज खिलाड़ी लियांडर पेस को एशियन टेनिस फेडरेशन का प्लेयर एम्बेसडर बनाया गया, जिसका मकसद खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना और पूरे इलाके में इस खेल के विकास को तेजी देना है। टेनिस के इतिहास के सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से एक, पेस का प्रोफेशनल करियर 3 दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा। पेस टेनिस के लिए एशिया के सबसे बड़े एम्बेसडर और भारत के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स आइकन में से एक रहे हैं। 39 साल के नोवाक जोकोविच विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा पुरुष सिंगल क्वार्टर फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच ने विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल जीतकर इतिहास रच दिया है। 5 घंटे 15 मिनट चले इस 5 सेट के मैराथन मैच में जोकोविच ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर अलियासिमी को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। जोकोविच लगातार 8वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और डिफेंडिंग चैंपियन जैनिक सिनर से मुकाबला होगा।
10: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
11: क्या अंक 13 एक अशुभ अंक है? क्या अंक 22 के साथ भाग्य ज्यादा होता है? क्या 31 अंक वालों का वैवाहिक जीवन खराब होता है? क्या है अंक 4 की विशेषताएं और इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
12: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
10: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को ICC के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। DRDO ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, VIP और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम बात कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या की, जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में है, लेकिन विवाद की वजह से अयोध्या में मौजूद श्रद्धालुओं के मन में सवाल नहीं बल्कि सिर्फ श्रद्धा है। ये श्रद्धा इतनी अटूट है कि 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग व्हीलचेयर पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि खबरों में अयोध्या पर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच वहां माहौल क्या है, अयोध्या के निवासी और देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और उनके मन की बात भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको अमरनाथ यात्रा की रिपोर्ट भी हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक हफ्ते के अंदर शिव भक्तों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। इसके साथ ही बेस कैंप पर कम उम्र के बच्चों के लिए बना है चाइल्ड केयर भी आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जो राम मंदिर के अलावा दूसरी वजहों से लगातार चर्चा में बना हुआ है, लेकिन क्या इसकी वजह से रामनगरी जाने वाले भक्तों की भावना पर कोई असर पड़ा है, क्या खबरों की वजह से अयोध्या के माहौल पर कोई असर देखने को मिला है, ये जानने समझने के लिए हमारी टीम अयोध्या पहुंची और सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक लोगों से बातचीत करके उनके मन की बात समझी। देखिए अयोध्या से हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट।

0: चाहे कितनी गहरी हो नदी, विशाल हो झंझावत, हाथ जोड़े सिर झुकाए, जनमानस ने राघव की ओर देखा हर बार। आस्था पर संकट के बादल घिरे अगर, तो हर बार दृढ़ आराध्य ने उसका जवाब दिया। जो चल के नहीं आ सकते, वो 100 साल की उम्र में व्हीलचेयर पर रामलला के दर्शन करने अयोध्या आए हैं। इस तस्वीर, इस आस्था के सामने राम मंदिर से जुड़े मौजूदा विवाद अर्थहीन नजर आते हैं। फिर भी खबरों में चल रही चर्चाओं का अयोध्या पर कैसा असर है, राम भक्तों का कैसा उत्साह है, ये इस वक्त लाख टके का सवाल है।
1: इसका जवाब अगर आपको जानना हो तो अयोध्या की 3 प्रमुख जगहों पर जाना आवश्यक हो जाता है। पहली राम की पैड़ी सरयू घाट, दूसरी लता चौक और तीसरी तो राम मंदिर। इन 3 जगह पर आप जाएं और सन्नाटा देखें तो समझें कि कुछ जो है हाँ बदलाव हुआ है, लेकिन अगर नहीं तो मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा, और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। कहीं ना कहीं ये अयोध्या को जीने वाले लोग हैं, दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब यहाँ के हैं, होंगे यहाँ के भी, साउथ से, मध्य प्रदेश से, आप माने राजस्थान से ये लोग आए हुए हैं। कितने विदेशी आपको दिख रहे हैं आज अयोध्या में। तो सारी चीजें चल रही, सारा घटनाक्रम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी फिलहाल अयोध्या का जो शहर है वो मुस्कुराता दिख रहा है। और ये जो लहरें पानी की आप मेरे चेहरे पर आती देख रहे हैं, बारिश का माहौल है, लोग उत्साहित हैं।
0: सरयू जो अयोध्या में हर दौर हर बदलाव की साक्षी रही है, जिसकी लहरें राम मंदिर निर्माण की गाथा गुनगुनाती है, उसके तट पर राम भक्तों का हुजूम देखिए। देश के कोने कोने से जो राम नगरी आते हैं पहले इस घाट पर सिर झुकाता है। यहाँ भक्तों के जोश में कोई फर्क नहीं नजर आता। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या जाने की ललक जस की तस है।
2: आम आदमी अपना आया है रामलला का दर्शन करने, दर्शन करते रहा है, जा रहा है।
1: दर्शन हो गया आपके?
2: हाँ, दर्शन हो।
1: दर्शन हुए
2: बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से।
1: हाँ, आप जब अयोध्या में आए कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है?
3: हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं, और फर्स्ट बार आए हैं तो इसके कोई जानकारी अभी है नहीं। अभी तो घूमे की अभी जस्ट आए हैं। अच्छा, तो है
1: क्या घूम लिया?
3: अभी तो आए हैं, अभी यहीं पे जस्ट पहली बार यहाँ आ रहे हैं। और ऐसा है, हम यहाँ वहाँ पे आए थे, बनारस आए थे, बनारस में घूम के अभी यहाँ पे अयोध्या आए हैं।
1: आपका कैसा एक्सपीरियंस?
4: मेरा भी इनके साथ है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी फिलहाल में सरयू नदी के किनारे हम लोग स्नान करने आए हैं, स्नान करके इसके बाद मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे।
0: राम मंदिर को देखने, राम को पूजने और इस पवित्र धाम पर घूमने फिरने के लिए रोजाना हजारों लोग अयोध्या आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सिलसिला यूं ही चलता जा रहा है। हालांकि यहां आने वाले श्रद्धालु मंदिर से जुड़ी खबरों से वाकिफ हैं, पर श्रद्धा का उससे क्या लेना देना। अयोध्या में लता चौक पर लोगों का हुजूम देखिए।
1: तो सरयू किनारे से हम आए हैं अब लता चौक, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जो सेल्फी पॉइंट बन गया है। और अभी जो है फिलहाल अयोध्या में भरी दोपहरी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ पर आना जाना, फोटो खिंचाना लगा हुआ है। शाम होते होते, रात होते होते तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं। देखिए, फोटोग्राफर्स तमाम यहाँ पर हैं, खूब फोटोज क्लिक करते हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं, सेल्फीज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक परिवार यहाँ आया भी हुआ है जो फोटोज क्लिक करा रहा है। सामने वो प्रसिद्ध लता चौक है, खूबसूरत लता चौक, लता जी की वीणा है, और उसके ठीक पीछे अगर कैमरामैन गौरव जूम कर पाए तो वो सूर्य स्तंभ है, यानी कि भगवान भास्कर, और जो कि कहीं ना कहीं कुल देवता हैं श्री रामचंद्र के। अब आप यहाँ देखें तमाम फोटोग्राफर्स हैं, ये नए जो कपल्स होते हैं, नई नई जिनकी शादी होती है, वो भी यहाँ पर कई बार फोटो खिंचाने आते हैं। तो मैंने जैसा कहा, अयोध्या केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पर भी बदल रहा है। अब आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती अयोध्या की फिलहाल बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अयोध्या में कैसा माहौल है? मजा आ रहा है?
5: मजा आ रहा है,
1: बढ़िया माहौल है। क्या क्या देख लिया?
5: हनुमानगढ़ी दर्शन कर लिए, राम मंदिर देख लिए, सुग्रीव किला, कानपुर से
1: आए हैं। गर्मी है, उसके बाद भी फोटोज वगैरह अच्छी आ रही
6: है। तो बारिश हो चुकी है ना, मौसम अच्छा,
1: बारिश हुई थी।
5: हाँ। आज ये बढ़िया रहा, सुबह से
1: माहौल बढ़िया है,
5: अभी धूप निकली है,
1: माहौल बढ़िया है,
5: माहौल बढ़िया,
1: हवा भी ठंडी चल रही है आज तो।
5: हाँ,
1: सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे।
5: आस्था में तो कमी थोड़ी है, लोग आस्था में कोई कमी नहीं,
1: आस्था में कमी हो भी नहीं सकती।
0: खूबी तो ये है कि नौजवानों की फेवरेट लिस्ट में भी अयोध्या टॉप पर है। अयोध्या आधुनिकता और आस्था का ऐसा संगम बन गया है जहां युवा पीढ़ी जाना चाहती है। मंदिर को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बाद और बावजूद यहां लोग भक्ति और भावना से लबरेज हैं।
1: ऐसा माहौल है अयोध्या में?
7: अयोध्या बहुत बढ़िया अभी है,
1: मजा आ रहा है,
7: बहुत बहुत मजा आ रहा है।
1: आज तो मौसम भी बढ़िया है,
7: आज मौसम भी अच्छा है, और वैसे तो है ही सब कुछ यहाँ पे, प्रभु की कृपा बनी रहती है हर वक्त। हम लोग यहाँ लखनऊ से आए हुए हैं,
1: आम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है,
7: के लिए सब नॉर्मल है।
1: दर्शन सुगम हो गए?
7: बहुत बढ़िया दर्शन किए हम लोगों ने।
1: आप लोगों के भी सुगम दर्शन हो गए?
8: हाँ हो गए।
1: कोई घटनाओं का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है?
8: नहीं जी,
1: नहीं, सब नॉर्मल है,
8: नॉर्मल।
0: लोग जाने कहाँ कहाँ से आए हैं, कुछ अकेले हैं, कुछ परिवार के साथ। सभी के मन में एक ही आस, भगवान राम का आशीर्वाद मिले। ठीक ही तो कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करी सब कोई। अब भगवान और भक्ति के बीच में दुनियादारी का क्या काम?
1: शाम की सुबह की तस्वीरें अलग ही होती हैं। यहाँ पर देखिए, बढ़िया बनाए हैं अंकल जी, बताइए बढ़िया है?
9: हाँ बढ़िया,
1: मजा आ रहा है उधर हम लोग को। कैसा है लड़कियों को तो फेमस, सबसे फेवरेट है?
10: ऐसे मैं बाहर खाती नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर है।
1: अच्छा क्यों?
10: ये एकदम प्योर है, चारों मट्टी में, हमारे उधर नहीं मिलता। हमारे उधर
1: पहर है, एकदम गंदी धूप है, आप लोग अयोध्या प्रॉपर घूम
10: रहे हैं? कहाँ तो पहर है, हमको तो लग ही नहीं रहा है। हाँ हमको तो लग रहा है शाम है।
11: अयोध्या बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, आप लोग आइएगा।
1: हाँ।
11: जरूर आइएगा और देखिएगा कितना कैसा है, इंसान कैसा है इसका। हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
1: आप कुछ कहेंगे असम से?
11: हाँ,
1: असम की माध्यम से अयोध्या के लिए कुछ कह दिए?
11: हम लोग तो कामाख्या मंदिर का पास में रहती है। हाँ। अभी तो अयोध्या अच्छा लगा बहुत, अभी राम मंदिर देखने है, लता मंगेशकर का।
1: सब पहले जैसा है, कुछ बदला नहीं?
11: बदला नहीं।
0: 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, रामलला को देखने की मनोकामना लिए आने वाले भक्तों की जो भीड़ यहाँ जस की तस है। इस हुजूम को देखिए, इसमें बड़े शहरों का भद्र समाज भी है और दूर देहात के बाशिंदे भी। कोई असम से आया है तो कोई गुजरात से, कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली, राजस्थान तक से आए हैं राम भक्त। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि इन दिनों राम मंदिर से जुड़ी सुर्खियां क्या है, विवाद क्या है। इनके लिए राम ही सर्वोपरि है, उनका धाम महत्वपूर्ण है।
1: आपने सरयू की चंचलता देखी, लता चौक की सुंदरता देखी, आप देखें राम मंदिर की वो समरसता, आस्था का वो केंद्र जहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ते हैं। घटनाएं कुछ भी हो जाएं, लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ती, उसका उदाहरण है ये जीती जागती भीड़ जो सामने की ओर आपको आती दिखेगी। ये आप देखें तो तमाम लोग जो यहाँ पर आते दिखेंगे, बैठते दिखेंगे और इन गाड़ियों में चढ़ते दिखेंगे, ये परिवार हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं। ये आस्था है कि व्हील चेयर में आप श्री रामलला के दर्शन करने पहुँचती हैं। माता जी दर्शन कैसे हुए? दर्शन कैसे हुए आपके?
12: ठीक
1: हुए।
12: हाँ।
1: अच्छा लग रहा है अयोध्या में?
12: अच्छा लग रहा है।
1: क्या उम्र है आपकी?
12: हम बहुत अच्छा।
1: 105 साल। इनकी अयोध्या में कुछ बदलाव तो नहीं, सब सेम है पहले ऐसा?
12: सब ठीक है,
1: ठीक है।
12: हाँ।
13: इनकी उम्र है 100 वर्ष की।
1: हाँ।
13: और ये हमारी मौसी है, वो 105 वर्ष की है।
0: सवाल, आरोप, विवाद, जरूरी हो या गैर जरूरी, गाहे बाहे उनकी चर्चा भी होगी, लेकिन राम की नगरी में तो बयार भक्ति की है। चाहे किसी से पूछिए, सभी को राम मंदिर ही दिखता है, बाकी बातों से फर्क नहीं पड़ता है।
14: हुआ है लेकिन इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा,
1: जो आम काम करने वाले हैं और आप लोगों को फर्क नहीं लग रहा है?
14: नहीं नहीं, एकदम नॉर्मल है।
0: रामलला के मंदिर में इस वक्त भी दर्शन के लिए हजारों की भीड़ है, फिर भी ये कम है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद और बरसात की वजह से भीड़ वैसे भी कम हो जाती है, लेकिन बारिश के मौसम के बाद एक बार फिर भारी तादाद में श्रद्धालु आएंगे और चहल पहल दोगुनी हो जाएगी।
8: अक्टूबर के लिए हमारे पास काफी क्वेरीज आ रही हैं, जो हमारा सीजन स्टार्ट होने का टाइम है, तब हमारे साउथ के कई ट्रेवल पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से हमारे पास कई क्वेरीज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा होगा।
1: मतलब आपका कहना है मौसम बेहतर होते ही बुकिंग्स बढ़ जाएंगी?
8: जी बिल्कुल।
1: और जो बुकिंग्स अभी थोड़ी सी डाउन है वो रीजन उसका सीजन है?
8: सीजन उसका रीजन है बिल्कुल।
1: आंकड़े अगर आप थोड़े शेयर कर पाए, इस साल पिछले साल क्या इस सीजन में कम रहा है, क्या नंबर रहे हैं?
8: इस सीजन में कम रहने का एक रीजन ये भी है कि अभी हमारे पास अयोध्या में काफी सारे प्रॉपर्टीज खुल भी गई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि राम मंदिर में भीड़ में कोई कमी आई होगी।
0: अयोध्या में हर दिन उत्सव है, उमंग है, राम नाम की गूंज है और अथाह श्रद्धा है। राम भक्तों के मन में कोई शंका नहीं, सवाल नहीं, बस राम है, क्योंकि जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अयोध्या से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ है तो कश्मीर में शिव भक्तों का रेला। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए अभी हफ्ता तक नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1,00,000 के पार जा चुका है। यात्रा के लिए जोश ऐसा है कि अगले कई दिनों तक के लिए रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं और प्रशासन लोगों से इंतजार करने की अपील लगातार कर रहा है। बावजूद इसके बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं, पर पुख्ता सुरक्षा और सुविधाओं के जबरदस्त इंतजाम के साथ यात्रा लगातार चल रही है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट।

0: ये सफर आसान नहीं, हर कदम एक चुनौती है। पहाड़ी रास्ता, खड़ी चढ़ाई, कई घंटों की दूरी, मगर दर्द के बावजूद चेहरे पर मुस्कान है। यही वो आस्था है जो अमरनाथ यात्रा को भव्य बनाती है।
1: बोलो बाबा बर्फानी की।
0: प्रोस्थेटिक लेग और एक छड़ी के सहारे कदम बाबा बर्फानी के धाम की ओर बढ़े चले जा रहे हैं।
1: जय बाबा बर्फानी।
0: सोशल मीडिया पर नेहा भट्ट नाम की इस महिला की श्रद्धा और उनका हौसला देखकर लोग दंग हैं। ये तस्वीर लाखों में एक है, लेकिन ऐसी ही किसी एक से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा देखते ही देखते एक हफ्तों में ही लाख का आंकड़ा पार कर गई। पिछले साल शुरुआती दिनों में 93,000 लोगों ने यात्रा की थी, यानी इस साल एक नया रिकॉर्ड बना है।
2: इस साल की अमरनाथ यात्रा में एक हफ्ता भी नहीं बीत गया है, 1,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, जो साफ दर्शाता है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में क्या उत्साह है। और इस बात का अंदाजा तभी हुआ था जब अब की बार रिकॉर्ड तादाद में 4,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन की थी। उसके बाद भी हजारों की तादाद में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर जारी है।
0: पालटाल हो या पहलगाम रूट, दोनों ही मार्गों पर शिव भक्तों को लेकर जाने वाली गाड़ियों का सिलसिला लगातार जारी है। बेस कैंप पर जैसे उत्सव का माहौल है और श्रद्धालु जयकारा लगाते पवित्र गुफा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कोई घोड़े या खच्चर पर सवार है, तो कोई पालकी पर, तो कोई मगन मस्त पैदल चलते हुए दर्शन के लिए दौड़ा चला जा रहा है। सबके मन में बस जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस है। इनमें कोई परिवार की खुशहाली की मुराद लेकर आया है और कोई रोजी रोटी में तरक्की की मुराद लेकर आया है। बाबा बर्फानी में अटूट आस्था रखने वाले इन भक्तों का मानना है कि श्री अमरनाथ जी उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
3: आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बाबा के अच्छे दर्शन हुए और कभी तो पास बैठे थे और बहुत शांति मिला आत्मा को।
0: हालांकि अमरनाथ गुफा में बर्फ का बना प्राकृतिक शिवलिंग 90% पिघल गया है, यानी बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन शिव भक्तों की आस्था तो बाबा से जुड़ी है। इसीलिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का जोश जस का तस है। यात्री निवासों से श्रद्धालुओं के जत्थे को कड़ी सुरक्षा में लगातार रवाना किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए कई नए इंतजाम किए गए हैं, जैसे चाइल्ड केयर सुविधा। ये पहली बार है जब यात्रा के दौरान बच्चों को रखने के लिए ये सेंटर बनाए गए हैं। असल में 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा कारणों की वजह से पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की अनुमति नहीं है। ऐसे में कई श्रद्धालुओं के सामने बच्चों की देखभाल को लेकर परेशानी होती थी। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पहली बार बालटाल बेस कैंप और नुनवान बेस कैंप में विशेष चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए हैं।
2: अमरनाथ यात्रा में आपको हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर दिखेगी। हर राज्य के यहाँ पर भंडारे लगते हैं, हर राज्य के यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। हाँ, हमारे साथ इस वक्त मेयर है कानपुर की, मैडम प्रमिला जी। मैडम, आप अमरनाथ यात्रा पे आइए, पहले अपना आप बताइए कि कब से आपका लगाव है अमरनाथ यात्रा के साथ, और जो यहाँ पर जो कानपुर का ये भंडारा लगा है, इसमें आपकी क्या क्या योगदान है?
4: मेरा आने का तो बहुत दिन से मन था अमरनाथ से, जब से मैं समझने लायक हुई, लेकिन मैं आ नहीं पाई। लेकिन ये मेरा 6वां या 7वां बार है। मेरे बहन का लड़का पहली बार ले आया था मुझे, लेकिन उसके बाद से ये मेरा बेटा लेके आता है। और ये इतने अच्छे से यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि पहली बार, अगर पहली बार की फोटो दिखाएं या दोबारा दिखाएं, तिबारा हमारे पांचवी छठी बार पांचवा है, तो हर बार एक नया काम करता है। अब इस बार देखिए, इसने सब व्यंजन का तो ये भगवान को भोग लगाता है।
0: इन केंद्रों में श्रद्धालु अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित देखभाल में छोड़कर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बच्चों की देखभाल करेगा और श्रद्धालुओं के लौटने तक उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।
2: ये आइडिया आपको कैसे आया कि बच्चों के केयर के लिए भी यहाँ पर जो है एक व्यवस्था हो?
5: चाइल्ड केयर, जब पहली साल हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग, महिलाएं और बच्चे जो हैं यहाँ पर साथ साथ रोते रहते थे कि हम जा नहीं पाए, बच्चे रो रहे होते थे। तो एक मन में एक आया कि अगर बच्चे हमारे पास है तो ये लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पास कुछ खिलौने वगैरह थे, तो दो तीन बच्चे हम लोगों ने यहाँ टेबल पे ही तखत पे रखा और उनके वो लोग गए आ गए। ये लीगली नहीं था, हम लोगों का पर्सनल एक एफर्ट्स था जिसको पहली बार किया था। तो डीसी साहब यहाँ पर थे, डीसी साहब ने देखा, उसके बाद उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप ये सर्विस को, अगर आपको परमिट करें तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा बहुत रिस्क है इसमें, अगर किसी बच्चे को खाने में या कहीं गुम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हमने कहा अगर भोलेनाथ ने लिखी होगी तकलीफ तो होगी, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर।
0: चाइल्ड केयर के अलावा यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यकीनन इससे यात्रियों के लिए राह आसान हो गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्तों का जोश कैसा है, इसे इस बात से समझिए कि अगले कई दिनों तक के सभी पंजीकरण स्लॉट पूरी तरह भर चुके हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो फिलहाल यात्रा पर न आए और नए स्टाफ उपलब्ध होने का इंतजार करें। बालताल से अशरफानी, गुड न्यूज टुडे।
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
8: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: विश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरभ गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, यह सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
8: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 देशों की यात्रा में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री का दूसरा पड़ाव। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मेलबर्न के भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा स्वागत किया, होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री ने तबला वादन का आनंद लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए अहम है ये यात्रा, इस दौरान व्यापार, रक्षा, तकनीक और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया से पहले प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में दर्शन पूजन किए, 1000 साल पुराने इस मंदिर में धरोहर स्थल पर उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रम्बानन मंदिर में पहुंचने पर बच्चों ने तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मानंद मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तुकला और इतिहास की जानकारी ली। यूनेस्को विश्व धरोहर ब्रह्मानंद मंदिर परिसर में 244 मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मानंद मंदिर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की, इसे भारत इंडोनेशिया सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। डीआरडीओ ने रचाई कौर कीर्तिमान लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया पिनाका का सफल परीक्षण, 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी से किया गया इस रॉकेट का परीक्षण। रॉकेट ने योजना के अनुसार अपने सभी इन फ्लाइट करतब दिखाए। स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि यह पिनाका रॉकेट, जिसे रक्षा डीआरडीओ की आयुध अनुसंधान और विकास संस्थानों ने स्वदेशी रूप से किया है तैयार। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और इंडस्ट्री को दी बधाई। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने किया लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, सुरक्षा हालात, ऑपरेशनल तैयारी और लड़ाई के लिए तैयारी को परखा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के इंतजामों के बारे में भी आर्मी चीफ ने पूरी रिपोर्ट मांगी। गृहमंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के जरापू की मीटिंग हुई। देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल समीक्षा। सीमावर्ती जिलों के एसपी के साथ कल गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक। चेन्नई के एग्मोर इलाके में बच्चों के अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय। सम्राट कैबिनेट ने कुल 22 एजेंडों पर मोहर लगा दी। पटना एम्स के विस्तार के लिए दानापुर के मौजा बुलौसा में 26 से ज्यादा एकड़ भूमि अधिग्रहण किया। इस परियोजना पर लगभग 348 करोड़ से ज्यादा की आएगी लागत। परिवहन व्यवस्था के विकास में भी अहम फैसला। बिहार सरकार ने राजधानी पटना को राज्य के चार प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण की मंजूरी दी। बिहार के कटिहार में स्कूल का जायका लेने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी, सादगी भरा अंदाज उनका देखने को मिला, बच्चों के साथ जमीन पर बैठे। खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई स्टेशन की घोषणा कर दी। बलसाना और बावरी ठिकरिया स्टेशनों के बीच में बनेगा नया हाईटेक स्टेशन। चित्रकूट दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 124 विकास परियोजनाओं और उद्घाटन शिलान्यास। अलवर दौरे पर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। गडकरी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, एक्सप्रेसवे पर होने वाले काम के ऑडिट के आदेश दिए। हरिद्वार दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेमनगर आश्रम में चल रही मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। रामकथा आयोजन पर सभा भक्तों और प्रशासन को बधाई। महादेव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, भक्तों को सुलभ दर्शन कराने के लिए इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार। पूरे सावन के माह में विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वीआईपी और स्पर्श दर्शन करने के लिए सुविधा रहेगी बंद। सावन के दौरान काशी जाने वाले भक्तों की हर सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। इस साल 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा श्रावण मास का समय। 80 लाख के करीब भक्त पहुंचने की उम्मीद। भीड़ प्रबंधन करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम। अमरनाथ यात्रा के पहले 5 दिनों में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा में हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शिव भक्त, श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। अमरनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम। पहली बार 20 कैंप पर बच्चों की देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर सेंटर। अमरनाथ यात्रा में छोटे बच्चों वाले परिवारों को मिली है बड़ी राहत। बालटाल और ननवाल बेस कैंप में शुरू किए गए हैं चाइल्ड केयर सेंटर। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए खास जोर, भक्तों की सेवा में समर्पित कानपुर भंडार। माँ वैष्णो देवी पर कटरा में नए यात्रा मार्ग पर बारिश के कारण हल्का भूस्खलन। नए मार्ग पर भूस्खलन वाली जगह से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। बद्रीनाथ में खराब मौसम के बीच भारी नजर आई आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बीच उफान पर अलकनंदा नदी, मॉनसून के चलते अद्भुत नजारा। उत्तराखंड में 9-10 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। मॉनसून की पहली बारिश से दिल्ली को बड़ी राहत मिली, साल 2026 में पहली बार हवा हुई सबसे साफ। दिल्ली में संतोषजनक श्रेणी में 59 दर्ज किया गया AQAR। लगातार 2 दिनों से दिल्ली NCR के आसमान में बादलों का डेरा, रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कल भी दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है, इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री रहेगा। गुरुग्राम में भी जारी रिमझिम बरसात, सुहाने मौसम के बीच ठंडी हवाओं से तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट। बगहा में दिखा नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से छोड़ा गया 85,000 क्यूसेक पानी। नदी किनारे बढ़ी सतर्कता, बैराज और नदी के जलस्तर पर लगातार रखी जा रही है नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बादल फटने की घटना निकलकर सामने आई, प्राकृतिक आपदा के चलते कई मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त। गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश से सूरत में बढ़ा बाढ़ जैसा हाल। SDRF के जवान बने देवदूत, कमर तक भरे पानी के बीच रिहायशी इलाकों में लोगों को निकाला बाहर। कुल्लू की ऊपरी पहाड़ियों में बारिश के बाद बदल गया मौसम का मिजाज, दुर्गम पहाड़ियों में शांत झरने में कई गुना बढ़ा जलस्तर। नवसारी में भारी बरसात के बाद उफान पर अंबिका नदी। पुणे में जबरदस्त बारिश का असर, भिड़े ब्रिज डूब गया। महाराष्ट्र के वसई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे ट्रैक पर भर गया पानी। वायनाड में हुए भूस्खलन, युद्ध स्तर पर बचाव अभियान तेज। हाईटेक हुआ इंदौर का कमला नेहरू चिड़ियाघर, देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी की गई है तैयार, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देना मकसद। बच्चों के लिए बनाई गई है आधुनिक का भूल भुलैया, बच्चों को खूब भा रही है। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए रेलवे की सौगात, गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थयात्री कर सकेंगे। गोरखपुर से 31 जुलाई को शुरू हो जाएगी तीर्थयात्रा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने तीर्थयात्रियों को दी EMI भुगतान की सुविधा। टेनिस स्टार जोकोविच ने रच दिया इतिहास, अकेला विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा क्वार्टर फाइनल। 5 घंटे 15 मिनट तक चला 5 सेट वाला मैराथन मैच। लगातार 8वीं बार सेमीफाइनल्स में पहुंचे जोकोविच, अब शुक्रवार को सेमीफाइनल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी से होगी भिड़ंत। ICC ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी है, इस लिस्ट में ईशान किशन अब भी नंबर 1। ईशान के अलावा टॉप पर 2 भारतीय खिलाड़ी और, जिसमें अभिषेक शर्मा 2रे पायदान पर, तिलक वर्मा 6ठे पायदान पर। सौरभ गांगुली की बायोपिक का दादा से राजकुमार राव का फर्स्ट लुक निकलकर सामने आया। रहूं मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर हुआ आउट, 17 जुलाई को रिलीज होने जा रही है फिल्म। प्रज्वल देवराज और राजवीर शेट्टी की कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर हुआ रिलीज, 24 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म श्री रामभूमि की शूटिंग का आज अयोध्या में पहला दिन, अनुपम खेर ने तस्वीर शेयर की। अभी खत्म नहीं हुई है कांतारा फ्रेंचाइजी, ऋषभ शेट्टी ने दिया अपडेट। चीन के शियामेन शहर के 100 साल पुराने हैपिंग पियर पर अरोरा थीम वाला शानदार लाइट शो आयोजित किया गया। शियामेन में अनोखा लाइट शो देखने को मिला, डांस परफॉर्मेंस ने बांधा समा। लुजिया अंग्रेवार वाटर फ्रंट पर अरोरा जैसा नजारा अद्भुत। वाटर फ्रंट अब बन गया है शहर का नया नाइट टूरिस्ट आकर्षण, अरोरा बोरालिस का नजारा। चीन के फुजियान प्रांत में रोशनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अनोखा संगम। एजी बॉट के रोबोट का दमदार डेमो, फैक्ट्री से लेकर शॉपिंग और लॉजिस्टिक्स तक के काम करने में माहिर। एजी बॉट का ग्लोबल मिशन, कंपनी का लक्ष्य इस साल कुल कमाई में 30-40% हिस्सा विदेशी बाजारों में हासिल करना। दुनिया में बढ़ा एजी बॉट का नेटवर्क, यूरोप, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, मिडल ईस्ट, जापान और दक्षिण कोरिया तक पहुंच। लेबर की कमी का समाधान बनते हैं ये रोबोट, कंपनी का कहना है कि विदेशी बाजारों में अच्छी पकड़। विदेशी ग्राहक खरीद रहे हैं रोबोट, एजी बॉट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक का रोबोट को सीधे खरीद सकते हैं। चीन के चिड़ियाघर में पांडा मैन कैनकैन का तीसरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। 3 साल के पांडा मैन कैनकैन की बर्थडे पार्टी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, कीपरों ने प्यार से सजाया केक। चीन में पांडा के जन्मदिन पर अनोखा फल सब्जी का केक तैयार किया गया, केक के साथ कद्दू और गाड़ी तरबूज। गर्मी से बचाने के लिए पांडा की पार्टी में बर्फ का इंतजाम भी किया गया, चिड़ियाघर में खास सजावट। पांडा मैन कैनकैन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, कीपरों ने उसके जन्मदिन पर खूब शुभकामनाएं दी। स्पेन में पड़ रही है भीषण गर्मी, यहां सेविल शहर में तापमान 42 डिग्री के पार। हीटवेव से बेहाल स्पेन, मौसम विभाग के अनुसार गर्मी की लहर गुरुवार तक यूं ही जारी रहेगी। सेविल एयरपोर्ट पर 41 डिग्री तक पहुंच गया तापमान, गर्मी से बेहाल हुए लोग। सड़कों पर निकलना हो गया दूभर, गर्मी से बचाव करने के लिए उपाय करते नजर आए लोग। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, स्पेन ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की अपील। माउंट एटना में दिखा अनोखा नजारा, ड्रोन वीडियो में लाल गर्म लावा निकलता हुआ नजर आया। सिसली के ज्वालामुखी में बढ़ी हलचल, इटली के एटना में राख और लावा की गतिविधि। ड्रोन वीडियो में लगा कि लावा नॉर्थ ईस्ट क्रेटर की गहराई में वापस जा रहा है। एटना पर वैज्ञानिकों की नजर, INGV के अनुसार ज्वालामुखी गतिविधि में कमी आई है। माउंट एटना की राख से हवाई यातायात और खेती हो सकती है प्रभावित।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: भगवान बुद्ध की कई छोटी और बड़ी प्रतिमाओं को देखने के लिए पर्यटक बोधगया पहुंचते हैं। विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु भी यहां बने बौद्ध मंदिरों में अध्ययन करने के लिए आते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी ही कई और जानकारियों को यहां पर बना एक मंदिर भी लोगों तक पहुंचा रहा है। नाम है पालयुक नामड्रोलिंग। ये मंदिर जो है जितना खास है उतना ही खास है यहाँ मौजूद वो 1002 बुद्ध प्रतिमाएं जो अलग अलग मुद्रा में यहाँ रखी गई हैं। तो चलिए देखते हैं ये छोटी छोटी अनोखी कलाकृतियों वाली प्रतिमाएं जिनको खास तौर से देखने के लिए देसी विदेशी लोग पहुंचते हैं।
2: कतार में सजी हुई भगवान बुद्ध की ये मूर्तियाँ न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि कुछ वजहों से खास भी हैं। भगवान बुद्ध की ये मूर्तियाँ एक दूसरे से एकदम जुदा हैं। बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में एक ऐसा बोध मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध की ऐसी 1002 मूर्तियाँ हैं। पल्यूल नामड्रोलिंग नाम के इस बौद्ध मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की बड़ी प्रतिमा स्थापित है। वहीं गर्भगृह के चारों तरफ की दीवारों पर भगवान की अलग अलग मुद्रा में बनाई गई ये सभी मूर्तियां यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों को खींचती रही हैं। यही वजह है कि हरियाली के बीच बनाई ये खूबसूरत और आकर्षक मंदिर अपनी इन सभी नायाब मूर्तियों के चलते पर्यटकों को एक अलग तरह का सुकून और शांति देता रहा है।
3: बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि यहाँ पे हर एक तरह का छोटा छोटा टाइप बुद्ध भगवान का मूर्ति बना करके हर जगह मतलब उसमें रखा हुआ है, वो देखने में एक अलग टाइप का सुकून मिलता है कि एक शांति का रूप लगता है और यहाँ मतलब आने पे बहुत ही शांति महसूस होती है। हर चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधा, शाम को घूम मतलब अच्छा लगता है आना।
2: इस मंदिर में मौजूद ऐतिहासिक तथ्यों को देखने और उनके मर्म को समझने के लिए ही हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के साथ साथ विदेशों से भी लोग आते रहते हैं। बोधगया का ये एक ऐसा इकलौता बौद्ध मंदिर है जहां पर एक साथ भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बताया जाता है कि मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था, जिन्होंने 2 साल से ज्यादा का समय लेते हुए इन्हें तैयार किया।
4: भगवान का हमारे शास्त्र में लिखा है, ये पवित्र स्थल जो महाबोधि टेम्पल बोधि ब्रिज के नीचे, उसी मतलब वज्रसान में 1002 भगवान बुद्ध का यहाँ पर निर्वाण प्राप्त करने का, सिद्धि प्राप्त करने का ये मान्यता है। अभी तक 4 हो गया, चौथवा है अभी, और बाकी 998 और बुद्ध यहीं पर मतलब निर्वाण प्राप्त करेगा, ये हमारा मानना है जी।
2: इसी मान्यता के चलते बौद्ध धर्म को मानने वालों ने बोध गया में भगवान बुद्ध की इस पावन निर्वाण स्थली पर अनूठी मूर्तियां बनाने की कवायद की।
4: हमारा मंदिर में 1002 मूर्ति बनाने का मान्यता यही कि हमारा परम पावन, हमारा पूज्य, हमारा अपना रूट गुरुजी पेनोर ही सोलनेस पेनोर रुम्बछे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि ये इस मतलब पवित्र स्थल में बौद्ध गया में 1002 मूर्ति बनाए जाए।
2: बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पंच रत्न की मुद्रा अलग अलग बताई गई है, उसी के हिसाब से इन 1002 मूर्तियों को आकार दिया गया है। यानी भगवान तो एक ही है लेकिन उनकी मुद्रा अलग अलग है। फिलहाल तो 2015 के बाद से पल्यूल नामडोलिंग बौद्ध मंदिर और इसमें रखी गई इन नायाब मूर्तियों की यही विशेषता देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: क्या अंक 13 एक अशुभ अंक है? क्या अंक 22 के साथ भाग्य ज्यादा होता है? क्या 31 अंक वालों का वैवाहिक जीवन खराब होता है? क्या है अंक 4 की विशेषताएं और इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन जीज गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
0: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंक चार के बारे में। ज्योतिष में अंक चार का क्या महत्व है और ये अंक चार हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप जोखिम वाले रिस्क वाले क्षेत्र में काम करते हैं तो अपने गले में एक चांदी का तारा बनवा करके धारण करिए। खास तौर से अगर आप स्टॉक्स में शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो अपने गले में एक चांदी का तारा पहनने से आपको लाभ होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 9 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:37 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 2:56 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अंक चार के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं अंक चार का ज्योतिष में आखिर महत्व क्या है।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर चार की। और अंक चार वास्तव में चार अंकों में बंटा हुआ है। नंबर चार से संबंध रखने वाले इन चारों अंकों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अंक चार का महत्व क्या है। देखिए, अंक चार मुख्य रूप से राहु का अंक है और कहीं कहीं पर न्यूमरोलॉजी में इसको नकारात्मक सूर्य का अंक भी कहा जाता है। अंक चार जब जीवन में प्रभावशाली होता है तो ये अंक जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। लेकिन चार अंक में रहस्यमयी शक्तियां भी होती हैं और इस अंक में कई बार बहुत सारा ग्लैमर और बहुत सारा नेम एंड फेम भी होता है। चार अंक में थोड़ी मात्रा में डिप्रेशन यानी अवसाद भी पाया जाता है। इस अंक के मुख्य रूप से चार लोग होते हैं। जिन लोगों का जन्म महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है उनका मुख्य अंक 4 होता है। तो जन्म की तारीख के हिसाब से 4 का अंक 4 भागों में बंटा है। पहला खुद नंबर 4, दूसरा 13, तीसरा 22 और चौथा 31।
0: और चलिए अब जानते हैं जिनका जन्म किसी भी माह की 4 तारीख को हुआ हो उनकी विशेषताएं और भविष्य कैसा रहेगा।
1: जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ है उनका भविष्य क्या है। 4 का केवल 4 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये शुद्ध रूप से राहु का अंक है। इसमें राहु की भूमिका होती है और 4 अंक वालों के अंदर राहु की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। आम तौर पर जिनका अंक केवल 4 होता है आरंभ में जीवन में इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है और उम्र के मध्य आयु के बाद 35-36 साल की उम्र के बाद इनको सफलता जीवन में ज्यादा मिलती है। और केवल अगर 4 है आपकी डेट ऑफ बर्थ तो विवाह के बाद इनकी उन्नति के योग ज्यादा होते हैं। अगर आपका नंबर केवल 4 है तो आपको धन के उतार चढ़ाव से बचना चाहिए और जितना संभव हो अधिक से अधिक अगर आप शिव जी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, सेहत की स्थिति कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्याओं से बचें, वाद विवाद से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जानते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ हो उनका भविष्य कैसा रहेगा।
1: अब बात करते हैं जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ हो। देखिए 13 के अंक को सामान्यतः लोग अशुभ अंक या निगेटिव अंक मानते हैं, जबकि 13 नंबर अत्यधिक ज्ञान और अत्यधिक बुद्धिमता पैदा करता है। 13 अंक जिनकी जन्म की तारीख का है, इस अंक के लोग अपनी बुद्धि से जीवन में ऊंचाइयों पर जाते हैं और 13 अंक वालों को घर से दूर जाकर जीवन में सफलता ज्यादा मिलती है। 13 अंक वालों को लोग निगेटिव समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अपनी बुद्धि और काबिलियत से ये जीवन में सब कुछ पा जाते हैं। 13 अंक की जो निगेटिव बात है वो ये है कि ये अक्सर डिप्रेशन के या अवसाद के शिकार हो जाते हैं। जीवन में अकेलापन इनको परेशान करता है। अगर आपका अंक 13 है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, अवसाद में जाने से बचिए और जब भी मौका मिले आपको ध्यान करना चाहिए, आपको साधना करनी चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रह सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और गुड लक में अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न ज्ञानेश्वर जी ने राजस्थान से हमें लिखा है। 23 अप्रैल 2003 का जन्म है, 11:15 रात को उदयपुर राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ज्ञानेश्वर जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, शनि आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है और जो मंगल के हालात हैं उसके हिसाब से इतना जल्दी विवाह होने की संभावना नहीं बनती है। 26 साल आप पूरा करेंगे 2029 में, उस समय आपके विवाह की संभावना बन सकती है। आप विवाह के लिए और बेहतर जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है जहां अपने सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल, तो जानेंगे पंडित जी से वो आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न दीपा वरुण देवपा जी ने हमें उत्तराखंड से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 जनवरी 2010, 7:08 शाम को नैनीताल। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी 11वीं की पढ़ाई ह्यूमैनिटी से कर रही है, उसके करियर की दिशा और दशा क्या रहेगी। दीपा जी, आपके पुत्री की कुंडली के हिसाब से सबसे पहले आप उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिए, क्योंकि मेंटली परेशान होने की या मानसिक रूप से चिंता करने की संभावना बनती है। आपकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र में, साइकोलॉजी में या रिसर्च के क्षेत्र में जा सकती हैं और इसके अलावा आपकी पुत्री प्रशासनिक सेवा में भी जा सकती हैं। ये संभावना इनके लिए दिखाई दे रही है। एक इनको मूंगा बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार को सवेरे इनको मूंगा पहना दीजिए और इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ हो, आइए जानते हैं उनके भविष्य के बारे में।
0: अब बात करते हैं उन चार नंबर वालों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है। देखिए 22 तारीख को 22 को मास्टर नंबर कहा जाता है। ये एक विशेष अंक है जन्म की तारीख के अनुसार। इस अंक के लोगों के पास आम तौर पर काफी सफलता होती है, कला, टेक्नोलॉजी और राजनीति के क्षेत्र में 22 अंक वाले बहुत सफल होते हैं। लेकिन 22 के साथ भी एक खास बात यह है कि जिनकी जन्म की तारीख महीने की 22 तारीख है, उनको भावनात्मक समस्याएं और डिप्रेशन, अवसाद काफी ज्यादा हो सकता है। इन लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम से और डिप्रेशन से बचना चाहिए। और 22 वाले पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, पैसे की चाह इनकी खत्म नहीं होती। तो अगर आपका नंबर 22 है तो केवल पैसे के पीछे भागने से बचिएगा। 22 नंबर वाले जिनका जन्म महीने की 22 तारीख को हुआ है, अगर ये लोग आध्यात्मिक हो जाएं, स्पिरिचुअल हो जाएं, तो जिंदगी बेहतर हो जाती है।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, परिवार की समस्या आपकी दूर होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: जिनका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को हुआ हो, आइए जानते हैं उनके भविष्य के बारे में।
0: अब एक और चार नंबर वाले की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को हुआ है, उनका नंबर भी चार है। ये अंक 31 का अंक ज्ञान, बुद्धि और अहंकार का अंक है। जिनका जन्म महीने की 31 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग शिक्षा में, विद्या में, सलाहकारिता में और कानून के क्षेत्र में ज्यादा सफल होते हैं। और 31 तारीख वालों को सामान्यतः जीवन में धन का अभाव नहीं होता, और 31 वाले परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में मुश्किल तब आती है जब ये जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। जीवन में अत्यधिक बुद्धिमानी की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मुश्किल में पड़ते हैं और अक्सर बिना सोचे विचारे बड़े निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं और इस वजह से जीवन में असफलता मिलती है। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 31 तारीख है, 31st है, तो भैया जीवन में निर्णय लेने में हमेशा सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके निर्णय आपको जीवन में मुश्किल में डाल सकते हैं।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज के अंतिम राशि के राशिफल को, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, मानसिक समस्या इस समय आपको हो सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है, धन खर्च पर ध्यान दें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन के लेन देन में सावधानी रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न ज्योत्सना गोस्वामी जी ने हमें उत्तर प्रदेश से लिखा है। 13 जनवरी 1953 का जन्म है, 8 बजे प्रातः, झांसी उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, इलाज मेरा चल रहा है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ज्योत्सना जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा भी बृहस्पति की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपका इलाज लंबा चलेगा, लेकिन आपके बेहतर हो जाने की संभावना बनती है और आगे का जीवन आपका बेहतर रहेगा, ये स्थिति कुंडली में दिखाई दे रही है। आप एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें। भगवान शिव की जितनी पूजा कर सकती हैं करिए, उससे आपकी स्थितियों में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न कैलाश सिंगला जी ने दिल्ली से लिखा है। 31 मार्च 2001 का जन्म है, 4:15 शाम को दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मैं अपना व्यापार करना चाहता हूं, उसमें अड़चन बहुत आ रही है, तो क्या मैं अपना व्यापार कर पाऊंगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। कैलाश जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा बुध की चल रही है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस साल के अंत में, नवंबर दिसंबर में या अगले साल के आरंभ में, जनवरी फरवरी में आप अपना व्यापार शुरू कर पाएंगे और जुलाई 2027 के बाद आपका व्यापार ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: पंडित जी, एक सवाल था, जिनके जीवन में भी 4 अंक का कोई ना कोई लिंक हो, तो उसे अपने कौन से भगवान, कौन से इष्ट की पूजा करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई मुश्किलें ना हो।
0: जी देखिए, अगर आपका अंक 4 किसी भी तरीके से है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4-13-22-31, मूलांक 4 है, या 4 नंबर से आपका कनेक्शन बार बार बनता है, तो इसका मतलब है आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। राहु का प्रभाव जब भी आपके जीवन पर होगा, कुंडली से हो, डेट से हो, तो वो जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है और हेल्थ में, स्वास्थ्य में विचित्र बीमारियां भी व्यक्ति को देता है। तो अगर आपका अंक 4 का अंक है, तो आपको 2 काम नियमित रूप से करना है। एक, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि 4 अंक वालों को डिप्रेशन हो जाने की, मानसिक बीमारियां होने की, मानसिक चिंता होने की संभावना बहुत होती है। तो अगर चार का अंक है तो मेंटल हेल्थ

0: नमः शिवाय का जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही चार अंक की नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा।

0: जन्मदिन 9 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर जो मिट्टी की मूर्तियां काफी पुरानी हो गई हैं, उनका क्या करें? घर के पूजा स्थान की मिट्टी की मूर्तियों को हर साल दीपावली पर या नवरात्रि पर बदल देना चाहिए, लेकिन इनको इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिएगा। या तो इनको जल में प्रवाहित कर दें या इनको मिट्टी में दबा दें, वही करना उचित होगा।
1: और अब जानेंगे 9 जुलाई 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 9 जुलाई 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का जो वर्तमान समय है वो कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस समय आपके स्वास्थ्य के हाल में, आपकी चिंताओं में सुधार होगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस समय हो सकता है।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई शादी, विवाह, कोई फंक्शन, कोई शुभ कार्य होना है और आप चाहते हैं कि बिना बाधा के शुभ कार्य हो, तो क्या करेंगे? शुभ काम की शुरुआत के एक दिन पहले गणेश जी को दूर्वा की माला यानी दूब घास की माला अर्पित करेंगे। किसी निर्धन

0: व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान कर देंगे और शुभ काम जब संपन्न हो जाए बिना किसी दिक्कत के तो उस माला को जल में प्रवाहित कर देंगे।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
2: बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, जिसे लेकर तीर्थ यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं के इसी उत्साह की बदौलत पहले 5 दिनों में बाबा बर्फानी के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार अब जा चुका है। हालांकि इस बीच खबर यह भी निकल कर आई है कि पवित्र अमरनाथ गुफा में बना प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पिघल चुका है, जबकि यात्रा अभी 28 अगस्त तक यूं ही जारी रहेगी। बावजूद इसके यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को उनका जो जोश है, उत्साह है, वो जबरदस्त है।
3: बाबा अमरनाथ में अटूट आस्था रखने वाले ये श्रद्धालु जयकारों का उद्घोष करते हुए पवित्र गुफा की ओर जा रहे हैं। कोई घोड़े और खच्चर पर सवार होकर जा रहा है, कोई पालकी पर सवार होकर जा रहा है और कोई पैदल चलकर पवित्र गुफा तक दर्शनों के लिए दौड़ा चला जा रहा है। सबके मन में बस जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस है। इनमें कोई परिवार की खुशहाली की मुराद लेकर आया है और कोई रोजी रोटी में तरक्की की मुराद लेकर आया है। बाबा बर्फानी में अटूट आस्था रखने वाले इन भक्तों का मानना है कि श्री अमरनाथ जी उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
4: आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बाबा के अच्छे दर्शन हुए और कबूतरी पास बैठे थे और बहुत शांति मिला आत्मा को।
5: ये यात्रा कैसी रही, इतनी लंबी यात्रा?
4: बहुत अच्छी रही यात्रा। सब कुछ यात्रा दुपड़ा हम चलते हैं, यात्रा की अच्छी रही यात्रा।
6: मैं इंदौर शहर से हूँ, हम लोग आए थे दर्शन करने, साथी लोग, हम एक ग्रुप के हैं। हम बाबा के यहाँ दर्शन करने गए थे, बहुत ही बढ़िया सुकून मिला हमको बाबा के दर्शन करके। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बाबा सबको ही दर्शन दे रहे हैं।
3: श्री अमरनाथ जी की इस यात्रा में अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, जबकि पिछले साल पहले 5 दिन में करीब 93,000 शिव भक्तों ने अपनी यात्रा पूरी की थी। यानी इस साल शुरुआत 5 दिनों में शिव भक्तों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है।
7: इस साल की अमरनाथ यात्रा में एक हफ्ता भी नहीं बीत गया है, 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, जो साफ दर्शाता है कि अब की बार अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों और श्रद्धालुओं में क्या उत्साह है। और इस बात का अंदाजा तभी हुआ था जब अब की बार रिकॉर्ड तादाद में 4 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन की थी। उसके बाद भी हजारों की तादाद में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है वो अमरनाथ गुफा के अलग अलग पड़ावों पर जारी है।
3: हालांकि एक दिन पहले खबर आई कि अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का बना शिवलिंग लगभग पूरी तरह से पिघल गया है, जबकि अभी यात्रा शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये यात्रा इस साल 28 अगस्त तक चलनी है। बावजूद इसके देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था बरकरार है और वो दर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज भी श्रद्धालुओं के जत्थे को कड़ी सुरक्षा में पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया।
8: प्रतिदिन बाबा अमरनाथ के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, 10,000 लोग हैं जत्था में और बहुत उत्साह है भगवान के प्रति और सब लोग चाहते हैं भगवान के दर्शन मिले हम लोगों को। बाबा के जब शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे तो हम लोगों को यह मन में है कि हम बाबा की गुफा तक ही पहुँचे, बाबा के स्थान तक पहुँचे और वहाँ बाबा को प्रणाम करके आए। सर,
9: सुना है कि बाबा भोले शंकर की जो स्वरूप है वो लुप्त होता जा रहा है, पर भक्तों की आस्था है, भक्तों का एक विश्वास है हमें वहाँ दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और हम अपनी आस्था को मद्देनजर रखते हुए वहाँ बाबा भोले शंकर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे।
10: मायूस होने कोई जरूरत नहीं है, देखो महादेव जी तो कण कण में है, एक ये उन्होंने अपना स्वरूप उठाया था वहाँ पे, ठीक है, जो अमर कथा सुनाई थी गुफा में, जगह मगर वहाँ पर शिवलिंग स्तंभ नहीं है, लुप्त हो चुका है, बाबा जी अंतर ध्यान हो चुका है। उस जगह मत्ता तो है जहाँ माता पार्वती जी ने बोले बाबा से अमर कथा सुनी, अमर कबूतर है वहाँ पर, जो मैं मानता हूँ, जो हमारा मानना है, शिवलिंग महत्ता तो है ही है, उस जगह की महत्ता बहुत ज्यादा है जहाँ पर भोले बाबा ने अपना आसन दिया।
3: देश भर से आने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए यात्रा वाले रूट पर जगह जगह लंगर चल रहे हैं, जहाँ खाने और विश्राम का इंतजार किया गया है। इनमें कुछ भंडारे ऐसे हैं जहाँ का भक्तिमय माहौल तीर्थ यात्रियों को खासा रास आ रहा है।

0: इन भंडारों में रोजाना होने वाली पाठ पूजा और भजन कार्यक्रमों में ये श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सफल सुखद यात्रा की कामना करते हैं। वहीं एक भंडारा ऐसा भी है जहां बच्चों की देखभाल का इंतजाम किया गया है।
1: अमरनाथ यात्रा में आपको हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर दिखेगी। हर राज्य के यहां पर भंडारे लगते हैं, हर राज्य के यहां पर श्रद्धालु आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेयर है कानपुर की मैडम प्रमिला जी। मैडम आप अमरनाथ यात्रा पे आइए, पहले अपना आप बताइए कि कब से आपका लगाव है अमरनाथ यात्रा के साथ, और जो यहाँ पर जो कानपुर का ये भंडारा लगा है इसमें आपकी क्या क्या योगदान है?
2: देखिए मेरा आने का तो बहुत दिन से मन था अमरनाथ से, जब से मैं समझने लायक हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाई। लेकिन ये मेरा छठवा या सातवां बार है। मेरे बहन का लड़का पहली बार ले आया था मुझे, लेकिन उसके बाद से ये मेरा बेटा लेके आता है। और ये इतने अच्छे से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली बार, अगर पहली बार की फोटो दिखाएं या दोबारा दिखाएं, तिबारा हमारे पांचवी छठी बार पांचवा है, तो हर बार एक नया काम करता है। अब इस बार देखिए इसने सब व्यंजन का तो ये भगवान को भोग लगाता है और हजारों आदमियों को ये भोजन कराता है। हमारा इसके साथ बस इतना ही है कि मैं इसके साथ लगी रहती हूँ कि हमसे जो हो जाए।
1: क्या आपने ये जो खासतौर से मैं चाइल्ड केयर को लेकर बड़ा ये हुआ कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि बच्चों के केयर के लिए भी यहाँ पर जो है एक व्यवस्था हो?
3: चाइल्ड केयर जब पहली साल हम लोग यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग महिलाएं और बच्चे जो हैं यहाँ पर साथ साथ रोते रहते थे कि हम जा नहीं पाए, बच्चे रो रहे होते थे। तो एक मन में एक आया कि अगर बच्चे हमारे पास हो तो ये लोग जा सकते हैं। तो हम लोग पास कुछ खिलौने वगैरह थे तो दो तीन बच्चे हम लोगों ने यहाँ टेबल पे ही तखत पे रखा और उनके वो लोग गए आ गए। ये लीगली नहीं था, हम लोगों का पर्सनल एक एफर्ट्स था जिसको पहली बार किया था। तो डीसी साहब यहाँ पर थे, डीसी साहब ने देखा, उसके बाद उन्होंने बुला करके कहा कि क्या आप ये सर्विस को अगर आपको परमिट करें तो आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे। उन्होंने कहा बहुत रिस्क है इसमें, अगर किसी बच्चे को खाने में या कहीं गुम हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। तो हमने कहा अगर भोलेनाथ ने लिखी होगी तकलीफ तो होगी, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर।
0: श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोशिश है कि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं मिले और उनकी यात्रा का अनुभव यादगार हो। बालटाल से अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात करेंगे जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की, जो एक हफ्ते बाद अपने भव्य और दिव्य रथ पर सवार होकर आने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में दिव्य उत्सव आरंभ होने वाला है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए बन रहे रथों से जुड़ा कार्य अपने अंतिम दौर में है और उससे पहले आस्था के इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा भी ली गई। रक्षा एजेंसियों ने जगन्नाथ मंदिर के नजदीक के अलावा रेलवे स्टेशन पर बड़े स्तर पर एंटी टेरर मॉक ड्रिल की।
5: बुधवार का दिन दोपहर का वक्त जगत के पालनहार की नगरी पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया। पवित्र क्षेत्र में पुलिस की गाड़ियों और फायर ब्रिगेड के सायरन का शोर अचानक उठा और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन को सुरक्षा कर्मियों ने चारों तरफ से घेर लिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। ये समझने में देर नहीं लगी कि कुछ संदिग्ध लोगों ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर पर भक्ति और आस्था के रंग में बाधा डालने की कोशिश की है। उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया। जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन की घेरेबंदी के बीच स्पेशल टेक्निकल यूनिट के कुछ कमांडोज इमारत में दाखिल हुए और वहां पहरा दे रहे आतंकी को ढेर कर दिया। इसके बाद इमारत में कुछ आतंकियों को काबू किया गया ताकि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएं। पूरी तरह ये भरोसा कर लेने के बाद कि अब कोई आतंकी खुला नहीं घूम रहा, प्रशासनिक भवन में मौजूद सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में तैनात घायल पुलिस कर्मियों को स्ट्रेचर से निकालना शुरू किया गया ताकि आतंकियों की गोली से घायल हुए पुलिस वालों को तुरंत से तुरंत इलाज मिल सके। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर प्रशासनिक भवन के बाहर आम लोगों की भी भीड़ लग गई, जिन्हें कुछ देर बाद ये बात समझ आ गई कि जगन्नाथ यात्रा से पहले वहां मॉक ड्रिल हो रही है ताकि जगन्नाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा पर खतरों से निपटने के लिए आपसी तालमेल और तैयारियों को परखा जाए। यही वजह रही कि तलाशी अभियान और लोगों के बचाव के लिए रिमोट कंट्रोल रोबोटिक वाहन और डॉग स्क्वाड भी ऑपरेशन में शामिल हुए। ऐसी ही तस्वीर पुलिस रेलवे स्टेशन पर भी सामने आई, जहां स्पेशल टेक्निकल यूनिट को हावड़ा पुरी एक्सप्रेस में यात्रियों को बंधक बनाने की सूचना मिली थी। जिसके बाद वहां भी बगैर वक्त गंवाए स्पेशल टेक्निकल यूनिट के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया ताकि ट्रेन की बोगी में बंधक बनाए यात्रियों को छुड़ाया जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान पूरी रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन स्थितियों से निपटते हुए सुरक्षा कर्मियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया।
6: रथ यात्रा 2026 के लिए व्यापक पुलिस बंदोबस्त करा जा रहा है। इसमें प्राय 12,000 से अधिक पुलिसकर्मी, होमगार्ड, सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो है इसमें मुतैन करी जाएंगी। सभी कंटीजेंसी के विषय में चिंता करा गया है और उसके बारे में प्रबंध करे जा रहे हैं। ट्रैफिक के लिए व्यापक प्रबंध करा जा रहा है। भारी संख्या में सीसीटीवी लगाया जा रहा है। उत्तराछक से लेकर पुरी तक और पूरा पुरी शहर रथ यात्रा के समय में सीसीटीवी सर्वेलेंस में रहेगा। उसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर्स स्थापित करे जा रहे हैं विभिन्न जगह में। मैं आप सभी के जरिए जनसाधारण से अपील करता हूं कि जब वो रथ यात्रा में भाग लेने के लिए पुरी की तरफ आते हैं तो विभिन्न समय में पुलिस की तरफ से और ट्रैफिक विंग की तरफ से जो जो एडवाइजरी दी जा रही है उसका वो ध्यान करें और उसका पालन करें।
5: सनातन धर्म के लिहाज से अति महत्वपूर्ण चार धामों में से प्राचीन नगरी पुरी एक है, जहां सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव की तैयारी अंतिम दौर में है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को समर्पित जगन्नाथ मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र में माहौल ज्यादा भक्तिमय हो चुका है। सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों में शामिल पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए बन रहे रथ करीब 90% से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। पुरी में भव्य रथ यात्रा का संयोग भले ही आषाढ़ में बनता है, लेकिन रथ के निर्माण से लेकर उसके श्रृंगार तक की यात्रा किसी तपस्या से कम नहीं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से ही संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ की यात्रा निकाली जाती है। इस बार रथ यात्रा की शुरुआत 16 जुलाई से होगी, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात करेंगे सलमान खान की, जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म SVC 63 की शूटिंग में बिजी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें शेड्यूल से वक्त निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई उनकी दो तस्वीरों और उन तस्वीरों के साथ लिखा गया कैप्शन उन्हें कुछ दूसरी वजहों से सुर्खियों में ला खड़ा किया गया।

0: 7 जुलाई की शाम सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये दो तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में सलमान खूबसूरत वादियों के बीच चेयर पर बैठे हैं, आसपास धुंध है। उन्होंने रेगेड जीन्स, ब्लैक वेस्ट और काउबॉय हैट पहनी हुई है। इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में सलमान खान ने बस एक शब्द लिखा है, मातृभूमि। सलमान का इतना लिखना था कि सोशल मीडिया पर कयासों की बाढ़ आ गई है। लोग अपने अपने तरीके से इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूती से सामने आ रही है उसके मुताबिक सलमान ने इस पोस्ट में मातृभूमि के ट्रेलर का हिंट दिया है। माना जा रहा है कि मातृभूमि की रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के साथ ट्रेलर जल्द लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें फिल्म की कहानी और डायलॉग्स की बड़ी झलक देखने को मिल सकेगी। अब मातृभूमि के ट्रेलर रिलीज के कयास और सलमान की इन तस्वीरों में आपसी संबंध है या नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसकी बड़ी वजह है मातृभूमि के रिलीज को लेकर बना हुआ सस्पेंस। मातृभूमि फिल्म का टाइटल बदला गया। पहले ये फिल्म बैटल ऑफ गलवान के नाम से रिलीज होने वाली थी, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद फिल्म का नाम बदलकर मातृभूमि किया गया। इसके बाद फिल्म के कंटेंट में बदलाव किए गए, 40 दिन का रीशूट तक करना पड़ा। मातृभूमि टाइटल के नाम से नए गाने की शूटिंग तक की गई, लेकिन संकट के बादल फिर भी नहीं छटे। 3 जुलाई को खबर आई कि मातृभूमि अब भी सेंसर बोर्ड के पास अटकी हुई है, लेकिन इसके अगले ही दिन सलमान खान फिल्म्स ने इस खबर को निराधार बताया। और साफ किया कि मातृभूमि तो अभी सेंसर बोर्ड को सबमिट ही नहीं की गई है, ऐसे में अटकाए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पोस्ट में लिखा गया था कि इस तरह के सभी दावे गलत हैं, जिनमें कहा गया कि मातृभूमि को CBFC से जुड़ी कोई दिक्कत आई है या इसके सर्टिफिकेशन को रोक दिया गया है। सर्टिफिकेशन के लिए फिल्म अभी CBFC के पास भेजी ही नहीं गई है, इसलिए ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। सलमान खान की ओर से किए गए इस दावे के बाद उम्मीद जगी कि मातृभूमि अगस्त या सितंबर में रिलीज की जा सकती है, जैसे कि पहले खबरें आ रही थी। और अब अपनी तस्वीरों के साथ सलमान खान के इस पोस्ट ने उम्मीदों को और हवा दे दी है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices, from your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।

0: नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी प्रिय दर्शकों का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ट्रस्ट आश्रम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव की विशेष ब्लेसिंग इसी कार्यक्रम में आपको प्राप्त हो जाती है घर बैठे। और प्रिय दर्शकों, आप आज भी इस कार्यक्रम को अपने टीवी चैनल पर लाइव देख रहे हैं, और यदि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, गुरुदेव की विशेष ब्लेसिंग चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। और व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, यदि आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना फ़ोटो, अपनी माँ का नाम, अपनी उम्र और 3 बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अवश्य भेजिएगा। अवश्य ही आपको घर बैठे ब्लेसिंग प्राप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार की यदि वास्तु से संबंधित भी कोई आपका सवाल है, क्योंकि हमारे घर का वास्तु सब कुछ निर्भर करता है, हमारे घर के अंक गणित हम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप अपने घर का वास्तु ठीक करके अपनी कुंडली के समस्त अशुभ और पीड़ित ग्रहों तक को ठीक कर सकते हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: जय गुरुजी।
0: आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा?
1: गुरुजी मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ।
0: मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं।
1: गुरुजी मेरा नाम रजनीश कुमार है।
0: कितने वर्ष के हो गए रजनीश बेटा?
1: 26 साल का हो गया जी गुरुजी।
0: अपनी बेटा माता जी का नाम बताइए।
1: मंजू देवी नाम है जी।
0: 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: बेटा फोन पर बने रहिएगा।

0: भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? बेटा,
1: सुन पा रहा हूँ।
0: इंटेलिजेंट व्यक्ति हो लेकिन मेहनत प्रयास का बेटा कोई विशेष आपको फल नहीं मिल रहा। बेटा, एजुकेशन की लाइन में अच्छा कार्य कर सकते हो, जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा बन सकते हो। अभी कुछ बेटा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नौकरी करियर की तैयारी कर रहे हो या काफी दिनों से प्रयास चल रहा है आपका, काम बेटा कहीं बन नहीं रहा है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है।
1: हाँ जी गुरु जी, मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। बीएलएड कर रखा है, सीटेक कर रखा है, 2 बार फाइनल एग्जाम दिया है, तो अभी कर रखा है, अभी तैयारी बाकी है।
0: भाई दो हो आप बेटा,
1: हाँ जी गुरु जी,
0: आप छोटे छोटे हो
1: हाँ जी गुरु जी, छोटा हूँ मैं। हाँ
0: दोनों भाई, अभी अविवाहित हो
1: जी गुरु जी, शादी नहीं हुई हमारी।
0: जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा बने रहिएगा।

0: बड़ा भाई आपका मीडिया लाइन में है बेटा?
1: हाँ जी गुरुजी, मीडिया लाइन में।
0: कोई बात नहीं, आपका कार्य तो बेटा अवश्य करवा दूंगा, चिंता ना करना। अब तैयारी शुरू कर दीजिए दोबारा फिर से, और अति शीघ्र बेटा आपको अच्छे पद की, एजुकेशन की लाइन में बेटा प्राप्ति हो जाएगी।
1: जी
0: बस अब आपको करना क्या है बेटा, बड़ा ध्यान से सुनना। आने वाले सोमवार के दिन 800 ग्राम बताशे, 800 ग्राम कच्चा कोयला, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम रांगा धातु और 800 ग्राम दूध, ये सभी चीजें बेटा जाके एक एक करके अपने हाथ से नदी में बहते पानी में प्रवाह कर देना बेटा।
1: जी गुरुजी।
0: सुबह बेटा मंदिर जाया करो, भगवान शिव पे जल चढ़ाकर सफेद चंदन का बेटा ऊपर त्रिपुंड बना के आया करो महादेव के शिवलिंग पर।
1: जी गुरुजी।
0: और हाथ में एक चम्मच गेहूं, एक चम्मच जौ, एक चम्मच काले तिल रखकर आपको 10 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ओम ह्रीम त्रिनेत्राय नमः, ओम ह्रीम त्रिनेत्राय नमः, ओम ह्रीम त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा, अति शीघ्र बेटा आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा बेटा, एक से सवा महीने के अंदर बेटा आपको अब कार्य सिद्धि अवश्य मिलेगी। सुबह जब स्नान करते हो तो स्नान करने के बाद बेटा माथे पर दही का तिलक लगाना है। जीवन में कभी भी रात के समय दही का प्रयोग मत करना, बेड पर बैठकर खाना मत खाना, और फ्राइडे के फ्राइडे किसी मंदिर में जाकर थोड़ी मिश्री और छोटी इलायची का दान कर देना। काले कपड़े पहनना आपके लिए निषेध है बेटा, ये उपाय नियम से करना बेटा, आशीर्वाद है, आपका कार्य बेटा अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी गुरुदेव के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बस आपको करना क्या है, सिर्फ एक कॉल करनी है, और हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। निश्चिंत होकर कॉल करिएगा, यहाँ की ब्लेसिंग बहुत ही अद्भुत है। यदि जीवन में आप चारों तरफ से दुखी हैं, परेशान हैं, आपको लगता है कि कोई रिश्तेदार आपकी सहायता नहीं करता, दुख के समय में सभी लोग अपना मुख मोड़ रहे हैं, किसी के लिए भी अच्छा करते हो आपको हमेशा बुराई मिलती है, तो रोजाना बेलपत्र शिवजी पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर बेलपत्र यदि नित्य चढ़ाओगे सफेद चंदन लगाकर, तो इससे महालक्ष्मी योग भी बनता है और जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, आपको कभी भी हताशा और निराशा का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा और आपके कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, हम ये कार्यक्रम आपके लिए लाइव करते हैं। हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर आप जाकर हमारे YouTube चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। राहु आपको जीवन में अल्प समय में आपको धनवान बना सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में छप्पड़ फाड़ कर धन आ सकता है। एक काजल का बड़ा छोटा सा उपाय दे रहा हूं। राहु को शुभ कैसे करें, और शुभ राहु की अवस्था में ही व्यक्ति अचानक धन की प्राप्ति करता है। एक छोटी सी काजल की डिब्बी ले लीजिए, जो पवित्र हो, शुद्ध हो, जहां से देवी देवताओं का पूजन का सामान मिलता हो वहीं से खरीदना। आपको 3 डिब्बी लेनी है, और शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन एक डिब्बी आम के पेड़ के नीचे, एक बरगद के पेड़ के नीचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको उसको दबाना है। लेकिन ध्यान रखना, राहु की जो जागृति होती है वो रात के समय होती है, आपको ये प्रयोग रात्रि काल में ही करना है, दिन में नहीं करना, और इसको लगातार 4 सप्ताह लगातार कर देना। यदि चार बार आपने लगातार इसको नियम से कर दिया चार सप्ताह तक, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में राहु आपको कितना भी अशुभ क्यों ना दिखाई देता हो या किसी ने बताया हो, आपका राहु आपके लिए अत्यंत शुभकारी और मंगलकारी बन जाएगा। कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, राहु आपको छप्पर फाड़ कर धन देगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको?
2: जी गुरुजी, जी गुरुजी।
0: आपका बेटा स्वागत है, कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा?
2: जी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ गुरुजी।
0: मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं।
2: जी शुभम चौधरी।
0: कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा?
2: जी 35 वर्ष का गुरुदेव।
0: अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए।
2: जी शीला।
0: तीन बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी,
2: जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का।
0: बेटा फोन पर बने रहिएगा।

0: कर्जदारी हो रही है बेटा आपके ऊपर?
1: जी गुरुदेव।
0: पैसे का नुकसान काफी खा लिया है?
1: बहुत ज्यादा गुरुदेव, बहुत ज्यादा।
0: ऐसा लगता है बेटा किसी के लिए अच्छा करते हो तो बुराई मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे।
0: पीछे कोई बेटा कपड़े का काम भी किया था?
1: जी गुरुदेव, शोरूम था गुरुदेव बड़ा सा मेरा कपड़े का।
0: तो उसमें क्या नुकसान खाया है बेटा आपने काफी?
1: बहुत ज्यादा गुरुदेव, पहले तो बहुत बढ़िया चल रहा था लेकिन बाद में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया, कर्जा वर्जा हो गया बहुत ज्यादा ही।
0: शादी अपनी मर्जी से की है बेटा आपने?
1: जी गुरुदेव।
0: है बेटा?
1: जी गुरुजी।
0: लव मैरिज हुई है?
1: जी गुरुदेव, लव मैरिज हुई है।
0: पत्नी माँ बाप की अकेली है?
1: जी गुरुदेव।
0: तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा बने रहिएगा।

0: जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप?
1: जी गुरु जी।
0: ये बताओ बेटा, जो आपने पहले अपना व्यापार किया था,
1: जी
0: क्या वो व्यापार जो है जहां आपने करते थे आप बेटा,
1: जी
0: उस दुकान या शोरूम के आगे कोई बेटा बिजली का ट्रांसफार्मर या खंभा भी था बेटा?
1: जी जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल 10 मीटर की दूरी पे ही है गुरुदेव, सामने।
0: आप भी बेटा राहु के प्रभाव से पीड़ित हो बेटा।
1: जी।
0: जहाँ पर आपने बेटा काम किया था बेटा, आपने बैठने की दिशा गलत चुनी।
1: जी।
0: कुछ उस जगह में ही दोष था बेटा, जिसके कारण आपको हानि हुई है। इससे पहले भी आपने कपड़े के काम में अच्छा पैसा कमाया होगा।
1: जी जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल सही बात।
0: लेकिन जब से आपने ये शोरूम खोला, आपने बड़ी दुकान बनाई, उसके बाद ही आपको नुकसान हुआ है।
1: जी जी बिल्कुल सही बात है गुरुदेव,
0: यही हुआ है बेटा ऐसा। राहु को ठीक करो बेटा। एक तो ऐसी जगह रहना नहीं, ऐसी जगह बिजनेस व्यापार नहीं करना जहां घर के आगे या दुकान के आगे कोई सीवर का मेन हॉल हो, बिजली का खंभा हो या कोई ट्रांसफार्मर हो।
1: जी।
0: यदि ऐसी जगह पे बेटा रहोगे या काम करोगे तो आपको नुकसान ही होना है, इस बात को बेटा आप नोट कर लीजिए।
1: जी गुरुदेव।
0: दूसरा बेटा, कभी जीवन में अपने पैसे से किसी को शराब नहीं पिलाना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: जीवन में कभी भूल कर भी बेटा किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करना।
1: जी गुरुदेव।
0: अब दोबारा फिर आपको यही काम करना है और इसी काम में सफलता मिलेगी। नॉर्थ फेस कोई मकान या दुकान ढूंढो, वहां पर रहो और वहीं पर नॉर्थ फेस दुकान खोलना बेटा, जिसका मुख नॉर्थ फेस हो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ऐसा कोई नंबर यूज मत करना दुकान या प्रॉपर्टी का जिसमें 4 या 8 का अंक आता हो।
1: जी गुरुदेव।
0: ये दोनों अंक बेटा आपके लिए अशुभ साबित होंगे।
1: जी जी।
0: इसके अलावा बेटा, बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना। पत्नी को बोलना कि 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्तों के लिए।
1: जी गुरुदेव।
0: आगे जो भी अब काम करना पत्नी के नाम से करना और एक पत्नी का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पासपोर्ट साइज का,
1: जी
0: उसको हमेशा अपने पास अपने पर्स में रखना है।
1: जी बिल्कुल।
0: और आपका पत्नी के साथ में ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, उसी को आपने बेटा सेविंग में यूज करना है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और कोई भी भविष्य में अब काम करो तो एक बार बेटा पत्नी का सलाह मशवरा ले लिया करो आप।
1: जी गुरुदेव।
0: यदि ये सब कर लोगे तो जाओ आशीर्वाद देता हूँ बेटा, आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का,
1: जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का।
0: तो प्रिय दर्शकों, समस्या कैसी भी गंभीर से गंभीर क्यों ना हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब किसी विशिष्ट गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए तो ये भी बड़े भाग्य से सौभाग्य से मिलता है। विश्वास और आस्था को बना के रखेंगे तो जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। आजकल के युग में राहु के साथ में केतु का भी बड़ा विशेष महत्व है। आपको अपने जीवन में यदि केतु को शुभ करना है, और ध्यान रखना जिस व्यक्ति का केतु बलि होता है वो भी संसार में सांसारिक और आध्यात्मिक राज करता है। केतु यदि प्रबल होगा तो कोई शत्रु, शत्रु की कोई भी गतिविधि, षड्यंत्र, कोई तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक का प्रभाव कभी आपके ऊपर चल ही नहीं पाएगा। कुत्ते की सेवा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप कुत्तों को खूब रोटी, बिजली, बिस्कुट, खाना रोज खिलाएं। मीठा बिस्कुट कुत्ते को कभी ना खिलाना, इससे मंगल खराब होता है। फीके बिस्कुट, पेडिग्री या दूध ब्रेड आप कुत्तों को नित्य खिलाएं। घर, जिस घर में रहते हो, जिस स्थान पर बिल्डिंग, फैक्ट्री, दुकान में काम करते हो, वहां पर अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने व्यापार या रहने के स्थल पर वायव्य कोण को चुन लें और वायव्य कोण में काले रंग का एक झंडा लगा लीजिए। जितना झंडा हवा में लहराएगा उतना आपका सिक्का चलेगा, उतना आपका भाग्य प्रबल होगा, उतना आपका राजयोग घटित होगा। प्रयोग बड़े नियम से करना, यह आपके जीवन को बदल देगा। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति का केतु प्रबल और बली हो उसके घर पर झंडे लहराते हैं और ऐसा व्यक्ति सरकारी सुख और राजयोग को प्राप्त कर लेता है। व्यापार में वृद्धि कैसे करें? शुक्रवार के दिन एक आलू बड़े साइज का ले लीजिए, उसके अंदर 11 लौंग गाड़ दीजिए। लाल कपड़े या सफेद चमकदार कपड़े में लपेट कर उसको अपने व्यापार के स्थान पर रखें। एक मंत्र बोल रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम श्रीम श्रीम 11 बार बोलिएगा और वो आलू किसी कपिला गाय को जाके खिला दीजिएगा। ये प्रयोग करिएगा, शुक्र जागृत होगा। शुक्र का सबसे अच्छा उपाय है, धन और व्यापार बढ़ेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
2: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।
0: स्वागत है आपका बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा?
2: गुरुजी लुधियाना से बोल रही हूँ।
0: मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए।
2: दलजीत कौर।
0: कितने वर्ष की हो गई हो आप बेटा?
2: 46।
0: अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ।
2: ज्योति कौर।
0: 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
2: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: फोन पर बेटा बने रहना
2: जी गुरुजी।

0: आपको बेटा?
1: जी गुरुजी आ रही है।
0: जिस घर में रहते हो बेटा, उस घर का ब्रह्म स्थान पीड़ित है, केतु पीड़ित है, संतान को लेकर आप परेशान हो बेटा।
1: जी गुरुजी बहुत
0: बेटा परेशान करता है आपको।
1: जी
0: किसी की भी सुनता मानता नहीं है।
1: जी गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही है।
0: क्या नाम है आपके बेटे का?
1: जसप्रीत सिंह नाम है।
0: बेटा एक ही है?
1: हाँ जी एकलौता बेटा है।
0: क्या इससे पहले दो बार गर्भपात भी हुआ था बेटा आपको?
1: जी गुरुजी हुआ था।
0: तीन बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी,
1: जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
0: फोन पर बेटा बने रहना।
1: जी गुरुजी।

0: संगत गलत है, गलत लोगों में, गलत दोस्तों में बैठता है और छुप के ये बच्चा शराब भी पीता है और कुछ बीड़ी सिगरेट का भी सेवन करता है।
1: जी गुरुजी करता है।
0: पता है आपको?
1: जी गुरुजी।
0: और बात करते हो, समझाते हो तो बहुत गुस्सा करता है, खाना खाना बंद कर देता होगा।
1: जी गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही करता है।
0: अपराजिता के फूल बेटा प्राप्त करो, अपने घर में कुछ गमलों में अपराजिता के पौधे लगाइए, उस पर बेटा फूल निकलते हैं।
1: जी गुरुजी।
0: जितने घर में अपराजिता के फूल लगाओगे आपके घर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे।
1: जी।
0: अपराजिता का एक पुष्प भी यदि रोज शिवलिंग पे चढ़ाओगे
1: जी।
0: और एक मंत्र बोलोगे ओम हुंग नमः
1: जी।
0: तो ये मान लेना बहुत ही विशेष कृपा आपके परिवार पर आ जाएगी।
1: ठीक है गुरुजी।
0: ये दोष आपके घर का समाप्त हो जाएगा
1: जी।
0: घर का जो मध्य स्थान है जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं
1: जी,
0: आपके परिवार के लोगों का पाचन भी ठीक नहीं होगा, पेट भी जल्दी खराब होता होगा आप लोगों का।
1: जी गुरुजी हो जाता है।
0: घर का जो मध्य स्थान है
1: जी,
0: यहाँ से केतु पीड़ित होता है
1: जी।
0: मध्य स्थान को बिल्कुल साफ रखा करो, वहां नमक वाले पानी का पोचा लगाया करो और थोड़ी अगर खाली जगह हो तो वहां पर एक छोटे से गमले में एक छोटा सा तुलसी का पौधा रख दीजिए।
1: ठीक है गुरुजी।
0: ये प्रयोग करना बेटा
1: जी।
0: आपका बच्चा बिल्कुल सद्बुद्धि को प्राप्त करेगा। आने वाले बुधवार को एक ग्रे रंग का कंबल, 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल किसी मांगने वाले भिक्षुक को दान कर देना, लेकिन देना किसी पुरुष को।
1: ठीक है गुरुजी।
0: थोड़ा सा दूध बेटा रात्रि काल में कुत्तों को नित्य पिला दिया करो।
1: जी गुरुजी।
0: उपाय बेटा नियम से करोगे तो जीवन अवश्य ही बदल जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: बड़े प्रेम से बेटा तीन बार बोल दीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: तो प्रिय दर्शकों, आप आज भी इस कार्यक्रम को अपने टीवी पर लाइव देख रहे हैं और लाइव में जुड़ने के लिए आप निश्चित रूप से आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं। आपको पता है कि जो छोटी इलायची होती है इसके बहुत कुछ शक्तिशाली टोटके और प्रयोग होते हैं। पहला, धन लाभ और समृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन 5 हरी इलायची ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, इलायची दिखने में हरी ताजी फ्रेश होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल मरी पिचकी सूखी इलायची मत लेना। इसको मंदिर में जाएं, 5 इलायची छोटी हाथ में रखें और एक मंत्र बोलिए। ये मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। 10 मिनट तक इस मंत्र का पाठ करके इसको मां के चरणों में रखकर आ जाइएगा। यदि आपको अपने व्यापार कार्य क्षेत्र में सफलता चाहिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं, 2 इलायची छोटी ले लीजिए, उसे परमात्मा को प्रणाम करते हुए और ये बोलना है कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसे बोलते वक्त अपने मुंह में रख के चबा लेना और पानी से निगल लेना। किसी का विवाह ना हो रहा हो तो 5 शुक्रवार 80 ग्राम छोटी इलायची सफेद रुमाल में रख के थोड़ा उस पर इत्र परफ्यूम लगाकर उसे मंदिर में दान करें। 7 सप्ताह लगातार कर दीजिए, आपके सामने ही अच्छे परिणाम आ जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।
2: जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।
0: आपका स्वागत है बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
2: गुरुजी बरेली यूपी से, गांव लाडपुर से बोल रहे हैं।
0: अपना बेटा नाम बताइए।
2: सुरेश शर्मा नाम है गुरुजी।
0: कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा?
2: 46 साल हो गए गुरु जी।
0: अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए।
2: शांति शर्मा।
0: तीन बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।
2: जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का।
0: बेटा फोन पर बने रहना।

0: जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आवाज आ रही है?
1: जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का आ रही है गुरु जी आवाज।
0: रोजगार व्यापार में बेटा परेशान और कुछ दुखी चल रहे हो, मेहनत बहुत करते हो उसका फल नहीं मिलता। कोई खेती बाड़ी या बागवानी करते हो बेटा?
1: गुरु जी बहुत समस्या है, मेरे 100 सवा 100 पेड़ आम के हैं गुरु जी, और जिस हिसाब से मेहनत की फसल आई खराब हो गई, बहुत परेशान है गुरु जी, क्या करें को समझ नहीं आ रहा है।
0: आम के बाग
1: फल सड़ जाते हैं, आम के पेड़ हैं गुरु जी 100 सवा 100, फसल अच्छी आई थी लेकिन खराब हो गई, सड़ गए बहुत एक फल।
0: बरसात आंधी में खराब हो गए होंगे आम?
1: बरसात आंधी में भी गुरु जी वैसे भी खराब हो गए बहुत से, नुकसान में आ गए बहुत ज्यादा।
0: छोटा बेटा परेशान करता है?
1: छोटा बेटा तो बहुत परेशान करता है गुरु जी, उसकी तो क्या कहें।
0: 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा बने रहना,

0: आपने तो बेटा जीवन में शुरू से ही ठोकरे खाई हैं, ना तो परिवार का सुख मिला, ना भाइयों का सुख मिला, ना संतान का सुख मिला। लोगों ने धोखा ही दिया होगा बेटा, कुछ संपत्ति भी लोग आपकी खा गए होंगे बेटा।
1: गुरु जी बहुत परेशान हैं, बस जो कुछ जैसे तैसे जीवन भर ठोकरें खाते हो गए, अभी भी ठोकरी खा रहे हैं।
0: कुछ भाई बंधुओं ने पैतृक संपत्ति भी हड़प ली आपकी?
1: जी गुरु जी।
0: पीछे कोई चोट भी लगी थी आपको, एक्सीडेंट चोट हुआ था कोई?
1: हाँ लगी थी गुरु जी, साइकिल से जा रहे थे, एक कार वाला पीछे से आ रहा था और एक मोटरसाइकिल वाला उस मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में उसने मेरे को मार दी बहुत जबरदस्ती गुरु जी, बच गए मरते मरते उसमें।
0: आज एक काम करना बेटा
1: जी,
0: एक बाजार से कहीं से बेटा गोबर का उपला घर ले जाइए
1: जी,
0: और आज रात को 11 बजे उस उपले के ऊपर बेटा थोड़े से उबले हुए मीठे चावल रखना।
1: मीठे चावल?
0: हाँ, 7 बताशे, 7 लौंग और 7 छोटी इलायची रखना।
1: हरी वाली इलायची गुरु जी?
0: जी, और 7 प्रकार के एक एक टुकड़ा मिठाई का भी रख देना।
1: जी गुरु जी।
0: उसके ऊपर बेटा बहुत सारा कपूर रखकर आपको कपूर को जलाना है, जिससे वो सभी चीजें जलेंगी
1: जी,
0: और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा
1: जी।
0: जब धुआं निकलना है तो बेटा उस जलते हुए उपले के ऊपर जो धुआं जल रहा होगा उसको उठाकर अपने पूरे घर में घुमा देना
1: जी,
0: और एक जगह बैठ जाना और उसकी धुनी लेनी है दोनों हाथों से, और ये बोलना है पेशी आए संकट कट जाए, पेशी आए संकट कट जाए, पेशी आए संकट कट जाए। उसके बाद उस उपले को उठाकर बेटा घर से बाहर किसी ऐसी जगह पर रखकर आना जहां अंधकार हो अंधेरा हो
1: जी।
0: ये एक प्रयोग कर लेना
1: जी।
0: और 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनानी है
1: जी।
0: नमक चीनी घी डाल के गाय कौवा और कुत्तों के लिए
1: जी।
0: और आने वाले बेटा शनिवार के दिन
1: जी
0: थोड़ा सा बेटा कच्चा कोयला ले लेना बेटा, 2-4 टुकड़े
1: जी।
0: जहां भी व्यापार करते हो, अपना खेती बाड़ी बागवानी करते हो, उसको बेटा उस खेत के मध्य में थोड़ा सा गड्ढा करके उसको दबा देना
1: जी।
0: ये प्रयोग करना बेटा, रात्रि काल में थोड़ा सा बेटा कुत्ते को दूध रोज पिलाया करो
1: जी।
0: जाओ बेटा, आज के बाद अब आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपका रोजगार व्यापार फलेगा फूलेगा, घर में बरकत आएगी और जीवन आपका सिद्ध हो जाएगा। कभी भी बेटा आपको अपने व्यापार में कभी हानि नहीं झेलनी पड़ेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दो बेटा, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी,
1: जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का।
0: तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी इस कार्यक्रम में अर्जी लगा सकते हैं। आपका यदि शुक्र नीच का है तो पंसारी की दुकान पर चले जाना, वहां से थोड़ी सी समुद्र झाग लेकर आना। गुरुवार के दिन समुद्र झाग लेकर आना और एक मिट्टी का छोटा लोटा लेकर आना, थोड़ी सी समुद्र झाग उसमें डाल देना और बाकी जो उसमें खाली जगह बचे उसको दूध से भर देना। जहां पर सोते हो उसको अपने तकिए के पास रखकर आपको सोना है, और अगले दिन आपने उसे उठाकर जाके कहीं नदी में जाके प्रवाह कर देना, और रोजाना अपने माथे पर दही का तिलक लगाना। ये ऐसा प्रयोग होगा आपके शुक्र को जागृत कर देगा। यदि आपका शुक्र कन्या राशि का है, नीच का है या 8वें घर में विराजमान है, तो शुक्रवार के शुक्रवार 2-4 सफेद फूल लेकर उसको गंदे पानी में डर्टी वाटर में डाल देना, उसको बहा देना। इससे आपको नीच के अशुभ फल शुक्र के फल से बचाव हो जाएगा और आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी,
2: जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
0: आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रही हो आप बेटा?
2: जी गुरुजी, पानीपत से।
0: मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं।
2: नेहा नाम है गुरुजी।
0: कितने वर्ष की हो गई हो बेटा आप?
2: जी 32 साल।
0: अपनी बेटा माताजी का नाम बोलिए।
2: सीता देवी।
0: तीन बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
2: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: बेटा फोन पर बने रहना।

0: जाएगी जी। सबसे पहले तो बेटा 5 शुक्रवार आपको एक नया
1: गुरुजी।
0: सफेद रुमाल लेना है।
1: ठीक है गुरुजी।
0: उस रुमाल के अंदर बेटा 5 जायफल, 5 मिश्री के बड़े टुकड़े, 5 छोटी इलायची, 1 इत्र की शीशी और कुछ दक्षिणा रखकर उसे मंदिर में जाके आपने बेटा दुर्गा जी के चरणों में रख करना है।
1: ठीक है गुरुजी।
0: और एक मंत्र दे रहा हूँ, उसको बेटा सुबह नहा धोकर नित्य किया करो बेटा आप। ये मंत्र है बेटा, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा
1: जी।
0: ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। ये सूर्योदय काल में आपको इस मंत्र का 10 मिनट पाठ करना है। 11 चावल के दाने, सफेद पुष्प और एक फल रखकर माँ देवी का ध्यान करते हुए।
1: ठीक है गुरुजी।
0: दूसरा बेटा, संध्या काल में एक जोड़ा लौंग का अपने हाथ में रखना और 11 बार एक मंत्र बोलना है, यौ यत्वन यौ यत्वन यौ यत्वन। उसके बाद उस लौंग को कपूर पर रखकर जलाना है।
1: ठीक है गुरुजी।
0: आने वाले शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको अपने माथे पर दही का तिलक लगाना है और छोटे गरीब बच्चों को दूध से बनी मिठाई पेड़ा अपने हाथ से बांटना है।
1: ठीक है गुरुजी।
0: ये प्रयोग करना बेटा, जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी, बरकत आ जाएगी, राजयोग घटित हो जाएगा।
1: ठीक है गुरुजी।
0: और कुछ ही दिनों में आपका विवाह कार्य सिद्ध होगा। और एक अंतिम उपाय और दे रहा हूँ, आने वाली पूर्णिमा के दिन श्रृंगार का सामान, गुलाबी चुन्नी, दूध से बना मिष्ठान और बढ़िया सा इत्र, कुछ फल
1: जी,
0: ये मंदिर में जाके माँ पार्वती माता को पूर्णिमा के दिन अर्पण कर देना।
1: ठीक है गुरुजी।
0: मात्र 41 दिन में ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा।
1: ठीक
0: बड़े
1: है
0: प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। आपका बेटा, आपका बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी बन गया है। ना माँ की, ना बाप की, ना बड़ों की, किसी की सुनता नहीं, मानता नहीं। और कई बार आपको समाज में, लोगों के बीच में, रिश्तेदारी में बच्चे के व्यवहार के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। तो एक छोटा सा उपाय ले लीजिए, आधा किलो गेहूं का आटा लीजिए और आधा किलो देसी खांड ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, उसको लाल कपड़े में उसकी पोटली बना लीजिए और मंगलवार के दिन बच्चे के पूरे शरीर से 7 बार उसको उल्टा वारना है। और जहां भी गूलर का पेड़ आपको दिखाई दे, कोई गूलर का पेड़ आपको ढूंढना है, वो पोटली आपको गूलर के पेड़ के नीचे रख कर आनी है। और यह प्रक्रिया 11 शुक्रवार आपको करनी है, या 11 मंगलवार भी कर सकते हो, दोनों में से आपकी इच्छा है, या मंगलवार करो या शुक्रवार करो। लेकिन जब मंगलवार शुरू करो तो मंगलवार ही करना, शुक्रवार शुरू करो तो शुक्रवार ही करना, दिन आगे पीछे नहीं करना। ये प्रयोग करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। और एक सफेद रंग की दूधिया कौड़ी ले ले लो, उस पर चांदी की कैप लगवाकर काले धागे में बच्चे को बुधवार को गले में धारण करवा देना। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
2: जय गुरुजी।

0: आपका बेटा स्वागत है। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा?
1: मैं गुरुजी हरिद्वार से बात कर रहा हूँ।
0: मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए।
1: मेरा नाम गुरुजी प्रभु पंडित।
0: कितने वर्ष के हो गए हो प्रभु बेटा?
1: मैं 51 वर्ष का हो गया हूँ गुरुजी।
0: अपनी माता जी का नाम बोलिए।
1: मेरी माँ का नाम गुरुजी चुन्नी देवी।
0: 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना।
0: बेटा फोन पर बने रहना।

0: जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आवाज आ रही है?
1: जय गुरु जी।
0: व्यापार में, रोजगार में बेटा हानि खा रहे हो, कोई बेटा दूध से संबंधित अपना व्यापार करते हो?
1: जी जी गुरु जी।
0: कुछ पशु भी पाल रखे हैं आपने?
1: हाँ जी गुरु जी, मेरे पास कुल 18 गाय थी गुरु जी, उनमें से 9 का निधन हो गया।
0: आपके घर में बेटा, आपके व्यापार स्थल में बहुत भारी तंत्र बाधा चल रही है बेटा।
1: अच्छा गुरु जी।
0: और कुछ पितरों के ऋण बेटा आपके कुल पर बाकी हैं बेटा, जब तक इन ऋणों से मुक्त नहीं होगे तब तक कार्य नहीं बन पाएगा।
1: जी गुरु जी।
0: और वैसे भी बेटा आपके घर में पैसे की बरकत ही नहीं है, आपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं नुकसान ही खाया बेटा, हमेशा कर्जदारी तो आपके ऊपर बनी रहती होगी।
1: जी गुरु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु जी।
0: घर से बीमारी निकलती नहीं होगी, बस खींचतान के बेटा आप अपने घर का खर्चा चला पाते हो, और कोई कार्य बेटा आपका सिद्ध नहीं होता है बेटा। कभी तो मन बुरी तरह से उचाट हो जाता है, कभी कभी तो आपका मन भी उचाट हो जाता है,
1: बहुत ज्यादा रहता है गुरु जी।
0: मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है बेटा आपका?
1: जी पिछले 3-4 दिनों से मन बेचैन ज्यादा है गुरु जी। बेटा
0: कोई बात नहीं बेटा, अब एक काम करिएगा, जिस डायरी में काम करते हो, जो भी आपने पशु बांध रखे हैं,
1: जी गुरु जी,
0: आने वाले शुक्रवार को उस डायरी के चारों कोनों में एक एक चकोर फिटकड़ी रख देना।
1: जी गुरु जी।
0: उस फिटकड़ी के ऊपर एक एक बेटा नींबू रख देना।
1: अच्छा,
0: लेकिन रखना चारों कोनों में, शुक्रवार की रात को रखना और शनिवार की रात तक उसको वहां रखे रहने देना। शनिवार की रात को 11 बजे वो सभी फिटकड़ी, वो सभी फिटकड़ी और नींबू किसी गोबर के उपले पे रख के बहुत सारा कपूर रखकर उसको जला देना।
1: जी गुरु जी।
0: ये प्रयोग करिएगा बेटा, इससे बड़ा अद्भुत लाभ मिलेगा। और जिस डायरी में काम करते हो उस डायरी के बेटा वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर कोण में आने वाले बुधवार को बेटा एक काले रंग का झंडा लगा देना।
1: जी गुरु जी।
0: ये प्रयोग करिएगा बेटा, रात को सोने से पहले एक जोड़ा लौंग का बेटा अपने सीधे हाथ में रखें, एक टुकड़ा गुड़ का अपने सीधे हाथ में रखें, और नेत्र बंद कर बड़े ध्यान से, एक मंत्र बोल रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय नमः, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय नमः। 10 मिनट के मंत्र के बाद 3 बार बोल देना, सर्व शत्रु नाशाय, सर्व शत्रु नाशाय, सर्व शत्रु नाशाय।
1: जी गुरु जी।
0: वो जो गुड़ होगा उसको संभाल के रखना, अगले दिन गाय को खिलाना है, और जो लौंग होंगे उसको कपूर पर रखकर जला देना। हर शनिवार के शनिवार बेटा भैरव मंदिर जाया करो, एक गुलाब के फूल की माला, जटा वाला पानी वाला नारियल, 8 काले गुलाब जामुन और एक मिट्टी का बड़ा सरसों के तेल का दीपक जलाकर वहां पर अर्पण करके आया करो।
1: जी गुरु जी।
0: और जितना कुत्तों को खाना दोगे उतना इस दुख दरिद्रता से,
1: आज ही से नियम बना लेता हूं।
0: हाँ, दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाओगे। चींटियों को गेहूं का दलिया डालना शुरू कर दीजिए।
1: जी गुरु जी।
0: अपने घर के आसपास देखिए, पार्कों में खाली स्थानों पर जहां भी चींटियां दिखाई दें उनको गेहूं का दलिया अपने हाथ से रोज डाला करो।
1: जी गुरु जी।
0: जाओ बेटा, आपका कल्याण होगा और आपके व्यापार में खूब बरकत आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
1: जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है तो व्हाट्सएप नंबर आप जो टीवी पर देख रहे हैं इसी पर आप अपना फोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपनी उम्र और 3 बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर तुरंत भेजिएगा। फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी अर्जी लगा सकते हैं। यदि आप कपिला गाय को एक टुकड़ा रोज गुड़ खिला दीजिए, इससे सभी दोष दूर हो जाते हैं, इससे सूर्य प्रबल हो जाता है। लाल कपिला गाय को एक टुकड़ा गुड़ का जो व्यक्ति रोज खिलाता है वो समस्त देवी देवताओं की कृपा का पात्र बन जाता है। उसके घर में कभी कोई कमी नहीं आती, उसके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आती, उसके घर में कभी दुख दर्द योग नहीं बनता, उस घर में सारे बड़े बूढ़े सब व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। और यदि आप अपने जीवन में एक बार वृक्ष का दान कर दें, तो इससे भी आपके जन्म जन्मांतर के पितर मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद आपको बैतरणी नदी का कष्ट भी नहीं झेलना पड़ेगा, जो यम के भयानक रूप वाले दूत आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। तो अपने जीवन में वृक्ष यानी छोटे बैल का दान करें। एक वर्ष का 6 महीने या 1 वर्ष का बैल हो, उसे खरीदें और उसे किसी जंगल में, खुले खेत में, कहीं भी जाके छोड़ दें। ये सबसे बड़ा वृषभ का दान शास्त्रों में कहा गया है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: आपका बेटा स्वागत है, कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा?
1: जी गुरुजी, मैं दिल्ली रोहिणी से बात कर रहा हूँ।
0: अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ।
1: नरेश कुमार।
0: कितने वर्ष के हो गए हो आप?
1: जी गुरुजी 38 वर्ष का।
0: अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं।
1: प्रभा देवी।
0: 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना।
0: फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना।

0: में काफी तनाव अशांति चल रही है बेटा।
1: जी गुरुजी।
0: बहुत स्थितियां अच्छी नहीं चल रही है, कुछ पति पत्नी में विवाद चल रहा है बेटा।
1: जी गुरुजी, विवाद चल रहा है, तलाक का केस भी करा हुआ है पत्नी ने।
0: बच्चे दो हैं बेटा।
1: जी गुरुजी, दो हैं बच्चे, एक लड़का है एक लड़की है।
0: पत्नी क्या कहती है?
1: गुरुजी वो कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा करती है, उनके अवैध संबंध है दूसरों।
0: आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो बेटा? आप क्या चाहते हो ये बताओ।
1: जी गुरुजी, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता उनको।
0: डिवोर्स नहीं देना चाहते
1: गुरुजी, बच्चों की वजह से।
0: पत्नी का पूरा नाम बोलिए।
1: जी गुरुजी, पत्नी का नाम है रूपा।
0: पत्नी की माँ का नाम बताएं।
1: जी उनका ममता देवी।
0: तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बेटा बने रहना।

0: आवाज आ रही है आपको बेटा?
1: जी गुरुजी, आ रही है आपकी आवाज।
0: पत्नी की जो माँ है ना बेटा, यही इसको मिसगाइड कर रही है, इसी की तरफ से इसको खुली छूट मिली हुई है।
1: अच्छा गुरुजी।
0: सारा जो आपकी समस्या की जड़ है वो आपकी सास है।
1: ठीक है गुरुजी।
0: अब आपको बेटा आज का एक प्रयोग दे रहा हूँ और लगातार करते रहना, ये ऐसा प्रयोग होगा पत्नी कान पकड़ के वापस आएगी, माफी भी मांगेगी।
1: ठीक है गुरुजी।
0: रात को सोने से पहले एकांत में बेटा
1: जी,
0: थोड़ा सा घर में एकांत में जहाँ थोड़ा अंधेरा हो, अंधेरे में बैठना, एक सरसों के तेल का छोटा सा दीपक जलाना और काले आसन पर बैठना बेटा।
1: ठीक है गुरुजी।
0: और नेत्र बंद कर सीधे हाथ पर एक जोड़ा लौंग का रख कर आपको 10 मिनट तक एक मंत्र बोलना है
1: जी।
0: कोनापदन, कोनापदन, कोनापदन।
1: ठीक है गुरुजी।
0: उसके बाद उस लौंग को उसी दिए में रखकर जला दो।
1: ठीक है।
0: और अगले दिन उस लौंग को जाके किसी मिट्टी में जाके बाहर दबा देना। ये प्रयोग लगातार करते रहना बेटा, बंद नहीं करना।
1: ठीक है, रेगुलर करना ना प्रतिदिन।
0: रेगुलर। और हर शुक्रवार को 400 ग्राम दूध और 400 ग्राम जौ ये बहते पानी में प्रवाह करो।
1: ठीक है गुरुजी।
0: गौशाला कभी गए हो बेटा?
1: जी नहीं, अभी तक तो नहीं गया गुरुजी मैं।
0: गौशाला जाना और हर गौशाला में एक दो अंधी गाय मिल जाती है।
1: अच्छा।
0: शुक्रवार के शुक्रवार बेटा गौशाला को जाके हरी पालक अपने हाथ से खिला के आना।
1: ठीक है गुरुजी।
0: आपके जीवन में भी शुक्र का दोष है बेटा, जिसके कारण आपकी गृहस्थी पर गाज गिरी हुई है।
1: अच्छा गुरुजी।
0: और बड़ी अशांति चल रही है।
1: जी जी।
0: शुक्रवार के शुक्रवार या तो किसी काली गाय को हरा चारा
1: जी,
0: या किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को
1: जी,
0: नेत्रहीन ब्राह्मण को आप भोजन दान करें।
1: ठीक है।
0: काली गाय ना मिले तो अंधी गाय मिल जाए, अंधी गाय को भी आप पालक खिला सकते हैं, हर शुक्रवार को हरा चारा खिला सकते हैं।
1: ठीक है गुरुजी।
0: ये प्रयोग करके देखिए, जाओ बेटा आशीर्वाद दे रहा हूँ
1: जी।
0: इतने से छोटे से प्रयोग से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपको शुक्र को प्रबल करने के लिए दो तीन छोटे छोटे उपाय दे रहा हूँ।
1: ठीक है।
0: सुबह जब नहाते हो तो एक चम्मच दही हाथ में रखकर दोनों हाथों को दही से धोना है।
1: ठीक है गुरुजी।
0: दो चम्मच दूध जल में डालकर उस जल से स्नान करना है।
1: ठीक है।
0: और रोजाना अपने माथे पर आपको दही का तिलक लगाना।
1: जी गुरुजी।
0: ये प्रयोग करिएगा बेटा
1: जी,
0: आपकी पत्नी आपके पास आ जाएगी और किसी भी गलत प्रकार के संबंधों में नहीं जाएगी।
1: ठीक है गुरुजी।
0: समझ गए बेटा मेरी बात को?
1: जी बिल्कुल समझ गया।
0: और किसी सुनार की दुकान पे चले जाना
1: जी,
0: 2.5 सेंटीमीटर का एक चकोर टुकड़ा बनवाना है आपको चांदी का।
1: ठीक है।
0: लेकिन ये चांदी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए।
1: ठीक है गुरुजी।
0: चांदी के चकोर टुकड़े को हमेशा आपको अपने पर्स में रखना है।
1: ठीक है।
0: और आने वाले शुक्रवार से गंगा जल कच्चे दूध से धोकर ही उसको रखना।
1: ठीक है गुरुजी।
0: उसको परमानेंट अपनी जेब में रखना है।
1: ठीक है।
0: अगले कुछ ही दिनों में पत्नी की माँ या पत्नी आपसे फोन करके संपर्क अवश्य करेगी।
1: ठीक है।
0: आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पोलाइटली लेना है, आपको नरमी दिखानी है, आपको गुस्सा क्रोध नहीं दिखाना।
1: ठीक है गुरुजी।
0: बच्चे भी साथ ले गई है बेटा?
1: जी बच्चे भी ले गई हैं गुरुजी।
0: बच्चों का नाम बताओ।
1: जी एक का नाम है जी गुरुजी हर्ष, एक का नाम है गुरुजी रूप।
0: तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए।
1: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: फोन पर बने रहना।

0: बेटी का स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा?
1: जी गुरु जी, इसको पेट संबंधी दिक्कत रहती है ज्यादातर।
0: दोनों बच्चे बेटा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ध्यान रखना अपने बच्चों के लिए, आपको घर बसाना ही बसाना पड़ेगा, नहीं तो बेटा इससे इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा।
1: जी,
0: और एक और उपाय दे रहा हूँ बेटा, सिर्फ बच्चों के लिए। आने वाले बुधवार के दिन एक ग्रे रंग का कंबल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफेद तिल, ये मंदिर में जाके बेटा किसी ब्राह्मण को दान करके आना। उस ब्राह्मण को देके आना जिसकी पत्नी भी हो, उसके बच्चे भी हो। आवाज आ रही है आपको बेटा?
1: बिल्कुल आ रही है गुरुजी।
0: यानी ऐसे ब्राह्मण को देके आना जिसकी पत्नी भी हो और उसके अच्छा। बच्चे भी हो, यानी पूरा परिवार होना चाहिए, उसको देके आना बेटा।
1: ठीक है,
0: तो जाओ बेटा, केतु को प्रबल करो, आपका घर बस जाएगा, आपको बच्चों का सुख मिल जाएगा। और जिस घर में रहते हो ना बेटा, जिस घर में रहते हो उस घर के ब्रह्म स्थान यानी मध्य स्थान में सफाई रखा करो, वहाँ जूता चप्पल गंदगी नहीं रखनी, वहाँ पर गमले में छोटा सा तुलसी का पौधा हमेशा लगा के रखना, ये प्रयोग करिएगा तो जाओ बेटा आपका घर अवश्य बसेगा। और कुछ ही दिनों में पत्नी आपसे संपर्क करेगी और आप उसको घर पे बुला लीजिएगा। अब बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का,
1: जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
0: प्रिय दर्शकों, केतु को शुभ रखोगे तो संतान का सुख तो अवश्य अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए अपने घर में केतु को शुभ रखो, घर के नौकरों को खुश रखो, घर में कुत्ता घर बाहर दिखाई दे उसको खाना खिलाओ, इससे केतु सदैव शुभ रहेगा। और अपने भांजे से अच्छे संबंध रखो। आइए दर्शकों, यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप समय आगे बढ़ने का नहीं है, चलते चलते गुरु जी को धन्यवाद और प्रणाम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
3: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज। इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक। 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मंदिर की करेंगे जो भारत की धरती पर नहीं, लेकिन जहां पहुंचकर हर और भारत ही नजर आता है। एक ऐसा हिंदू मंदिर जो उस देश में है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है। एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन अपने वजूद में आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। भारत के दिल में जो रामायण और राम कहानी सदियों से बसी है, वो भारत की सीमाओं और महासागर के पार मौजूद इस मंदिर में आज भी पूरी आस्था के साथ कही और सुनी जाती है।
1: से हजारों किलोमीटर दूर जहां धड़कता है भारत, वो मुस्लिम देश जहां कभी पूजे जाते थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंडोनेशिया का वो धाम जहां आज भी बसती हैं सीता, जहां मिलते हैं राम, जहां का धर्म इस्लाम है लेकिन संस्कृति में राम है। वो भूमि जिसका उल्लेख मिलता है रामायण में, वो द्वीप जहां साल भर गाई और सुनाई जाती है रामलीला, महादेव का वो मंदिर जिसने एक सहस्राब्दी में झेले प्रकृति के जाने कितने वार, कितने प्रहार, मगर आज भी खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है। आज सुनाएंगे कहानी इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: इंडोनेशिया के इसी प्रम्बानन मंदिर में आज भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इस 1000 साल पुराने मंदिर में दर्शन किए। ये मौका बेहद खास रहा। इस अनुपम और अनमोल विरासत को सदियों से सहेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। और अब भारत इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मौजूद इस यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा था वो दृश्य जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे।
2: जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: मध्य जावा की धरती, आसमान को छूते शिखर और पत्थरों में दर्ज 1000 साल पुराना इतिहास, यही है प्रम्बानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता की भव्य पहचान। तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी न जाने कितनी आपदाएं झेलने के बाद भी ये मंदिर अपनी जगह सदियों की कहानियां समेटे खड़ा है। बीते कई सालों से इस मंदिर में पूजा तो नहीं होती, लेकिन पवित्रता और महत्व उतना ही है जितना भारत में किसी मंदिर का होता है। इंडोनेशिया दौरे के तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक परिसर में पहुंचे। एक बार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर दो देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का सेतु बन गया, मानो हजारों साल का इतिहास सामने आ गया।
2: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं, युवराज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था, ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री ने पहले आसमान से इस अद्भुत मंदिर के दर्शन किए, उन्होंने हेलीकॉप्टर की खिड़की से मंदिर का दीदार करवाया, फिर प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे।
2: इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के काम में एनास्टाइलोसिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा। एनास्टाइलोसिस एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प तकनीक है जिसका उपयोग नष्ट हो चुके प्राचीन स्मारकों या खंडहरों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के तहत स्मारकों के गिरे हुए मूल टुकड़ों जैसे पत्थरों और खम्भों आदि को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़कर इमारत का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी एनास्टाइलोसिस तकनीक के माध्यम से प्रम्बानन मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाएगा। वैसे ये परियोजना सिर्फ पत्थरों को जोड़ने की नहीं बल्कि इतिहास को भविष्य से जोड़ने की भी है। भारत न केवल इस साझा सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार में भूमिका निभाएगा बल्कि इसके पूरा होने पर इंडोनेशिया में 7 उत्सव मनाने का वादा भी PM मोदी इंडोनेशिया के लोगों से करते आए हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: 1927 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जावा और प्रम्बानन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गुरुदेव टैगोर वहाँ की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रभाव और स्थानीय लोगों की कला से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस यात्रा के संस्मरणों और अनुभवों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया था जिन्हें बाद में टू जावा फ्रॉम द पिलग्रिम इन इंडिया नाम की एक किताब के रूप में संकलित किया गया था। अब लगभग एक सदी बाद भारत उसी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन का भी अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश और वहाँ हिंदू धरोहर के संरक्षण में भारत की भूमिका ये बताती है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ व्यापार या रणनीति तक सीमित नहीं बल्कि साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विरासत पर भी आधारित है। पीएम मोदी ने इस विरासत को इतने साल सहेजने के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया और ये भरोसा भी जताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग इसे देखने पहुंचेंगे।
2: 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है।
1: विदेशी धरती पर 1000 साल पुराने मंदिर की ये यात्रा वास्तव में एक संदेश है, संदेश कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं मानता बल्कि दुनिया भर में फैली भारतीय सभ्यता की धरोहरों के संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: द्वीपों के देश इंडोनेशिया में आखिर कैसे अस्तित्व में आया ये हिंदू मंदिर, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर जाया करते थे। इन्हीं में से कई व्यापारियों ने इसी द्वीप को अपना घर बना लिया और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इसी के साथ शुरुआत हुई एक संस्कृति और संस्कारों के एक मिले जुले और साझा स्वरूप की। भारत के गए इन लोगों ने धीरे धीरे धरती के इस कोने पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीज बोए और कालांतर में उन्हीं बीजों से पनपा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी प्रम्बानंद मंदिर के निर्माण की, पुनर्निर्माण और विस्तार की।
1: इंडोनेशिया की धरती पर ये वो मंदिर है जहाँ सृष्टि के निर्माता भी हैं, पालनकर्ता भी और देवों के देव भोले शंकर भी मौजूद हैं। ये त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
3: What is the history of
4: the history of the Prambanan temple? Is the biggest complex of Hindu temple in Indonesia.
3: It was built.
4: The was built in 9th century, but there are about 856 after Christ.
1: हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर आया करते थे और इसकी सुंदरता की वजह से यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे ऋषि परंपरा इस द्वीप की पहचान बन गई। माना जाता है कि जब इंडोनेशिया में हिंदू राजवंशों का शासन हुआ करता था तब संजय वंश के राजाओं ने 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर संजय वंश के राजा राकाई पिकातन की देन माना जाता है। कभी यहाँ करीब 240 मंदिर थे और पूरे प्रम्बानन क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिरों का विशाल समूह मौजूद था। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के आकार में करवाया गया था। इसके बीच में भगवान शिव का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है, आसपास विष्णु और ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिमूर्ति मंदिर कहा जाता है। मंदिर परिसर में 250 छोटे बड़े मंदिर और हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना गया है
5: क्योंकि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये प्रम्बानन मंदिर है जो की 9वीं सदी में निर्मित इंडोनेशिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जब 4th सदी थी उस समय की बात है जब हिंदुत्व का यहाँ पर बहुत आधिपत्य था और सब यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे. अब 2% से कम लोग बच गए हैं जो हिंदू हैं, लेकिन प्रम्बनन मंदिर जो है यहाँ पर, पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती है. ये सुनसान है बिल्कुल, एक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं. अगर आप तीनों मंदिरों को देखें, और तीनों मंदिरों के यानी सामने विष्णु मंदिर आप देख रहे हैं, शिव मंदिर देख रहे हैं और ब्रह्मा मंदिर देख रहे हैं, और सबके ठीक सामने का जो हिस्सा है वो है उनके वाहनों का मंदिर है, यानी नंदी मंदिर, हंस मंदिर और वरुण मंदिर. तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गरुड़ का महत्व होता है. गरुड़ यानी कि विष्णु जी की सवारी, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह भी होता है ना, वो भी गरुड़ ही है. मैं आपको यहाँ के नोट पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गरुड़ का जो चिन्ह है ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है.
1: बताया जाता है कि 11वीं सदी में भूकंप और ज्वालामुखी की चपेट में आने की वजह से ये मंदिर परिसर मलबे में दब गया था. 17वीं सदी के शासकों ने मंदिर की फिर से खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया. 1918 तक मंदिर का वास्तविक स्वरूप तैयार हो सका. 2006 में फिर भयंकर भूकंप इस क्षेत्र में आया. परिसर में बाकी मंदिर लगभग ध्वस्त हो गए, लेकिन जहां परिसर के बाकी मंदिर खंडित होते रहे, मुख्य त्रिमूर्ति मंदिर को हर बार नाम मात्र ही नुकसान पहुंचा. कीर्ति नगारा और त्रिभुवना जैसे हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया में कई बरस शासन किया. श्री विजया और गजामधा जैसे साम्राज्य इंडोनेशिया के सबसे सशक्त साम्राज्य थे. बौद्ध धर्म भी तब सह अस्तित्व के साथ इस द्वीप पर पनपने लगा था. बाद में संजय वंश के राजाओं ने वर्तमान इंडोनेशिया की आधारशिला रखी, मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया. प्रम्बानन मंदिर का जीर्णोद्धार भी इसी दौर में हुआ. 14वीं सदी में व्यापार के लिहाज से इस्लाम ने इंडोनेशिया में कदम रखा और धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति इस्लामिक हो गई. लेकिन इंडोनेशिया के लोगों ने अपनी पारंपरिक हिंदू और बौद्ध विरासतों को न सिर्फ सही, ब्रह्मा विष्णु और महेश के ही हैं, लेकिन इस मंदिर में बहती आस्था की एक धारा रामायण और राम कहानी से भी जुड़ती है. प्रम्बानन मंदिर परिसर में सेंद्रा तारी रामायण का मंचन लगभग पूरे साल नियमित रूप से किया जाता है. इसे यहाँ रामायण बैले कहा जाता है. इस मनमोहक शो में स्थानीय संस्कृति और जावनीज संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है.
5: इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में 9वीं सदी का निर्मित ये प्रम्बानन मंदिर बताता है कि दोनों देशों की ऐतिहासिक साझेदारी, पारंपरिक साझेदारी कैसी है. और उसी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता ये रामायण बैले बताता है कि आज दोनों देशों के रिश्तों को किस तरीके से यहाँ के लोग सहेज कर रखते हैं, परंपराओं को किस तरीके से सहेज कर रखते हैं.
1: हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर इस धरती का परिचय हिंदुस्तान के इतिहास से नहीं है, पर सदियों पहले यहाँ अयोध्या नगरी स्थापित कर दी गई थी.
3: Is it true that the meaning, one meaning of Yogyakarta, the place, is also related somehow to Ayodhya?
6: Well, the city of Yogyakarta actually derived from the words Ayodhya. Yes, the palace of Prince Rama.
1: रामलीला की ये तस्वीर भारत में रामनवमी या दशहरे की नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया की है. इंडोनेशिया की परंपरा, जहाँ के जर्रे जर्रे में इस्लाम है, लेकिन हर रहवासी के रोम रोम में राम बसते हैं. मान्यता है कि रामायण काल में वानर राज सुग्रीव ने अपने दूतों को सीता को ढूंढने के लिए जावा द्वीप भेजा था, जो वर्तमान का जावा है.
5: बहुत हम महत्व
7: दें. डेफिनेटली हमारे पिछले जो 600 साल पहले लोग आए थे, जो श्री विजय राजा, उन्होंने यहाँ पे छाप छोड़ी है. और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी था पहले 100 साल पहले, तो इसके कारण क्या, बुद्धिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तो उसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हिंदुइज्म तो एग्जिस्टेंस है ही. और ऐसे कहा जाता है कि रामायण के युग के ज़माने से यहाँ पे वाली इनके मुख देखे तो जो उनकी सेना थी वो इनके जैसे लगती है. तो कहीं ना कहीं हमारा सिमिलरिटी तो है.
1: इंडोनेशिया और इंडिया की समानता की कहानियाँ पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी, पर जिस तरह वर्तमान के इंडोनेशिया ने उस संस्कृति को सहेजा है वो अनोखा है. प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर में मौजूद है, और इस शहर में हर ओर आज भी राम और रामायण के निशान देखने को मिलते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि जकार्ता का मतलब स्थानीय भाषा में अयोध्या होता है।
8: ये जो शिल्पकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसमें वानर सेना को प्रतीकात्मक तौर पर देख सकते हैं और वो राम सेतु बनाने के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर राम जी का महत्व बहुत ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर विष्णु को पूजनीय माना गया है। योग्यकर्ता, जिसे स्थानीय उच्चारण के साथ जोग जकार्ता कहा जाता है, ये अयोध्या का दूसरा नाम है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प।
1: जावा द्वीप पर बसे योग्यकर्ता को लेकर ये मान्यता है कि इस शहर का नाम श्री राम की अयोध्या के नाम से लिया गया, जो जकार्ता का शाब्दिक अर्थ इंडोनेशिया में माना जाता है वो है एक ऐसा शहर जो समृद्ध और फलने फूलने के लिए है। अयोध्या में जब श्री राम का राज्य था, उन दिनों की कल्पना भारत के सबसे स्वर्णिम काल के तौर पर की जाती है। तब समृद्धि और वैभव चरम पर था। इसी समृद्धि को आधार बनाकर अयोध्या से जोग जकार्ता का नाम पड़ा। यहाँ रहने वाले लोग इस शहर का सम्मान अयोध्या के बराबर ही करते हैं। अद्भुत है अयोध्या से लगभग 8000 किलोमीटर दूर, और अद्भुत है यहाँ की कहानी। कहानी एक देश से अधिक उन करोड़ों लोगों की, उस संस्कृति की, जिसने हजारों साल के इतिहास में अपनी पूजा पद्धति बदली, अपना मजहब बदला, लेकिन अपनी तहजीब को कभी नहीं बदला। जब यहाँ हिंदू अधिक थे तब राम उनके पूर्वज थे, अब जब दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान यहाँ बसते हैं, राम तब भी इनके पूर्वज हैं। ये थी कहानी प्रम्बानन मंदिर, योग्यकर्ता और भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में धड़कते भारत की। इंडोनेशिया के योग्यकर्ता से श्वेता सिंह, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: मानसून के बादल देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुके हैं। इन बादलों ने जहां पर लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं पर कुछ इलाकों में बादलों से मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। हाल ये हो चुका है कि महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम शहरों में इतना पानी बरस चुका है कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये बारिश ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही है। इसके लिए एनडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कमर कस ली है।

0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। मॉनसून कई इलाकों में जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद तो बाढ़ और बारिश में लोगों के लिए जिंदगी बचाना चुनौती बन गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। यहाँ हाईवे पर बहते तेज बहाव में घंटों तक लोगों की जान अटकी रही। अंडरपास के एक तरफ एक कार पानी में फंस गई, तो दूसरी ओर पर्यटकों की बस भी दरिया बनी सड़क पर अटक गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है और यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर है उसको बाहर निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है।
0: नवसारी के अंडर पास के पास घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फिर एक एक करके बस से भी करीब 50 पैसेंजर को इसी तरह रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा तेज बारिश के बाद सूरत की शक्ल भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में यहां 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सबसे बुरा हाल यहां के आजाद नगर का नजर आया। यहां बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुंचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
2: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
3: रात में से ही बारिश होने लगा तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
4: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मॉनसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगु की है, जहां कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की दिख रही अपार आस्था की भी।
8: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्तिमय उल्लास के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ते दिखते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का काफिला अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता नजर आता है। जगह जगह शिविर में श्रद्धालु पूजा अर्चना, आरती और भजन के साथ अपना समय बहुत ही बढ़िया तरीके से बिताते दिखते हैं। इन शिविरों में उनकी सुविधा की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि पहली बार श्रद्धालुओं के बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पवित्र गुफा में जाने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने तक 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बालटाल और ननवान बेस कैंप में बने चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख सकते हैं। बारिश के बीच भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है, हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन भक्त धाम में पहुंचकर पूरे भक्त भाव में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के बीच छाता और बरसाती से खुद को बचाते हुए भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से पवित्र धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस है, साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल रास्ते अभी ठीक हैं, भक्तों की संख्या भले ही कम हुई है, लेकिन भक्त जितने भी हैं बाबा केदार के दरबार तक जरूर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अब कम नजर आ रही है, लेकिन भीड़ कम होने का फायदा उन श्रद्धालुओं को मिल पा रहा है जो बद्री विशाल के दरबार तक पहुंच रहे हैं। उन्हें दर्शन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा भी करनी नहीं पड़ रही और सुगम तौर पर बद्री विशाल के दर्शन का अवसर मिल रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पुरी में 16 जुलाई को शुरू होने वाली रथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक से लेकर मॉक ड्रिल तक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं, ताकि विभागों के बीच आपसी तालमेल से रथ यात्रा सुचारू और सुरक्षित आयोजन रूप से हो सके। वहीं ओडिशा के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बारिश के बावजूद कारीगर और कलाकार

अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार 16 तारीख तक काम पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रथ और उसके पहियों की पेंटिंग की जा रही है। उधर झारखंड के रांची में जगन्नाथपुर मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम

0: तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार 16 तारीख तक काम पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रथ और उसके पहियों की पेंटिंग की जा रही है। उधर झारखंड के रांची में जगन्नाथपुर मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ देवी देवता मौसी बाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे, उसे अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। पुरी से आए कलाकार रथ पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये बिहार की बोधगया का वो मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध अलग अलग मुद्रा में दिखते हैं। इस बौद्ध मंदिर में 1002 भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियों के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह में चारों तरफ की दीवारों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। इस मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था। इस मंदिर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के साथ साथ विदेश से भी लोग आते रहते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बीच वसई के वसंत नगरी सिग्नल इलाके से राहत की एक तस्वीर सामने आई। यहां फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी की वजह से पानी के बीच दो कार में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यहां पानी के तेज बहाव में दोनों कार बहने लगी थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक कार के ड्राइवर और दूसरी कार से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों कार को भी पानी से बाहर निकालकर सड़क तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
1: और अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की। अपने इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। इसके तहत भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। दोनों देशों का मानना है कि इससे भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते और मजबूत होंगे।

माथे पर त्रिपुंड, भगवा कुर्ता और दिल में भक्ति की भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के अंतिम दिन योग्यकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। कंधे पर अलग तरह का स्टॉल लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मंदिर में पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ की सनातन शिल्पकला, आध्यात्मिक आबोहवा देखकर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। दिल्ली से 7763 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर की पावन ध्वनि की अनुगूंज हुई तो उन्हें भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का स्मरण हो आया।

0: अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था, यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर का वीडियो साझा करते हुए इसे मैजेस्टिक ब्रह्मानंद टेंपल बताया। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सनातन के भव्य दिव्य भक्ति भाव से सराबोर मंदिर में पहुंचकर आरती करने स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हृदय भक्ति से भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने साल 1991

0: 1992 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये मंदिर मध्य जावा में जोग जकार्ता के पास शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इनमें सबसे प्रमुख 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है, जिसके उत्तर में ब्रह्मा और दक्षिण में विष्णु मंदिर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नकाशी में रामायण की इंडोनेशियाई शैली को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है, जब जावा द्वीप पर हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव था। इन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली से प्रेरित है, जिसमें ऊंचे विमान, बड़े प्रांगण, वास्तुशास्त्र की मंडल अवधारणा नजर आती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक पूरी रामायण कथा पत्थर पर उकेरी गई है। एक समय में इस परिसर में लगभग 240 मंदिर थे, वहीं पूरे क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिर हैं। माना जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई तिकातन ने शुरू किया था। यहाँ हर साल मई से अक्टूबर के बीच पूर्णिमा की रातों में खुले मंच पर रामायण बैले का भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इंडोनेशिया का ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म का प्रभाव कितना व्यापक था। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं इस बात की गवाह हैं कि भगवान राम और कृष्ण ने अवतार बेशक भारतवर्ष में लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सार्वभौमिक और कालातीत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सौभाग्य की बात है कि इंडोनेशिया में यहाँ पहुंचकर उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मंदिर परिसर के कई छोटे मंदिरों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग देगा। इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा।
1: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि बार बार भगवान शिव की सेवा का अवसर मिलना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है।
1: चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: सदियों पुराने इस मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में राजनीतिक बदलावों के कारण ये मंदिर उपेक्षित हो गया था। बाद में आए भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से साल 2006 के जावा भूकंप के बाद मंदिर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर की फिर से खोज हुई, उसके बाद संरक्षण का काम शुरू किया गया। अब खास बात यह है कि मंदिर के जीर्णोद्वार परियोजना की शुरुआत 2026-27 में हो रही है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1927 में जावा और परमानंद आने का शताब्दी वर्ष भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज दिल्ली की हवा 2026 की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज हुई, तो वहीं बनारस वालों को मिलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में अलग द्वार से दर्शन करने की सुविधा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश से दोहरी राहत मिली। एक तरफ दिल्ली वालों को ठंडी साफ हवा मिली और साफ आसमान भी देखने को मिला, आज राजधानी में साल 2026 की सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। यहाँ शाम 4 बजे AQI 59 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। 12 जून को दर्ज किए गए पिछले सबसे अच्छे AQI से थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आई है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। IMD ने कल भी राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारसी लोग अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे। CM योगी ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से प्रवेश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसके तहत गेट पर लोकल ID दिखाकर वो दर्शन के लिए जा सकेंगे। दरअसल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन उपलब्ध करवाने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए भारतीय रेलवे सौगात लेकर आया है। गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च किया गया है। जुलाई और अगस्त के महीने में गोरखपुर से 2 विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही हैं। ये ट्रेनें श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ साथ देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कराएंगी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार हो गया है, जिसमें पर्यटकों, खासतौर पर बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी यहां शुरू की गई है। इसके जरिए यहां पर्यटकों को रोमांच का तड़का तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया उन्हें मनोरंजन के साथ एजुकेट भी करेंगी।
2: और अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की। राम मंदिर में दान को लेकर हाल के दिनों में सामने आए कथित गड़बड़ी के मामले ने भले ही चर्चा तेज कर दी है, लेकिन राम भक्तों की आस्था आज भी अटूट बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर रहे हैं। हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

0: आपदां परहर्ता राम दाताराम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामलला की नगरी अयोध्या में चंदा चोरी की घटना के बाद क्या सब बदल गया है?
1: एकदम गंदी धूप है, आप लोग अयोध्या प्रॉपर घूम
2: रहा दोपहर है, हमको तो लग ही नहीं रहा है। हाँ, हमको तो लग रहा है शाम है।
1: चंदा चोरी की बात करो, जो चर्चा आजकल चल रही है ना मंदिर में, जो डोनेशन का हुआ है स्कैम,
2: वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो मैं नहीं जानती ना।
1: लेकिन आप जितना घूमी है सब नॉर्मल लग रहा है?
2: हाँ, वो सब नॉर्मल लग रहा है।
1: चंदा चोरी की जो घटना हुई उसका कोई असर दिख रहा है आपको या फिर नॉर्मल है सब कुछ, कोई चर्चा नहीं?
3: अभी तो चर्चा नहीं सुना। अच्छा,
1: इन पर सब नॉर्मल है जहाँ जहाँ घूम?
0: क्या अयोध्या में भीड़ और वो उत्साह कम हो गया है?
4: यूपी तमाम यंगस्टर्स में देख रहा था, एकदम खुशी से नहा रहे हैं, एकदम
5: हर कोई खुशी से नहा रहा है। चोरी का जो ये बात है ना, तो ये तो वो जाने, ट्रस्ट वाले लोग जाने, उससे आम आदमी को उससे क्या देती है? आम आदमी अपना आया है रामलला का दर्शन करने, दर्शन करते रहा है, जा रहा है।
0: क्या अयोध्या में भगवान राम के भक्तों में पहले जैसी आस्था नहीं रही?
1: चंदा चोरी की आजकल खबरें आ रही हैं, असर कुछ है या सब नॉर्मल है?
6: सब नॉर्मल है, सो खाली चलते रहते हैं, सब नॉर्मल।
1: ट्रस्ट की बात है,
6: वो उनका अपना पर्सनल मामला है, मामला
1: हम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है,
6: के लिए सब नॉर्मल है।
1: दर्शन सुगम हो गए?
6: बहुत बढ़िया दर्शन किए हम लोगों ने।
1: आप लोगों के भी सुगम दर्शन हो गए? घटनाओं का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है?
3: नहीं,
1: नॉर्मल है,
3: नॉर्मल।
7: कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी घोटाला किया है उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए।
0: इन सवालों के जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने पड़ताल की। तो अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। और लोगों से अयोध्या में चंदा चोरी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं है।
1: मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से। और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है। कि चोरी वगैरह अलग प्रकरण चला उसके बाद क्या जो जमीन है, मैं यहाँ सरयू घाट में देख रहा हूँ भीड़ है, लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, युवा नहीं युवा एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। कुछ असर पड़ा है अयोध्या?
8: असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा।
1: मतलब मंदिर अंदर में लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत?
8: बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर अंदर में,
1: लखनऊ चौक पर भी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं।
8: यस सर, आप देख सकते हैं सब लोही क्या नाम है ले ही रहे हैं लोग, भीड़ में कोई उसमें कमी नहीं है।
1: खबरें आजकल चल रही है ना डोनेशन थेफ्ट वगैरह का, चंदा चोरी वगैरह, आप जब अयोध्या में आए कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है या सब कुछ नॉर्मल है?
9: हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार आए हैं तो इसके कोई जानकारी अभी है नहीं, अभी तो घूमे की अभी जस्ट आए हैं। अच्छा तो है।
0: इसके बाद हमारी टीम लता चौक जो कि अयोध्या का नया सेल्फी पॉइंट भी है, वहां बने सूर्य स्तंभ दिन हो या रात दमकते और चमकते रहते हैं। भरी दोपहरी में भी लोग यहां सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। जब उनसे चंदा चोरी के मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में सब पहले जैसा है।
1: सरयू किनारे से हम आए हैं अब लता चौक, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जो सेल्फी पॉइंट बन गया है। और अभी जो है फिलहाल अयोध्या में भरी दोपहरी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ पर आना जाना फोटो खिंचाना लगा हुआ है। शाम होते होते रात होते होते तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं। देखिए फोटोग्राफर्स तमाम यहाँ पर हैं, खूब फोटोज क्लिक करते हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं सेल्फीज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक परिवार यहाँ आया भी हुआ है जो फोटोज क्लिक करा रहा है। सामने वो प्रसिद्ध लता चौक है, खूबसूरत लता चौक, लता जी की वीणा है। और उसके ठीक पीछे अगर कैमरामैन गौरव जूम कर पाए तो वो सूर्य स्तंभ है, यानी कि भगवान भास्कर और जो कि कहीं ना कहीं कुल देवता हैं श्री रामचंद्र के। अब आप यहाँ देखें तमाम फोटोग्राफर्स हैं, ये नए जो कपल्स होते हैं, नई नई जिनकी शादी होती है, वो भी यहाँ पर कई बार फोटो खिंचाने आते हैं। तो मैंने जैसा कहा, अयोध्या केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पर भी बदल रहा है। अब आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती अयोध्या की फिलहाल बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अयोध्या में कैसा माहौल है? मजा आ रहा है?
10: मजा आ रहा है भैया,
1: बढ़िया माहौल है। क्या क्या देख लिया?
10: हनुमानगढ़ी दर्शन कर लिए, राम मंदिर देख लिए, सुग्रीव किला कानपुर से।
1: कानपुर से आए हैं। जो आप जैसे घूम रहे होंगे, मंदिर जा रहे होंगे, पहले भी शायद आए ही होंगे, कोई बदलाव है? सब पहले जैसा ही नॉर्मल?
10: उस पे तो कोई बदलाव नहीं,
1: बदलाव
10: वो ना,
1: सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे।
10: रास्ता में तो कमी थोड़ी है लोगों को।
0: आखिरकार हमारी टीम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वार यानी राम मंदिर पहुंची और जहां मौजूद श्रद्धालुओं से भी यही सवाल पूछा। लोगों ने कहा राम जी के आगे कुछ हो जाए लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ेगी।
1: आपने सरयू की चंचलता देखी, लता चौक की सुंदरता देखी, आप देखें राम मंदिर की वो समरसता, आस्था का वो केंद्र जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ते हैं, घटनाएं कुछ भी हो जाएं लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ती। उसका उदाहरण है ये जीती जागती भीड़ जो सामने की ओर आपको आती दिखेगी। ये आप देखें तो तमाम लोग जो यहाँ पर आते दिखेंगे, बैठते दिखेंगे और इन गाड़ियों में चढ़ते दिखेंगे, ये परिवार हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं और आवागमन करते हैं, और भी तमाम लोग हैं। क्या माहौल है चाची, क्या माहौल है, क्या लग रहा है?
11: भैया जाए थे घरे, क्या
1: लग रहा है?
11: अच्छा बहुत लग रहा है।
1: कुछ बदलाव तो नहीं दिख रहा है अयोध्या में? जो चंदा चोरी की खबरें आई उसके बाद कुछ बदलाव तो नहीं है? सब नॉर्मल है?
11: सब नॉर्मल तो भैया दिखाता है, चोरी वोरी वाला हमें सब कुछ पता नहीं चला है।
1: एमपी से परिवार आया है, क्या बढ़िया तस्वीर, आप देखिए खुद देखिए। यही श्री रामचंद्र की आस्था है अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूर्ण कराने के लिए। जहाँ एक बेटा आता है और राम मंदिर में दर्शन कराता है तो कैसे कह दिया जाए कि अयोध्या बदल गई है, या कैसे कह दिया जाए कि इस चोरी का असर जमीन पर भी है। जरूर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, आरोपियों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसी कार्रवाई करें, नजीर बने नए लोगों के लिए। लेकिन अयोध्या अभी भी वैसे ही है, रामचंद्र को लेकर आस्था अभी भी वैसी है, सरयू का वो कलकल बहता जल अभी भी वैसा ही है।
0: हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: सौरव गांगुली के जन्मदिन पर फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
13: राजकुमार राव की फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक आया सामने। सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उन पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। विक्रमादित्य मोटवानी निर्देशित दादा द सौरव गांगुली स्टोरी में राजकुमार राव लीड रोल में हैं। इस फिल्म के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने इसके रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म ग्रहु मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर सामने आ चुका है जिसमें सस्पेंस थ्रिल के साथ एक्शन भी है। ट्रेलर में तकनीक और इंटरनेट की दुनिया के जीवन पर हो रहे नकारात्मक असर को दिखाने की कोशिश भी की गई है। इंद्रदास निर्देशित फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू में आर्य कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिश्वास जैसे नए कलाकार अहम रोल में है। ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
14: मैं बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पे, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगी। कौन हो तुम?
15: तुम्हारी हमदर्दी। वो मेरे से बदला लेना चाहता है।
13: अनुपम खेर ने अयोध्या में अपनी फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कुछ खास तस्वीरें भी साझा की। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित फिल्म श्री राम भूमि में अनुपम खेर मुख्य रोल में नजर आएंगे। अनुपम के अलावा इस फिल्म में ऋतिक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिका में दिखेंगे। प्रज्वल देवराज राजवीर शेट्टी स्टार कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। गुरुदत्ता गनिका लिखित और निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर में सालाना भैंस दौड़ प्रतियोगिता कमला की झलक दिखाई गई है। प्रज्वल देवराज जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं और फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है जहां राज बी शेट्टी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस फिल्म में संपदा मित्रा, रमेश इंदिरा, सुष्मिता भट्ट, श्रीधर के एस, गोविंद गौड़ा और निरंजन भी भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी।
12: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
17: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
18: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
19: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
19: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
21: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मंदिर की करेंगे जो भारत की धरती पर नहीं लेकिन जहां पहुंचकर हर और भारत ही नजर आता है। एक ऐसा हिंदू मंदिर जो उस देश में है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है। एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल पुराना बताया जाता है लेकिन अपने वजूद में आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। भारत के दिल में जो रामायण और राम कहानी सदियों से बसी है वो भारत की सीमाओं और महासागर के पार मौजूद इस मंदिर में आज भी पूरी आस्था के साथ कही और सुनी जाती है।
1: से हजारों किलोमीटर दूर जहां धड़कता है भारत, वो मुस्लिम देश जहां कभी पूजे जाते थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंडोनेशिया का वो धाम जहां आज भी बसती हैं सीता, जहां मिलते हैं राम। जहां का धर्म इस्लाम है लेकिन संस्कृति में राम है। वो भूमि जिसका उल्लेख मिलता है रामायण में। वो द्वीप जहां साल भर गाई और सुनाई जाती है रामलीला। महादेव का वो मंदिर जिसने एक सहस्राब्दी में झेले प्रकृति के जाने कितने वार, कितने प्रहार, मगर आज भी खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है। आज सुनाएंगे कहानी इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: इंडोनेशिया के इसी प्रम्बानन मंदिर में आज भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इस 1000 साल पुराने मंदिर में दर्शन किए। ये मौका बेहद खास रहा। इस अनुपम और अनमोल विरासत को सदियों से सहेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और अब भारत इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मौजूद इस यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा था वो दृश्य जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे।
2: यहां के जीवन में, यहां की बातों में, यहां की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: मध्य जावा की धरती, आसमान को छूते शिखर और पत्थरों में दर्ज 1000 साल पुराना इतिहास, यही है प्रम्बानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता की भव्य पहचान। तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी न जाने कितनी आपदाएं झेलने के बाद भी ये मंदिर अपनी जगह सदियों की कहानियां समेटे खड़ा है। बीते कई सालों से इस मंदिर में पूजा तो नहीं होती, लेकिन पवित्रता और महत्व उतना ही है जितना भारत में किसी मंदिर का होता है। इंडोनेशिया दौरे के तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक परिसर में पहुंचे। एक बार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर दो देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का सेतु बन गया। मानो हजारों साल का इतिहास सामने आ गया।
2: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं, और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री ने पहले आसमान से इस अद्भुत मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की खिड़की से मंदिर का दीदार करवाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे।
2: इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के काम में एनास्टाइलोसिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा। एनास्टाइलोसिस एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प तकनीक है जिसका उपयोग नष्ट हो चुके प्राचीन स्मारकों या खंडरों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के तहत स्मारकों के गिरे हुए मूल टुकड़ों जैसे पत्थरों और खम्भों आदि को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़कर इमारत का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी एनास्टाइलोसिस तकनीक के माध्यम से प्रम्बानन मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाएगा। वैसे ये परियोजना सिर्फ पत्थरों को जोड़ने की नहीं बल्कि इतिहास को भविष्य से जोड़ने की भी है। भारत न केवल इस साझा सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार में भूमिका निभाएगा बल्कि इसके पूरा होने पर इंडोनेशिया में 7 उत्सव मनाने का वादा भी PM मोदी इंडोनेशिया के लोगों से करते आए हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: 1927 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जावा और प्रम्बानन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गुरुदेव टैगोर वहाँ की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रभाव और स्थानीय लोगों की कला से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस यात्रा के संस्मरणों और अनुभवों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया था जिन्हें बाद में टू जावा फ्रॉम द पिलग्रिम इन इंडिया नाम की एक किताब के रूप में संकलित किया गया था। अब लगभग एक सदी बाद भारत उसी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन का भी अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश और वहाँ हिंदू धरोहर के संरक्षण में भारत की भूमिका ये बताती है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ व्यापार या रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विरासत पर भी आधारित है। पीएम मोदी ने इस विरासत को इतने साल सहेजने के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया और ये भरोसा भी जताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग इसे देखने पहुंचेंगे।
2: 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है।
1: विदेशी धरती पर 1000 साल पुराने मंदिर की ये यात्रा वास्तव में एक संदेश है, संदेश कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं मानता, बल्कि दुनिया भर में फैली भारतीय सभ्यता की धरोहरों के संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: द्वीपों के देश इंडोनेशिया में आखिर कैसे अस्तित्व में आया ये हिंदू मंदिर, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर जाया करते थे। इन्हीं में से कई व्यापारियों ने इसी द्वीप को अपना घर बना लिया और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इसी के साथ शुरुआत हुई एक संस्कृति और संस्कारों के एक मिले जुले और साझा स्वरूप की। भारत के गए इन लोगों ने धीरे धीरे धरती के इस कोने पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीज बोए और कालांतर में उन्हीं बीजों से पनपा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी प्रम्बानंद मंदिर के निर्माण की, पुनर्निर्माण और विस्तार की।
1: इंडोनेशिया की धरती पर ये वो मंदिर है जहाँ सृष्टि के निर्माता भी हैं, पालनकर्ता भी और देवों के देव भोले शंकर भी मौजूद हैं। ये त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
3: What is the history of
4: the history of the Prambanan Temple? Is the biggest complex of Hindu temple in Indonesia.
3: It was built.
4: The was built in 9th century, but there are about 856 after Christ.
1: हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर आया करते थे और इसकी सुंदरता की वजह से यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे ऋषि परंपरा इस द्वीप की पहचान बन गई। माना जाता है कि जब इंडोनेशिया में हिंदू राजवंशों का शासन हुआ करता था, तब संजय वंश के राजाओं ने 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर संजय वंश के राजा राकाई पिकातन की देन माना जाता है। कभी यहाँ करीब 240 मंदिर थे और पूरे प्रम्बानन क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिरों का विशाल समूह मौजूद था। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के आकार में करवाया गया था। इसके बीच में भगवान शिव का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है, आसपास विष्णु और ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिमूर्ति मंदिर कहा जाता है। मंदिर परिसर में 250 छोटे बड़े मंदिर और हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना गया है,
5: क्योंकि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये प्रम्बानन मंदिर है जो कि 9वीं सदी में निर्मित इंडोनेशिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जब चौथी सदी थी उस समय की बात है जब हिंदुत्व का यहाँ पर बहुत आधिपत्य था और सब यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे, अब 2% से कम लोग बच गए हैं जो हिंदू हैं। लेकिन प्रम्बनन मंदिर जो है यहाँ पर, पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती है, ये सुनसान है, बिल्कुल एक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। अगर आप तीनों मंदिरों को देखें और तीनों मंदिरों के, यानी सामने विष्णु मंदिर आप देख रहे हैं, शिव मंदिर देख रहे हैं और ब्रह्मा मंदिर देख रहे हैं, और सबके ठीक सामने का जो हिस्सा है वो है उनके वाहनों का मंदिर है, यानी नंदी मंदिर, हंस मंदिर और वरुण मंदिर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गरुड़ का महत्व होता है, गरुड़ यानी कि विष्णु जी की सवारी, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह भी होता है ना वो भी गरुड़ ही है। मैं आपको यहाँ के नोट पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गरुड़ का जो चिन्ह है ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है।
1: बताया जाता है कि 11वीं सदी में भूकंप और ज्वालामुखी की चपेट में आने की वजह से ये मंदिर परिसर मलबे में दब गया था। 17वीं सदी के शासकों ने मंदिर की फिर से खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1918 तक मंदिर का वास्तविक स्वरूप तैयार हो सका। 2006 में फिर भयंकर भूकंप इस क्षेत्र में आया। परिसर में बाकी मंदिर लगभग ध्वस्त हो गए, लेकिन जहां परिसर के बाकी मंदिर खंडित होते रहे, मुख्य त्रिमूर्ति मंदिर को हर बार नाम मात्र ही नुकसान पहुंचा। कीर्ति नगारा और त्रिभुवना जैसे हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया में कई बरस शासन किया। श्री विजया और गजामधा जैसे साम्राज्य इंडोनेशिया के सबसे सशक्त साम्राज्य थे। बौद्ध धर्म भी तब सह अस्तित्व के साथ इस द्वीप पर पनपने लगा था। बाद में संजय वंश के राजाओं ने वर्तमान इंडोनेशिया की आधारशिला रखी, मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। प्रम्बानन मंदिर का जीर्णोद्धार भी इसी दौर में हुआ। 14वीं सदी में व्यापार के लिहाज से इस्लाम ने इंडोनेशिया में कदम रखा और धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति इस्लामिक हो गई। लेकिन इंडोनेशिया के लोगों ने अपनी पारंपरिक हिंदू और बौद्ध विरासतों को न सिर्फ सहेजा बल्कि उनके महत्व को भी बरकरार रखा। आज इंडोनेशिया भारत से सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत करना चाहता है, जिसका आधार यही सांस्कृतिक विरासत है। वैसे तो इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर ब्रह्मा विष्णु और महेश के ही हैं, लेकिन इस मंदिर में बहती आस्था की एक धारा रामायण और राम कहानी से भी जुड़ती है। प्रम्बानन मंदिर परिसर में सेंद्रातारी रामायण का मंचन लगभग पूरे साल नियमित रूप से किया जाता है। इसे यहाँ रामायण बैले कहा जाता है। इस मनमोहक शो में स्थानीय संस्कृति और जावनीज संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है।
5: इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में 9वीं सदी का निर्मित ये प्रम्बानन मंदिर बताता है कि दोनों देशों की ऐतिहासिक साझेदारी, पारंपरिक साझेदारी कैसी है। और उसी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता ये रामायण बैले बताता है कि आज दोनों देशों के रिश्तों को किस तरीके से यहाँ के लोग सहेज कर रखते हैं, परंपराओं को किस तरीके से सहेज कर रखते हैं।
1: हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर इस धरती का परिचय हिंदुस्तान के इतिहास से नहीं है, पर सदियों पहले यहाँ अयोध्या नगरी स्थापित कर दी गई थी।
3: Is it true that the meaning, one meaning of Yogyakarta, the place, is also related somehow to Ayodhya?
6: Well, the city of Yogyakarta actually derived from the words Ayodhya. Yes, the palace of प्रिंस रामा।
1: रामलीला की यह तस्वीर भारत में रामनवमी या दशहरे की नहीं है बल्कि इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की परंपरा जहां के जर्रे जर्रे में इस्लाम है, लेकिन हर रहवासी के रोम रोम में राम बसते हैं। मान्यता है कि रामायण काल में वानर राज सुग्रीव ने अपने दूतों को सीता को ढूंढने के लिए जावा द्वीप भेजा था, जो वर्तमान का जावा है।
5: का बहुत हम महत्व दें।
7: डेफिनेटली हमारे पिछले जो 600 साल पहले लोग आए थे, जो श्री विजय राजा, उन्होंने यहाँ पे छाप छोड़ी है। और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी था पहले 100 साल पहले, तो इसके कारण क्या, बुद्धिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तो उसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हिंदुइज्म तो एग्जिस्टेंस है ही। और ऐसे कहा जाता है कि रामायण के युग के ज़माने से यहाँ पे वाली इनके मुख देखे तो जो उनकी सेना थी वो इनके जैसे लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिमिलरिटी तो है।
1: इंडोनेशिया और इंडिया की समानता की कहानियाँ पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी। पर जिस तरह वर्तमान के इंडोनेशिया ने उस संस्कृति को सहेजा है वो अनोखा है। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर में मौजूद है और इस शहर में हर ओर आज भी राम और रामायण के निशान देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जकार्ता का मतलब स्थानीय भाषा में अयोध्या होता है।
8: ये जो शिल्पकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसमें वानर सेना को प्रतीकात्मक तौर पर देख सकते हैं और वो राम सेतु बनाने के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर राम जी का महत्व बहुत ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर विष्णु को पूजनीय माना गया है। योग्यकर्ता, जिसे स्थानीय उच्चारण के साथ योग जकार्ता कहा जाता है, ये अयोध्या का दूसरा नाम है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प।
1: जावा द्वीप पर बसे योग्यकार्ता को लेकर ये मान्यता है कि इस शहर का नाम श्री राम की अयोध्या के नाम से लिया गया। जो जकार्ता का शाब्दिक अर्थ इंडोनेशिया में माना जाता है वो है एक ऐसा शहर जो समृद्ध और फलने फूलने के लिए है। अयोध्या में जब श्री राम का राज्य था उन दिनों की कल्पना भारत के सबसे स्वर्णिम काल के तौर पर की जाती है। तब समृद्धि और वैभव चरम पर था। इसी समृद्धि को आधार बनाकर अयोध्या से जोग जकार्ता का नाम पड़ा। यहाँ रहने वाले लोग इस शहर का सम्मान अयोध्या के बराबर ही करते हैं। अद्भुत है अयोध्या से लगभग 8000 किलोमीटर दूर, और अद्भुत है यहाँ की कहानी। कहानी एक देश से अधिक उन करोड़ों लोगों की, उस संस्कृति की जिसने हजारों साल के इतिहास में अपनी पूजा पद्धति बदली, अपना मजहब बदला, लेकिन अपनी तहजीब को कभी नहीं बदला। जब यहाँ हिंदू अधिक थे तब राम उनके पूर्वज थे। अब जब दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान यहाँ बसते हैं, राम तब भी इनके पूर्वज हैं। ये थी कहानी प्रम्बानन मंदिर, योग्यकार्ता और भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में धड़कते भारत की। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता से श्वेता सिंह, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मानसून के बादल देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुके हैं। बादलों ने जहां पर लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं पर कुछ इलाकों में बादलों से मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। हाल ये हो चुका है कि महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम शहरों में इतना पानी बरस चुका है कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये बारिश ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रही हैं। इसके लिए NDRF से लेकर NDRF और SDRF ने कमर कस ली है।

0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। मानसून कई इलाकों में जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद तो बाढ़ और बारिश में लोगों के लिए जिंदगी बचाना चुनौती बन गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। यहाँ हाईवे पर बहते तेज बहाव में घंटों तक लोगों की जान अटकी रही। अंडरपास के एक तरफ एक कार पानी में फंस गई, तो दूसरी ओर पर्यटकों की बस भी दरिया बनी सड़क पर अटक गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार पर फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है और यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर है उसको बाहर निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है।
0: नवसारी के सेंटर पास के पास घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फिर एक एक करके बस से भी करीब 50 पैसेंजर को इसी तरह रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा तेज बारिश के बाद सूरत की शक्ल भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में यहाँ 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सबसे बुरा हाल यहाँ के आजाद नगर का नजर आया। यहाँ बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुँचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
2: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
3: रात में से ही बारिश होने लगा तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
4: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मानसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगु की है, जहां कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasion.
7: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
8: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
7: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
8: Remember, around here, we use the F Word, never the S Word.
6: The S Word, available now on TuneIn,
9: wherever you get your podcasts,
6: and on the S Word YouTube channel.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरभ गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
11: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की दिख रही अपार आस्था की भी।
12: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्तिमय उल्लास के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ते दिखते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का काफिला अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता नजर आता है। जगह जगह शिविर में श्रद्धालु पूजा अर्चना, आरती और भजन के साथ अपना समय बहुत ही बढ़िया तरीके से बिताते दिखते हैं। इन शिविरों में उनकी सुविधा की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि पहली बार श्रद्धालुओं के बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पवित्र गुफा में जाने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने तक 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बालटाल और ननवान बेस कैंप में बने चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख सकते हैं। बारिश के बीच भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है, हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन भक्त धाम में पहुंचकर पूरे भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के बीच छाता और बरसाती से खुद को बचाते हुए भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से पवित्र धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस है, साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल रास्ते अभी ठीक हैं, भक्तों की संख्या भले ही कम हुई है लेकिन भक्त जितने भी हैं बाबा केदार के दरबार तक जरूर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अब कम नजर आ रही है, लेकिन भीड़ कम होने का फायदा उन श्रद्धालुओं को मिल पा रहा है जो

0: का समीक्षा बैठक से लेकर मॉक ड्रिल तक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं, ताकि विभागों के बीच आपसी तालमेल से रथ यात्रा सुचारू और सुरक्षित आयोजन रूप से हो सके। वहीं ओडिशा के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बारिश के बावजूद कारीगर और कलाकार अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार 16 तारीख तक काम पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रथ और उसके पहियों की पेंटिंग की जा रही है। उधर झारखंड के रांची में जगन्नाथपुर मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ देवी देवता मौसी बाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे, उसे अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। पुरी से आए कलाकार रथ पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये बिहार की बोधगया का वो मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध अलग अलग मुद्रा में दिखते हैं। इस बौद्ध मंदिर में 1002 भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियों के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह में चारों तरफ की दीवारों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। इस मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था। इस मंदिर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के साथ साथ विदेश से भी लोग आते रहते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बीच वसई के वसंत नगरी सिग्नल इलाके से राहत की एक तस्वीर सामने आई। यहां फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी की वजह से पानी के बीच दो कार में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यहां पानी के तेज बहाव में दोनों कार बहने लगी थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक कार के ड्राइवर और दूसरी कार से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों कार को भी पानी से बाहर निकालकर सड़क तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
1: और अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की। अपने इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। इसके तहत भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। दोनों देशों का मानना है कि इससे भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते और मजबूत होंगे।

माथे पर त्रिपुंड, भगवा कुर्ता और दिल में भक्ति की भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के अंतिम दिन योग्यकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। कंधे पर अलग तरह का स्टॉल लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मंदिर में पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ की सनातन शिल्पकला, आध्यात्मिक आबोहवा देखकर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। दिल्ली से 7763 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर की पावन ध्वनि की अनुगूंज हुई तो उन्हें भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का स्मरण हो आया।

0: अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था, यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर का वीडियो साझा करते हुए इसे मैजेस्टिक ब्रह्मानंद टेंपल बताया। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सनातन के भव्य दिव्य भक्तिभाव से सराबोर मंदिर में

0: पहुंचकर आरती करने स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हृदय भक्ति से भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने साल 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये मंदिर मध्य जावा में जोग जकार्ता के पास शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इनमें सबसे प्रमुख 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है, जिसके उत्तर में ब्रह्मा और दक्षिण में विष्णु मंदिर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नकाशी में रामायण की इंडोनेशियाई शैली को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है, जब जावा द्वीप पर हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव था। इन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली से प्रेरित है, जिसमें ऊंचे विमान, बड़े प्रांगण, वास्तुशास्त्र की मंडल अवधारणा नजर आती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक पूरी रामायण कथा पत्थर पर उकेरी गई है। एक समय में इस परिसर में लगभग 240 मंदिर थे, वहीं पूरे क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिर हैं। माना जाता है कि इसे ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई पिकातन ने शुरू किया था। यहां हर साल मई से अक्टूबर के बीच पूर्णिमा की रातों में खुले मंच पर रामायण बैले का भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इंडोनेशिया का ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म का प्रभाव कितना व्यापक था। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं इस बात की गवाह हैं कि भगवान राम और कृष्ण ने अवतार बेशक भारतवर्ष में लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सार्वभौमिक और कालातीत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सौभाग्य की बात है कि इंडोनेशिया में यहाँ पहुंचकर उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मंदिर परिसर के कई छोटे मंदिरों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग देगा। इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा।
1: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि बार बार भगवान शिव की सेवा का अवसर मिलना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है।
1: चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: सदियों पुराने इस मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में राजनीतिक बदलावों के कारण ये मंदिर उपेक्षित हो गया था। बाद में आए भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से साल 2006 के जावा भूकंप के बाद मंदिर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर की फिर से खोज हुई, उसके बाद संरक्षण का काम शुरू किया गया। अब खास बात यह है कि मंदिर के जीर्णोद्वार परियोजना की शुरुआत 2026-27 में हो रही है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1927 में जावा और परमानंद आने का शताब्दी वर्ष भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज दिल्ली की हवा 2026 की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज हुई, तो वहीं बनारस वालों को मिलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में अलग द्वार से दर्शन करने की सुविधा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश से दोहरी राहत मिली है। एक तरफ दिल्ली वालों को ठंडी साफ हवा मिली और साफ आसमान भी देखने को मिला। आज राजधानी में साल 2026 की सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। यहां शाम 4 बजे AQI 59 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। 12 जून को दर्ज किए गए पिछले सबसे अच्छे AQI से थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आई है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। IMD ने कल भी राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारसी लोग अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे। CM योगी ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से प्रवेश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसके तहत गेट पर लोकल ID दिखाकर वो दर्शन के लिए जा सकेंगे। दरअसल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन उपलब्ध करवाने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए भारतीय रेलवे सौगात लेकर आया है। गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च किया गया है। जुलाई और अगस्त के महीने में गोरखपुर से 2 विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही हैं। ये ट्रेनें श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ साथ देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कराएंगी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार हो गया है, जिसमें पर्यटकों, खासतौर पर बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी यहां शुरू की गई है। इसके जरिए यहां पर्यटकों को रोमांच का तड़का तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया उन्हें मनोरंजन के साथ एजुकेट भी करेंगी।
3: और अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की। राम मंदिर में दान को लेकर हाल के दिनों में सामने आए कथित गड़बड़ी के मामले ने भले ही चर्चा तेज कर दी है, लेकिन राम भक्तों की आस्था आज भी अटूट बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर रहे हैं। हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

0: आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामलला की नगरी अयोध्या में चंदा चोरी की घटना के बाद क्या सब बदल गया है?
1: एकदम गंदी धूप है, आप लोग अयोध्या प्रॉपर घूम?
2: कहाँ दोपहर है, हमको तो लग ही नहीं रहा है। हाँ, हमको तो लग रहा है शाम है।
1: चंदा चोरी की बात कर रहा हूँ, जो चर्चा आजकल चल रही है ना मंदिर में, जो डोनेशन का हुआ है स्कैम,
2: वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो मैं नहीं जानती ना।
1: लेकिन आप जितना घूमी है सब नॉर्मल लग रहा है?
2: हाँ, वो सब नॉर्मल लग रहा है।
1: चंदा चोरी की जो घटना हुई उसका कोई असर दिख रहा है आपको या फिर नॉर्मल है सब कुछ, कोई चर्चा नहीं?
3: अभी तो चर्चा नहीं सुना। अच्छा,
1: इन पर सब नॉर्मल है जहाँ जहाँ घूम?
0: क्या अयोध्या में भीड़ और वो उत्साह कम हो गया है?
4: पे तमाम यंगस्टर्स में देख रहा था, एकदम खुशी से नहा रहे हैं, एकदम
5: हर कोई खुशी से नहा रहा है। चोरी का जो ये बात है ना, तो ये तो वो जाने, ट्रस्ट वाले लोग जाने, उससे आम आदमी को उससे क्या देती है? आम आदमी अपना आया है रामलला का दर्शन करने, दर्शन करते रहा है, जा रहा है।
0: क्या अयोध्या में भगवान राम के भक्तों में पहले जैसी आस्था नहीं रही?
1: चंदा चोरी की आजकल खबरें आ रही हैं, असर कुछ है या सब नॉर्मल है?
6: सब नॉर्मल है, सब खाली चलते रहते हैं, सब नॉर्मल।
1: ट्रस्ट की बात है,
6: वो उनका अपना पर्सनल मामला है, मामला
1: हम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है,
6: के लिए सब नॉर्मल है।
1: दर्शन सुगम हो गए?
6: बहुत बढ़िया दर्शन किए हम लोगों।
1: आप लोगों के भी सुगम दर्शन हो गए? घटनाओं का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है?
3: नहीं,
1: नॉर्मल है,
3: नॉर्मल।
7: कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी घोटाला किया है उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए।
0: इन सवालों के जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने पड़ताल की। तो अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। और लोगों से अयोध्या में चंदा चोरी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं है।
1: मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से। और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है। कि चोरी वगैरह अलग प्रकरण चला उसके बाद क्या जो जमीन है, मैं यहाँ सरयू घाट में देख रहा हूँ भीड़ है, लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, युवा नहीं युवा एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। कुछ असर पड़ा है अयोध्या?
8: असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा।
1: मतलब मंदिर अंदर में लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत?
8: बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर अंदर में,
1: लखनऊ चौक पर भी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं।
8: यस सर, आप देख सकते हैं सब लोही क्या नाम है ले ही रहे हैं लोग, भीड़ में कोई उसमें कमी नहीं है।
1: खबरें आजकल चल रही है ना डोनेशन थेफ्ट वगैरह का, चंदा चोरी वगैरह, आप जब अयोध्या में आए कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है या सब कुछ नॉर्मल है?
9: हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार आए हैं तो इसके कोई जानकारी अभी है नहीं, अभी तो घूमे की अभी जस्ट आए हैं। अच्छा तो है।
0: इसके बाद हमारी टीम लता चौक जो कि अयोध्या का नया सेल्फी पॉइंट भी है, वहां बने सूर्य स्तंभ दिन हो या रात दबकते और चमकते रहते हैं। भरी दोपहरी में भी लोग यहां सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। जब उनसे चंदा चोरी के मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में सब पहले जैसा है।
1: सरयू किनारे से हम आए हैं अब लता चौक, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जो सेल्फी पॉइंट बन गया है। और अभी जो है फिलहाल अयोध्या में भरी दोपहरी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ पर आना जाना फोटो खिंचाना लगा हुआ है। शाम होते होते रात होते होते तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं। देखिए फोटोग्राफर्स तमाम यहाँ पर हैं, खूब फोटोज क्लिक करते हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं सेल्फीज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक परिवार यहाँ आया भी हुआ है जो फोटोज क्लिक करा रहा है। सामने वो प्रसिद्ध लता चौक है, खूबसूरत लता चौक, लता जी की वीणा है। और उसके ठीक पीछे अगर कैमरामैन गौरव जूम कर पाए तो वो सूर्य स्तंभ है, यानी कि भगवान भास्कर।
10: सौरव गांगुली के जन्मदिन पर फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
11: राजकुमार राव की फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक आया सामने। सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उन पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। विक्रमादित्य मोटवानी निर्देशित दादा द सौरव गांगुली स्टोरी में राजकुमार राव लीड रोल में हैं। इस फिल्म के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने इसके रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। यह फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर सामने आ चुका है जिसमें सस्पेंस थ्रिल के साथ एक्शन भी है। ट्रेलर में तकनीक और इंटरनेट की दुनिया के जीवन पर हो रहे नकारात्मक असर को दिखाने की कोशिश भी की गई है। इंद्रदास निर्देशित फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू में आर्य कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिश्वास जैसे नए कलाकार अहम रोल में है। ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
12: मैं बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पे, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगी। कौन हो तुम?
13: तुम्हारी हमदर्दी। वो मेरे से बदला लेना चाहता है।
11: अनुपम खेर ने अयोध्या में अपनी फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कुछ खास तस्वीरें भी साझा की। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित फिल्म श्री राम भूमि में अनुपम खेर मुख्य रोल में नजर आएंगे। अनुपम के अलावा इस फिल्म में ऋतिक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिका में दिखेंगे। प्रज्वल देवराज राजवीर शेट्टी स्टार कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। गुरुदत्ता गनिका लिखित और निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर में सालाना भैंस दौड़ प्रतियोगिता कमला की झलक दिखाई गई है। प्रज्वल देवराज जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं और फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है जहां राजवीर शेट्टी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस फिल्म में संपदा मित्रा, रमेश इंदिरा, सुष्मिता भट्ट, श्रीधर केएस, गोविंद गौड़ा और निरंजन भी भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी।
10: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
15: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
18: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मंदिर की करेंगे जो भारत की धरती पर नहीं लेकिन जहां पहुंचकर हर और भारत ही नजर आता है। एक ऐसा हिंदू मंदिर जो उस देश में है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है। एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल पुराना बताया जाता है लेकिन अपने वजूद में आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। भारत के दिल में जो रामायण और राम कहानी सदियों से बसी है वो भारत की सीमाओं और महासागर के पार मौजूद इस मंदिर में आज भी पूरी आस्था के साथ कही और सुनी जाती है।
1: से हजारों किलोमीटर दूर जहां धड़कता है भारत, वो मुस्लिम देश जहां कभी पूजे जाते थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंडोनेशिया का वो धाम जहां आज भी बसती हैं सीता, जहां मिलते हैं राम, जहां का धर्म इस्लाम है लेकिन संस्कृति में राम है। वो भूमि जिसका उल्लेख मिलता है रामायण में। वो द्वीप जहां साल भर गाई और सुनाई जाती है रामलीला। महादेव का वो मंदिर जिसने एक सहस्राब्दी में झेले प्रकृति के जाने कितने वार, कितने प्रहार, मगर आज भी खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है। आज सुनाएंगे कहानी इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: इंडोनेशिया के इसी प्रम्बानन मंदिर में आज भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इस 1000 साल पुराने मंदिर में दर्शन किए। ये मौका बेहद खास रहा। इस अनुपम और अनमोल विरासत को सदियों से सहेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और अब भारत इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मौजूद इस यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा था वो दृश्य जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे।
2: यहां के जीवन में, यहां की बातों में, यहां की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण में मान सकता हूँ।
1: मध्य जावा की धरती, आसमान को छूते शिखर और पत्थरों में दर्ज 1000 साल पुराना इतिहास, यही है प्रम्बानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता की भव्य पहचान। तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी न जाने कितनी आपदाएं झेलने के बाद भी ये मंदिर अपनी जगह सदियों की कहानियां समेटे खड़ा है। बीते कई सालों से इस मंदिर में पूजा तो नहीं होती, लेकिन पवित्रता और महत्व उतना ही है जितना भारत में किसी मंदिर का होता है। इंडोनेशिया दौरे के तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक परिसर में पहुंचे। एक बार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर दो देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का सेतु बन गया। मानो हजारों साल का इतिहास सामने आ गया।
2: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं, और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री ने पहले आसमान से इस अद्भुत मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की खिड़की से मंदिर का दीदार करवाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे।
2: इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मानंद मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के काम में एनास्टाइलोसिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा। एनास्टाइलोसिस एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प तकनीक है जिसका उपयोग नष्ट हो चुके प्राचीन स्मारकों या खंडहरों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के तहत स्मारकों के गिरे हुए मूल टुकड़ों जैसे पत्थरों और खम्भों आदि को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़कर इमारत का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी एनास्टाइलोसिस तकनीक के माध्यम से ब्रह्मानंद मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाएगा। वैसे ये परियोजना सिर्फ पत्थरों को जोड़ने की नहीं बल्कि इतिहास को भविष्य से जोड़ने की भी है। भारत न केवल इस साझा सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार में भूमिका निभाएगा बल्कि इसके पूरा होने पर इंडोनेशिया में 7 उत्सव मनाने का वादा भी PM मोदी इंडोनेशिया के लोगों से करते आए हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: 1927 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जावा और ब्रह्मानंद की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गुरुदेव टैगोर वहां की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रभाव और स्थानीय लोगों की कला से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस यात्रा के संस्मरणों और अनुभवों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया था, जिन्हें बाद में टू जावा फ्रॉम द पिलग्रिम इन इंडिया नाम की एक किताब के रूप में संकलित किया गया था। अब लगभग एक सदी बाद भारत उसी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन का भी अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश और वहाँ हिंदू धरोहर के संरक्षण में भारत की भूमिका ये बताती है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ व्यापार या रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विरासत पर भी आधारित है। पीएम मोदी ने इस विरासत को इतने साल सहेजने के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया और ये भरोसा भी जताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग इसे देखने पहुंचेंगे।
2: 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है।
1: विदेशी धरती पर 1000 साल पुराने मंदिर की ये यात्रा वास्तव में एक संदेश है, संदेश कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं मानता, बल्कि दुनिया भर में फैली भारतीय सभ्यता की धरोहरों के संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: द्वीपों के देश इंडोनेशिया में आखिर कैसे अस्तित्व में आया ये हिंदू मंदिर, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर जाया करते थे। इन्हीं में से कई व्यापारियों ने इसी द्वीप को अपना घर बना लिया और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इसी के साथ शुरुआत हुई एक संस्कृति और संस्कारों के एक मिले जुले और साझा स्वरूप की। भारत के गए इन लोगों ने धीरे धीरे धरती के इस कोने पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीज बोए और कालांतर में उन्हीं बीजों से पनपा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी प्रम्बानंद मंदिर के निर्माण की, पुनर्निर्माण और विस्तार की।
1: इंडोनेशिया की धरती पर ये वो मंदिर है जहाँ सृष्टि के निर्माता भी हैं, पालनकर्ता भी और देवों के देव भोले शंकर भी मौजूद हैं। ये त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
3: What is the history of
4: the history of the Prambanan Temple? Is the biggest complex of Hindu temple in Indonesia.
3: It was built.
4: The was built in 9th century, but they're about 856 after Christ.
1: हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर आया करते थे और इसकी सुंदरता की वजह से यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे ऋषि परंपरा इस द्वीप की पहचान बन गई। माना जाता है कि जब इंडोनेशिया में हिंदू राजवंशों का शासन हुआ करता था, तब संजय वंश के राजाओं ने 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर संजय वंश के राजा राकाई पिकातन की देन माना जाता है। कभी यहाँ करीब 240 मंदिर थे और पूरे प्रम्बानन क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिरों का विशाल समूह मौजूद था। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के आकार में करवाया गया था। इसके बीच में भगवान शिव का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है, आसपास विष्णु और ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिमूर्ति मंदिर कहा जाता है। मंदिर परिसर में 250 छोटे बड़े मंदिर और हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना गया है,
5: क्योंकि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये प्रम्बानन मंदिर है जो कि 9वीं सदी में निर्मित इंडोनेशिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जब चौथी सदी थी, उस समय की बात है जब हिंदुत्व का यहाँ पर बहुत आधिपत्य था और सब यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे, अब 2% से कम लोग बच गए हैं जो हिंदू हैं। लेकिन प्रम्बनन मंदिर जो है यहाँ पर, पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती है, ये सुनसान है बिल्कुल, एक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। अगर आप तीनों मंदिरों को देखें, और तीनों मंदिरों के यानी सामने विष्णु मंदिर आप देख रहे हैं, शिव मंदिर देख रहे हैं और ब्रह्मा मंदिर देख रहे हैं, और सबके ठीक सामने का जो हिस्सा है वो है उनके वाहनों का मंदिर है, यानी नंदी मंदिर, हंस मंदिर और वरुण मंदिर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गरुड़ का महत्व होता है, गरुड़ यानी कि विष्णु जी की सवारी, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह भी होता है ना वो भी गरुड़ ही है। मैं आपको यहाँ के नोट पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गरुड़ का जो चिन्ह है ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है।
1: बताया जाता है कि 11वीं सदी में भूकंप और ज्वालामुखी की चपेट में आने की वजह से ये मंदिर परिसर मलबे में दब गया था। 17वीं सदी के शासकों ने मंदिर की फिर से खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1918 तक मंदिर का वास्तविक स्वरूप तैयार हो सका। 2006 में फिर भयंकर भूकंप इस क्षेत्र में आया। परिसर में बाकी मंदिर लगभग ध्वस्त हो गए, लेकिन जहां परिसर के बाकी मंदिर खंडित होते रहे, मुख्य त्रिमूर्ति मंदिर को हर बार नाम मात्र ही नुकसान पहुंचा। कीर्ति नगारा और त्रिभुवना जैसे हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया में कई बरस शासन किया। श्री विजया और गजामधा जैसे साम्राज्य इंडोनेशिया के सबसे सशक्त साम्राज्य थे। बौद्ध धर्म भी तब सह अस्तित्व के साथ इस द्वीप पर पनपने लगा था। बाद में संजय वंश के राजाओं ने वर्तमान इंडोनेशिया की आधारशिला रखी, मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। प्रम्बानन मंदिर का जीर्णोद्धार भी इसी दौर में हुआ। 14वीं सदी में व्यापार के लिहाज से इस्लाम ने इंडोनेशिया में कदम रखा और धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति इस्लामिक हो गई। लेकिन इंडोनेशिया के लोगों ने अपनी पारंपरिक हिंदू और बौद्ध विरासतों को न सिर्फ सहेजा बल्कि उनके महत्व को भी बरकरार रखा। आज इंडोनेशिया भारत से सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत करना चाहता है, जिसका आधार यही सांस्कृतिक विरासत है। वैसे तो इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर ब्रह्मा विष्णु और महेश के ही हैं, लेकिन इस मंदिर में बहती आस्था की एक धारा रामायण और राम कहानी से भी जुड़ती है। प्रम्बानन मंदिर परिसर में सेंद्रा तारी रामायण का मंचन लगभग पूरे साल नियमित रूप से किया जाता है। इसे यहाँ रामायण बेले कहा जाता है। इस मनमोहक शो में स्थानीय संस्कृति और जावनीज संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है।
5: इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में 9वीं सदी का निर्मित ये प्रम्बानन मंदिर बताता है कि दोनों देशों की ऐतिहासिक साझेदारी, पारंपरिक साझेदारी कैसी है। और उसी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता है ये रामायण बाले बताता है कि आज दोनों देशों के रिश्तों को किस तरीके से यहाँ के लोग सहेज कर रखते हैं, परंपराओं को किस तरीके से सहेज कर रखते हैं।
1: हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर इस धरती का परिचय हिंदुस्तान के इतिहास से नहीं है, पर सदियों पहले यहाँ अयोध्या नगरी स्थापित कर दी गई थी।
3: Is it true that the meaning, one meaning of Yogyakarta, the place, is also related somehow to Ayodhya?
6: Well, the city of Yogyakarta actually derived from the words Ayodhya. Yes, the palace of Prince Rama.
1: रामलीला की ये तस्वीर भारत में रामनवमी या दशहरे की नहीं है बल्कि इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की परंपरा जहाँ के जर्रे जर्रे में इस्लाम है, लेकिन हर रहवासी के रोम रोम में राम बसते हैं। मान्यता है कि रामायण काल में वानर राज सुग्रीव ने अपने दूतों को सीता को ढूंढने के लिए जावा द्वीप भेजा था, जो वर्तमान का जावा है।
5: का बहुत हम महत्व दें।
7: डेफिनेटली हमारे पिछले जो 600 साल पहले लोग आए थे, जो श्री विजय राजा, उन्होंने यहाँ पे छाप छोड़ी है। और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी था पहले 100 साल पहले, तो इसके कारण क्या, बुद्धिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तो उसके कारण क्या कि कहीं ना कहीं हिंदुइज्म तो एग्जिस्टेंस है ही। और ऐसे कहा जाता है कि रामायण के युग के ज़माने से यहाँ पे वाली इनके मुख देखे तो जो उनकी सेना थी वो इनके जैसे लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिमिलरिटी तो है।
1: इंडोनेशिया और इंडिया की समानता की कहानियाँ पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी। पर जिस तरह वर्तमान के इंडोनेशिया ने उस संस्कृति को सहेजा है वो अनोखा है। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर में मौजूद है और इस शहर में हर ओर आज भी राम और रामायण के निशान देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जकार्ता का मतलब स्थानीय भाषा में अयोध्या होता है।
8: ये जो शिल्पकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसमें वानर सेना को प्रतीकात्मक तौर पर देख सकते हैं और वो राम सेतु बनाने के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर राम जी का महत्व बहुत ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर विष्णु को पूजनीय माना गया है। योग्यकर्ता, जिसे स्थानीय उच्चारण के साथ योग जकार्ता कहा जाता है, ये अयोध्या का दूसरा नाम है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प।
1: जावा द्वीप पर बसे योग्यकार्ता को लेकर ये मान्यता है कि इस शहर का नाम श्री राम की अयोध्या के नाम से लिया गया। जो जकार्ता का शाब्दिक अर्थ इंडोनेशिया में माना जाता है वो है एक ऐसा शहर जो समृद्ध और फलने फूलने के लिए है। अयोध्या में जब श्री राम का राज्य था उन दिनों की कल्पना भारत के सबसे स्वर्णिम काल के तौर पर की जाती है। तब समृद्धि और वैभव चरम पर था। इसी समृद्धि को आधार बनाकर अयोध्या से जोग जकार्ता का नाम पड़ा। यहाँ रहने वाले लोग इस शहर का सम्मान अयोध्या के बराबर ही करते हैं। अद्भुत है अयोध्या से लगभग 8000 किलोमीटर दूर, और अद्भुत है यहाँ की कहानी एक देश से अधिक उन करोड़ों लोगों की, उस संस्कृति की जिसने हजारों साल के इतिहास में अपनी पूजा पद्धति बदली, अपना मजहब बदला, लेकिन अपनी तहजीब को कभी नहीं बदला। जब यहाँ हिंदू अधिक थे तब राम उनके पूर्वज थे, अब जब दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान यहाँ बसते हैं राम तब भी इनके पूर्वज हैं। ये थी कहानी प्रम्बानन मंदिर, योग्यकार्ता और भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में धड़कते भारत की। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता से श्वेता सिंह, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मानसून के बादल देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुके हैं। बादलों ने जहां पर लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं पर कुछ इलाकों में बादलों से मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। हाल ये हो चुका है कि महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम शहरों में इतना पानी बरस चुका है कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये बारिश ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही है। इसके लिए एनडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कमर कस ली है।

0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। मानसून कई इलाकों में जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद तो बाढ़ और बारिश में लोगों के लिए जिंदगी बचाना चुनौती बन गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। यहाँ हाईवे पर बहते तेज बहाव में घंटों तक लोगों की जान अटकी रही। अंडरपास के एक तरफ एक कार पानी में फंस गई, तो दूसरी ओर पर्यटकों की बस भी दरिया बनी सड़क पर अटक गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के बीच नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार पर फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है और यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर है उसको बाहर निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है।
0: नवसारी के सेंटर पास के पास घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फिर एक एक करके बस से भी करीब 50 पैसेंजर को इसी तरह रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा तेज बारिश के बाद सूरत की शक्ल भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में यहां 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सबसे बुरा हाल यहां के आजाद नगर का नजर आया। यहां बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुंचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
2: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भर आया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
3: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
4: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर भी निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं, बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मानसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगु की है, जहां कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: soccer's biggest stage is here. And we've got everything you need to be plugged into the action. Stay connected to the World Cup with live commentary, expert analysis, and all the moments everyone's talking about. From pre-match buzz to post-match breakdowns, we bring you closer to the game with insights you won't want to miss. No matter where you are, take the World Cup with you. Search World Cup on TuneIn to find the stations and podcasts covering your favorite team.
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरभ गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।
5: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
8: ये शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की दिख रही अपार आस्था की भी।
9: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्तिमय उल्लास के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ते दिखते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का काफिला अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता नजर आता है। जगह जगह शिविर में श्रद्धालु पूजा अर्चना, आरती और भजन के साथ अपना समय बहुत ही बढ़िया तरीके से बिताते दिखते हैं। इन शिविरों में उनकी सुविधा की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि पहली बार श्रद्धालुओं के बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पवित्र गुफा में जाने की इजाज़त नहीं है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने तक 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बालटाल और ननवान बेस कैंप में बने चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख सकते हैं। बारिश के बीच भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है, हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन भक्त धाम में पहुंचकर पूरे भक्त भाव में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के बीच छाता और बरसाती से खुद को बचाते हुए भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से पवित्र धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस है, साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल रास्ते अभी ठीक हैं, भक्तों की संख्या भले ही कम हुई है, लेकिन भक्त जितने भी हैं बाबा केदार के दरबार तक जरूर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अब कम नजर आ रही है, लेकिन भीड़ कम होने का फायदा उन श्रद्धालुओं को मिल पा रहा है जो बद्री विशाल के दरबार तक पहुंच रहे हैं। उन्हें दर्शन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा भी करनी नहीं पड़ रही और सुगम तौर पर बद्री विशाल के दर्शन का अवसर मिल रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पुरी में 16 जुलाई को शुरू होने वाली रथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक से लेकर मॉक ड्रिल तक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं ताकि विभागों के बीच आपसी तालमेल से रथ यात्रा सुचारू और सुरक्षित आयोजन रूप से हो सके। वहीं ओडिशा के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बारिश के बावजूद कारीगर और कलाकार अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार 16 तारीख तक काम पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रथ और उसके पहियों की पेंटिंग की जा रही है। उधर झारखंड के रांची में जगन्नाथपुर मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ देवी देवता मौसी बाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे उसे अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। पुरी से आए कलाकार रथ पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये बिहार की बोधगया का वो मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध अलग अलग मुद्रा में दिखते हैं। इस बौद्ध मंदिर में 1002 भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियों के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह में चारों तरफ की दीवारों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। इस मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था। इस मंदिर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों हिमाचल प्रदेश सिक्किम लद्दाख के साथ साथ विदेश से भी लोग आते रहते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बीच वसई के वसंत नगरी सिग्नल इलाके से राहत की एक तस्वीर सामने आई। यहां फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी की वजह से पानी के बीच दो कार में फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यहां पानी के तेज बहाव में दोनों कार बहने लगी थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक कार के ड्राइवर और दूसरी कार से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों कार को भी पानी से बाहर निकालकर सड़क तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
8: और अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की। अपने इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी

तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानंद पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। इसके तहत भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। दोनों देशों का मानना है कि इससे भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते और मजबूत होंगे।

0: माथे पर त्रिपुंड, भगवा कुर्ता और दिल में भक्ति की भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के अंतिम दिन योग्यकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। कंधे पर अलग तरह का स्टॉल लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मंदिर में पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ की सनातन शिल्पकला, आध्यात्मिक आबोहवा देखकर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। दिल्ली से 7763 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर की पावन ध्वनि की अनुगूंज हुई तो उन्हें भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का स्मरण हो आया।
1: अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर का वीडियो साझा करते हुए इसे मैजेस्टिक प्रम्बानन टेंपल बताया। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सनातन के भव्य दिव्य भक्ति भाव से सराबोर मंदिर में पहुंचकर आरती करने स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हृदय भक्ति से भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने साल 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये मंदिर मध्य जावा में जोग जकार्ता के पास शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जो त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इनमें सबसे प्रमुख 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है, जिसके उत्तर में ब्रह्मा और दक्षिण में विष्णु मंदिर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नकाशी में रामायण की इंडोनेशियाई शैली को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है, जब जावा द्वीप पर हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव था। इन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली से प्रेरित है, जिसमें ऊंचे विमान, बड़े प्रांगण, वास्तुशास्त्र की मंडल अवधारणा नजर आती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक पूरी रामायण कथा पत्थर पर उकेरी गई है। एक समय में इस परिसर में लगभग 240 मंदिर थे, वहीं पूरे क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिर हैं। माना जाता है कि इसे ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई तिकातन ने शुरू किया था। यहाँ हर साल मई से अक्टूबर के बीच पूर्णिमा की रातों में खुले मंच पर रामायण बैले का भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इंडोनेशिया का ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म का प्रभाव कितना व्यापक था। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं इस बात की गवाह हैं कि भगवान राम और कृष्ण ने अवतार बेशक भारतवर्ष में लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सार्वभौमिक और कालातीत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सौभाग्य

0: की बात है कि इंडोनेशिया में यहां पहुंचकर उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्वार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मंदिर परिसर के कई छोटे मंदिरों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग देगा। इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा।
1: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी थोड़े भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि बार बार भगवान शिव की सेवा का असर मिलना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है।
1: चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: सदियों पुराने इस मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में राजनीतिक बदलावों के कारण ये मंदिर उपेक्षित हो गया था। बाद में आए भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों ने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से साल 2006 के जावा भूकंप के बाद मंदिर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर की फिर से खोज हुई, उसके बाद संरक्षण का काम शुरू किया गया। अब खास बात यह है कि मंदिर के जीर्णोद्वार परियोजना की शुरुआत 2026-27 में हो रही है, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1927 में जावा और परमानंद आने का शताब्दी वर्ष भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आज दिल्ली की हवा 2026 की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज हुई, तो वहीं बनारस वालों को मिलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में अलग द्वार से दर्शन करने की सुविधा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश से दोहरी राहत मिली है। एक तरफ दिल्ली वालों को ठंडी साफ हवा मिली और साफ आसमान भी देखने को मिला। आज राजधानी में साल 2026 की सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। यहां शाम 4 बजे AQI 59 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। 12 जून को दर्ज किए गए पिछले सबसे अच्छे AQI से थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आई है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। IMD ने कल भी राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारसी लोग अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे। CM योगी ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से प्रवेश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसके तहत गेट पर लोकल ID दिखाकर वो दर्शन के लिए जा सकेंगे। दरअसल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन उपलब्ध करवाने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए भारतीय रेलवे सौगात लेकर आया है। गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए चार ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च किया गया है। जुलाई और अगस्त के महीने में गोरखपुर से दो विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही हैं। ये ट्रेनें श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ साथ देश के चार प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कराएंगी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार हो गया है, जिसमें पर्यटकों खासतौर पर बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी यहां शुरू की गई है। इसके जरिए यहां पर्यटकों को रोमांच का तड़का तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों के लिए बनाई गई आधुनिक भूल भुलैया उन्हें मनोरंजन के साथ एजुकेट भी करेंगी।
2: और अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की। राम मंदिर में दान को लेकर हाल के दिनों में सामने आए कथित गड़बड़ी के मामले ने भले ही चर्चा तेज कर दी है, लेकिन राम भक्तों की आस्था आज भी अटूट बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर रहे हैं। हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

0: आपदाम पर हरताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। रामलला की नगरी अयोध्या में चंदा चोरी की घटना के बाद क्या सब बदल गया है?
1: एकदम गंदी धूप है, आप लोग अयोध्या प्रॉपर घूम
2: रहे हैं? दोपहर है, हमको तो लग ही नहीं रहा है। हाँ, हमको तो लग रहा है शाम है।
1: चंदा चोरी की बात कर रहा हूँ, जो चर्चा आजकल चल रही है ना मंदिर में, जो डोनेशन का हुआ है स्कैम,
2: वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो मैं नहीं जानती ना।
1: लेकिन आप जितना घूमी है सब नॉर्मल लग रहा है?
2: हाँ, वो सब नॉर्मल लग रहा है।
1: चंदा चोरी की जो घटना हुई उसका कोई असर दिख रहा है आपको या फिर नॉर्मल है सब कुछ, कोई चर्चा नहीं?
3: अभी तो चर्चा नहीं सुना। अच्छा,
1: जमीन पर सब नॉर्मल है जहाँ जहाँ घूम?
0: क्या अयोध्या में भीड़ और वो उत्साह कम हो गया है?
4: यूपी तमाम यंगस्टर्स में देख रहा था, एकदम खुशी से नहा रहे हैं, एकदम
5: हर कोई खुशी से नहा रहा है। चोरी का जो ये बात है ना, तो ये तो वो जाने, ट्रस्ट वाले लोग जाने, तो उसे आम आदमी को उसे क्या देती है? आम आदमी अपना आया है रामलला का दर्शन करने, दर्शन करते रहा है, जा रहा है।
0: क्या अयोध्या में भगवान राम के भक्तों में पहले जैसी आस्था नहीं रही?
1: चंदा चोरी की आजकल खबरें आ रही हैं, असर कुछ है या सब नॉर्मल है?
6: सब नॉर्मल है, सो खाली चलते रहता है सब नॉर्मल।
1: ट्रस्ट की बात है,
6: वो उनका अपना पर्सनल मामला।
1: हम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है,
6: के लिए सब नॉर्मल है।
1: दर्शन सुगम हो गए?
6: बहुत बढ़िया दर्शन किए हम लोगों ने।
1: आप लोगों के भी सुगम दर्शन हो गए? घटनाओं का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है?
7: नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो भी घोटाला किया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए।
0: इन सवालों के जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने पड़ताल की। तो अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। और लोगों से अयोध्या में चंदा चोरी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं है।
1: मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से। और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल मनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना, ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है कि चोरी वगैरह अलग प्रकरण चला। उसके बाद क्या जो जमीन है, मैं यहाँ सरयू घाट में देख रहा हूँ भीड़ है, लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, युवा एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। कुछ असर पड़ा है अयोध्या?
8: असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा।
1: मतलब मंदिर अंदर में लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत?
8: बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर में।
1: लखनऊ चौक पर भी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं?
8: यस सर, आप देख सकते हैं सब लोही क्या नाम है ले ही रहे हैं लोग, भीड़ में कोई उसमें कमी नहीं है।
1: खबरें आजकल चल रही है ना डोनेशन थेफ्ट वगैरह का, चंदा चोरी वगैरह, आप जब अयोध्या में आए कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है?
7: हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार आए हैं तो इसके कोई जानकारी अभी है नहीं, अभी तो घूमने की अभी जस्ट आए हैं। अच्छा तो है।
0: इसके बाद हमारी टीम लता चौक जो कि अयोध्या का नया सेल्फी पॉइंट भी है, वहां बने सूर्य स्तंभ दिन हो या रात दबकते और चमकते रहते हैं। भरी दोपहरी में भी लोग यहां सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। जब उनसे चंदा चोरी के मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में सब पहले जैसा है।
1: सरयू किनारे से हम आए हैं अब लता चौक, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जो सेल्फी पॉइंट बन गया है। और अभी जो है फिलहाल अयोध्या में भरी दोपहरी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ पर आना जाना फोटो खिंचाना लगा हुआ है। शाम होते होते रात होते होते तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं। देखिए फोटोग्राफर्स तमाम यहाँ पर हैं, खूब फोटोज क्लिक करते हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं सेल्फीज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक परिवार यहाँ आया भी हुआ है जो फोटोज क्लिक कर आ रहा है। सामने वो प्रसिद्ध लता चौक है, खूबसूरत लता चौक, लता जी की वीणा है। और उसके ठीक पीछे अगर कैमरामैन गौरव जूम कर पाए तो वो सूर्य स्तंभ है, यानी कि भगवान भास्कर और जो कि कहीं ना कहीं कुल देवता हैं श्री रामचंद्र के। अब आप यहाँ देखें तो तमाम फोटोग्राफर्स हैं, ये नए जो कपल्स होते हैं, नई नई जिनकी शादी होती है, वो भी यहाँ पर कई बार फोटो खिंचाने आते हैं। तो मैंने जैसा कहा, अयोध्या केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पर भी बदल रहा है। अब आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती अयोध्या की फिलहाल बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अयोध्या में कैसा माहौल है? मजा आ रहा है?
9: मजा आ रहा है,
1: बढ़िया माहौल है। क्या क्या देख लिया?
9: हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए, राम मंदिर देख लिए, सुग्रीव किला कानपुर से।
1: कानपुर से आए हैं। जो आप जैसे घूम रहे होंगे, मंदिर जा रहे होंगे, पहले भी शायद आए ही होंगे, कोई बदलाव है? सब पहले जैसा ही नॉर्मल?
9: उस पे तो कोई बदलाव नहीं,
1: वो ना सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे।
9: आस्था में तो कमी थोड़ी है लोगों में।
0: आखिरकार हमारी टीम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वार यानी राम मंदिर पहुंची और जहां मौजूद श्रद्धालुओं से भी यही सवाल पूछा। लोगों ने कहा राम जी के आगे कुछ हो जाए लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ेगी।
1: आपने सरयू की चंचलता देखी, लता चौक की सुंदरता देखी, आप देखें राम मंदिर की वो समरसता, आस्था का वो केंद्र जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ते हैं। घटनाएं कुछ भी हो जाएं लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ती, उसका उदाहरण है ये जीती जागती भीड़ जो सामने की ओर आपको आती दिखेगी। ये आप देखें तो तमाम लोग जो यहाँ पर आते दिखेंगे, बैठते दिखेंगे और इन गाड़ियों में चढ़ते दिखेंगे, ये परिवार हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं और आवागमन करते हैं, और भी तमाम लोग हैं। क्या माहौल है चाची? क्या माहौल है? क्या लग रहा है?
10: भैया जाए घरे,
1: लग रहा है
10: अच्छा, बहुत लग रहा है।
1: बदलाव तो नहीं दिख रहा है अयोध्या में? जो चंदा चोरी की खबरें आई उसके बाद कुछ बदलाव तो नहीं है? सब नॉर्मल है?
10: सब नॉर्मल तो भैया दिखात है, चोरी वोरी वाला हमें सब कुछ पता नहीं चला है।
1: देखिए एमपी से परिवार आया है, क्या बढ़िया तस्वीर, आप देखिए खुद देखिए, यही श्री रामचंद्र की आस्था है अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूर्ण कराने के लिए। जहाँ एक बेटा आता है और राम मंदिर में दर्शन कराता है तो कैसे कह दिया जाए कि अयोध्या बदल गई है, या कैसे कह दिया जाए कि इस चोरी का असर जमीन पर भी है। जरूर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, आरोपियों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसी कार्रवाई करें, नजीर बने नए लोगों के लिए। लेकिन अयोध्या अभी भी वैसे ही है, रामचंद्र को लेकर आस्था अभी भी वैसी है, सरयू का वो कलकल बहता जल अभी भी वैसा ही है।
0: हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: सौरव गांगुली के जन्मदिन पर फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
12: राजकुमार राव की फिल्म दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक आया सामने। सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उन पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। विक्रमादित्य मोटवानी निर्देशित दादा द सौरव गांगुली स्टोरी में राजकुमार राव लीड रोल में हैं। इस फिल्म के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने इसके रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म ग्रहों में तेरे रूबरू का ट्रेलर सामने आ चुका है जिसमें सस्पेंस थ्रिल के साथ एक्शन भी है। ट्रेलर में तकनीक और इंटरनेट की दुनिया के जीवन पर हो रहे नकारात्मक असर को दिखाने की कोशिश भी की गई है। इंद्रदास निर्देशित फिल्म रहू मैं तेरे रूबरू में आर्य कुमार, नीता शेट्टी और पीहू बिश्वास जैसे नए कलाकार अहम रोल में है। ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
13: मैं बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पे, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगी। कौन हो तुम?
14: तुम्हारी हमदर्दी वो मेरे से बदला लेना चाहता है।
12: अनुपम खेर ने अयोध्या में अपनी फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कुछ खास तस्वीरें भी साझा की। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित फिल्म श्री राम भूमि में अनुपम खेर मुख्य रोल में नजर आएंगे। अनुपम के अलावा इस फिल्म में ऋतिक भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिका में दिखेंगे। प्रज्वल देवराज राजवीर शेट्टी स्टार कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। गुरुदत्ता गनिका लिखित और निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर में सालाना भैंस दौड़ प्रतियोगिता कमला की झलक दिखाई गई है। प्रज्वल देवराज जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं और फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है जहां राजवीर शेट्टी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस फिल्म में संपदा मित्रा, रमेश इंदिरा, सुष्मिता भट्ट, श्रीधर केएस, गोविंद गौड़ा और निरंजन भी भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी।
11: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
16: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
17: Jack, you're killing me.
16: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
19: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
20: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मंदिर की करेंगे जो भारत की धरती पर नहीं लेकिन जहां पहुंचकर हर और भारत ही नजर आता है। एक ऐसा हिंदू मंदिर जो उस देश में है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बसती है। एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल पुराना बताया जाता है लेकिन अपने वजूद में आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। भारत के दिल में जो रामायण और राम कहानी सदियों से बसी है वो भारत की सीमाओं और महासागर के पार मौजूद इस मंदिर में आज भी पूरी आस्था के साथ कही और सुनी जाती है।
1: भारत से हजारों किलोमीटर दूर जहां धड़कता है भारत, वो मुस्लिम देश जहां कभी पूजे जाते थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंडोनेशिया का वो धाम जहां आज भी बसती हैं सीता, जहां मिलते हैं राम, जहां का धर्म इस्लाम है लेकिन संस्कृति में राम है। वो भूमि जिसका उल्लेख मिलता है रामायण में। वो द्वीप जहां साल भर गाई और सुनाई जाती है रामलीला। महादेव का वो मंदिर जिसने एक सहस्राब्दी में झेले प्रकृति के जाने कितने वार, कितने प्रहार, मगर आज भी खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है। आज सुनाएंगे कहानी इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: इंडोनेशिया के इसी प्रम्बानन मंदिर में आज भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इस 1000 साल पुराने मंदिर में दर्शन किए। ये मौका बेहद खास रहा। इस अनुपम और अनमोल विरासत को सदियों से सहेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और अब भारत इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मौजूद इस यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा था वो दृश्य जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे।
2: जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण में मान सकता हूँ।
1: मध्य जावा की धरती, आसमान को छूते शिखर और पत्थरों में दर्ज 1000 साल पुराना इतिहास, यही है प्रम्बानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता की भव्य पहचान। तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी न जाने कितनी आपदाएं झेलने के बाद भी ये मंदिर अपनी जगह सदियों की कहानियां समेटे खड़ा है। बीते कई सालों से इस मंदिर में पूजा तो नहीं होती, लेकिन पवित्रता और महत्व उतना ही है जितना भारत में किसी मंदिर का होता है। इंडोनेशिया दौरे के तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक परिसर में पहुंचे। एक बार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर दो देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का सेतु बन गया। मानो हजारों साल का इतिहास सामने आ गया।
2: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं, और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री ने पहले आसमान से इस अद्भुत मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की खिड़की से मंदिर का दीदार करवाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे।
2: इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मानंद मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के काम में एनास्टाइलोसिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा। एनास्टाइलोसिस एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प तकनीक है जिसका उपयोग नष्ट हो चुके प्राचीन स्मारकों या खंडहरों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के तहत स्मारकों के गिरे हुए मूल टुकड़ों जैसे पत्थरों और खम्भों आदि को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़कर इमारत का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी एनास्टाइलोसिस तकनीक के माध्यम से ब्रह्मानंद मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाएगा। वैसे ये परियोजना सिर्फ पत्थरों को जोड़ने की नहीं बल्कि इतिहास को भविष्य से जोड़ने की भी है। भारत न केवल इस साझा सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार में भूमिका निभाएगा बल्कि इसके पूरा होने पर इंडोनेशिया में साथ उत्सव मनाने का वादा भी PM मोदी इंडोनेशिया के लोगों से करते आए हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: 1927 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जावा और ब्रह्मानंद की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गुरुदेव टैगोर वहां की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रभाव और स्थानीय लोगों की कला से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस यात्रा के संस्मरणों और अनुभवों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया था जिन्हें बाद में टू जावा फ्रॉम द पिलग्रिम इन इंडिया नाम की एक किताब के रूप में संकलित किया गया था। अब लगभग एक सदी बाद भारत उसी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन का भी अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश और वहाँ हिंदू धरोहर के संरक्षण में भारत की भूमिका ये बताती है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ व्यापार या रणनीति तक सीमित नहीं, बल्कि साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विरासत पर भी आधारित है। पीएम मोदी ने इस विरासत को इतने साल सहेजने के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया और ये भरोसा भी जताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग इसे देखने पहुंचेंगे।
2: 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है।
1: विदेशी धरती पर 1000 साल पुराने मंदिर की ये यात्रा वास्तव में एक संदेश है, संदेश कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं मानता, बल्कि दुनिया भर में फैली भारतीय सभ्यता की धरोहरों के संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: द्वीपों के देश इंडोनेशिया में आखिर कैसे अस्तित्व में आया ये हिंदू मंदिर, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर जाया करते थे। इन्हीं में से कई व्यापारियों ने इसी द्वीप को अपना घर बना लिया और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इसी के साथ शुरुआत हुई एक संस्कृति और संस्कारों के एक मिले जुले और साझा स्वरूप की। भारत के गए इन लोगों ने धीरे धीरे धरती के इस कोने पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीज बोए और कालांतर में उन्हीं बीजों से पनपा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी प्रम्बानंद मंदिर के निर्माण की, पुनर्निर्माण और विस्तार की।
1: इंडोनेशिया की धरती पर ये वो मंदिर है जहाँ सृष्टि के निर्माता भी हैं, पालनकर्ता भी और देवों के देव भोले शंकर भी मौजूद हैं। ये त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
3: What is the history of
4: the history of the Prambanan Temple? Is the biggest complex of Hindu temple in Indonesia.
3: It was built.
4: The was built in 9th century, but there are about 856 after Christ.
1: हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर आया करते थे और इसकी सुंदरता की वजह से यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे ऋषि परंपरा इस द्वीप की पहचान बन गई। माना जाता है कि जब इंडोनेशिया में हिंदू राजवंशों का शासन हुआ करता था, तब संजय वंश के राजाओं ने 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर संजय वंश के राजा राकाई पिकातन की देन माना जाता है। कभी यहाँ करीब 240 मंदिर थे और पूरे प्रम्बानन क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिरों का विशाल समूह मौजूद था। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के आकार में करवाया गया था। इसके बीच में भगवान शिव का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है, आसपास विष्णु और ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिमूर्ति मंदिर कहा जाता है। मंदिर परिसर में 250 छोटे बड़े मंदिर और हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना गया है,
5: क्योंकि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये प्रम्बानन मंदिर है जो कि 9वीं सदी में निर्मित इंडोनेशिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जब 4th सदी थी उस समय की बात है जब हिंदुत्व का यहाँ पर बहुत आधिपत्य था और सब यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे, अब 2% से कम लोग बच गए हैं जो हिंदू हैं। लेकिन प्रम्बनन मंदिर जो है यहाँ पर, पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती है, ये सुनसान है बिल्कुल, एक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। अगर आप तीनों मंदिरों को देखें, और तीनों मंदिरों के यानी सामने विष्णु मंदिर आप देख रहे हैं, शिव मंदिर देख रहे हैं और ब्रह्मा मंदिर देख रहे हैं, और सबके ठीक सामने का जो हिस्सा है वो है उनके वाहनों का मंदिर है, यानी नंदी मंदिर, हंस मंदिर और वरुण मंदिर। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गरुड़ का महत्व होता है, गरुड़ यानी कि विष्णु जी की सवारी, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह भी होता है ना वो भी गरुड़ ही है। मैं आपको यहाँ के नोट पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गरुड़ का जो चिन्ह है ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है।
1: बताया जाता है कि 11वीं सदी में भूकंप और ज्वालामुखी की चपेट में आने की वजह से ये मंदिर परिसर मलबे में दब गया था। 17वीं सदी के शासकों ने मंदिर की फिर से खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1918 तक मंदिर का वास्तविक स्वरूप तैयार हो सका। 2006 में फिर भयंकर भूकंप इस क्षेत्र में आया। परिसर में बाकी मंदिर लगभग ध्वस्त हो गए, लेकिन जहां परिसर के बाकी मंदिर खंडित होते रहे, मुख्य त्रिमूर्ति मंदिर को हर बार नाम मात्र ही नुकसान पहुंचा। कीर्ति नगारा और त्रिभुवना जैसे हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया में कई बरस शासन किया। श्री विजया और गजामधा जैसे साम्राज्य इंडोनेशिया के सबसे सशक्त साम्राज्य थे। बौद्ध धर्म भी तब सह अस्तित्व के साथ इस द्वीप पर पनपने लगा था। बाद में संजय वंश के राजाओं ने वर्तमान इंडोनेशिया की आधारशिला रखी, मंदिरों का निर्माण करवाया, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। प्रम्बानन मंदिर का जीर्णोद्धार भी इसी दौर में हुआ। 14वीं सदी में व्यापार के लिहाज से इस्लाम ने इंडोनेशिया में कदम रखा और धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति इस्लामिक हो गई। लेकिन इंडोनेशिया के लोगों ने अपनी पारंपरिक हिंदू और बौद्ध विरासतों को न सिर्फ सहेजा बल्कि उनके महत्व को भी बरकरार रखा। आज इंडोनेशिया भारत से सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत करना चाहता है, जिसका आधार यही सांस्कृतिक विरासत है। वैसे तो इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर ब्रह्मा विष्णु और महेश के ही हैं, लेकिन इस मंदिर में बहती आस्था की एक धारा रामायण और राम कहानी से भी जुड़ती है। प्रम्बानन मंदिर परिसर में सेंद्रा तारी रामायण का मंचन लगभग पूरे साल नियमित रूप से किया जाता है। इसे यहाँ रामायण बेले कहा जाता है। इस मनमोहक शो में स्थानीय संस्कृति और जावनीज संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है।
5: इंडोनेशिया के युग्यकर्ता में 9वीं सदी का निर्मित ये प्रम्बानन मंदिर बताता है कि दोनों देशों की ऐतिहासिक साझेदारी, पारंपरिक साझेदारी कैसी है। और उसी मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता है ये रामायण बाले बताता है कि आज दोनों देशों के रिश्तों को किस तरीके से यहाँ के लोग सहेज कर रखते हैं, परंपराओं को किस तरीके से सहेज कर रखते हैं।
1: हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर इस धरती का परिचय हिंदुस्तान के इतिहास से नहीं है, पर सदियों पहले यहाँ अयोध्या नगरी स्थापित कर दी गई थी।
3: Is it true that the meaning, one meaning of Yogyakarta, the place, is also related somehow to Ayodhya?
6: Well, the city of Yogyakarta actually derived from the words Ayodhya, yes, the palace of प्रिंस रामा।
1: रामलीला की ये तस्वीर भारत में रामनवमी या दशहरे की नहीं है बल्कि इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की परंपरा जहाँ के जर्रे जर्रे में इस्लाम है, लेकिन हर रहवासी के रोम रोम में राम बसते हैं। मान्यता है कि रामायण काल में वानर राज सुग्रीव ने अपने दूतों को सीता को ढूंढने के लिए जावा द्वीप भेजा था, जो वर्तमान का जावा है।
5: का बहुत हम महत्व दें।
7: डेफिनेटली हमारे पिछले जो 600 साल पहले लोग आए थे, जो श्री विजय राजा, उन्होंने यहाँ पे छाप छोड़ी है। और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म भी था पहले 100 साल पहले, तो इसके कारण क्या, बुद्धिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तो उसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हिंदुइज्म तो एग्जिस्टेंस है ही। और ऐसे कहा जाता है कि रामायण के युग के ज़माने से यहाँ पे वाली इनके मुख देखे तो जो उनकी सेना थी वो इनके जैसे लगती है, तो कहीं ना कहीं हमारा सिमिलरिटी तो है।
1: इंडोनेशिया और इंडिया की समानता की कहानियाँ पौराणिक भी हैं और ऐतिहासिक भी। पर जिस तरह वर्तमान के इंडोनेशिया ने उस संस्कृति को सहेजा है वो अनोखा है। प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर में मौजूद है और इस शहर में हर ओर आज भी राम और रामायण के निशान देखने को मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जकार्ता का मतलब स्थानीय भाषा में अयोध्या होता है।
8: ये जो शिल्पकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इसमें वानर सेना को प्रतीकात्मक तौर पर देख सकते हैं और वो राम सेतु बनाने के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर राम जी का महत्व बहुत ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर विष्णु को पूजनीय माना गया है। योग्यकर्ता, जिसे स्थानीय उच्चारण के साथ योग जकार्ता कहा जाता है, ये अयोध्या का दूसरा नाम है। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प।
1: जावा द्वीप पर बसे योग्यकार्ता को लेकर ये मान्यता है कि इस शहर का नाम श्री राम की अयोध्या के नाम से लिया गया। जो जकार्ता का शाब्दिक अर्थ इंडोनेशिया में माना जाता है वो है एक ऐसा शहर जो समृद्ध और फलने फूलने के लिए है। अयोध्या में जब श्री राम का राज्य था उन दिनों की कल्पना भारत के सबसे स्वर्णिम काल के तौर पर की जाती है। तब समृद्धि और वैभव चरम पर था। इसी समृद्धि को आधार बनाकर अयोध्या से जोग जकार्ता का नाम पड़ा। यहाँ रहने वाले लोग इस शहर का सम्मान अयोध्या के बराबर ही करते हैं। अद्भुत है अयोध्या से लगभग 8000 किलोमीटर दूर, और अद्भुत है यहाँ की कहानी। कहानी एक देश से अधिक उन करोड़ों लोगों की, उस संस्कृति की जिसने हजारों साल के इतिहास में अपनी पूजा पद्धति बदली, अपना मजहब बदला, लेकिन अपनी तहजीब को कभी नहीं बदला। जब यहाँ हिंदू अधिक थे तब राम उनके पूर्वज थे। अब जब दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान यहाँ बसते हैं, राम तब भी इनके पूर्वज हैं। ये थी कहानी प्रम्बानन मंदिर, योग्यकार्ता और भारत से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया में धड़कते भारत की। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता से श्वेता सिंह, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: मानसून के बादल देश के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुके हैं। बादलों ने जहां पर लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं पर कुछ इलाकों में बादलों से मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। हाल ये हो चुका है कि महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम शहरों में इतना पानी बरस चुका है कि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये बारिश ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही है। इसके लिए एनडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कमर कस ली है।

0: ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। मानसून कई इलाकों में जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उसके बाद तो बाढ़ और बारिश में लोगों के लिए जिंदगी बचाना चुनौती बन गया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। यहाँ हाईवे पर बहते तेज बहाव में घंटों तक लोगों की जान अटकी रही। अंडरपास के एक तरफ एक कार पानी में फंस गई, तो दूसरी ओर पर्यटकों की बस भी दरिया बनी सड़क पर अटक गई।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और इसके आगे से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है, दोनों के बीच को जोड़ता हुआ एक खारेल का जो अंडरपास है, अंडरपास के सर्विस रोड के बीच नीचे एक तरफ जो बस फंसी हुई है, दूसरी तरफ जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैसेंजर कार पर फंसी हुई है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू टीम आ चुकी है और यहाँ पे जो अंदर जो पैसेंजर है उसको बाहर निकालने की अभी पूरी कोशिश जारी है।
0: नवसारी के अंडर पास के पास घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला। पहले कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, फिर एक एक करके बस से भी करीब 50 पैसेंजर को इसी तरह रस्सियों के सहारे सुरक्षित बचा लिया गया। अब जरा तेज बारिश के बाद सूरत की शक्ल भी देख लीजिए। पिछले 24 घंटों में यहां 7 इंच से ज्यादा बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। सबसे बुरा हाल यहां के आजाद नगर का नजर आया। यहां बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुंचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
2: पालघर जिले में सुबह 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भराया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
3: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
4: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मानसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगु की है, जहाँ कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जा रही है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
10: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की दिख रही अपार आस्था की भी।
11: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों में एक अलग ही जोश नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्तिमय उल्लास के साथ पवित्र गुफा की ओर बढ़ते दिखते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरुआती 5 दिनों में ही 1,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहलगाम रूट पर अमरनाथ यात्रा के यात्रियों का काफिला अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता नजर आता है। जगह जगह शिविर में श्रद्धालु पूजा अर्चना, आरती और भजन के साथ अपना समय बहुत ही बढ़िया तरीके से बिताते दिखते हैं। इन शिविरों में उनकी सुविधा की पूरी व्यवस्था है, यहाँ तक कि पहली बार श्रद्धालुओं के बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर की सुविधा भी दी गई है, क्योंकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को पवित्र गुफा में जाने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौटने तक 13 साल से कम उम्र के बच्चों को बालटाल और ननवान बेस कैंप में बने चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख सकते हैं। बारिश के बीच भी चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है, हालांकि यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है, लेकिन भक्त धाम में पहुंचकर पूरे भक्त भाव में नजर आ रहे हैं। केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के बीच छाता और बरसाती से खुद को बचाते हुए भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन की ओर से पवित्र धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष फोकस है। साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। हालांकि केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल रास्ते अभी ठीक हैं। भक्तों की संख्या भले ही कम हुई है, लेकिन भक्त जितने भी हैं बाबा केदार के दरबार तक जरूर पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी मौसम की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या अब कम नजर आ रही है, लेकिन भीड़ कम होने का फायदा उन श्रद्धालुओं को मिल पा रहा है जो बद्री विशाल के दरबार तक पहुंच रहे हैं। उन्हें दर्शन के लिए ज्यादा प्रतीक्षा भी करनी नहीं पड़ रही और सुगम तौर पर बद्री विशाल के दर्शन का अवसर मिल रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ओडिशा के पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पुरी में 16 जुलाई को शुरू होने वाली रथ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक से लेकर मॉक ड्रिल तक का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी खुद रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं, ताकि विभागों के बीच आपसी तालमेल से रथ यात्रा सुचारू और सुरक्षित आयोजन रूप से हो सके। वहीं ओडिशा के बारीपदा में भी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। बारिश के बावजूद कारीगर और कलाकार अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कलाकार 16 तारीख तक काम पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। रथ और उसके पहियों की पेंटिंग की जा रही है। उधर झारखंड के रांची में जगन्नाथ पूर्व मंदिर में भी रथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ देवी देवता मौसी बाड़ी की यात्रा पर निकलेंगे, उसे अच्छी तरह से सजाया जा रहा है। पुरी से आए कलाकार रथ पर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये बिहार की बोधगया का वो मंदिर है जहां भगवान बुद्ध की 1002 मूर्तियां स्थापित हैं। इन प्रतिमाओं में भगवान बुद्ध अलग अलग मुद्रा में दिखते हैं। इस बौद्ध मंदिर में 1002 भगवान बुद्ध की छोटी मूर्तियों के साथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी स्थापित है। गर्भगृह में चारों तरफ की दीवारों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां अलग अलग मुद्रा में स्थापित है। इस मंदिर और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाने के लिए भूटान से कारीगरों को बुलाया गया था। इस मंदिर को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख के साथ साथ विदेश से भी लोग आते रहते हैं। चारों तरफ हरियाली के बीच मंदिर का दृश्य लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। देश के कई हिस्सों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बीच वसई के वसंत नगरी सिग्नल इलाके से राहत की एक तस्वीर सामने आई। यहां फायर ब्रिगेड की टीम की मुस्तैदी की वजह से पानी के

0: का सड़क तक सुरक्षित पहुंचा दिया।
1: और अब बात करते हैं इंडोनेशिया के ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की। अपने इंडोनेशिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की भी शुरुआत की। इसके तहत भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। दोनों देशों का मानना है कि इससे भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते और मजबूत होंगे।

माथे पर त्रिपुंड, भगवा कुर्ता और दिल में भक्ति की भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के अंतिम दिन योग्यकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन हिंदू मंदिर का दौरा किया। कंधे पर अलग तरह का स्टॉल लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मंदिर में पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर त्रिमूर्ति भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यहाँ की सनातन शिल्पकला, आध्यात्मिक आबोहवा देखकर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। दिल्ली से 7763 किलोमीटर दूर सनातन धर्म की प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कानों में जब महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर की पावन ध्वनि की अनुगूंज हुई तो उन्हें भगवान शिव के परम धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा का स्मरण हो आया।

0: अगर मैं ल्हासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं या आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर का वीडियो साझा करते हुए इसे मैजेस्टिक ब्रह्मानंद टेंपल बताया। हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर सनातन के भव्य दिव्य भक्ति भाव से सराबोर मंदिर में पहुंचकर आरती करने स्थानीय पुजारियों से आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हृदय भक्ति से भर गया। गौर करने वाली बात यह है कि इस मंदिर परिसर को यूनेस्को ने साल 1991 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ये मंदिर मध्य जावा में जोग जकार्ता के पास शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस परिसर में छोटे बड़े कुल 240 मंदिर हैं, जिनमें से 8 विशेष हैं। ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो त्रिमूर्ति यानी शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। इनमें सबसे प्रमुख 47 मीटर ऊंचा भगवान शिव का मंदिर है, जिसके उत्तर में ब्रह्मा और दक्षिण में विष्णु मंदिर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई पत्थर की नकाशी में रामायण की इंडोनेशियाई शैली को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया। मंदिर का निर्माण काल 850 ईस्वी में माना जाता है, जब जावा द्वीप पर हिंदू और बौद्ध राजवंशों का प्रभाव था। इन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत की पल्लव चोल शैली से प्रेरित है, जिसमें ऊंचे विमान, बड़े प्रांगण, वास्तुशास्त्र की मंडल अवधारणा नजर आती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के वनवास से लेकर रावण वध तक पूरी रामायण कथा पत्थर पर उकेरी गई है। एक समय में इस परिसर में लगभग 240 मंदिर थे, वहीं पूरे क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिर हैं। माना जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण संजय राजवंश के राकाई तिकातन ने शुरू किया था। यहां हर साल मई से अक्टूबर के बीच पूर्णिमा की रातों में खुले मंच पर रामायण बैले का भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इंडोनेशिया का ये ऐतिहासिक मंदिर इस बात का गवाह है कि प्राचीन काल में सनातन धर्म का प्रभाव कितना व्यापक था। मंदिर के दीवारों पर उकेरी गई रामायण और कृष्ण लीला से जुड़ी कथाएं इस बात की गवाह हैं कि भगवान राम

0: कृष्ण ने अवतार बेशक भारत वर्ष में लिया, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव सार्वभौमिक और कालातीत है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सौभाग्य की बात है कि इंडोनेशिया में यहां पहुंचकर उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्वार परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI मंदिर परिसर के कई छोटे मंदिरों के संरक्षण में तकनीकी सहयोग देगा। इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा।
1: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
0: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो,
2: आज दिल्ली की हवा 2026 की सबसे साफ हवा के रूप में दर्ज हुई, तो वहीं बनारस वालों को मिलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में अलग द्वार से दर्शन करने की सुविधा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश से दोहरी राहत मिली है। एक तरफ दिल्ली वालों को ठंडी साफ हवा मिली और साफ आसमान भी देखने को मिला। आज राजधानी में साल 2026 की सबसे साफ हवा दर्ज की गई है। यहां शाम 4 बजे AQI 59 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। 12 जून को दर्ज किए गए पिछले सबसे अच्छे AQI से थोड़ी बेहतर स्थिति नजर आई है। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आई है। IMD ने कल भी राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बनारसी लोग अब अलग द्वार से दर्शन कर सकेंगे। CM योगी ने बनारस वालों को दर्शन करने को लेकर अलग द्वार से प्रवेश के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया है, जिसके तहत गेट पर लोकल ID दिखाकर वो दर्शन के लिए जा सकेंगे। दरअसल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन उपलब्ध करवाने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों और उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों के लिए भारतीय रेलवे सौगात लेकर आया है। गोरखपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए 4 ज्योतिर्लिंग और कई तीर्थों की यात्रा का प्लान लॉन्च किया गया है। जुलाई और अगस्त के महीने में गोरखपुर से 2 विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही हैं। ये ट्रेनें श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ साथ देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कराएंगी। इंदौर के कमला नेहरू चिड़ियाघर में देश का पहला हाईटेक 14D थिएटर तैयार हो गया है, जिसमें पर्यटकों खासतौर पर बच्चों को वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी 20 मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही डिजिटल जंगल सफारी भी यहां शुरू की गई है। इसके जरिए यहां पर्यटकों को रोमांच का तड़का तो मिलेगा ही, साथ ही बच्चों के लिए बनाई गई आग।
2: और अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की। राम मंदिर में दान को लेकर हाल के दिनों में सामने आए कथित गड़बड़ी के मामले ने भले ही चर्चा तेज कर दी है, लेकिन राम भक्तों की आस्था आज भी अटूट बनी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान भी कर रहे हैं। हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

0: आपदाम पर हरतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। रामलला की नगरी अयोध्या में चंदा चोरी की घटना के बाद क्या सब बदल गया है?
1: अरे एकदम गंदी धूप है, आप लोग अयोध्या प्रॉपर घूम
2: रहे हैं। कहां दोपहर है, हमको तो लग ही नहीं रहा है। हाँ, हमको तो लग रहा है शाम है।
1: चंदा चोरी की बात कर रहा हूँ, जो चर्चा आजकल चल रही है ना मंदिर में, जो डोनेशन का हुआ है स्कैम,
2: वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो मैं नहीं जानती ना।
1: लेकिन आप जितना घूमी है सब नॉर्मल लग रहा है?
2: हाँ, वो सब नॉर्मल लग रहा है।
1: चंदा चोरी की जो घटना हुई उसका कोई असर दिख रहा है आपको या फिर नॉर्मल है सब कुछ, कोई चर्चा नहीं?
3: अभी तो चर्चा नहीं सुना। अच्छा,
1: इन पर सब नॉर्मल है जहाँ जहाँ घूम?
0: क्या अयोध्या में भीड़ और वो उत्साह कम हो गया है?
4: तमाम यंगस्टर्स में देख रहा था एकदम खुशी से नहा रहे हैं, एकदम
5: हर कोई खुशी से नहा रहा है। चोरी का जो ये बात है ना, तो ये तो वो जाने, ट्रस्ट वाले लोग जाने, उससे आम आदमी को उससे क्या देती है। आम आदमी अपना आया है रामलला का दर्शन करने, दर्शन करते रहा है, जा रहा है।
0: क्या अयोध्या में भगवान राम के भक्तों में पहले जैसी आस्था नहीं रही?
1: चंदा चोरी की आजकल खबरें आ रही हैं, असर कुछ है या सब नॉर्मल है?
6: सब नॉर्मल है, सब खाली चलते रहता है, सब नॉर्मल।
1: ट्रस्ट की बात है,
6: वो उनका अपना पर्सनल मामला है। मामला
1: हम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है,
6: के लिए सब नॉर्मल है।
1: दर्शन सुगम हो गए?
6: बहुत बढ़िया दर्शन किए हम लोगों।
1: आप लोगों के भी सुगम दर्शन हो गए? घटनाओं का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है?
7: नहीं,
1: नॉर्मल है,
7: नॉर्मल।
8: कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी घोटाला किया है उनपे सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन उनको छोड़ा ना जाए।
0: इन सवालों के जवाब जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने पड़ताल की। तो अगर अयोध्या के उत्साह और भक्तों के जोश को समझना हो तो सरयू घाट आना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो भारी संख्या में राम भक्त और दूर दूर से आए परिवार सरयू घाट पर राम की पैड़ी में स्नान करते नजर आए। और लोगों से अयोध्या में चंदा चोरी के बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं है।
1: मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और सरयू का जो किनारा है वो भी आपको दिखा रहे हैं और राम की पैड़ी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तमाम युवा परिवार भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौसम भी इस वक्त अच्छा है और सरयू का तट है, सरयू मैया का जो कलकल कर बहता जल है उससे आनंदित होते ये युवा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभिनंदन भी इनका नगर निगम कर रहा है अयोध्या से, और इस तरीके से फिलहाल ये आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं और मौज करते भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामने वो राम की पैड़ी का दृश्य है जहाँ अयोध्या में कुछ महीनों बाद दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जिस तरह का दीपोत्सव हर साल बनता है, हर साल एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है जिससे अयोध्या का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का नाम होता है। और ये तस्वीरें जो है ना, ये बताती हैं जरूर चंदा चोरी, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जाँच भी चल रही है, लेकिन इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अयोध्या पसंद है, इन्हें यहाँ का वातावरण पसंद है, इन्हें सरयू मैया का की वो जो छांव है वो पसंद है कि चोरी वगैरह अलग प्रकरण चला। उसके बाद क्या जो जमीन है, मैं यहाँ सरयू घाट पे देख रहा हूँ भीड़ और लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, युवा नहीं युवा एंजॉय कर रहे हैं काफी ज्यादा। कुछ असर पड़ा है अयोध्या?
9: असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा।
1: मतलब मंदिर अंदर में लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत?
9: बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर अंदर।
1: लखनऊ चौक पर भी लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं?
9: यस सर, आप देख सकते हैं सब लोही क्या नाम है ले ही रहे हैं लोग, भीड़ में कोई उसमें कमी नहीं है।
1: खबरें आजकल चल रही है ना डोनेशन थेफ्ट वगैरह का, चंदा चोरी वगैरह, आप जब अयोध्या में आए कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ नॉर्मल है?
10: हम तो यहाँ फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार आए हैं तो इसके कोई जानकारी अभी है नहीं, अभी तो घूमने की अभी जस्ट आए हैं। अच्छा तो है।
0: इसके बाद हमारी टीम लता चौक जो कि अयोध्या का नया सेल्फी पॉइंट भी है, वहाँ बने सूर्य स्तंभ दिन हो या रात दमकते और चमकते रहते हैं। भरी दोपहरी में भी लोग यहाँ सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आए। जब उनसे चंदा चोरी के मामले में पूछा तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में सब पहले जैसा है।
1: सरयू किनारे से हम आए हैं अब लता चौक, यानी कि अयोध्या का वो स्थान जो सेल्फी पॉइंट बन गया है। और अभी जो है फिलहाल अयोध्या में भरी दोपहरी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों का यहाँ पर आना जाना फोटो खिंचाना लगा हुआ है। शाम होते होते रात होते होते तो यहाँ लाइनें लग जाती हैं। देखिए फोटोग्राफर्स तमाम यहाँ पर हैं, खूब फोटोज क्लिक करते हैं, तमाम श्रद्धालु आते हैं सेल्फीज लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक परिवार यहाँ आया भी हुआ है जो फोटोज क्लिक कर आ रहा है। सामने वो प्रसिद्ध लता चौक है, खूबसूरत लता चौक, लता जी की वीणा है, और उसके ठीक पीछे अगर कैमरामैन गौरव जूम कर पाए तो वो सूर्य स्तंभ है, यानी कि भगवान भास्कर, और जो कि कहीं ना कहीं कुल देवता है श्री रामचंद्र के। अब आप यहाँ देखें तमाम फोटोग्राफर्स हैं, ये नए जो कपल्स होते हैं, नई नई जिनकी शादी होती है, वो भी यहाँ पर कई बार फोटो खिंचाने आते हैं। तो मैंने जैसा कहा, अयोध्या केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक टूरिज्म के क्षेत्र के तौर पर भी बदल रहा है। अब आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर, यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती अयोध्या की फिलहाल बनी हुई है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अयोध्या में कैसा माहौल है? मजा आ रहा है?
7: मजा आ रहा है भैया,
1: बढ़िया माहौल है। क्या क्या देख लिया?
7: हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए, राम मंदिर देख लिए, सुग्रीव किला कानपुर से।
1: कानपुर से आए हैं। जो आप जैसे घूम रहे होंगे, मंदिर जा रहे होंगे, पहले भी शायद आए ही होंगे, कोई बदलाव है? सब पहले जैसा ही नॉर्मल?
7: उस पे तो कोई बदलाव नहीं,
1: बदलाव
7: नॉर्मल है
1: वो ना, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है यहाँ पे।
7: हाँ। में तो कमी थोड़ी है लोगों में।
0: आखिरकार हमारी टीम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वार यानी राम मंदिर पहुंची और जहां मौजूद श्रद्धालुओं से भी यही सवाल पूछा। लोगों ने कहा राम जी के आगे कुछ हो जाए लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ेगी।
1: आपने सरयू की चंचलता देखी, लता चौक की सुंदरता देखी, आप देखें राम मंदिर की वो समरसता, आस्था का वो केंद्र जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़ते हैं, घटनाएं कुछ भी हो जाएं लेकिन आस्था कमजोर नहीं पड़ती। उसका उदाहरण है ये जीती जागती भीड़ जो सामने की ओर आपको आती दिखेगी। ये आप देखें तो तमाम लोग जो यहाँ पर आते दिखेंगे, बैठते दिखेंगे और इन गाड़ियों में चढ़ते दिखेंगे, ये परिवार हैं जो अलग अलग जगहों से आते हैं और आवागमन करते हैं, और भी तमाम लोग हैं। क्या माहौल है चाची, क्या माहौल है, क्या लग रहा है?
11: भैया जाए थे घर,
1: क्या लग रहा है?
11: अच्छा बहुत लग रहा है।
1: बदलाव तो नहीं दिख रहा है अयोध्या में? जो चंदा चोरी की खबरें आई उसके बाद कुछ बदलाव तो नहीं है, सब नॉर्मल है?
11: सब नॉर्मल तो भैया दिखात है, चोरी वोरी वाला हमें सब कुछ पता नहीं चला है।
1: देखिए एमपी से परिवार आया है, क्या बढ़िया तस्वीर, आप देखिए खुद देखिए, यही श्री रामचंद्र की आस्था है अपनी माँ की अंतिम इच्छा को पूर्ण कराने के लिए। जहाँ एक बेटा आता है और राम मंदिर में दर्शन कराता है तो कैसे कह दिया जाए कि अयोध्या बदल गई है, या कैसे कह दिया जाए कि इस चोरी का असर जमीन पर भी है। जरूर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, आरोपियों को बख्शना नहीं चाहिए, ऐसी कार्रवाई करें, नजीर बने नए लोगों के लिए, लेकिन अयोध्या अभी भी वैसे ही है, रामचंद्र को लेकर आस्था अभी भी वैसी है, सरयू का वो कलकल बहता जल अभी भी वैसा ही है।
0: हालांकि कई भक्तों का कहना है कि दान से जुड़ा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो सके। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: सौरभ गांगुली के जन्मदिन पर फिल्म दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
13: राजकुमार राव की फिल्म दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी का फर्स्ट लुक आया सामने। सौरभ गांगुली के जन्मदिन पर उन पर उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में राजकुमार राव को सौरभ गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रिक्रिएट करते हुए दिखाया गया है जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी। विक्रमादित्य मोटवानी निर्देशित दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी में राजकुमार राव लीड रोल में हैं। इस फिल्म के पोस्टर के साथ ही मेकर्स ने इसके रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है। ये फिल्म 14 मई 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू का ट्रेलर सामने आ चुका है जिसमें सस्पेंस थ्रिल के साथ एक्शन भी है। ट्रेलर में तकनीक और इंटरनेट की दुनिया के जीवन पर हो रहे नकारात्मक असर को दिखाने की कोशिश भी की गई है। इंद्रदास निर्देशित फिल्म रहूं मैं तेरे रूबरू में आर्य कुमार, नीता शेट्टी और पीहू विश्वास जैसे नए कलाकार अहम रोल में है। ये फिल्म 17 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
14: मैं बहुत भरोसा है ना अपने प्यार पे, तुम बहुत बुरी तरह से पछताओगी। कौन हो तुम?
15: तुम्हारी हमदर्दी वो मेरे से बदला लेना चाहता है।
13: अनुपम खेर ने अयोध्या में अपनी फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी देते हुए कुछ खास तस्वीरें भी साझा की। कामाख्या नारायण सिंह निर्देशित फिल्म श्री राम भूमि में अनुपम खेर मुख्य रोल में नजर आएंगे। अनुपम के अलावा इस फिल्म में ऋतिक, भौमिक और अमृता खानविलकर भी अहम भूमिका में दिखेंगे। प्रज्वल देवराज राजबीर शेट्टी स्टार कन्नड़ फिल्म करावली का ट्रेलर भी रिलीज किया जा चुका है। गुरुदत्ता गनिका लिखित और निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर में सालाना भैंस दौड़ प्रतियोगिता कमला की झलक दिखाई गई है। प्रज्वल देवराज जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं और फिर कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है जहां राज भी शेट्टी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस फिल्म में संपदा मित्रा, रमेश इंदिरा, सुष्मिता भट्ट, श्रीधर केएस, गोविंद गौड़ा और निरंजन भी भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी।
12: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
17: Hi everyone, Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
18: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
19: You hear it once and remember everything.
20: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
19: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
21: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरभ गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण, फ्लाइट टेस्ट के सभी तय लक्ष्यों को किया पूरा। शिव की नगरी काशी में सावन की तैयारियां तेज, इस बार विश्वनाथ मंदिर में होंगे 7 प्रवेश द्वार, वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, 80 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में खराब मौसम पर भारी दिखी आस्था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस मंदिर की करेंगे जो भारत की धरती पर नहीं, लेकिन जहां पहुंचकर हर और भारत ही नजर आता है। एक ऐसा हिंदू मंदिर जो उस देश में है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बसी है। एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन अपने वजूद में आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को समेटे हुए है। भारत के दिल में जो रामायण और राम कहानी सदियों से बसी है, वो भारत की सीमाओं और महासागर के पार मौजूद इस मंदिर में आज भी पूरी आस्था के साथ कही और सुनी जाती है।
1: से हजारों किलोमीटर दूर जहां धड़कता है भारत, वो मुस्लिम देश जहां कभी पूजे जाते थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इंडोनेशिया का वो धाम जहां आज भी बसती हैं सीता, जहां मिलते हैं राम, जहां का धर्म इस्लाम है लेकिन संस्कृति में राम है। वो भूमि जिसका उल्लेख मिलता है रामायण में, वो द्वीप जहां साल भर गाई और सुनाई जाती है रामलीला, महादेव का वो मंदिर जिसने एक सहस्राब्दी में झेले प्रकृति के जाने कितने वार, कितने प्रहार, मगर आज भी खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है। आज सुनाएंगे कहानी इंडोनेशिया के 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर की। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: इंडोनेशिया के इसी प्रम्बानन मंदिर में आज भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे। पीएम मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इस 1000 साल पुराने मंदिर में दर्शन किए। ये मौका बेहद खास रहा। इस अनुपम और अनमोल विरासत को सदियों से सहेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। और अब भारत इंडोनेशिया के योग्यकार्ता में मौजूद इस यूनेस्को धरोहर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में इंडोनेशिया की मदद करने जा रहा है। दोनों देशों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आशय पत्र भी एक्सचेंज किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा था वो दृश्य जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे।
2: जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इस मंदिर में भगवान शिव, माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: मध्य जावा की धरती, आसमान को छूते शिखर और पत्थरों में दर्ज 1000 साल पुराना इतिहास, यही है प्रम्बानन, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता की भव्य पहचान। तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसी न जाने कितनी आपदाएं झेलने के बाद भी ये मंदिर अपनी जगह सदियों की कहानियां समेटे खड़ा है। बीते कई सालों से इस मंदिर में पूजा तो नहीं होती, लेकिन पवित्रता और महत्व उतना ही है जितना भारत में किसी मंदिर का होता है। इंडोनेशिया दौरे के तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक परिसर में पहुंचे। एक बार फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर दो देशों के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का सेतु बन गया। मानो हजारों साल का इतिहास सामने आ गया।
2: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं, और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था, ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था।
1: प्रधानमंत्री ने पहले आसमान से इस अद्भुत मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की खिड़की से मंदिर का दीदार करवाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो एक साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचे।
2: इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूँ।
1: भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय और इंडोनेशियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मंदिर के जीर्णोद्धार का काम करेगा। बताया जा रहा है कि मंदिर के निर्माण के काम में एनास्टाइलोसिस तकनीक का सहारा लिया जाएगा। एनास्टाइलोसिस एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प तकनीक है जिसका उपयोग नष्ट हो चुके प्राचीन स्मारकों या खंडहरों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के तहत स्मारकों के गिरे हुए मूल टुकड़ों जैसे पत्थरों और खंभों आदि को वैज्ञानिक तरीकों से जोड़कर इमारत का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी एनास्टाइलोसिस तकनीक के माध्यम से प्रम्बानन मंदिर को उसके मूल पत्थरों से ही दोबारा खड़ा किया जाएगा। वैसे ये परियोजना सिर्फ पत्थरों को जोड़ने की नहीं बल्कि इतिहास को भविष्य से जोड़ने की भी है। भारत न केवल इस साझा सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार में भूमिका निभाएगा बल्कि इसके पूरा होने पर इंडोनेशिया में 7 उत्सव मनाने का वादा भी PM मोदी इंडोनेशिया के लोगों से करते आए हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: 1927 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जावा और प्रम्बानन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गुरुदेव टैगोर वहाँ की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रभाव और स्थानीय लोगों की कला से बेहद प्रभावित हुए थे। उन्होंने इस यात्रा के संस्मरणों और अनुभवों को पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया था, जिन्हें बाद में टू जावा फ्रॉम द पिलग्रिम इन इंडिया नाम की एक किताब के रूप में संकलित किया गया था। अब लगभग एक सदी बाद भारत उसी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन का भी अहम हिस्सा है। एक मुस्लिम बहुल देश और वहाँ हिंदू धरोहर के संरक्षण में भारत की भूमिका ये बताती है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ व्यापार या रणनीति तक सीमित नहीं बल्कि साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विरासत पर भी आधारित है। पीएम मोदी ने इस विरासत को इतने साल सहेजने के लिए इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया और ये भरोसा भी जताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में भारत के लोग इसे देखने पहुंचेंगे।
2: 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है, इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है।
1: विदेशी धरती पर 1000 साल पुराने मंदिर की ये यात्रा वास्तव में एक संदेश है, संदेश कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं मानता बल्कि दुनिया भर में फैली भारतीय सभ्यता की धरोहरों के संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: द्वीपों के देश इंडोनेशिया में आखिर कैसे अस्तित्व में आया ये हिंदू मंदिर, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए द्वीप पर जाया करते थे। इन्हीं में से कई व्यापारियों ने इसी द्वीप को अपना घर बना लिया और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। इसी के साथ शुरुआत हुई एक संस्कृति और संस्कारों के एक मिले जुले और साझा स्वरूप की। भारत के गए इन लोगों ने धीरे धीरे धरती के इस कोने पर भारत की सांस्कृतिक विरासत के बीज बोए और कालांतर में उन्हीं बीजों से पनपा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो चलिए आपको सुनाते हैं कहानी प्रम्बानंद मंदिर के निर्माण की, पुनर्निर्माण और विस्तार की।
1: इंडोनेशिया की धरती पर ये वो मंदिर है जहाँ सृष्टि के निर्माता भी हैं, पालनकर्ता भी और देवों के देव भोले शंकर भी मौजूद हैं। ये त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है।
3: What is the history of
4: the history of the Prambanan Temple? Is the biggest complex of Hindu temple in Indonesia.
3: It was built.
4: The was built in 9th century, but there are about 856 after Christ.
1: हजारों साल पहले भारत के सौदागर और नाविक मसालों और कुदरती संसाधनों की खोज और व्यापार के लिए इस द्वीप पर आया करते थे और इसकी सुंदरता की वजह से यहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे ऋषि परंपरा इस द्वीप की पहचान बन गई। माना जाता है कि जब इंडोनेशिया में हिंदू राजवंशों का शासन हुआ करता था तब संजय वंश के राजाओं ने 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर संजय वंश के राजा राकाई पिकातन की देन माना जाता है। कभी यहाँ करीब 240 मंदिर थे और पूरे प्रम्बानन क्षेत्र में 500 से ज्यादा मंदिरों का विशाल समूह मौजूद था। इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के आकार में करवाया गया था। इसके बीच में भगवान शिव का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है, आसपास विष्णु और ब्रह्मा जी के मंदिर हैं, जिसकी वजह से इसे त्रिमूर्ति मंदिर कहा जाता है। मंदिर परिसर में 250 छोटे बड़े मंदिर और हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर माना गया है,
5: क्योंकि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये प्रम्बानन मंदिर है जो कि 9वीं सदी में निर्मित इंडोनेशिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जब चौथी सदी थी उस समय की बात है जब हिंदुत्व का यहाँ पर बहुत आधिपत्य था और सब यहाँ पर हिंदू हुआ करते थे. अब 2% से कम लोग बच गए हैं जो हिंदू हैं, लेकिन प्रम्बनन मंदिर जो है यहाँ पर, पूजा अर्चना यहाँ पर नहीं की जाती है. ये सुनसान है बिल्कुल, एक पर्यटन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं. अगर आप तीनों मंदिरों को देखें, और तीनों मंदिरों के यानी सामने विष्णु मंदिर आप देख रहे हैं, शिव मंदिर देख रहे हैं और ब्रह्मा मंदिर देख रहे हैं, और सबके ठीक सामने का जो हिस्सा है वो है उनके वाहनों का मंदिर है, यानी नंदी मंदिर, हंस मंदिर और वरुण मंदिर. तो सबसे ज्यादा यहाँ पर गरुड़ का महत्व होता है. गरुड़ यानी कि विष्णु जी की सवारी, और यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह भी होता है ना वो भी गरुड़ ही है. मैं आपको यहाँ के नोट पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गरुड़ का जो चिन्ह है ये यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है.
1: बताया जाता है कि 11वीं सदी में भूकंप और ज्वालामुखी की चपेट में आने की वजह से ये मंदिर परिसर मलबे में दब गया था. 17वीं सदी के शासकों ने मंदिर की फिर से खोज की और इसका पुनर्निर्माण करवाया. 1918 तक मंदिर का वास्तविक स्वरूप तैयार हो सका. 2006 में फिर भयंकर भूकंप इस क्षेत्र में आया. परिसर में बाकी मंदिर लगभग ध्वस्त हो गए, लेकिन जहां परिसर के बाकी मंदिर खंडित होते रहे, मुख्य त्रिमूर्ति मंदिर को हर बार नाम मात्र ही नुकसान पहुंचा. कीर्ति नगारा और त्रिभुवना जैसे हिंदू राजाओं ने इंडोनेशिया में कई बरस शासन किया. श्री विजया

0: यहाँ के आजाद नगर का नजारा। यहाँ बारिश के पानी की घुसपैठ घरों तक हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने मोर्चा संभाला और कंधों पर लाद कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पहुँचाया गया। लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ बुलडोजर की भी मदद ली गई। घंटों चले रेस्क्यू मिशन में करीब 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। बारिश के बाद शहर शहर दरिया केवल गुजरात में ही नहीं नजर आ रहा, बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें पालघर की हैं, जहां के वीरेंद्र नगर में पानी से घिरे घर में फंसे 9 महीने के मासूम बच्चे को स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को सुरक्षित देखते ही उसके माता पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े।
1: पालघर जिले में सुबेरे 5 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू है। उस बारिश का असर पालघर में देखने को मिला है। पालघर के वीरेंद्र नगर में जहां सब सो रहे थे, उसी समय उनके घरों में पानी भर आया। उन घर वालों को बाहर कैसे निकला जाए, सब परेशान थे। उसी समय सूरत धोत्रे अपनी टीम लेकर के उस जगह पहुंचे और उन लोगों को बाहर निकालने की पूरी मशक्कत की। क्या कहोगे आप, क्या क्या स्थिति थी जब आप लोग अंदर?
2: रात में से ही बारिश होने लगा, तो अपन उठे तो देखे तो बारिश ज्यादा बढ़ गया था, तो इसके लिए हमारा दिल घबराने लगा। मैं बोला अभी क्या करने का, तो फिर हमने बैठे थे तो वहाँ पे संजू भाई ने आया, उसने बोला कि भाई आप लोग का मदद मैं करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो।
3: जब यहाँ पे हम आए तो ऐसा माहौल था यहाँ पे कि अंदर हम जा नहीं सकते थे, तो लेकिन हमारा सब टीम लोग थे, बच्चे लोग सब लोग ने तय किया नहीं आप लोग जाना पड़ेगा वहाँ पे अंदर निकलने के लिए, नहीं जाएंगे तो बच्चे फंस जाएंगे वहाँ पे।
0: पालघर में सिर्फ इस मासूम को ही नहीं, बल्कि रस्सी और ट्यूब की मदद से यहाँ करीब 20 से 25 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेज बहाव और जलभराव के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना युवाओं ने राहत अभियान चलाया और कई परिवारों की जान बचाई। बारिश के चलते महाराष्ट्र के पुणे का हाल बेहाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भर गया, लिहाजा लोग यहाँ फंस गए। छाती तक आ चुके पानी में रेस्क्यू टीम ने फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को निकाला गया। पुणे की सोसाइटी में रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दुश्वारियां आईं। सबसे ज्यादा मशक्कत यहां फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने में करनी पड़ी। इमारत के दूसरे फ्लोर से कुछ इस तरह कई बुजुर्गों को नाव पर पहुंचाया गया। फिलहाल तो मानसून का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन कुछ लोग इस मौसम में भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीर कर्नाटक के कोडगु की है, जहाँ कॉलेज के कुछ छात्र सुरक्षा बैरिकेड पार कर झरने के उस क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ जाना मना है। फिर क्या था, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके बाद सभी छात्र बीच में एक चट्टान पर फंस गए। खबर मिलते ही राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के पालघर से मोहम्मद हुसैन खान, मुंबई से विद्या, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ अखनूर से सुनील जी भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators, dive with sharks, explore the unexplored, from nature, science, and space, to premiere original series and exclusive IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
6: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
4: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत, वंदे मातरम का जय घोष। सौरव गांगुली को जन्मदिन पर बड़ा तोहफा, पूर्व कप्तान को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किया गया शामिल, इस सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय बने गांगुली। डीआरडीओ ने रचा एक और कीर्तिमान लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का किया सफल परीक्षण।